0: बार हम लोग सनातन धर्म सनातन धर्म सनातन धर्म सुनते हैं, तो सबसे पहले बिल्कुल सिंपल हिंदी में, सिंपल भाषा में हमें समझाइए, ये सनातन धर्म वास्तव में है क्या?
1: देखिए समीर जी, सनातन धर्म सात्वत सत्य है। सात्वत सत्य का मतलब है जो पहले था, अभी है और आगे भी, जो कि अनंत है, ऐसा सत्य है। नैतिकता, आत्मज्ञान और मानव कल्याण पर आधारित जीवन दर्शन है जो समय, स्थान और परिस्थितियों से परे है। समय, स्थान और परिस्थिति, चाहे हम भारतवर्ष में बात करें, चाहे किसी और दूसरे देश की बात करें, और समय, चाहे भूतकाल की बात करें या वर्तमान की बात करें या भविष्य की बात करें, हर परिस्थिति से ये परे है, मतलब हरदम ये सत्य है
0: जी। तो ये धर्म किसी विशेष समुदाय का है या सभी का है, क्या मतलब, इसको थोड़ा सा और समझाइए सर।
1: देखिए, जो सत्य होता है वो तो सभी पे लागू होता है, और सत्य जो है वो हर व्यक्ति के लिए, सत्य तो सत्य है, इसमें किसी जाति का, जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा, न्यूटन का ग्रेविटी लॉ है। अब ये ग्रेविटी लॉ ऐसा नहीं है कि ये भारतवर्ष के लिए ही है, अमेरिका में लागू नहीं होगा, या ये जो है स्थान की बात करें, अगर पाकिस्तान में लागू नहीं है या चीन में लागू नहीं है, ये ग्रेविटेशनल लॉ हर जगह लागू है। तो इसी तरह से जो सनातन दर्शन है या सनातन धर्म की बात अगर हम करें, ये एक जीवन जीने की पद्धति है और ये हर व्यक्ति के लिए सत्य चीज है और ये सबके लिए लागू है, चाहे वो किसी भी देश का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो।
0: होता क्या है भारद्वाज साहब की, आज तक की डेट में जितना भी मैंने समझा सनातन को या सनातन के शब्द को सुना, हमेशा ये हो जाता है कि साहब ऐसा एक इम्प्रेशन है, ऐसी एक समझ बन गई है समाज में कि सनातन मतलब हिंदू धर्म, सनातन धर्म मतलब हिंदू। तो क्या ये सेम है या अलग अलग है सर? क्या हिंदू धर्म ही सनातन धर्म है, क्या है?
1: समीर जी, आपने एकदम सही कहा, सनातन धर्म और हिंदू धर्म में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि इनमें अंतर क्या है। सनातन धर्म मूल जीवन दर्शन है, जहाँ तक सनातन की बात करें ये तो मूल जीवन दर्शन है, जबकि हिंदू शब्द भौगोलिक और सांस्कृतिक पहचान के रूप में बाद में प्रचलित हुआ है, लेकिन अगर हम गौर से देखें तो चीज ये एक ही है, अलग नहीं है।
0: ओके, क्योंकि टाइम एंड अगेन सनातन धर्म को किसी और भाषा में या किसी और रिलीजन में या किसी और सामुदायिक ग्रुप में कभी डिस्कस होते हुए नहीं सुना, इसलिए थोड़ा सा ये कंफ्यूजन हो जाता है। मतलब सनातन धर्म की बात करते हुए सिर्फ हिंदू ही पाए गए, तो उसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि क्या है सनातन धर्म हिंदू है या आज हम हिंदू लोग सनातन धर्म को अपने से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। क्योंकि दरअसल सनातन धर्म की परिभाषा के लिए चक्कर में हमारी जो भाषा होती है वो भी इतनी ज्यादा शुद्ध हिंदी हो जाती है कि लगता है ये तो हिंदू धर्म है, इसलिए मैंने ये सवाल आपसे पूछा।
1: नहीं, आपका सवाल एकदम सही है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, देखिए एक चीज हम ध्यान रखेंगे कि ये एक, जो कि पहले भी था, आज भी और आगे भी रहेगा, ये एक अटल सत्य है पर आधारित है और ये सभी पे लागू है, ये ऐसा नहीं है कि खाली हिंदुओं के लिए ही ये है। और इसको अगर देखिए, मैं एक और चीज मानता हूँ, आज जो विश्व के अंदर अशांति का माहौल हो रहा है, जगह जगह झगड़े हो रहे हैं, वार कई देशों के बीच में हो रही है, अगर इस दर्शन को, इस धर्म को लोग ध्यान से समझेंगे तो हमें इन चीजों से जो भी कठिनाई आ रही है उनसे छुटकारा मिलेगा, सनातन धर्म में इतनी शक्ति है।
0: चलिए, अभी तो मैं अभी आपके इसी बात पर वापस आता हूँ भारद्वाज साहब, बट सबसे पहले तो यही जानना चाह रहा हूं कि ये जो सनातन धर्म, या चलिए इसको हम धर्म ना कह के सनातन रिलीजन कह लें, जिसे बाकी के धर्म के लोग भी इसे कनेक्ट कर पाएं, ये किसी एक संस्थापक या एक बुक पर आधारित है, कोई ग्रंथ है इसका कि जहां लिखा हुआ है कि साहब ये सनातन धर्म का ग्रंथ है, ये सनातन धर्म यहां से आया है, इन्होंने बताया है, और ऐसा कुछ है सर?
1: नहीं, एक व्यक्ति द्वारा नहीं है समीर जी, बहुत सारे ऋषि मुनियों ने करोड़ों साल तक जो तपस्या की उन्होंने

0: अध्ययन किया उनके अनुभव पर ये आधारित है और ये एक व्यक्ति रिलेटेड नहीं है जो उन्हें सत्य प्रतीत हुआ और उन्होंने देखा कि भाई ये साइंटिफिक भी है और ये व्यवहारिक भी है। इस तरह के सत्य को वो लिखते गए कि भाई इन इन चीजों को हमें फॉलो करना चाहिए। और ये आपने सही कहा, इसको धर्म ना बोल के अगर हम दर्शन शब्द यूज करें, सनातन दर्शन, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये किसी एक पर्टिकुलर धर्म से रिलेटेड किसी भी हालत में नहीं है
1: जी। तो जैसा दोस्तों आपने सुना, भारद्वाज साहब ने ये बताया कि किसी एक व्यक्ति द्वारा बनाया गया, किसी एक इंसान द्वारा बनाया गया ये धर्म नहीं है या दर्शन नहीं है। आप इस चीज को बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, परेशान मत होइएगा कि सनातन जो है सिर्फ हिंदुओं का है और किसी का नहीं है। ये बिल्कुल गलत है, ये गलतफहमी को दूर करना जरूरी है। तो आगे बढ़ते हुए सनातन को और बेहतर समझते हैं कि सनातन में मतलब कर्म और धर्म ये कैसे सम्मिलित किए जाएं। कर्म मतलब हम क्या काम करते हैं, किस तरीके से जिंदगी जीते हैं, और किस तरीके से हम किसी ईष्ट देव को या किसी भी जो भी हम जिनकी भी हम पूजा करते हैं अपने आप को संभालने के लिए, तो इन दोनों चीजों को सनातन दर्शन में कैसे इनकॉर्पोरेट किया जाता है, कैसे समझा जाता है।
0: देखिए समीर जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं। रियली आई एम सो हैप्पी कि आपके क्वेश्चन बहुत ही रेलिवेंट है सनातन दर्शन को लेकर के। अब धर्म की अगर बात करें, धर्म क्या है, तो धर्म का मतलब धारण करने योग्य है और सही आचरण का मार्ग जो दिखाता है वही धर्म है, कि हमारा आचरण सही हो। सनातन के अंदर धर्म को बहुत ही ज्यादा वैल्यू दी गई है, कहा गया है कि भाई हमें धार्मिक धर्म के हिसाब से ही काम करना चाहिए। धर्म का मतलब, लेकिन यह सही आचरण से मतलब है कि हमारा आचरण कैसा होना चाहिए। और कर्म से क्या है कि जैसे हम कर्म करेंगे वैसे ही परिणाम हमको मिलेंगे। दोनों मिलके, धर्म और कर्म मिलकर के जीवन को बैलेंस करते हैं, संतुलित बनाते हैं, धर्म और कर्म। तो हमें करना क्या चाहिए कि हम धर्म के हिसाब से कर्म करें और जो हमारे कर्म है वही हमारे जीवन के परिणामों को निर्धारित करेंगे
1: जी। ओके, अब अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और सनातन दर्शन में, जैसा आपने बिल्कुल सही शब्द हमें दिया आज, धर्म की जगह इसको दर्शन ही कहा जाए तो अच्छा होगा। तो सभी के लिए क्या ये एक ही रास्ता है सनातन दर्शन, या हम अलग अलग रास्ते भी सनातन दर्शन में चुन सकते हैं?
0: नहीं, देखिए इसमें हर व्यक्ति का नेचर अलग होता है। आपने देखा होगा अगर 10 व्यक्ति बैठे तो जरूरी नहीं है उनका स्वभाव, उनकी प्रवृत्ति एक ही तरह की हो, उनका नेचर अलग अलग होगा। तो इसमें सभी को उनके नेचर के हिसाब से भी मार्ग दिए गए हैं। कोई भक्ति मार्ग करना चाहे, ज्ञान मार्ग करना चाहे, या कर्म योग करना चाहे, वो सभी मार्ग इसमें दिए हैं। भक्ति, ज्ञान और कर्म, ये तीनों चीज इसके अंदर, तीन मार्ग इसमें मुख्य रूप से सनातन दर्शन में बताए गए हैं।
1: तो सबसे पहले तो भारद्वाज साहब, मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना रहेगी, रिक्वेस्ट रहेगी कि ये जो तीन चीजें आपने अभी बताई हैं, भक्ति, ज्ञान और तीसरा कर्म, तो थोड़ा सा हमें इन तीनों को भी जरा एक डेफिनेशन या परिभाषित कर दीजिए, थोड़ा सा हमें बता दीजिए कि मान लीजिए आपकी बात सुनकर मैं कहूं कि चलिए मैं भक्ति मार्ग अपनाता हूं, तो मैं क्या करूं? बात सनातन दर्शन की हो रही है सर। सनातन दर्शन के अंदर, उसके अंडर में कर्म को मैं कैसे भक्ति भक्ति मार्ग को मैं कैसे अपनाऊं, क्या करूं?
0: देखिए भक्ति मार्ग का मतलब यह है कि हम परमपिता परमेश्वर, अब इसमें कोई एक परमेश्वर नहीं है, जो जिसको भी भगवान मानते हैं वो सभी एक हैं, तो उनको, उनके प्रति प्रेम और समर्पण का मार्ग अपनाए। जैसे कि मीरा का एग्जाम्पल है भक्ति मार्ग के अंदर, तो एक समर्पण का मार्ग होना चाहिए और प्रेम करना चाहिए, उनको एक सत्य मानना चाहिए कि हाँ भाई भगवान है। ये भक्ति मार्ग के अंदर, उनके अंदर आस्था रखनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। ज्ञान मार्ग में विवेक और आत्मबोध का मार्ग है, इसके अंदर ये ज्ञान होना चाहिए कि शरीर और आत्मा ये अलग अलग है। शरीर जो है वो नश्वर है और आत्मा जो है वो हरदम अमर है, कभी भी उसका नाश नहीं होगा, तो ये ज्ञान योग है। और कर्म में निस्वार्थ कर्म का मार्ग, अब कर्म देखिए चक्कर क्या है कि कई तरह के कर्म है, अब कौन सा कर्म सही है कौन सा कर्म सही नहीं है ये मालूम होना बहुत जरूरी है, और कर्म करने के तरीके भी पता होना चाहिए कि कर्म अगर हम करें तो कैसे करें। और ये तरीका भी सनातन में बहुत ही ढंग से समझाया गया है कि निस्वार्थ भाव से आसक्ति रहित होकर के हम कर्म करें और फल की चिंता नहीं करें, और जो भी हम कर्म कर रहे हैं उसके फल भगवान को अर्पित करते हुए हम आगे बढ़े। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम सफल होंगे और हमारा जो है फिर जो मेन मोक्ष का जो हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए किसी भी इंसान का, मानव योनि में उसको जन्म मिला है तो उसको ये ट्राई करना चाहिए कि अंत में जाकर के वो भगवान से ही मिल जाए, यानी उसको मोक्ष प्राप्त हो जाए। तो वो इन तीनों मार्गों से, भक्ति योग से, ज्ञान योग से और कर्म योग से उसको मिल सकता है, और अपनी नेचर के हिसाब से जो भी मार्ग जिसको सही लगे उस मार्ग में वो आगे बढ़ सकता है।
1: जी तो दोस्तों, मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं है इस बात को समझना कि सनातन दर्शन क्या कहता है। यहाँ पर भारद्वाज साहब, हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एक प्यारे से भजन के लिए, और फिर इसके बाद मैं वापस आता हूँ आपके पास।
0: जी जी जी

0: बहुत सुंदर। आगे बढ़ते हुए आपने जो पीछे बात कही भक्ति योग, कर्म योग और ज्ञान, हां जी सर, तो इनको अगर मैं एक्स्ट्रापोलेट करूं, भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग, एक्स्ट्रापोलेट करके इनको पूरे संसार पे फैला दूं, क्योंकि हम लोगों की यही बातचीत हो रही थी कि सनातन धर्म कुड बी यूज्ड बाय एनी रिलीजन अक्रॉस द वर्ल्ड सो दैट सब लोगों में शांति आ जाए। तो समझ लें, आपने कहा इस बात को कि सब लोग समझ लें, रशिया भी समझ ले, अमेरिका भी समझ ले, ईरान भी समझ ले, इराक भी समझ ले, पाकिस्तान भी समझ ले और वियतनाम भी समझ लें, सनातन को सब समझ लें तो सब शांत हो जाएंगे। तो वही मैं ये पूछना चाह रहा हूं सर कि ये कर्म योग, ज्ञान योग और तीसरा जो था सर भक्ति योग, इसको इन सारे विश्व में समझाने के लिए क्या करना चाहिए सर, कैसे इनको बताएं कि साहब ये तीन चीजें हैं, इनको कर लो, हाउ डू वी, क्योंकि मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है कि सर ये अभी यहां बस भारतवर्ष के किसी कोने से ये निकला है सनातन धर्म, जिसको हम समझाने चले हैं कि हम पूरे विश्व को बताएं तो विश्व शांत हो जाए। सो चलिए मान लिया प्रिंसिपली, बट मेथड क्या हो, क्या करें हम, इराक को कैसे बताएं कि साहब ये सनातन धर्म इस्तेमाल करो।
1: जी देखिए, एक तो सबसे बड़ा काम जो आज मैं देख रहा हूँ आपका टीवी भी कर रहा है
0: जी,
1: आज आपने इतने इम्पोर्टेंट मैटर को लेकर के आज आप ये एक पॉडकास्ट बना रहे हैं, जो भी इसको नाम दे आप ये प्रोग्राम आपने बनाया और इस प्रोग्राम को हजारों लाखों लोग सुनेंगे, तो इसी तरह से इसका जो प्रचार प्रसार है इसके बारे में तरह तरह के लेख लिखे जाएं और बहुत ही सरल भाषा में लिखे जाएं, और जैसे सरल भाषा में ये प्रोग्राम अभी आप इसको आगे बढ़ा रहे हैं, इस तरह के प्रोग्राम ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में जाने चाहिए और जिससे कि वो इस मुद्दे को समझ सके। देखिए सनातन धर्म एक बात कहता है, बहुत छोटी सी बात मैं बोल रहा हूँ कि सबके अंदर भगवान है और शरीर एक वस्तु की तरह है और आत्मा जो है वो नश्वर है, आत्मा कभी खत्म नहीं होती, अनंत है और वो अमर है। तो अगर ये समझ में आ जाए कि सबके अंदर भगवान है, सबके अंदर आत्मा है, परमात्मा है, तो फिर सब झगड़े दूर हो जाएंगे, हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर सनातन को समझेंगे तो ये भावना हमारे अंदर आ जाएगी और जब हमें लगेगा कि पूरा विश्व ही हमारा परिवार है तो उस केस में कहीं कभी भी कोई झगड़े की नौबत नहीं आएगी। मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद हमारे नहीं होंगे अगर हम सबको अपना परिवार का सदस्य मानेंगे। तो इसके लिए ज्यादा से ज्यादा सरल भाषा में लेख होने चाहिए, मैंने काफी लेख लिखे हैं और कई न्यूज़पेपर के थ्रू, कई सोशल मीडिया के थ्रू इसको आगे हम लोग बढ़ा रहे हैं, और जिस तरह का ये पॉडकास्ट आप बना रहे हैं और इसको काफी लोगों को आप सुनवाएंगे तो यही एक तरीका है जिससे कि ये चीज आगे आसानी से बढ़ेगी और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी हेल्प लेनी चाहिए।
0: हाँ, मेरे दिमाग में यही चीज आ ही रही थी भारद्वाज साहब, क्योंकि आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत जबरदस्त हंगामा मचा हुआ है, उसकी बारे में बातचीत हो रही है, हर व्यक्ति आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को या तो इस्तेमाल कर रहा है या डर रहा है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रस्पेक्टिव में, उसके संदर्भ में और जो आज की टेक्नोलॉजी है वहां पर सनातन दर्शन के मूल्यों की क्या प्रासंगिकता है, मतलब क्या रेलिवेंस है, सनातन धर्म एआई के साथ कैसे मिक्सिंग करेगा।
1: देखिए जो भी टेक्नोलॉजी होती है समीर जी, आप भलीभांति जानते हैं, वो टेक्नोलॉजी शक्ति देती है, कोई भी जो टेक्नोलॉजी है, लेकिन उसका सही उपयोग विवेक, नैतिकता और करुणा से ही संभव है, और यही सनातन कहता है कि आप जो है सही उपयोग करें विवेक से, नैतिकता से और करुणा से। अब क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बहुत ज्यादा फायदेमंद टेक्नोलॉजी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ी विनाशकारी भी हो सकती है अगर इसका मिसयूज कर दिया गया। और सनातन धर्म कभी भी किसी भी टेक्नोलॉजी के मिसयूज के लिए को रिकमेंड नहीं करता, सनातन धर्म हरदम कहता है जो सत्य है वो करो। और सत्य क्या है, देखिए अब एक बार बताता हूँ, वायरलेस जैसे बना तो पुलिस के पास आने के पहले वायरलेस जब बना था वो पहले डाकुओं के हाथ में पहुंच गया, तो वो उन्होंने यूज किया सबसे पहले वायरलेस को कि बता, वो लोग ये बात करते थे आपस में कि भाई पुलिस आ रही है हमारे पीछे अब भागो। तो कोई भी अगर टेक्नोलॉजी बनी है वो मानव कल्याण के लिए होनी चाहिए, शांति के लिए होनी चाहिए, अच्छे काम के लिए होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी का मतलब ये नहीं है कि हम उसकी जो नेगेटिव पॉइंट है या उसको गलत जगह यूज कर रहे हैं। परमाणु है, अब देखिए न्यूक्लियर एनर्जी पावर स्टेशंस में बिजली भी बना रही है, बिगर बिजली कुछ नहीं हो सकता, और इससे एटम बम भी बन रहे हैं। तो सनातन धर्म कभी भी नहीं कहता कि टेक्नोलॉजी को विनाश के लिए यूज किया जाए, कभी भी टेक्नोलॉजी को विनाश के लिए यूज नहीं करना चाहिए, ऐसा इस दर्शन में जगह जगह लिखा हुआ है। और पूरे विश्व को, पूरे संसार को एक परिवार बताया गया है, ये इस धर्म की खासियत है। इसीलिए मैं पुरजोर शब्दों में कहना चाहता हूं कि अगर इस दर्शन को, सनातन दर्शन को सभी देश अपनाएंगे, जैसा आपने भी अभी पहले थोड़ी देर पहले कहा है, तो एकदम सब जगह शांति फैल जाएगी और जीवन जो है वो सुखी और सफल होगा सभी लोगों का।
0: जी बहुत खूब। होता क्या है भारद्वाज साहब, पूरा संसार हम मनुष्यों से भरा हुआ है और हर मनुष्य के सोचने का तरीका अलग अलग होता है। सारे तो साधु नहीं होते, कुछ तो बदमाश भी होते हैं। और जब से मानव समाज अस्तित्व में आया है तब से ये बुरे लोग और अच्छे लोग बने हुए हैं। लाखों करोड़ों साल गुजर चुके, इंसान ने बहुत कोशिश कर ली कि बुरे लोगों को सीधा बना दिया जाए, लेकिन हुआ कभी नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सिक्के के दो पहलू हैं, जब दिन होगा तो रात भी होगी, और अगर रात खत्म कर दी जाए तो दिन का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। तब जहाँ पर इस सनातन दर्शन की हम बात कर रहे हैं कि इसको चारों तरफ फैलाया जाए, तो ये एक तरीके से एकमुष्ट धर्म हो जाएगा पूरे संसार का। ना कोई क्रिश्चियनिटी बचेगी, ना कोई हिंदुइज्म बचेगा, ना कोई बुद्धिज्म बचेगा, ना कोई इस्लाम बचेगा, सिर्फ एक सना

0: सनातन दर्शन सनातन धर्म होगा। क्या यही बात हम आज डिस्कस कर रहे हैं सर, ऐसा ही चाहते हैं हम?
1: हाँ देखिए, हम ये कह रहे हैं जो सनातन में हमने शुरू में ये एक बात कही कि सनातन का मतलब है जो शाश्वत है, जो सत्य है, और जिसमें करुणा भी है, आत्मबोध भी है, आत्मज्ञान भी है, वो सनातन है। तो जो भी व्यक्ति काम कर रहे हैं, भले ही वो किसी भी धर्म को मान रहे हैं, उस धर्म को मानते चले, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम सभी धर्मों का सम्मान कर रहे हैं, ये विवेकानंद जी ने भी कहा था जब वो अमेरिका गए थे, तो उन्होंने एक खास बात कही थी कि हम आपके सभी के धर्मों का हम पूरी तरह से हम उनके मतलब हम ये नहीं कह रहे कि हम उनके विरोध में हैं, आप अपने धर्म को अपनाइए, लेकिन अगर आपको जो हम सनातन दर्शन की बात कर रहे हैं इसकी अगर अच्छाइयां बता रहे हैं, तो जो अच्छाइयां इसमें आपको नजर आए वो अच्छाइयां जरूर अपनाओ। अब मैं बिगर नाम दिए हुए आपको एक बात कहना चाहूंगा समीर जी,
0: जी, जी।
1: कि सनातन में इसके कोई भी ग्रंथ आप उठा के देख लीजिए, कहीं भी नफरत की भावना नहीं लिखी हुई है कि हमें किसी से नफरत करनी है। वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि आत्मा सभी के अंदर है। यूरोपियन कंट्रीज में सालों तक ये नहीं माना जाता था पुराने टाइम में कि महिला के अंदर आत्मा है। आप देखो कितनी बड़ी विडंबना है, वो आज ये शो करते हैं कि वो लेडीज को बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट देते हैं, लेकिन पहले उनके यहाँ ये तक नहीं माना जाता था कि महिला में आत्मा है, जबकि हम ये कह रहे हैं कि सब में आत्मा है। और हमारा सनातन धर्म तो ये कह रहा है जीव में निर्जीव में सबके अंदर भगवान को मानना है, और भगवान मान करके उनके साथ व्यवहार करना है। अगर हम सब में भगवान मानेंगे तो, और जब भी कोई हमसे मिलने आएगा, जब भी कोई काम होगा, अगर हम मानते हैं भगवान है, तो आप समझ सकते हैं कि हमारा रिएक्शन क्या होगा। सनातन धर्म इतनी ऊंची सोच के साथ ये दर्शन काम कर रहा है, तो इसको अपनाना तो सबके लिए जरूरी। बाकी वो जिसकी पूजा, जिसको वो प्रेम करना चाहे, जिसकी पूजा करना चाहे वो करे, उनके लिए गॉड मे बी कुछ भी, कोई भी गॉड हो सकता है, उसके लिए कहीं मना नहीं है सनातन धर्म में, लेकिन सनातन दर्शन में। लेकिन ये कहता है सत्य को, और सत्य तो हर जगह एक ही है, सत्य अलग अलग नहीं हो सकता कि अमेरिका में सत्य कुछ और है, जापान में कुछ और है, और भारत में कुछ और है, सत्य तो सत्य है।
0: बहुत खूब विचार करने का विषय है दोस्तों, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, विचार कीजिए, मनन कीजिए, आंखें बंद कीजिए और सोचिए जो भरद्वाज साहब ने अभी हमें बताया। लीजिए इस भजन को सुनिए और हम वापस आते हैं।

0: बहुत सुंदर। तो आगे बढ़ते हुए हम आपके व्यक्तिगत अनुभवों पर आते हैं कि जब से सनातन दर्शन को, सनातन धर्म को आपने समझा, अपनाया और उसकी प्रैक्टिस करनी शुरू की, तो आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए, बदलाव आए? क्या आपको लगा कि अरे यार, ये तो पहले मैं परेशान रहता था, अभी तो बड़ा अच्छा हो गया? क्या क्या चेंजेस आए आपके जीवन में?
1: देखिए, पहले जब मैंने सनातन को ढंग से नहीं समझा था, नहीं पढ़ा था, जीवन आप देखेंगे तो इसमें उतार चढ़ाव हर व्यक्ति के जीवन में आना स्वाभाविक है, आते ही है। जैसे कि दिन और रात, ये अवश्यम भावी है, दिन है तो फिर रात होगी और रात है फिर दिन होगा, ऐसे ही मानव के जीवन में सुख और दुख के सब आते। पहले कोई छोटी सी भी परेशानी आई तो मैं विचलित हो जाता था
0: जी,
1: लेकिन जब से मैंने सनातन को समझा और चीजों को देखी, अगर सत्य आपके सामने है, अगर मान लीजिए रात हुई और जिस व्यक्ति को कोई, कई ऐसे भी जीव है जिनको ये पता ही, मतलब जिनको ज्ञान नहीं है कि भाई रात है तो अब दिन होगा, लेकिन जिसको ज्ञान है उसे पता है ये थोड़े समय के लिए है, फिर दिन आ जाएगा और दिन भी नहीं रहेगा, फिर रात हो जाएगी, तो ये जो है चक्र चलता रहेगा, ऐसे ही सुख और दुख है। तो इसके बारे में सनातन धर्म कहता है कि ये चीजें स्थाई नहीं है, अगर सुख है तो वो भी स्थाई नहीं है और दुख है तो वो भी स्थाई नहीं है। तो जब स्थाई नहीं है तो उस परिस्थिति में हमको अपने आप को ढाल करके, उस परिस्थिति के अंदर हमें संतुलन बना करके, संयम बना करके रहना है, ना कि हम उस ऐसे ही कभी दुख आया, थोड़े से दुख आते विचलित हो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जैसे ही मैंने सनातन को समझा, मेरे जीवन में संतुलन आ गया, पॉजिटिव थिंकिंग मेरी हो गई, आत्मविश्वास बढ़ गया और सेवा की भावना। सनातन ये कहता है कि आप दूसरों को जितना हो सके उनको सुख दीजिए, आपको भगवान अपने आप सुख देगा। चार वेद, किसी संत ने कहा है, चार वेद षट शास्त्र में बात लिखी है, दो बात लिखी है इंपॉर्टेंट शास्त्रों में और चार वेदों में, सुख दीजिए सुख लीजिए, दुख दीजिए दुख होए। अगर दूसरे को सुख देंगे आपको स्वयं को सुख मिलेगा, और आप दूसरों के लिए गड्ढे खोदेंगे तो गड्ढे आप ही को दुख देंगे, आप ही के लिए वो गहरे गड्ढे साबित हो जाएंगे। तो इसलिए सनातन को समझने के बाद मुझे जो है जीवन में संतुलन, सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास और सेवा की भावना बहुत मेरे अंदर मजबूत हुई है
0: जी। बहुत खूब। तो ये बिल्कुल क्लियर एक एक्सप्लेनेशन है कि प्रैक्टिकल, देखिए थियोरेटिकल अलग चीज हो गई कि हमने बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर ली सनातन दर्शन के बारे में, हैं जी, लोगों की हेल्प करो, सुख दो, लेकिन प्रैक्टिकल बात अभी भारद्वाज साहब ने बताई कि जब उन्होंने इन चीजों को अपनाया तो उनके जीवन में क्या बदलाव आए। देखिए दोस्तों, चाहे हम इनको कितनी भी थियोरेटिकल बातें माने, लेकिन जब भी किसी दर्शन को हम अपने जीवन में उतारते हैं तो हमारे जिंदगी में कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंजेस तो आते ही हैं। वही चीज भरद्वाज साहब शेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं कि उनके जीवन में क्या बदलाव आए। चलिए यहां पर रुककर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और एक भजन का एक मुखड़ा सुनकर वापस आते हैं भरद्वाज साहब से और विचार विमर्श करने के लिए।

0: बहुत सुंदर। तो ठीक है, अब और प्रैक्टिकल बात करते हैं भारद्वाज साहब। मान लीजिए आपके इस बात, इन सारी बातों को, इन सारी डेफिनेशंस को, एक्सप्लेनेशंस को सुनने के बाद कोई व्यक्ति कन्विंस हो जाए कि ठीक है ये तो बढ़िया बात लग रही है, फिर वो चाहे किसी भी धर्म का हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, बुद्धिस्ट हो, हिंदू हो, उसे लगे चलिए सनातन धर्म के बारे में पढ़ता हूं और सनातन धर्म को और समझता हूं और सनातन धर्म अपनाता हूं, तो उसको पहला कदम क्या लेना चाहिए?
1: देखिए, सनातन धर्म इस बात पे बहुत ज्यादा जोर देता है कि पहले स्वयं को जानने की जिज्ञासा। अब स्वयं को जानने की जिज्ञासा को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि स्वयं हम, मैं हूं क्या, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, क्या मैं शरीर हूं या मैं आत्मा हूं, और दूसरे क्या हैं, उनको समझे कि भाई वो भी जो है आत्मा है और परमात्मा के थ्रू हम सबके अंदर परमात्मा भी है, हम उसी के अंश हैं। तो स्वयं को जानने की जिज्ञासा हो और प्रतिदिन कुछ समय आत्मचिंतन के लिए निकालना चाहिए। हम ये चिंतन करें, लोग क्या हो गया, एक बहुत एक अंधी दौड़ के अंदर दौड़ है, उनको समय ही नहीं है सोचने का। किसी कई जगह मैंने ये भी देखा, उनसे पूछा जाए भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो, तो पता लगा कि वो जवाब ही नहीं दे पाएंगे, इतने ज्यादा कंफ्यूज हो चुके हैं। पता लगा कि वो ज्यादा पैसा कमाने के लिए सुबह से शाम तक नैतिक अनैतिक टेंशन में रह करके बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन अनैतिक कार्य भी कर रहे हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस के एटमॉस्फेयर में काम कर रहे हैं, तो उनका जो है एकदम बीमारियों ने जकड़ लिया। अब पैसा, अगर आप भारतवर्ष की बात करें, आज अगर कोई भूखा है उसको खाना खाना है तो खाने के लिए बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत, आज भी अपन भले ही महंगाई का युग बोले जो भी बोले, आज भी उसको बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर गलती से वो स्ट्रेस में काम करके अनैतिक काम करके कहीं हॉस्पिटलाइज हो गया, तो समीर जी मैंने खुद ने देखा है कई अपने दोस्तों के केस में कि एक एक इंजेक्शन लाखों रुपए के, आजकल मेडिकल खर्चा इतना हो रहा है कि जो लाखों रुपए का एक इंजेक्शन भी आ रहा है, इस तरह की भी चीज है। इसलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम आत्मचिंतन करें, स्वयं को जाने और प्रतिदिन आत्मचिंतन के लिए कुछ समय निकालें और अंधी दौड़ में नहीं दौड़े, अदरवाइज हमें दिक्कत, हमारी दिक्कत है बढ़ जाएगी।
0: जी, आपकी बात बिल्कुल सत्य है सर। अब होता क्या है भारद्वाज साहब कि आप और मैं जिस उम्र में आ गए हैं और हमारे इस प्रोग्राम को सुनने वाले ज्यादातर लोग भी इसी उम्र के हैं, जिनको अब उन्होंने जिंदगी बिता ली, कमा लिया, खा लिया, बीमार पड़ गए, खुशी हो गई, बच्चे बच्चियों की शादियां कर दी, सेटल हो गए, रिटायरमेंट हो गए, तो अब हमें ये सारी बातें समझ में आ रही हैं। लेकिन कोई युवा, समझिए 25 साल का, जो अभी ग्रेजुएट

0: के निकला है, हैं जी, किसी बढ़िया इंस्टीट्यूट से कंप्यूटर साइंसेस में बड़ा विद्वान होकर निकला है, अब उसे तो गाड़ियां दिख रही हैं, उसे तो मॉल्स दिख रहे हैं, उसे तो कपड़े दिख रहे हैं, घड़ियां दिख रही हैं, लड़कियां दिख रही हैं, उसे तो मजे करने हैं। अब उसको हम कैसे समझाएं कि बेटा सनातन धर्म पकड़ लो, है ना, विचार करो, बैठो। वो कहेगा अरे साहब बैठने का टाइम नहीं है मेरे पास, मुझे तो पार्टी में जाना है। तो अगर हम उसे और समझाएं तो वो ये कहेगा कि सर ऐसा है, आपने तो अपनी जिंदगी मजे ले लिए, अब जब मेरा वक्त आया तो आप मुझे मजे लेने के बजाय कह रहे हो बैठो मेडिटेट करो समझो मत कमाओ ज्यादा मत कमाओ। तो 5 मिनट में अगर किसी युवा को सनातन धर्म समझाएं तो कैसे समझाएं सर?
1: जी जी नहीं देखिए, आपने बहुत ही बढ़िया एक सवाल पूछा है और युवा पीढ़ी भी इसको देख रही होगी या जो मदर फादर इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो भी उनको बता सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। मेरा जन्म एक धार्मिक परिवार में, धार्मिक में मतलब फिर वही बात कहूंगा कि धर्म में कोई ऐसे धर्म की बात नहीं कर रहा जो कुछ पर्टिकुलर लोगों के लिए है, मैं सनातन दर्शन की बात कर रहा हूँ। मेरे मदर फादर या मेरे भी जो पूर्वज है वो सनातन धर्म को मानने वाले लोग थे। तो जब मैंने जन्म लिया तो उन्होंने हरदम कहा कि सत्य का साथ मत छोड़ना, सनातन दर्शन को हरदम ध्यान में रखना। आज अगर मैं 4 कंपनियों का चेयरमैन बना, देखिए मैं सेल्फ ड्रम बीट नहीं कर रहा मेरे, तो मैं अगर गौर से देखूं तो बहुत बड़ा एक हाथ है सनातन दर्शन का, जिसकी वजह से आज मेरी लाइफ में अगर मैं ये मानूं कि मैं सफल रहा या मैंने अपने जो है सफल और सुखी हूं मैं या मैं रहा, तो ये आज ये नहीं कि इस एज में मैंने सनातन को पढ़ा है, बचपन से ही मैं देखता आ रहा था मेरे घर में। और मैंने ये कहा, जैसे मैं कुछ एग्जांपल दूंगा, भाई ईमानदारी बरतनी, आज चेयरमैन के लेवल पे लोग बहुत ज्यादा पैसा भी बनाते हैं और उसके बाद जब फंसते हैं तो आपने देखा होगा चाहे वो CVC हो या वो CBI हो, उसमें क्या उनकी हालत होती है। तो घर के माहौल में सनातन दर्शन के माहौल में मैंने देखा कि सत्य को अपनाना है, ईमानदारी बरतनी है, मेहनत करनी है, इन चीजों को ध्यान में रखा, गलत रास्ते पे नहीं जाना है। तो उसी वजह से आगे बढ़ने का मौका मिला और उसी वजह से सुखी रहा और सफल रहा, मेरा ऐसा मानना है। ऐसा नहीं है कि हमने कोई उनसे बचपन में भी या युवा में भी हमने कोई मौज मस्ती इस तरह की हो जो कि अनैतिक है या जो कि वो अलाउड नहीं थी। सनातन ये कहता है कि आपकी जो इंद्रियां हैं, जो इंद्रियां भगवान ने आपको दी हुई है आपके शरीर में है, उनका एक लिमिटेड उन्होंने नियम बना रखा है कि जैसे मान लीजिए मैं एक बात करता हूं, ये आपसे कहना चाहूंगा, आपने कहा लड़कियों के पीछे भाग रहे आज का युवा, देखिए भगवान ने भी शादी का सिस्टम बनाया है, आप एक लिमिटेड वे में एक संतान उत्पत्ति के लिए या लिमिटेड वे के अंदर आप उस चीज को उपयोग में ले सकते हैं, लेकिन जो लोग अनैतिक तरह से उस काम को कर रहे हैं उनका जीवन कभी सुखी नहीं हो पाएगा, उनको परेशानियां होंगी। इंद्रिय अगर मान लीजिए हमें रस इंद्रिय भी बनाइए, खाने के लिए भी हमारी है, तो वो अगर जो लोग ज्यादा बहुत ज्यादा खाते रहते हैं, संयम नहीं बरतते, तो आप देखें कितनी बड़ी परेशानी में जाते हैं, डायबिटीज हो गई और डायबिटीज के बाद कई लोगों के अंग भी काटने पड़ते हैं क्योंकि इतना ज्यादा प्रॉब्लम होने के बाद भी उनको समझ में नहीं आता और वो फिर भी जिन चीजों को डॉक्टर मना करते हैं उनको लगातार खाते रहते हैं। तो मना नहीं है, अपने एक लिमिटेड वे में जितना अलाउड है उस तरह के कर्म करें तो लाइफ में उनको सफलता भी मिलेगी और सुखी भी रह पाएंगे।
0: जी मैं समझ सकता हूँ सर। तो दोस्तों जो भी हमारे श्रोता इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, जाहिर सी बात है हम सबका फर्ज बन जाता है, आफ्टर ऑल हम अपने बच्चों को एक वैल्यू सिस्टम्स तो देते ही हैं ना बचपन से। तो जैसा भारद्वाज साहब समझा रहे हैं, सनातन दर्शन की भी शिक्षा या कह लीजिए ये परकोलेट डाउन होनी चाहिए, और कुछ तो होंगे बच्चे जो इस बात को समझेंगे, अपने जीवन को आगे लेके जाके ठीक करेंगे, बढ़िया बनाएंगे, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो दोस्तों हम आज भारद्वाज साहब के साथ यही बात कर रहे थे कि सनातन धर्म किसी एक धर्म का नहीं।

0: धन्यवाद।
1: थैंक यू सर।
2: ओम भास्कराय नमः।
1: दोस्तों, इसी संदेश के साथ आज के कार्यक्रम दिव्य दर्शन को यहीं विराम देते हैं। आशा है कि ये कुछ पल आपके मन को सुकून और दिन को सकारात्मक दिशा देंगे। मुस्कान के साथ दिन की शुरुआत करें, अच्छे विचारों को साथ रखें और शांति को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त समीर।

Hello, hello, hello. Mic check, 1, 2, 3. Energy check. Chai ready? Dil ready? मैं हूँ तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट शो बातें इधर की उधर की, जहाँ बातें सिर्फ होती नहीं, घुमा फिरा कर दिल तक पहुँचती हैं। यहाँ हम गॉसिप नहीं करते, हम हिस्ट्री को थोड़ा सा फन बना देते हैं। यहाँ फैक्ट्स बोर नहीं करते, वो डांस करते हुए आते हैं। कभी किसी चाय की कहानी में दुनिया देख लेते हैं, और कभी किसी सिंपल इंसान की स्टोरी में रेवोल्यूशन पकड़ लेते हैं। तो वॉल्यूम थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, स्माइल थोड़ी सी और वाइड कर दीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट में आपकी सोच थोड़ी सी अपग्रेड जरूर होने वाली है। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि ये है बातें इधर की उधर की, ओनली ऑन SN रेडियो एंड रेडियो तात्या भील 90.8 FM। चैट GPT पे क्या सर्च करें और क्या नहीं। आज की कहानी थोड़ी हटके है, थोड़ी करंट है, और ऑनेस्टली बहुत जरूरी है। कल शाम शायद आप में से कई लोगों ने देखा होगा एक इंटरेस्टिंग डिस्कशन, जहां बात हो रही थी AI की, चैट GPT की, और हम उसे कैसे यूज कर रहे हैं। और तब मुझे लगा कि ये बात सिर्फ डिस्कशन तक नहीं रहनी चाहिए, इसे हम सबको समझना चाहिए। चैट GPT पर क्या सर्च करना चाहिए और क्या बिल्कुल नहीं। दोस्तों, आज के टाइम में चैट GPT सिर्फ एक टूल नहीं है, ये एक दोस्त जैसा है, एक गाइड जैसा है, और एक टीचर जैसा है। लेकिन हर दोस्त की तरह इसे यूज करने का भी एक तरीका होता है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं क्या करें, यानी डूज। पहला, क्लियर सवाल पूछें। दोस्तों, अगर आप वेग सवाल पूछेंगे, जैसे करियर में क्या करूं, तो जवाब भी वेग मिलेगा। लेकिन अगर आप पूछते हैं मैं लॉ बैकग्राउंड से हूं, मीडिया में आना चाहता हूं, क्या ऑप्शंस हैं, तो जवाब भी प्रिसाइस मिलेगा। सीख क्या है? जितना क्लियर सवाल उतना क्लियर जवाब। नंबर टू, सीखने के लिए यूज कीजिए। चैट GPT एक शॉर्टकट मशीन नहीं है, ये एक लर्निंग पार्टनर है। अगर आप सिर्फ ये कहेंगे आंसर लिख दो, तो आप लिख तो देंगे लेकिन समझ कभी नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आप पूछते हैं ये कॉन्सेप्ट सिंपल लैंग्वेज में समझाओ, तो आप सच में सीखेंगे। और दोस्तों, नॉलेज ही असली पावर है। नंबर थ्री, क्रिएटिव काम में यूज कीजिए। स्क्रिप्ट्स में, कैप्शंस में, आइडियाज में, चैट GPT सब में बहुत अच्छे से हेल्प करता है। लेकिन एक बात याद रखिए, उसे कॉपी पेस्ट मत कीजिए, उसे अपना बनाइए, अपनी आवाज दीजिए, अपना टच दीजिए, तभी वो चीज असली लगती है और आपकी लगती है। नंबर फोर, फैक्ट चेक जरूर करें। दोस्तों, चैट GPT स्मार्ट है लेकिन परफेक्ट नहीं, कभी कभी गलतियां हो सकती हैं। इसलिए अगर कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है तो डबल चेक जरूर करें, स्पेशली न्यूज, लीगल, मेडिकल, फाइनेंशियल चीजों के लिए। नंबर फाइव, रिस्पेक्ट के साथ यूज करें। ये थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन जिस तरह हम इंसान से बात करते हैं वैसे ही AI

से भी करनी चाहिए, क्लियर, पोलाइट और रिस्पेक्टफुल, क्योंकि जब आप सही तरीके से बात करेंगे तो जवाब भी बेटर मिलेगा। अब बात करते हैं क्या ना करें, यानी कि डोंट्स। नंबर वन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, पर्सनल डेटा शेयर ना करें। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। कभी कभी अपना पासवर्ड, अपना ओटीपी, अपनी बैंक डिटेल्स या कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन चैट जीपीटी पर शेयर ना करें। टेक्नोलॉजी पावरफुल है, लेकिन हमें समझदार बनना पड़ेगा। नंबर टू, ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करें। अगर चैट जीपीटी ने कुछ बोल दिया तो वो फाइनल ट्रूथ नहीं है, उसे गाइड की तरह मत देखिए, अपना जजमेंट यूज करिए। नंबर थ्री, शॉर्टकट के लिए यूज मत करें। असाइनमेंट्स, एग्जाम, काम, अगर आप सिर्फ शॉर्टकट के लिए यूज करेंगे तो शायद काम हो जाएगा, लेकिन आप ग्रो कभी नहीं करेंगे। और दोस्तों, ग्रोथ ही सबसे इंपॉर्टेंट है। नंबर फोर, इमोशनल डिपेंडेंसी मत बनाइए। ये बहुत सटल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। कभी कभी लोग अपनी हर प्रॉब्लम, हर डिस्कशन एआई से पूछने लगते हैं, लेकिन याद रखिए, जिंदगी के पर्सनल डिसीजंस सिर्फ आपको लेने होते हैं, एआई गाइड कुछ नहीं कर सकता। नंबर फाइव, कंपैरिजन मत करें। एआई बेटर है, ह्यूमन स्लो है, ये सोच गलत है। एआई एक टूल है, इंसान क्रिएटर है, टूल कभी क्रिएटर से बड़ा नहीं होता। एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। एक लड़का था रोहन, उसने चैट जीपीटी यूज करना शुरू किया हर चीज के लिए, असाइनमेंट्स, ईमेल्स, इवन मैसेजेस टू फ्रेंड्स। धीरे धीरे उसने खुद सोचना एकदम बंद कर दिया। एक दिन उसकी टीचर ने पूछा, ये आंसर तुमने लिखा है? रोहन ने कहा, हाँ। टीचर मुस्कुराए और बोले, लिखा तुमने है या किसी और ने? उस दिन रोहन को समझ आया, यूज करना गलत नहीं है, लेकिन खुद को खोना एकदम गलत है। आज की बात का सार यही है दोस्तों, चैट जीपीटी एक पावरफुल साथी है, लेकिन यूज आप कंट्रोल करें, वो आपको कंट्रोल न करे। सीखने के लिए यूज कीजिए, समझने के लिए यूज कीजिए, क्रिएट करने के लिए भी यूज करिए, लेकिन सोचना कभी मत छोड़िए, क्योंकि आपका दिमाग, आपकी सोच, आपकी क्रिएटिविटी, ये सब यूनिक है और इसी से आप अलग बनते हैं। इसी के साथ आज की ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी और सोचने पर आपको जरूर मजबूर करेगी। ये यहीं समाप्त नहीं होती, इसको कैरी फॉरवर्ड जरूर कीजिएगा। अगली कहानी तक के लिए स्मार्ट बनिए, सेफ रहिए और टेक्नोलॉजी को सिर्फ अपना दोस्त बनाइए, गुलाम नहीं।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय।
1: मिडिल क्लास प्यार इतना सीधा होता है कि लड़का रोज बस स्टॉप पर खड़ा रहता है, लड़की आती है, दोनों एक दूसरे को देखते हैं और 6 महीने बाद लड़का हिम्मत करके बोलता है, एक्सक्यूज मी, ये 522 यहीं से जाती है। प्यार नहीं हुआ, ट्रांसपोर्ट की इंक्वायरी शुरू हो गई।

0: सेवन डॉग्स, एक कॉर्गी और दोस्ती का सच। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी ना किसी हीरो की है ना किसी विलन की, आज की कहानी सात डॉग्स की है। हां जी, और बिलीव कीजिए ये कहानी आपको हंसाएगी भी, हैरान भी करेगी और एंड में थोड़ा सा चुप भी कर देगी। तो चलिए सीन सेट करते हैं। रात का टाइम है, चाइना का एक शहर चैंगचून। ठंडी हवा चल रही है, सड़क पर हल्का सा फॉग है और एक लंबा सुनसान हाईवे जहां एक आदमी लू नाम का अपनी कार चला रहा है। नॉर्मल ड्राइव, हल्का सा म्यूजिक, थोड़ा सा बोर्डम और फिर एकदम से उसकी हेडलाइट्स के सामने कुछ हिलता हुआ दिखता है। लू आंखें सिकोड़ता है। ये क्या है? पहले लगता है प्लास्टिक के बैग्स होंगे, फिर लगता है शायद कोई जानवर और फिर जब वो थोड़ा सा और पास आता है तो उसका दिमाग लिटरली फ्रीज हो जाता है, क्योंकि उसके सामने एक नहीं, दो नहीं, पूरे सात डॉग्स चल रहे थे। और सिर्फ चल नहीं रहे थे, डिसिप्लिन के साथ चल रहे थे, जैसे कोई परेड हो, जैसे कोई मिशन हो। और सबसे आगे कौन? रेडी, एक छोटा सा कॉर्गी। हाँ, वो क्यूट सा शॉर्ट लेग्स वाला थोड़ा गोल मटोल सा इंस्टाग्राम का सुपरस्टार टाइप डॉग कॉर्गी। लू के मुंह से बस एक ही बात निकली, ये तो उल्टा हो गया, लीडर तो जर्मन शेफर्ड होना चाहिए था। लेकिन नहीं, यहां तो पूरा सिस्टम ही अलग था। कॉर्गी आगे कॉन्फिडेंस के साथ, जैसे कह रहा हो लाइन में रहो सब, मैं देख रहा हूं। उसके पीछे एक हस्की, एक लैब्राडोर और एक बड़ा सा जर्मन शेफर्ड। लेकिन यहां कहानी में ट्विस्ट आता है, वो जर्मन शेफर्ड इंजर्ड था, उसका एक पैर ठीक नहीं था और वो हल्की सी लंगड़ाहट के साथ चल रहा था। और अब जो आगे होता है वो देखकर लू सिर्फ वीडियो नहीं बनाता, वो अंदर से हिल जाता है। बाकी के सारे डॉग्स उस इंजर्ड डॉग के आसपास चलने लगते हैं, जैसे सिक्योरिटी कवर हो, जैसे बॉडी गार्ड्स हो। कोई आगे जाता फिर पीछे मुड़कर देखता, तू आ रहा है ना? कॉर्गी बीच बीच में रुकता और लिटरली लगता कि वो कह रहा है कि भाई स्पीड कम करो, सब साथ साथ चलेंगे। दोस्तों जरा इमेजिन कीजिए, अंधेरी रात, ठंडी हवा और सुनसान हाईवे और बीच में सात डॉग्स का एक ग्रुप, एक इंजर्ड दोस्त और बाकी सब उसे छोड़ने की बजाय उसके साथ साथ चल रहे हैं। ऑनेस्टली अगर ये मूवी होती तो बैकग्राउंड में स्लो मोशन होता और म्यूजिक होता तेरा यार हूं मैं। लू ने तुरंत वीडियो रिकॉर्ड किया। अगली सुबह इंटरनेट पर धमाका, लोगों ने नाम रख दिया द सेवन डॉग्स गैंग। मीम्स बनने लगे, किसी ने लिखा ये फास्ट एंड फ्यूरियस का एनिमल वर्जन है, किसी ने बोला कॉर्गी इज द बॉस, रिस्पेक्ट, और एक बंदा तो सीरियस होकर लिख रहा था ये डॉग सीक्रेट मिशन पर हैं। दोस्तों इंटरनेट कभी सिंपल चीज को सिंपल रहने कहां देता है। कुछ लोगों ने फैन फिक्शन लिख दिया, एक स्टोरी में कॉर्गी एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर था, इमेजिन। दूसरी में ये सब डॉग्स एक माफिया गैंग से भाग रहे थे और एक वर्जन में तो जर्मन शेफर्ड उनका इंजर्ड सोल्जर था और बाकी सब उसे सेफ जगह लेके जा रहे थे। फिल्मी है ना? बिल्कुल, लेकिन एक बात तो सच है, ये डॉग्स एक दूसरे को छोड़ नहीं रहे थे। दोस्तों आप थोड़ा सीरियस हो जाते हैं, सोचिए अगर ये इंसान होते तो क्या होता। ग्रुप आउटिंग है, एक बंदा स्लो हो गया, कोई कहता भाई तू उबर ले ले, कोई कहता हम आगे मिलते हैं और कोई सीधा बोल देता तू प्रॉब्लम है यार। सच बोलूं, हम फास्ट दुनिया में जीते हैं जहां पेशेंस कम है और साथ चलना एक लग्जरी बन गया है लिटरली। लेकिन उस रात चैंगचून के हाईवे पर सेवन डॉग्स ने हमें दोस्ती का असली मतलब सिखाया। उन्होंने दिखाया दोस्ती का मतलब स्पीड मैच करना नहीं, दोस्ती का मतलब है पेस एडजस्ट करना। अगर दोस्त स्लो हो तो आप रुकते हो, अगर दोस्त गिर गया तो आप हाथ बढ़ाते हो, और अगर दोस्त टूट रहा है तो आप उसके आसपास खड़े हो जाते हो जैसे वो डॉग्स खड़े थे। और लीडर कॉर्गी, सबसे छोटा, सबसे अनएक्सपेक्टेड, सबसे अंडरडॉग, लेकिन सबसे रिस्पॉन्सिबल। दोस्तों ये भी एक लेसन ही है, लीडर साइज से नहीं बनता, लीडर एटीट्यूड से बनता है। और वो इंजर्ड जर्मन शेफर्ड, कभी कभी स्ट्रॉन्ग लोग भी गिरते हैं, एंड इन दिस केस सबसे स्ट्रॉन्ग लोग भी। और उसमें कोई शर्म की बात नहीं है, शर्म की बात है जब कोई उन्हें छोड़ देता है, पीछे रहने देता है और आगे बढ़ जाता है। अब कहानी का एक और थोड़ा डार्क साइड, कुछ लोग कहते हैं ये डॉग सेफ नहीं थे, कुछ वर्जन्स कहते हैं वो खो गए थे, और कुछ कहते हैं उनका एंड अच्छा नहीं था। सच क्या है कोई नहीं जानता, लेकिन दोस्तों कभी कभी एंड से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सफर, और उनका सफर एक मैसेज दे गया। तो आज अपने आप से एक सिंपल सा सवाल जरूर पूछिएगा, आप कौन हैं? वो कॉर्गी जो सबको साथ लेकर चलता है, वो जर्मन शेफर्ड जो स्ट्रगल करता है, या वो जो किसी को बीच रास्ते में छोड़ देता है? जिंदगी लंबी रोड ट्रिप है दोस्तों, कभी स्मूथ हाईवे है कभी ब्रोकन रोड, लेकिन अगर साथ सही हो तो सफर हमेशा खूबसूरत लगता है। और अगर आपके पास ऐसे लोग हैं जो आपके स्लो होने पर रुक जाते हैं, आपका वेट करते हैं, तो ट्रस्ट में उन्हें कभी मत छोड़िए, क्योंकि आज के टाइम में ऐसे लोग नहीं मिलते, और मिलते हैं तो संभलते नहीं। इसी के साथ आज की ये थोड़ी फनी, थोड़ी फिल्मी और दिल को फिर भी छू लेने वाली कहानी यहीं समाप्त करते हैं। मैं हूं आपकी दोस्त और आप सुन रहे थे बातें इधर की उधर की। अगली स्टोरी तक के लिए अपना ख्याल रखिए और याद रखिए, असली दोस्ती वो नहीं जो आगे बढ़ जाए, असली दोस्ती वो है जो रुक कर कहती है चल साथ चलते हैं। नमस्कार।
1: बम चिक चिक बम, चिक बम बम बम चिक चिक बम।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय।
1: घर में एसी 24 डिग्री पर चला दो तो पापा तुरंत आकर 26 पर कर देते हैं। बोलते हैं, बेटा ठंड लग जाएगी, पर असली रीजन बिजली का बिल उनके दिमाग में लाइफ टिकर की तरह चल रहा होता है। और जब लाइट चली जाती है, देखा मैंने बोला था ना ज्यादा मत चलाओ, देखा बिजली चली गई। ऐसा लगता है जैसे बिजली डिपार्टमेंट को उनसे कोई पर्सनल दुश्मनी हो। What?

हर्मेन्यूटिक सिर्फ एक वर्ड नहीं, एक सुपर पावर है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक नई कहानी में। आज का एपिसोड थोड़ा हटके है, थोड़ा हैवी लग सकता है, लेकिन मैं गारंटी देती हूँ एंड तक आप हंसोगे भी, सीखोगे भी और थोड़ा स्मार्ट भी फील करोगे, क्योंकि आज का वर्ड है हर्मेन्यूटिक। सच सच बताओ, पहली बार सुनते ही दिमाग में क्या आता है? ये कौन सी बीमारी है? ये किसी साइंटिस्ट का नाम है या ये किसी एलियन का पासवर्ड है? मैंने तो जब इसे पहली बार ऑनेस्टली सुना तो मुझे लगा ये यूपीएससी के इंटरव्यू में पूछा जाने वाला कोई सवाल है। और अगर किसी ने कैजुअली बोल दिया ये एक हर्मेन्यूटिक इशू है तो आदमी तुरंत सीरियस हो जाता है। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं भी वही सोच रहा था, अंदर से कुछ समझ नहीं आया ना। चलिए आज इस वर्ड का पोस्टमार्टम करते हैं। हर्मेन्यूटिक होता क्या है? सिंपल लैंग्वेज में हर्मेन्यूटिक का मतलब है सिर्फ सुनना या पढ़ना नहीं, बल्कि समझना। और सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं, अंदर तक जाके समझना। मतलब वर्ड्स के पीछे क्या है, उनका टोन क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है और इंटेंशन यानी इरादा क्या है। क्योंकि दोस्तों जो कहा जाता है वो हमेशा वही नहीं होता जो मतलब होता है, और यहीं से शुरू होता है हर्मेन्यूटिक थिंकिंग। चलिए रियल एग्जाम्पल से समझते हैं जहां हम सब एक्सपर्ट्स हैं, थोड़ा सा मजा लेते हैं। एग्जाम्पल वन, माँ बोलती है बेटा मैं ठीक हूं। लिटरल मीनिंग माँ ठीक है, बट रियल मीनिंग यानी कि हर्मेन्यूटिक वर्जन, तूने 4 दिन से फोन नहीं किया, मैं याद कर रही थी। समझे? चलिए दूसरे एग्जाम्पल पे चलते हैं, शायद थोड़ी और क्लैरिटी आए। बॉस बोलता है गुड वर्क। आप सोच रहे हैं प्रमोशन आ गया, लेकिन हर्मेन्यूटिक वर्जन कहता है कॉन्टेक्स्ट चेक करो भाई, शायद मतलब हो ठीक है लेकिन और बेटर करो। समझे या अभी भी नहीं? चलिए तीसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। गर्लफ्रेंड बोलती है मैं कुछ नहीं हूं तुम्हारी लाइफ में। लिटरल मीनिंग सेल्फ डाउट, रियल मीनिंग यानी हर्मेन्यूटिक वर्जन, तुम्हारी लाइफ में मैं ही सब कुछ हूं, समझे? और अगर आपने गलत समझ लिया तो बस हर्मेन्यूटिक फेल एंड रिलेशनशिप फेल। हम गलती कहां करते हैं दोस्तों? प्रॉब्लम सिंपल है, हम सुनते ज्यादा हैं, समझते कम हैं। हम वर्ड्स पकड़ लेते हैं लेकिन इमोशंस, पीछे के इमोशंस, उन्हें मिस कर देते हैं। कोई गुस्सा करता है, हम बोल देते हैं एटीट्यूड है, लेकिन हो सकता है कि वो हर्ट हो। कोई चुप रहता है तो हम बोल देते हैं एरोगेंट है, लेकिन हो सकता है कि वो स्ट्रगल कर रहा हो। दोस्तों अगर हम सब थोड़ा सा हर्मेन्यूटिक यूज कर लें तो आधी मिसअंडरस्टैंडिंग्स खत्म हो जाएंगी। अब थोड़ा सा फैमिली एंगल से देखते हैं। सोचिए अगर बॉलीवुड में हर्मेन्यूटिक होता, हीरो बोलता मैं तुमसे नफरत करता हूं, हीरोइन तुरंत समझ जाती इसका मतलब है वो मुझसे प्यार करता है, और 3 घंटे की मूवी 10 मिनट में खत्म हो जाती। नो सॉन्ग्स, नो ड्रामा, नो क्लाइमेक्स, कितनी बोरिंग हो जाती ना लाइफ। सोच के देखिए, हर्मेन्यूटिक सिर्फ फनी एग्जांपल्स तक लिमिटेड नहीं है, ये एक पावरफुल तरीका है सोचने का, समझने का और जीने का। जब आप किसी बात को समझने की कोशिश करते हो तो आप जज नहीं करते, आप कनेक्ट करते हो, और ये डिफरेंस बहुत बड़ा होता है। जज करना इजी है, समझना एफर्ट लेता है, और आजकल लोग एफर्ट ही नहीं लेना चाहते, इसीलिए मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ जाती हैं, रिलेशनशिप्स वीक हो रहे हैं और लोग कहते हैं लोग बदल गए। नहीं दोस्तों, मॉडर्न दुनिया और हर्मेन्यूटिक्स की क्राइसिस। आजकल व्हाट्सएप मैसेज आता है ओके, हम सोचते हैं बस एक ओके, और सामने वाला सोचता रहता है गुस्सा है, एटीट्यूड है, मैंने क्या गलती की और क्या नहीं। दोस्तों ओके का भी हर्मेन्यूटिक होता है, कभी मतलब होता है ठीक है, कभी मतलब होता है बात मत करो, और कभी मतलब होता है मैं बिजी हूं,
और कभी होता है मैं गुस्सा हूं लेकिन डायरेक्टली नहीं बोलूंगा। एआई और हर्मनेटिक, थोड़ा स्मार्ट बन जाओ। आजकल हम सब एआई भी यूज कर रहे हैं, चैट जीपीटी, गूगल और क्या क्या नहीं, लेकिन प्रॉब्लम यही है, हम जो पढ़ते हैं उसे फाइनल ट्रूथ मान लेते हैं, लेकिन हर्मनेटिक कहता है कॉन्टेक्स्ट को समझो, सोर्स को समझो और इंटेंट यानी इरादे को समझो, क्योंकि हर इंफॉर्मेशन का एक ही एंगल नहीं होता, और बिना समझे सिर्फ कॉपी कर लेना वो नॉलेज नहीं, शॉर्टकट है। शॉर्टकट कभी लॉन्ग टर्म में काम नहीं आता, याद रखिए। एक छोटी सी कहानी और सुनते हैं। एक लड़का था अमन, उसकी एक हैबिट थी हर बात को लिटरल लेना। एक दिन उसकी माँ बोली, बेटा घर जल्दी आना। अमन 5 मिनट में घर आ गया। माँ हैरान, अरे इतनी जल्दी कहां से आ गया? अमन बोला, आपने ही तो बोला था जल्दी आना। माँ बोली, अरे मेरा मतलब ये था कि लेट मत होना, दोस्तों डिफरेंस समझे, वर्ड सेम मीनिंग अलग। यही है हर्मेनिटिक। और आज की सबसे बड़ी बात, जिंदगी सिंपल हो सकती है मेरे दोस्तों, अगर आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, सिर्फ रिएक्ट ना करें, रिफ्लेक्ट करें, सिर्फ सुने नहीं उसे फील करें, सोचें और समझें। लोग क्या कह रहे हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्यों कह रहे हैं। तो अंत में, नेक्स्ट टाइम जब कोई बोले तू मुझे समझता ही नहीं है, आप सीधा बोलना, मैं तो हर्मेनिटिक लेवल पे समझ रहा हूं। वो कंफ्यूज हो जाएगा और आप इंटेलिजेंट लगोगे। विन विन सिचुएशन। आज का वर्ड थोड़ा टफ जरूर था दोस्तों, लेकिन उसका मैसेज बहुत सिंपल और बहुत जरूरी। समझना सीखो लोगों को, सिचुएशंस को, और सबसे इंपॉर्टेंट खुद को, क्योंकि जब आप समझने लगते हो तब जिंदगी कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगती, क्लियर लगती है। इसी के साथ आज का ये फन, फनी, थोड़ा इंटेलेक्चुअल और थोड़ा दिल से जुड़ा हुआ एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। अगली स्टोरी तक सिर्फ सुनिए नहीं, समझने की आदत डालिए, क्योंकि याद रखिए जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स वर्ड्स से नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग से होती है। नमस्कार।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय।
1: देसी मिडिल क्लास लग्जरी। इंडियन मिडिल क्लास के पास सब कुछ होता है, बस उसे यूज करने की परमिशन नहीं होती। ड्राइंग रूम का सोफा सिर्फ गेस्ट्स के लिए, नया डिनर सेट सिर्फ खास मौके के लिए। और वो खास मौका कब आता है? जब डिनर सेट का डिजाइन आउटडेटेड हो जाता है। हम लोग चीजें फ्यूचर के लिए संभाल के रखते हैं भाई, और फ्यूचर आता है डीक्लटर करने।

0: तो दोस्तों, आज की बात ने आपको थोड़ा सा इंस्पायर जरूर किया होगा, थोड़ी सी स्माइल जरूर दी होगी, या थोड़ा सा सोचने पर मजबूर तो जरूर किया होगा। मेरा मिशन तो अकम्प्लिश्ड है। मैं हूँ आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और ये था आपका शो बातें इधर की उधर की, सिर्फ SN रेडियो और रेडियो तात्या भील 90.8 FM पे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, थोड़ा ह्यूमर, थोड़ा हार्ट और थोड़ा हटके लेकर एंगल। तब तक के लिए याद रखिए, स्टोरीज हर जगह होती हैं, बस उन्हें सुनाने का नजरिया चाहिए। स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी एंड स्टे क्यूरियस। बाय।
1: राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है नन्हे मुन्नों के लिए कार्यक्रम बाल गीत। सबसे पहले सुनिए ये गीत।

0: बाल गीत। अभी आप सुन रहे थे यह कार्यक्रम। लेखक प्रोफेसर के जी रस्तोगी, ध्वन्यांकन सतीश लाड़े और दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी, कार्यक्रम निर्माण वंदना अरिमर्दन। ये बाल गीत राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रस्तुत किए गए।
1: दोस्तों, एक नए दिन की शुरुआत के लिए जोशो खरोश से भरे हुए मैं और आप ये दिन शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। आइए, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में भी हम जानेंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जिया और दूसरों के लिए उन्होंने मिसालें कायम की। इन्हीं लोगों से प्रेरणा लेते हैं और ऐसे बहुत सारे गीत सुनते हैं जो हमें बस खुश कर देंगे, पूरे दिन के लिए तैयार कर देंगे, जोश से भर देंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को जोशो खरोश के साथ।

आइए दोस्तों एक मजेदार कहानी सुनाता हूं। एक था भिखारी। रेलवे में सफर करते हुए भीख मांगने के दौरान एक बार एक सूट बूट पहने हुए सेठ जी से उसकी मुलाकात हो गई। उसने सोचा कि ये व्यक्ति तो बहुत अमीर लगता है, इससे भीख मांगने पर बढ़िया पैसा मिल जाएगा। वो उस सेठ से भीख मांगने लगा। भिखारी को देखकर उस सेठ ने कहा, अरे यार तुम हमेशा मांगते ही हो, क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो? भिखारी बोला, साहब मैं तो भिखारी हूं, हमेशा लोगों से मांगता ही रहता हूं, मेरी इतनी औकात कहां कि किसी को कुछ दे पाऊं। सेठ बोला, देखो जब किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी हक नहीं है। मैं एक व्यापारी हूं और लेन देन में ही विश्वास रखता हूं भाई। अगर तुम्हारे पास मुझे कुछ देने के लिए हो तभी मैं तुमको बदले में कुछ दे पाऊंगा। तभी स्टेशन आ गया जहां पर उस सेठ को उतरना था। वो ट्रेन से उतरा और चला गया। इधर भिखारी सेठ की कही हुई बात के बारे में सोचता रहा। सेठ के द्वारा कही गई बात उस भिखारी के दिल में उतर गई। वो सोचने लगा कि शायद मुझे भीख में अधिक पैसा इसलिए नहीं मिलता क्योंकि मैं उसके बदले में किसी को कुछ दे तो पाता नहीं, लेकिन मैं तो भिखारी हूं, किसी को कुछ देने के लिए कुछ है ही नहीं मेरे पास। लेकिन कब तक मैं लोगों को बिना कुछ दिए मांगता ही रहूंगा, समझ नहीं आ रही बात। बहुत सोचने के बाद भिखारी ने निर्णय लिया कि चलो जो भी व्यक्ति उसे भीख देगा तो उसके बदले में वो भी उसको कुछ ना कुछ देगा जरूर। लेकिन अब उसके दिमाग में ये सवाल उठ गया कि वो खुद भिखारी है तो भीख के बदले में भला क्या दे देगा दूसरे को। ये बात सोचते हुए पूरा दिन गुजर गया लेकिन उसे अपने सवाल का जवाब नहीं मिला। दूसरे दिन जब स्टेशन के पास बैठा हुआ था वो, तभी उसकी नजर कुछ फूलों पर पड़ गई जो स्टेशन के आसपास के पौधों पर खिले हुए थे, जंगली फूल थे। उसने सोचा, अच्छा क्यों ना मैं लोगों को भीख के बदले कुछ फूल दे दिया करूं। तो उसको अपना यह विचार अच्छा लगा और उसने वहां से कुछ फूल तोड़ लिए। वो ट्रेन में भीख मांगने पहुंचा। जब भी कोई उसे भीख देता तो उसके बदले में वो भीख देने वाले को कुछ फूल दे देता। उन फूलों को लोग खुश होकर अपने पास रख लेते। अब भिखारी रोज फूल तोड़ता और भीख के बदले में उन फूलों को लोगों में बांट देता। कुछ ही दिन बीते, उसने महसूस किया कि अब उसे बहुत लोग

भीख देने लगे हैं। वो स्टेशन के पास के सभी फूलों को तोड़ लाता था। जब तक उसके पास फूल रहते थे तब तक लोग उसे भीख देते ही रहते थे, लेकिन जब फूल बांटते बांटते खत्म हो गए तो उसे भीख भी नहीं मिलती थी। अब रोज ऐसा ही होने लगा। एक दिन जब वो भीख मांग रहा था तो उसने देखा कि वही सेठ ट्रेन में बैठे हैं, जिसकी वजह से उसे भीख के बदले फूल देने की प्रेरणा मिली थी। वो तुरंत उस व्यक्ति के पास पहुंच गया और भीख मांगते हुए बोला, सेठ जी, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ फूल हैं, आप मुझे भीख दीजिए, बदले में मैं आपको कुछ फूल दे दूंगा। सेठ ने उसे भीख के रूप में कुछ पैसे दिए और भिखारी ने कुछ फूल उन्हें दिए। इस सेठ को यह बात बड़ी पसंद आई। सेठ बोला, वाह क्या बात है, आज तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए। इतना कहकर फूल लेकर वो सेठ स्टेशन पर उतर गया। लेकिन उस सेठ द्वारा कही गई बात एक बार फिर से उस भिखारी के दिल में उतर गई। वो बार बार उस सेठ के द्वारा कही गई बात के बारे में सोचने लगा और बहुत खुश होने लगा। उसकी आंखें अब चमकने लगी। उसे लगने लगा कि अब उसके हाथ सफलता की वो चाबी लग गई है जिसके द्वारा वो अपने जीवन को बदल देगा। वो तुरंत ट्रेन से नीचे उतरा और उत्साहित होकर बहुत तेज आवाज में ऊपर आसमान की ओर देखकर बोला, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं तो एक व्यापारी हूं, मैं भी उस सेठ जैसा बन सकता हूं, मैं भी अमीर हो सकता हूं। लोगों ने उसे देखा तो सोचा कि शायद ये पागल हो गया है। अगले दिन से वो भिखारी उस स्टेशन पर फिर कभी नहीं दिखा। एक साल गुजर गया। उसी स्टेशन पर दो लोग सूट बूट पहने हुए यात्रा कर रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा तो उनमें से एक ने दूसरे को हाथ जोड़कर नमस्कार किया और कहा, सेठ जी, क्या आपने मुझे पहचाना? सेठ बोला, नहीं तो, शायद हम लोग पहली बार मिल रहे हैं। भिखारी बोला, सेठ जी, आप याद कीजिए, हम पहली बार नहीं बल्कि तीसरी बार मिल रहे हैं। सेठ बोला, भाई मुझे याद नहीं आ रहा, वैसे हम लोग दो बार कब मिले थे? अब पहला व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, हम पहले भी दो बार इसी ट्रेन में मिले थे, मैं वही भिखारी हूं जिसको आपने पहली मुलाकात में बताया कि मुझे जीवन में क्या करना चाहिए, और दूसरी मुलाकात में बताया कि मैं वास्तव में हूं कौन। नतीजा ये निकला कि आज मैं फूलों का एक बहुत बड़ा व्यापारी हूं और इसी व्यापार के काम से बस दूसरे शहर जा रहा हूं। आपने मुझे पहली मुलाकात में प्रकृति का नियम बताया जिसके अनुसार हमें तभी कुछ मिलता है जब हम कुछ देते हैं। लेन देन का यह नियम वास्तव में काम करता है। मैंने ये बहुत अच्छी तरह महसूस किया, लेकिन मैं खुद को हमेशा भिखारी ही समझता रहा। इससे ऊपर उठकर मैंने कभी सोचा ही नहीं था, और जब आपसे मेरी दूसरी मुलाकात हुई तब आपने मुझे बताया कि मैं एक व्यापारी बन चुका हूं। अब मैं समझ चुका था कि मैं वास्तव में एक भिखारी नहीं बल्कि व्यापारी बन चुका हूं। हमारे भारतीय संस्कृति में शायद इसीलिए खुद को जानने पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है। और समझने की बात यह है कि जब हम किसी को कुछ देते हैं तब भी हमें कुछ मिलता है। दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

जिंदगी की तपिश को सहन कीजिए जनाब। अक्सर वो पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में होती है। दोस्तों बने रहिए मेरे साथ आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

ऐसा लिखा गया है कि सुदामा जी जब भगवान के यहां से चले तो भगवान ने उन्हें कुछ नहीं दिया। सम्मान तो किया लेकिन दिया कुछ नहीं। अब दूसरा कोई होता तो नाराज हो जाता कि मैं आपके यहां अब कभी नहीं आऊंगा। आप किस तरह के दोस्त हो? मैं तो गरीब ब्राह्मण हूं और मुझे कुछ भी नहीं दिया। मगर जैसे भगवान हैं वैसे ही सुदामा भी भगवान हो गए, भले ही वो महल में नहीं रहते थे। ऐसा लिखा गया है कि ईश्वर को जानने वाला ईश्वर ही हो जाता है। सुदामा ब्रह्म को पहचानने वाले संत हैं, वो ब्रह्म के समान हो गए। उन्हें वही आनंद चित्त की अवस्था मिल गई, वही श्रद्धा की अवस्था मिल गई जो भगवान को मिली हुई है। तो सुदामा जी ने मांगा कुछ भी नहीं। आज का कोई होता तो हंगामा कर देता, खरी खोटी सुनाता, अनशन पर भी शायद बैठ जाता। सुदामा जी ने भी विचार तो किया कि भगवान ने कुछ दिया नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवान गरीब हो गए हों। वैसे भगवान तो कभी गरीब नहीं हो सकते ना। संपूर्णता में जिनको सब कुछ मिल गया हो उन्हें ही तो भगवान कहा जाता है। भग का मतलब होता है पूरा ऐश्वर्य, पूरी अमीरी, धर्म संपूर्ण, वैराग्य संपूर्ण, ज्ञान संपूर्ण, सभी कुछ तो होता है भग का मतलब। भगवान को गरीबी कैसे आएगी? वो तो समग्र धर्मशाली धनशाली हैं। क्यों? ऐसा तो नहीं कि कंजूस हो गए भगवान? फिर सुदामा जी ने सोचा कि ऐसा क्यों सोचें, भगवान तो परम उदार भी हैं, कल्याणकारी गुणों के समुद्र हैं, प्रेम लगाव और शक्ति के समुद्र हैं। भगवान कभी पाप तो करते नहीं। जितने दुर्भाव हमारे मन में आते हैं दोस्तों, उनका मूल कारण पाप ही है। चाहे गुस्सा हो, लालच हो, द्वेष हो, सबके मूल में बैठा है क्या? पाप। सुदामा जी ने समाधान निकाला। अद्भुत भगवान की कृपा है। भगवान ने हमारे परित्याग को, हमारे को जो दिया, रोम रोम से बाहर से भीतर तक हमारा समुदाय की सेवा के लिए जीवन दिया, उससे कहीं हम अलग ना हो जाएं यही विचार किया होगा, कहीं हम भोगी ना हो जाएं, कहीं हम संतुष्ट ना हो जाएं, कहीं हमारा भजन छूट ना जाए, इसलिए भगवान ने नहीं दिया। कहीं हमारी विशिष्टता लुप्त ना हो जाए, गायब ना हो जाए, कहीं हम समाज के लिए जीना छोड़कर अपने लिए जीना शुरू कर दें, इसलिए भगवान ने हमें कोई भौतिक संसाधन नहीं दिया। अब ये विचारों की महान अवस्था है मित्रों, इससे बड़ा व्यवहार भला क्या होगा। सुदामा जी ने कितना बड़ा समाधान निकाल लिया। अब तो लोग कर्जा लेकर व्यक्तिगत संपत्ति बना लेते हैं, फिर दिवालिया घोषित करके गायब हो जाते हैं। बड़े बड़े शहरों में हजारों लोग पूर्ण संपत्तिवान होकर भी अपना दिवाला निकाल रहे हैं। ऐसे लोगों को कब और कैसे सुकून मिलेगा, कैसे शांति मिलेगी? कभी नहीं मिलेगी। दोस्तों बने रहिए मेरे साथ आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: भैया, यदि लोग गलतियों से सबक लेते हैं तो फिर दूसरी गर्लफ्रेंड क्यों बनाते हैं? दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

ख्वाहिश नहीं मुझे मशहूर होने की, आप मुझे पहचानते हो, बस इतना ही काफी है। अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरा जाना मुझे, जिसकी जितनी जरूरत थी उसने उतना ही पहचाना मुझे। जिंदगी का फलसफा भी कितना अजीब है, शामें कटती नहीं और साल गुजरते चले जा रहे हैं। एक अजीब सी दौड़ है ये जिंदगी, जीत जाओ तो कई अपने पीछे छूट जाते हैं और हार जाओ तो अपने ही पीछे छोड़ देते हैं। बैठ जाता हूं मिट्टी पे अक्सर, मुझे अपनी औकात अच्छी लगती है। मैंने समंदर से सीखा है जीने का तरीका, चुपचाप से बहना और अपनी मौज में रहना। ऐसा नहीं कि मुझमें कोई ऐब नहीं है, पर सच कहता हूं मुझमें कोई फरेब नहीं है। जल जाते हैं मेरे अंदाज से मेरे दुश्मन, जल जाते हैं मेरे अंदाज से मेरे दुश्मन। एक मुद्दत से मैंने न तो मोहब्बत बदली और न ही दोस्त बदले हैं। एक घड़ी खरीद कर हाथ पर क्या बांध ली, वक्त पीछे ही पड़ गया है मेरे। सोचा था घर बनाकर सुकून से बैठूंगा, पर घर की जरूरतों ने मुसाफिर बना डाला मुझे। सुकून की बात मत कर, बचपन वाला इतवार अब नहीं आता। जीवन की भागदौड़ में क्यों वक्त के साथ रंगत खो जाती है, हंसती खेलती जिंदगी भी आम हो जाती है। एक सवेरा था जब हंसकर उठते थे हम, और आज कई बार बिना मुस्कुराए ही शाम हो जाती है। कितने दूर निकल गए रिश्तों को निभाते निभाते, खुद को खो दिया हमने अपनों को पाते पाते। लोग कहते हैं हम मुस्कुराते बहुत हैं, लोग कहते हैं हम मुस्कुराते बहुत हैं, और हम थक गए दर्द छुपाते छुपाते। खुश हूं और सबको खुश रखता हूं, खुश हूं और सबको खुश रखता हूं। लापरवाह हूं खुद के लिए मगर सबकी परवाह करता हूं। मालूम है कोई मोल नहीं है मेरा फिर भी, मालूम है कोई मोल नहीं है मेरा फिर भी, कुछ अनमोल लोगों से रिश्ते रखता हूं, कुछ अनमोल लोगों से रिश्ते रखता हूं। दोस्तों बने रहिए मेरे साथ आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

मैं बचपन से ही अपने से बड़ी उम्र के लड़कों और लफंगों के साथ रहा। मैं महज 7 साल का ही तो था, लेकिन तकरीबन जवान हो चुके लड़कों से मेरी दोस्ती रही। उनके साथ ही क्रिकेट खेला, अखाड़ों में कुश्ती लड़ी, वर्जिश की। अपने उस्ताद के पैरों और पीठ पर सरसों का तेल मला, कुछ दाव लगाने सीखे और फिर उस्ताद के कहने पर पास के गांव में लगने वाले मेले में आयोजित दंगल में भाग लेने जाता था। उन दिनों 3 रंगों की लंगोट हुआ करती थी, लाल, सफेद और काली। उन 3 रंगों में से मैंने अपने लिए लाल रंग की लंगोट चुनी। लफंगों के साथ जंगल में खूब भटका। ज्यादातर दोपहरें पेड़ों पर गुजारी, कबूतरों के पीछे भागा, तीतर बटेर का पीछा किया, उन्हें कीटनाशक DDT पाउडर खिलाकर मारा, फिर लकड़ी पर सेक के खाया। यही वो दिन थे जब मैंने बीड़ी पीना सीखा, कभी कभी सिगरेट, फिर धीमे धीमे गांव की अंधेरी गलियों में शराब पीना सीखा। देर रात तक गांव की अंधेरी गलियों में बैठकर मैं ये जानने की कोशिश करता था कि कैसे धुएं के छल्ले बनते हैं, बादलों का धुएं से क्या संबंध है। शायद यहीं से कविताओं ने मेरे भीतर जगह बनानी शुरू की होगी, लेकिन तब मैं जानता नहीं था कि कविता भी कोई चीज होती है। हालांकि अब भी मुझे नहीं पता कि कविता क्या होती है, लेकिन मैं उसे बार बार लिखकर समझने की कोशिश करता रहता हूं। मैं अब तक वो कविता नहीं लिख पाया हूं जिसका मुझे सबसे ज्यादा इंतजार है। खैर, मैं असल कहानी पर आता हूं। तो उन दिनों उस नाजुक उम्र में मैंने शराब, सिगरेट और कुश्ती जैसी सारी सख्त चीजें की। इनमें से बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो उस वक्त नहीं की जाना चाहिए थी, लेकिन उम्र हमेशा मुझे अपने से आगे की ओर ही धकेलती रही। मैं उन दिनों जंगल, घास, फूल, कांटे, गायें, बेल, तालाब, कुओं और फसलों की संगत में रहता था। मुझे लगता था एक दिन इनमें से ही कुछ बन जाऊंगा। मैं किसी दिन घास बन जाऊंगा और हवा के साथ रहूंगा। कभी लगता मैं कोई कुआं हो सकता हूं जिसका पानी खेतों में जाएगा। कई बार सोचता था कि हो सकता है मैं बड़ा होकर कोई फूल बन जाऊं जो किसी दिन किसी देवता के सर पर रखा जाऊं, या कोई सुंदर स्त्री के बालों के जूड़े में ठूंस दिया जाऊं। खुले आसमान के नीचे मैं अपने घर की टीन की चादरों पर सोए हुए इन्हीं सारी कल्पनाओं में खोया रहता था। कभी आसमान का तारा बन जाता तो कभी जंगल का कोई कांटा। फिर एक दिन मैंने अपने पुरखों से सुना कि मरे हुए लोगों का पेट भरने और उनकी प्यास बुझाने के लिए कौवे छतों पर आते हैं। दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

आइए दोस्तों एक मजेदार कहानी सुनाता हूं। एक समय की बात है, एक राजा हुआ करता था एक राज्य में, जैसे हमेशा होते हैं। उसका एक मंत्री था जो कि बड़ा समझदार था, और नाम भी उसका था बुद्धिमान। ज्यादातर मंत्री इस तरह की कहानियों में समझदार ही होते हैं ना दोस्तों। तो एक दिन राजा ने अपने मंत्री को बुलाकर पूछा कि भाई जरा ये बात बताओ, ये भेड़िया धसान का मतलब क्या होता है। मंत्री थोड़ी देर तक तो सोचता रहा और फिर कहा, हुजूर मुझे 2 दिन का मोहलत मिले तो मैं इसका जवाब दे पाऊंगा आपको। राजा ने 2 दिन की मोहलत दे दी। मंत्री जो थे वो सुबह सुबह अगले दिन उठे, नहा धोकर तिलक लगाया और गांव के बाहर तालाब के किनारे चले गए। वहां कई सारे खच्चर घास खा रहे थे। मंत्री ने उनमें से एक की 3 बार प्रदक्षिणा की, यानी कि चक्कर लगाया, और उसका एक बाल नोच कर अपने कान पर रख लिया। तालाब के किनारे कुछ लोग जमा हो गए। एक ने पूछा, मंत्री महाराज ये क्या कर रहे हैं आप? तब मंत्री ने कहा, देखो जी ये खच्चर काशी जी की यात्रा करके आया है। पहले जन्म में कोई ऋषि मुनि रहा होगा, ये देखते नहीं इसकी आंखों में कैसी भक्ति टपक रही है। मंत्री ने जवाब दिया, बस फिर क्या था, एक एक करके सब लोग उसकी चक्कर लगाने लगे, प्रदक्षिणा करने लगे और उसका एक एक बाल नोच कर कानों पर लगाने लगे। गांव भर में सनसनी फैल गई। सभी लोग वही करने लगे जो मंत्री ने किया था। थोड़ी ही देर में उस खच्चर के सारे बाल नुच गए। वो बेचारा लहू लुहान हो गया और तड़पने लगा। इतने में राजा को भी ये खबर लग गई, वो भी वहां आ पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने भी खच्चर की 3 बार प्रदक्षिणा की, चक्कर लगाया और खोज ढूंढ कर एक बाल नोच लिया। बेचारा खच्चर मौत का मेहमान हो गया। इतने में खच्चर वाला आ गया दौड़ता हुआ और खच्चर को मरा पड़ा देखकर हाय तौबा मचाने लगा। वो राजा के पास अपनी शिकायत ले आया, दुहाई हो सरकार की, दुहाई हो, मैं तो बाल बच्चे वाला आदमी हूं, बड़ा गरीब हूं, किसी तरह इस खच्चर पर माल लादकर और उसके किराए के पैसों से पेट पालता था, अब खच्चर तो मर गया, अब इसका दाम कौन देगा। राजा ने मंत्री को बुलाकर पूछा, भाई क्या हो गया, ये क्या करें अब इसका। मंत्री ने कहा, महाराज आप भेड़िया धसान का मतलब जानना चाहते थे ना, देखिए यही है भेड़िया धसान, जो मैंने कर दिया सब आंख मूंद कर उसी को करने लग पड़े। अब तो आपने अपनी आंखों से देखा ना, कहिए समझ में आया भेड़िया धसान का मतलब। राजा मंत्री की बात सुनकर बड़ा ही खुश हुआ और बहुत शर्मिंदा भी हुआ। उसने खच्चर वाले को खच्चर का दाम दिया और रवाना किया। तो दोस्तों खामखा में किसी एक चीज को बिना समझे पीछे पीछे मत जाइए। दोस्तों बने रहिए मेरे साथ आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

सफर में धूप तो होगी, सफर में धूप तो होगी, जो तुम चल सको तो चलो। सभी हैं भीड़ में, जो तुम चल सको तो चलो। इधर उधर हैं कई मंजिलें, इधर उधर हैं कई मंजिलें, जो तुम चल सको तो चलो। बने बनाए हैं सांचे, जो तुम ढल सको हाँ तो चलो। सफर में धूप तो होगी, जो तुम चल सको तो चलो। किसी के वास्ते कहां बदलती है जिंदगी, जो तुम खुद को बदल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, जो तुम चल सको तो चलो। यही है जिंदगी, कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें, इन्हीं खिलौनों से बहल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, जो तुम चल सको तो चलो। कहीं नहीं कोई सूरज, कहीं नहीं कोई सूरज, धुआं धुआं है फिजा, खुद अपने आप से बाहर निकल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। यहां कोई किसी को नहीं देता रास्ता, जो मुझे गिरा कर चल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, जो तुम चल सको तो चलो। दोस्तों बने रहिए मेरे साथ, आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

0: तो दोस्तों, इस जोश को, इस उत्साह को, इस खुशी को बनाए रखिएगा पूरे दिन। कल सुबह हम लोग फिर मुलाकात करेंगे एक नए जोश के साथ, नए उत्साह के साथ जिंदगी को जीने के लिए। मैं आपका दोस्त हूँ समीर, कल मिलते हैं।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM जाबुआ की आवाज।
2: ये वीर गाथा है भारत माँ की मिट्टी के सपूत
3: सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की। उन्हें सन 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में असाधारण शौर्य और पराक्रम दिखाने के लिए मरणोपरांत सेना के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था।
2: ये वो बहादुर सैनिक थे जिनकी बहादुरी की चर्चा दुश्मन के गलियारों में भी बड़े सम्मान से होती थी।
3: तो आइए सुनते हैं मित्रों कार्यक्रम
2: सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल।
4: साथियों, भारत भूमि ने एक से बढ़कर एक वीरों को जन्म दिया है जिन पर देश को नाज है। आइए आज याद करते हैं भारतीय सेना के एक ऐसे शहीद जांबाज की कुर्बानी जिसको अपनी अद्वितीय बहादुरी के कारण भारत का सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार परमवीर चक्र मिला। भारत मां का ये सपूत था सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल, जो जिया तो सिर्फ 20 साल पर भारत की जनता के दिलों में उसकी यादों का दिया जलता रहेगा सालों साल। अरुण का जन्म 14 अक्टूबर 1950 को पूना में हुआ था। वे एक ऐसे परिवार से थे जिसका एक लंबा सैन्य इतिहास रहा है। अरुण का बाल्यकाल फौजी माहौल में बीता। अरुण जब 8 साल के थे तो वो सैनिकों के साथ खेलते, उनसे युद्ध की कहानियां सुनते और उन्हीं के साथ लंगर में जाकर खाना खाते। उनका जवानों के प्रति प्यार और फौज के प्रति रुझान देखकर साफ साफ पता चलता था कि अरुण ने भी फौज में भर्ती होने का मन बना लिया है। अरुण की प्रारंभिक शिक्षा उन विभिन्न स्थानों पर हुई जहां उनके पिता तैनात थे, पर अरुण के जीवन में एक निर्णायक अवसर वो भी था जब उसने सन 1962 में प्रसिद्ध सेंट लॉरेंस स्कूल सनावर में दाखिला लिया। अरुण की शिक्षा के अंतिम 5 वर्ष वहीं बीते। सनावर में बिताए उन 5 सालों में जैसे अरुण का व्यक्तित्व निखर सा गया। अपने स्कूल के बैंड में वे क्लैरिनेट बजाया करते थे।

अरुण ने इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने 23 जून 1971 को अपना पाठ्यक्रम पूरा किया। जून 1971 में उन्हें पूना हॉर्स रेजिमेंट में नियुक्ति मिली। अरुण सबके साथ बड़ी आसानी से घुल मिल जाते, चाहे वो अफसर हो या जवान। देर देर तक बैठकर दोस्तों के

0: साथ गपशप करना उन्हें बेहद पसंद था, पर इसके साथ साथ वो कठिन से कठिन परिस्थितियों से जूझने को भी तैयार रहते। हारना और डर कर पीछे मुड़ना उन्होंने कभी नहीं सीखा, और इसी का परिचय दिया उन्होंने 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के समय।
1: माँ।
2: अरुण, बेटा तुम पहली बार युद्ध में जा रहे हो, कैसा लग रहा है?
1: मुझे काफी गर्व महसूस हो रहा है माँ। फौज में भर्ती होने के 6 महीने के अंदर ही मुझे अपने देश की सेवा का मौका मिल गया।
2: हाँ।
1: अब मौका मिलेगा मुझे कुछ कर दिखाने का।
2: बेटा, एक बात याद रखना, तुम्हारे पूरे परिवार का एक शानदार सैन्य इतिहास रहा है।
1: जी।
2: ये चमचमाते हुए मेडल ये बताते हैं कि भारतीय सेना में तुम्हारे परिवार का कितना योगदान रहा है।
1: जानता हूं मां।
2: जाओ बेटा, इस मर्यादा को बनाए रखना और ऐसे लड़ना कि दुश्मन के गलियारों में भी तुम्हारी बहादुरी की चर्चा हो।
1: जी मां, आशीर्वाद दीजिए।
2: जाओ बेटा।
0: और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। दिन 16 दिसंबर 1971, स्थान बसंतर नदी का किनारा। दोनों सेनाओं में जम्मू कश्मीर के सामने वाले मैदानी इलाके शकरगढ़ में घमासान युद्ध चल रहा था। जब सेकंड लेफ्टिनेंट खेत्रपाल और उनके साथियों ने सुना कि हमारी फौज पर दुश्मन के टैंकों ने जवाबी हमला कर दिया है, तो वो अपने टैंक के साथ पूरे जोश के साथ सैनिकों की मदद के लिए आगे बढ़े। अभी वो आगे बढ़ ही रहे थे कि उनके टैंकों पर भी दुश्मन ने गोले बरसाने शुरू कर दिए। टैंकों का आक्रमण होते ही अरुण ने बड़ी फुर्ती से अपने टैंक का मुंह दुश्मन की ओर मोड़कर उन पर जबरदस्त हमला कर दिया। दुश्मन अरुण के इस घातक हमले को झेल नहीं पाया और पीछे हटने लगा। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण ने अपने टैंक की रफ्तार तेज कर उनका पीछा करना शुरू किया, और दुश्मन के एक टैंक को नष्ट कर दिया। तभी पीछे से कमांडर का रेडियो पर आदेश आया,
3: सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण पीछे लौटो और स्क्वाड्रन की पोजीशन से आ मिलो, अब हम एकजुट होकर फिर से हमला करेंगे।
4: यस सर।
0: आदेश सुनकर अभी वे लौट ही रहे थे कि तभी दुश्मन के टैंकों की पूरी स्क्वाड्रन ने उन पर धावा बोल दिया। सेकंड लेफ्टिनेंट खेत्रपाल ने उनका सामना पूरी बहादुरी से किया। अभी सेकंड लेफ्टिनेंट खेत्रपाल दुश्मनों से जूझ ही रहे थे कि दुश्मन का एक गोला उनके टैंक पर आ गिरा और टैंक में आग लग गई, जिससे वे बुरी तरह घायल हो गए। पीछे से फिर आदेश आया,
3: अरुण तुम्हारे टैंक में आग लगी है, उसे छोड़ो और पीछे आओ।
5: सर, मैं अपना टैंक नहीं छोड़ूंगा, अभी मेरी गन काम कर रही है और दुश्मनों को ठिकाने लगाकर ही दम लूंगा।
1: यह
0: युद्ध के इस महत्वपूर्ण मोर्चे पर अब उस क्षेत्र में केवल सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण ही अपने टैंक के साथ बचे थे। इसके बाद टैंकों का ऐसा भयानक युद्ध हुआ जो युगों युगों तक याद रखा जाएगा।
4: सर सर ये क्या, ये तो टैंकों की पूरी स्क्वाड्रन ही हमारी ओर बढ़ती चली आ रही है साहब।
5: इन्हें रोकना ही पड़ेगा। प्रयाग सिंह टैंक की रफ्तार तेज करो।
6: यस सर।
5: नाथ सिंह निशाना साधो।
6: ठीक है जी।
4: यस सर। दाहिनी ओर का टैंक बिल्कुल हमारे टारगेट पर है सर।
5: फायर। सर ये तो क्या, अब दूसरों को देखता हूं। टर्न द गन टू द लेफ्ट।
6: जी।
5: फायर।
4: सर सर वो आखिरी वाला टैंक तो वापस मुड़ रहा है सर।
5: हाँ लगता है आक्रमण करेगा। निशाना साधो।
4: ठीक है सर।
0: दो टैंक आमने सामने खड़े थे, दोनों ने एक साथ एक दूसरे पर गोले दागे। और उसी विस्फोट में अरुण ने वीरगति पाई।

हालांकि सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल का देहांत हो गया, लेकिन उनकी बहादुरी की वजह से वो दिन भारत का रहा। दुश्मन का एक भी टैंक भारतीय कब्जे वाले इलाके में घुस न सका। हमारी सेना ने उस दिन दुश्मन के 10 टैंक नष्ट किए, जिनमें 4 टैंक अकेले अरुण ने नष्ट किए थे। इस बहादुरी भरे कारनामे के लिए अरुण को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: साथियों, खेत्रपाल परिवार के लिए कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई। कुछ सालों बाद एक विचित्र घटना घटी, जिसके विषय में हमने उनके पिता ब्रिगेडियर मदनलाल खेत्रपाल से चर्चा की और उन्होंने जो कुछ भी बताया हम उसे आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं।
1: कुछ सालों बाद मुझे संदेशा मिला कि पाकिस्तान का एक ब्रिगेडियर मुझसे मिलना चाहता है। क्योंकि मैं उनके नाम से परिचित नहीं था, इसलिए मिलने की कोशिश भी नहीं की। अरुण की यादों के सहारे समय बीतता गया और 2001 की बात है, मेरा मन हुआ जाकर अपना जन्म स्थान सरगोधा देखाऊं, जो पाकिस्तान में है, और मैं रवाना हो गया। और देखिए कैसा संयोग था कि मेरी मुलाकात उसी पाकिस्तानी ब्रिगेडियर से हुई। उन्होंने मेरी मेजबानी का दायित्व संभाला और मुझे मेरे पैतृक गांव की यादगार यात्रा कराई। मैं उनके घर करीब 3 दिन ठहरा। जो मेरा लौटने का समय नजदीक आता गया, जो हमारी मित्रता गहरी होती गई। पर समय समय पर ऐसा लगता था कि कुछ बात अभी बाकी है, और वो क्या थी मैं समझ नहीं पा रहा था। बात करते करते बीच में रुकना, उनके परिवार के लोगों की आंखों में करुणा, विदाई के एक दिन पहले हम सब ने एक साथ भोजन किया। सोने का समय हो चला था, अभी हम सोने जा ही रहे थे कि ब्रिगेडियर ने कहा, सर मैं वर्षों से आपसे कुछ कहना चाहता हूं पर कैसे कहूं ये समझ नहीं आ रहा। ये बात आपके बेटे अरुण के बारे में है। मैंने उनसे पूछा कि तुम अरुण के बारे में जानते हो? उन्होंने कहा, जी बहुत अच्छी तरह से है। जिस बहादुरी की वजह से उसकी घर घर में चर्चा होती है, वो नजारा मैंने अपनी आंखों से देखा है। याद आता है वो दिन जब शकरगढ़ की उस युद्धभूमि पर 2 टैंक आमने सामने खड़े थे, जिसमें से एक टैंक में था आपका बेटा अरुण और दूसरे में और कोई नहीं मैं ही था। हम दोनों ने एक साथ एक दूसरे पर गोले दागे, पर नियति को शायद यही मंजूर था कि मैं जिंदा हूं और अरुण शहीद हो गया। मैंने जो किया वो मेरा काम था, पर सिपाही होने के साथ साथ मैं एक इंसान भी हूं, और जब मुझे पता चला कि उस समय अरुण सिर्फ 21 साल का था, तो उस घटना ने मुझे बड़ी बुरी तरह से झकझोर दिया। जिस बहादुरी से आपके बेटे ने अपनी मातृभूमि की रक्षा की, उसके लिए मैं उसे सलाम करता हूं। मेरे लिए ऐसे व्यक्ति का सामना करना जिसने मेरे पुत्र की हत्या की थी आसान नहीं था। पर उस समय मेरे जहन में बस यही पंक्तियां आई, हिंद के सैनिक तुझे प्रणाम, सारी दुनिया में तेरा नाम, दुश्मन के गलियारे में भी होती है तेरी चर्चा आम। सलाम सलाम।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM झाबुआ की आवाज।
1: ओले बोले।
2: अरे ये क्या, बच्चे कहाँ चले गए?
3: बच्चे
2: आए भी हैं या नहीं आए? एक काम करता हूँ, बाहर चलकर देखता हूँ। बच्चों तुम यहाँ छुपे थे? तुम यहाँ छुपे बैठे हो हैं? आपने मुझे पकड़ लिया। लेकिन ये तो बताओ, क्या मैं चोर हूँ? चलो ठीक है ठीक है ठीक है, अब छोड़ो तो भाई, अब बैठ तो जाओ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, तुम्हारी बात मान ली। आज मेरे अक्षर हैं ओ और ओ। ओ ओ
4: ओ ओ।
2: एक बार फिर ओ ओ
4: ओ ओ।
2: शाबाश। तो आज की मेरी कहानी का नाम है ओले बोले के औजार। ओले बोले के
4: औजार।
2: शाबाश। ओ से ओले बोले और ओ से औजार। ओले बोले के औजार। शाबाश। तो बच्चों, एक था व्यापारी। कौन था?
4: व्यापारी।
2: अच्छा ये बताओ, व्यापारी होता कौन है?
5: वो सामान बेचता है।
2: सामान बेचता है,
6: जो चीजें बेचता है।
2: चीजें बेचता है, तरह तरह की चीजें।
7: वो साड़ी बेचता है।
2: साड़ी बेचता है।
8: वो लड्डू बेचता है।
2: लड्डू बेचता है।
9: वो खाना भी बेचता है।
2: खाना बेचता है।
10: वो लोहा बेचता है।
2: लोहा बेचता है।
11: वो बर्तन बेचता है।
2: बर्तन बेचता है। हाँ बिल्कुल सही कहा। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, जो व्यापार करता है उसे कहते हैं हम व्यापारी। क्या कहते हैं?
4: व्यापारी।
2: शाबाश। तो बच्चों, एक था व्यापारी, उसका नाम था ओले बोले। क्या नाम था?
4: ओले बोले।
2: वो बहुत सारी चीजें बेचता था, जैसे कपड़ा, बर्तन, औजार। ओ से ओले बोले और ओ से औजार। अच्छा औजार पता है ना क्या होता है? बताओ बताओ।
6: प्लास,
2: कीले,
6: पेचकस,
2: आरी,
6: हथौड़ी।
2: अरे वाह क्या बात है भाई, हमारे बच्चे तो बड़े होशियार हैं। सही कहा तुमने। हाँ इसके अलावा वो और भी कुछ बेचता था, बताऊं क्या क्या?
6: क्या भैया?
2: वो ओखली बेचता, और वो भी दो दो मूसल के साथ।
6: ये ओखली क्या होता है?
2: ओखली बेटा जिसपे मसाला कूटते हैं। हाँ ऐसे धम
4: धम
2: धम धम
4: धम।
2: हाँ
6: धम धम।
2: तो बच्चों वो ओखली बेचता दो दो मूसल के साथ, और हाँ साथ में लाल गुलाबी लहंगा भी बेचता था, जिसके साथ चार चूड़ियां भी होती।
7: बिल्कुल मुफ्त।
2: हाँ, बिल्कुल
7: वो गोलगप्पे के साथ पानी।
2: तो बच्चों बिल्कुल ठीक कहा तुमने, बिल्कुल ठीक। अच्छा अब मैं आगे कहानी सुना।
4: हाँ भैया।
2: हाँ तो सुनो।

0: कहानी। एक बार बच्चों हुआ ये कि ओले बोले की दुकान पर एक औरत आई। शाबाश, ओ से औरत। तो बच्चों वो औरत ओले बोले से बोली,
1: अरे ओले बोले भैया, एक ओढ़नी दिखा दो जिसमें मोर बने हो।
2: भैया ओ से ओढ़नी,
0: ओ से ओढ़नी, ओ से ओले बोले। हाँ, तो ओले बोले ने उस औरत से कहा,
1: हाँ हाँ बहन जी, हाँ अभी दिखाता हूँ, ये देखिए, ये लाल, ये हरी, ये पीली, और ये लो एक और, ये है नीली।
0: तो ओ से ओढ़नी, ओ से ओखली, ओ से ओले बोले, और ओ से
2: औरत,
0: औरत, और ओ से और। तो बच्चों आगे सुनो क्या हुआ। तभी वहां पर एक बूढ़े बाबा आए और बोले,
3: अरे बेटा बेटा।
1: हाँ बाबा, कहिए।
3: बेटा, क्या यहाँ मेरी दवा मिलेगी?
0: तब ओले बोले ने कहा, अरे बाबा, मैं औषधि नहीं बेचता। औषधि यानी
2: दवाई।
0: वाह क्या बात है, इसी बात पर हो जाए ताली जोरदार। भाई ये बात तो माननी पड़ेगी कि तुम सब बहुत ही होशियार हो, बहुत ही प्यारे हो और बहुत ही समझदार भी हो। अब आगे सुनाओ कहानी।
2: हाँ भैया।
0: तो सुनो कहानी। तो बच्चों ओले बोले ने कहा, बाबा जी ये दवा वहां सामने वाली दुकान पर मिलेगी, हाँ वहां जाइए आप।
3: अच्छा बेटा,
4: मैं केमिस्ट से ले लूंगा।
0: वाह क्या बात है, केमिस्ट कौन होता है बताओ? जो दवाई बेचता है, जो दवाइयाँ बेचता है। हाँ, पता है फिर क्या हुआ?
2: क्या हुआ?
0: तभी वहाँ पर दो आदमी आए, पता है उनके नाम क्या
2: क्या थे?
0: उनके नाम थे ओंकार और ओम। ओंकार और ओम, ओ से
2: ओंकार।
0: शाबाश, ओ से ओंकार, ओ से ओम, और ओ से और, ओंकार और ओम। अच्छा पता है वो दोनों क्या करने लगे? वो दोनों औने पौने पैसे देकर सारा सामान मांगने लगे। ओ से ओम,
4: वो चोरी कर रहे थे।
0: हाँ चोरी समझ लो, चोरी और सीना चोरी। ओ से ओम, ओ से ओंकार, और ओ से औने पौने। औने पौने यानी उल्टे सीधे, ठीक है बच्चों? तो कभी वो कहते,
3: ए ओले बोले, हमें 2 रुपए में ओखली दे दो,
0: और वो भी 2-2 मूसल के साथ। हा?
2: हाँ,
1: हाँ, 1 रुपए में हथौड़ी दे दो, जल्दी करो जल्दी करो।
4: 1 रुपए में साड़ी दे दो।
0: हाँ,
4: 1 रुपए में बर्तन दे दो,
0: बर्तन दे दो।
4: 1 रुपए में कुल्हाड़ी दे दो,
0: 1 रुपए में कुल्हाड़ी। फिर पता क्या हुआ?
4: क्या हुआ भैया?
0: हाँ वही तो बताने जा रहा हूँ। मेरे बच्चे वो एक एक कर सारे औजार निकलवाते और कहते,
1: ये सामान तो बेकार है। अरे बिल्कुल बेकार है भैया,
3: तुम्हारे पास सारी चीजें ही बेकार है, कोई भी ढंग की नहीं है यहाँ पर। हाँ
4: ये तो बहुत बुरी बात है,
0: बहुत बुरी बात है,
5: बहुत बुरी बात है,
6: भी बुरी बात है।
0: तंग करना उससे भी बुरी बात है,
4: वो अच्छा नहीं कर रहे,
0: बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहे।
4: क्या हुआ भैया?
0: बताता हूँ। फिर उनमें झगड़ा होने लगा, मार पिटाई शुरू हो गई। ओहो,
4: ओ से ओहो।
0: शाबाश, तो उनमें बच्चों खूब धक्का मुक्की हुई।
3: अरे क्या कर रहे हो? अरे ये ले, और ले, अरे क्यों मार रहे हो?
1: अरे भगवान,
0: बच्चों उनमें इतनी धक्का मुक्की हुई कि तभी ओले बोले, ओंकार और ओम तीनों औंधे मुंह गिरे जमीन पर धड़ाम।
4: बहुत चोटें लगी।
0: हाँ बहुत चोटें भी लगी होंगी।
4: और उनको बहुत दर्द हुआ,
0: बहुत दर्द हुआ,
4: वो घायल हो गए,
0: घायल हो गए, बिल्कुल सही।
4: और भैया औंधे।
0: हाँ तो उसके बाद बच्चों हुआ ये कि वो जो औरत ओढ़नी लेने आई थी ना,
2: हाँ भैया,
0: वो वहीं पर खड़ी थी और ये झगड़ा देखकर
5: उसने तुरंत पुलिस को फोन कर दिया।
0: हाँ बिल्कुल सही, उसने पुलिस को फोन कर दिया, पुलिस को बुला लिया। जब पुलिस आई तो पुलिस को देखकर ओम और ओंकार डरकर सरपट भागे, लेकिन पुलिस की आंखों से ओझल नहीं हो पाए। आखिरकार पुलिस ने उन्हें पकड़ ही लिया। तो बच्चों, ओ से ओझल, ओ से ओढ़नी, ओ से ओम, ओ से ओंकार और ओ से ओले बोले, ओ से औरत, ओ से औजार और ओ से औंधे। बच्चों, बात दरअसल ये थी कि ओले बोले इतने अच्छे औजार बेचता था कि ओम और ओंकार उन्हें लेना तो चाहते थे पर पैसे देना नहीं चाहते थे।
5: ये तो बहुत बुरी बात है,
0: बहुत बुरी बात है, सच
6: में बिल्कुल भी अच्छा नहीं।
5: हमें पैसे देकर चीज खरीदनी चाहिए।
0: बिल्कुल सही, बिल्कुल
6: हमें ईमानदार होना चाहिए।
0: बिल्कुल सही, ईमानदार होना चाहिए
5: और चोरी कभी नहीं करनी चाहिए।
0: नहीं करनी चाहिए,
6: बुरी बात होती है,
0: बहुत बुरी बात होती है। शाबाश। तो बच्चों, अब हुआ ये कि ओम और ओंकार को पुलिस ने पकड़ लिया और ओले बोले अपने औजार फिर से बेचने लगा और बाकी चीजें भी आराम से बेचने लगा,
5: और हथौड़े और कील और पेचकश और औजार बेचने लगा,
0: औजार बेचने लगा
5: और ओढ़नी और चूड़ी और पेच,
7: ओढ़नी और चूड़ी,
0: ओढ़नी और चूड़ी
5: और साड़ी भी,
0: साड़ी भी, बर्तन
5: और पेच भी,
0: पेचकश भी, कपड़े
5: और आरी,
0: आरी। शाबाश। हाँ तो बच्चों, उसके बाद ओले बोले ने उस औरत का धन्यवाद किया और कहा,
1: बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी जो आपने मुझे आज बचा लिया। अरे कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। रुकिए रुकिए, आप ये खुरपी लीजिए मेरी तरफ से।
8: अरे मगर चलो ठीक है, मुझे खुरपी लेनी भी थी। धन्यवाद ओले बोले, धन्यवाद।
0: तो बच्चों, ओ से ओले बोले और ओ से औजार, ओ

0: तभी वहाँ दो आदमी आए, ओमकार और ओम था नाम। औने पौने पैसे देकर मांग रहे सारा सामान।
1: ला दे ओखली, दे मूसल, सारे औजार दे।
2: अरे इतना घटिया सामान कौन देगा तुझे इसके दाम?
0: कभी वो मांगे ओखली मूसल, एक एक करके सारे औजार। बार बार देखे और बोले, ये सामान है बेकार।
3: खूब हुई धक्का मुक्की और ओले बोले गिरा घड़ाऊं। तब औरत ने पुलिस बुलाई, भागे ओंकार।

0: 93.8 FM जाबुआ की आवाज।
1: कितना हल्का कितना भारी,
2: कितना हल्का कितना भारी।
3: नमस्ते बच्चों।
4: नमस्ते
5: नमस्ते।
6: अरे भाई, आज तो तुम लोग बहुत जल्दी आ गए।
7: हमें आज कहानी भी तो सुननी है। भैया, आज दीदी क्यों नहीं आई?
6: हाँ, ये बात है।
8: अनंत, लो मैं भी आ गई। नमस्ते नमस्ते, कैसे हो बच्चों?
6: बढ़िया हो ना?
8: तो अनंत, आज तुमने बच्चों को बताया कि हम इन्हें कौन सी कहानी सुनाने वाले हैं?
6: बस वही तो बताने वाला था। बच्चों, आज हम सुनाएंगे एक घोड़े की कहानी।
7: घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है ना।
6: हाँ।
9: मैं एक बार घोड़े पे बैठा भी था।
6: अच्छा,
8: अच्छा? बस एक ऐसा ही घोड़ा था जैजू और मन्नू के पास।
10: जैजू मन्नू कौन थे?
6: बच्चों, जैजू और मन्नू बिल्कुल तुम्हारी तरह प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे थे। और उनके पास था एक घोड़ा।
7: बहुत तेज दौड़ता था।
8: बहुत तेज।
6: अरे वो तो बहुत ही ताकतवर भी था और बहुत ही ज्यादा हट्टा कट्टा घोड़ा था। और पता है वो 700 किलोग्राम भार उठा सकता था।
10: 700 किलोग्राम?
6: हाँ, और वो भी बड़े आराम से।
7: 700 किलोग्राम?
6: हाँ।
7: इतना ज्यादा उठा लेता था वो घोड़ा?
6: हाँ श्रेया, अरे वो तो बहुत ताकतवर था,
8: लेकिन वो थोड़ा आलसी भी था। आलसी?
6: हाँ बच्चों, काम करने का उसका मन ही नहीं करता था। वो तो बस सोता रहता था घोड़े बेचकर।
7: पर वो तो खुद ही एक घोड़ा था।
6: लेकिन बच्चों, ये तो कहावत है ना, घोड़े बेच के सोना है।
7: फिर क्या हुआ?
8: फिर एक बार जैजू और मन्नू अपना मकान बदल रहे थे। वो घर का सारा सामान घोड़ा गाड़ी में लादने लगे।
6: और फिर जैजू और मन्नू के पिताजी ने कहा,
11: हाँ, सबसे पहले इस पानी की टंकी को रख देता हूँ घोड़ा गाड़ी पर।
6: फिर जैजू और मन्नू की मम्मी बोली,
12: ये रहे 5 बोरी गेहूं, इन्हें भी रख देती हूँ।
13: अरे अरे भाई, ये 3 मेज तो रह गए। अरे पापा।
14: अरे बेटा, ले आ ले आ।
6: और घोड़ा कहने लगा,
13: अरे इतना भार, अरे मैं कैसे उठाऊं,
14: पहले ही बहुत थक गया हूँ।
8: अरे रुको रुको, 4 कुर्सियाँ भी बाकी हैं। और उसके बाद जैजू और मन्नू ने 4 कुर्सियाँ, 1 अलमारी, 2 गद्दे, 3 बोरी चावल और रखे।
6: तब घोड़ा बोला,
13: अरे इतना भार।
8: अरे रुको रुको रुको, अभी तो और भी सामान है। और तब जैजू और मन्नू ने एक बांस की सीढ़ी, कुछ और बर्तन भी रख दिए।
6: और बच्चों, घोड़ा बोला,
13: अरे अरे अब मैं और नहीं उठा सकता इतना भार। अरे इतना सारा सामान, आज तो मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। मेरे सिर में तो बहुत तेज दर्द हो रहा है। अरे
7: घोड़ा बोला, मेरे पैर में भी दर्द हो रहा है। फिर क्या हुआ?
8: और तब जैजू और मन्नू के पापा ने उनसे कहा,
6: जैजू मन्नू।
13: जी पिताजी।
15: जी पिताजी।
14: भाई, लगता है घोड़े की तबीयत ठीक नहीं है। अरे वो 700 किलोग्राम से ज्यादा भार नहीं उठा सकता।
7: वो बहुत भारी हो गया था
9: क्या? वो 1000 किलोग्राम हो गया था?
8: अरे रुको रुको, पहले तो जैजू और मन्नू के पापा ने उन्हें सामान के बारे में बताया, वजन के बारे में जानकारी दी, और फिर जैजू और मन्नू सामान का भार जोड़ने लगे।
6: हाँ बच्चों, तुम भी जैजू और मन्नू का साथ दो और उनके साथ मिलकर सामान का भार जोड़ो।
10: ठीक है।
6: तो एक गेहूं की बोरी का वजन है 100 किलोग्राम।
10: 100 किलोग्राम?
6: हाँ। और एक चावल की बोरी और 1 अलमारी मिलाकर हुई 105 किलोग्राम।
10: 105
8: तो बच्चों बताओ कुल कितना भार हुआ? 100 और 105 किलोग्राम?
7: 205।
6: 205 क्या?
7: ग्राम।
6: सिर्फ ग्राम?
7: किलोग्राम।
6: शाबाश, ये हुई ना बात, 205 किलोग्राम। हाँ, तो अब बारी आती है कुर्सी की। एक कुर्सी का भार है 5 किलोग्राम। कितने किलोग्राम है?
7: 5 किलोग्राम।
6: और पहले जो भार था वो था 205 किलोग्राम। तो अब हमने इसमें 5 किलोग्राम और जोड़े तो कितना भार हो गया?
7: 205 किलोग्राम।
6: शाबाश, इसी बात पे हो जाए ताली। हाँ, तो भाई अब बारी आती है पानी की टंकी की। और जानते हो पानी की टंकी का भार कितना है?
7: कितना है?
6: 50 किलोग्राम।
7: 50 किलोग्राम।
6: हाँ, तो अब बताओ कुल मिलाकर कितने किलोग्राम हुए? अभी तक भार था 210 किलोग्राम, उसमें हमने पानी की टंकी का भार जोड़ दिया, यानी कि 50 किलोग्राम जोड़ दिया, तो कुल मिलाकर कितने किलोग्राम भार हो गया?
7: 235 किलोग्राम।
6: 235
7: किलोग्राम।
6: अरे नहीं बचवा, 235 नहीं, 210 किलोग्राम और 50 किलोग्राम पानी की टंकी का भार मिलाया तो कुल मिला के कितना भार हो गया?
7: 260 किलोग्राम।
6: शाबाश, इसी बात पर बजाओ ताली। तो 260 किलोग्राम के बाद आया 10 किलोग्राम का मेज।
7: 270 ग्राम।
6: सिर्फ ग्राम?
7: किलोग्राम।
6: शाबाश, ये हुई ना बात, किलोग्राम। शाबाश।
8: और अब बारी आती है गद्दे की।
6: भाई एक गद्दा है 20 किलोग्राम का।
7: 290 किलोग्राम।
6: क्या बात है भाई, बच्चे वैसे बहुत होशियार हो गए हैं।
8: बहुत होशियार।
6: अब बारी आती है बांस की सीढ़ी की, जिसका भार है 10 किलोग्राम।
8: तो बच्चों अब बताओ कुल कितना भार हुआ?
6: यानी 290 किलोग्राम पहले और अब 10 किलोग्राम मिलके हो गया
7: 300 किलोग्राम।
8: बिल्कुल ठीक बताया,
6: 300 किलोग्राम। अच्छा बर्तन तो रह गए है ना, तो बर्तन हुए 10 किलोग्राम के।
7: 310 किलोग्राम।
6: हाँ, 310 किलोग्राम।
8: वाह वाह वाह वाह। तो भाई ये तो सब बच्चों ने मिलकर बता दिया।
6: क्या बात है।
8: तो बच्चों अब ये बताओ 310 किलोग्राम 700 किलोग्राम से कम हुआ या ज्यादा?
7: कम।
6: बच्चों जैजू और मन्नू ने कहा, अरे घोड़े भाई ये तो बस 310 किलोग्राम है, तुम तो 700 किलोग्राम भार उठा सकते हो। थोड़ा शर्माने लगा और बोला,
4: अरे अरे मेरी तबीयत तो एकदम ठीक है, मैं तो मजाक कर रहा था, मुझे कुछ नहीं हुआ।
7: हाँ? मेरा तो सर दर्द भी नहीं हो रहा, मेरे को टांग भी नहीं दर्द।
4: अरे अरे ये तो बहुत ही हल्का है, अरे मैं अभी ले चलता हूँ। जयजूर मनु, अरे तुम भी बैठ जाओ घोड़ा गाड़ी पर, बैठ जाओ शाबाश। और हाँ सुनो सुनो, अरे पापा को भी तो बिठाओ। हाँ
7: मम्मी को भी तो बिठाओ।
4: अरे हाँ, अरे बुलाओ भाई मम्मी को भी बुलाओ, जल्दी बुलाओ।
5: अब मैं सर पर दौड़ लगाता हूँ।
8: अरे अनंत रुको रुको रुको भाई, यही रोक दो अपनी घोड़ा गाड़ी को। कुछ और भी बाकी है।
6: अरे आकृति क्या बाकी है भाई?
8: आज का सवाल।
6: सही याद दिलाया तुमने। तो बच्चों आज का सवाल है 310 किलोग्राम 700 किलोग्राम से कितना कम है, यानी कितने किलोग्राम कम है? सवाल एक बार फिर सुन लो, 310 किलोग्राम 700 किलोग्राम से कितने किलोग्राम कम है? तो घर जाकर सोचो और पता लगाओ, लेकिन जाने से पहले बजाओ ताली।

0: नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरजे भावना और आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टंटाविल 90.8 एफएम झाबुआ की आवाज आरजे भावना के साथ। आज हम बात करेंगे स्थानीय समुदाय की जरूरत के अनुसार ग्राम पंचायतों का विकास, यानी कि ग्राम पंचायत विकास योजना पर। ग्राम पंचायत विकास योजना GPDP की क्या जरूरत है एवं इसमें समुदाय की क्या भूमिका है, इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे बीच स्टूडियो में उपस्थित हैं पंकज पांडे जी, ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया फाउंडेशन TRIF संस्था दिल्ली से, जितेंद्र जी TRIF भोपाल से, TRIF के साथ देवास के खातेगांव ब्लॉक में काम कर रही राधिका जी से, BS रावत APO जिला पंचायत झाबुआ से। आप सभी अतिथियों का हमारे स्टूडियो रेडियो टंटाविल 90.8 FM झाबुआ की आवाज में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए हम इनसे जानते हैं ग्राम पंचायत विकास योजना के बारे में।
1: साथियों नमस्कार। झाबुआ में विगत कई वर्षों से विकास की धारा बहती चली जा रही है और इस विकास की धारा में सबसे जो मुख्य कड़ी है वो हमारी ग्राम पंचायतें हैं और ग्राम पंचायतों के साथ साथ हमारे महिला समूह। ये महिला समूह और पंचायतें जब अपनी कार्ययोजना वार्षिक कार्ययोजना बनाती है तो विकास के नए आयाम को अपने से प्रस्फुटित करती है। तो साथियों आज हमारे साथ में कई विशेषज्ञ जो कार्ययोजनाओं को जानते हैं, समझते हैं कार्ययोजना क्यों बनना चाहिए और पंचायतें और महिला समूह इसके अंदर क्यों प्रतिभाग करना चाहिए, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज जिस तरह से कार्ययोजना का एक जो बदला है स्वरूप और पहले जो कार्ययोजनाएं बनती थी, तो हमारे साथ में आज श्री पंकज पांडे हमारे साथ में, उनसे हम जानेंगे कि आपको क्या लगता है सर, ये जो कार्ययोजनाएं जो पहले बन रही थी पंचायतों की और आज जो बन रही है, इनके स्वरूप में किस प्रकार बदलाव आया है।
2: बहुत महत्वपूर्ण सवाल जितेंद्र जी ने यहाँ पे रखा है और मुझे लगता है कि न केवल झाबुआ के लिए बल्कि संपूर्ण देश की पंचायतों के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो किस तरीके से अपने गांव के विकास की या पंचायत के विकास की योजनाएं बनाएं और उसमें लोगों की भागीदारी कितनी महत्वपूर्ण है। न केवल पंचायत के प्रतिनिधि और वहाँ के फ्रंटलाइन वर्कर, बल्कि वहाँ पे जो महिला समूह के गठित स्वयं सहायता समूह और उनके जो परिसंघ के जो पदाधिकारी है वो भी इसमें भागीदार हों, साथ ही साथ वहाँ की जो युवा पीढ़ी है, जो वर्तमान में जो शिक्षित युवा पीढ़ी है वो सम्मिलित हो, उत्कृष्ट जो किसान साथी है वो सम्मिलित हो, तो सभी की वर्गों की भागीदारी इस योजना में होना बहुत जरूरी है। और पंचायत तीसरी सरकार है, जिस तरीके से दिल्ली और भोपाल में सरकारें बैठी हुई हैं उसी तरीके स्थानीय लोगों के लिए पंचायतें तीसरी सरकार है और स्थानीय लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए ये सरकार जो है जवाबदेह है और जिम्मेदार है। तो उसकी जवाबदेही और जिम्मेदारी के लिए बहुत आवश्यक है कि आज का जन्मा हुआ बच्चे से लेकर अंतिम व्यक्ति तक सरकार की विभिन्न योजनाएं संचालित है और जो पंचायत के माध्यम से जो 11वीं अनुसूची के अंतर्गत 29 तरह के काम और 18 डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है पंचायत स्तर पे, तो उसके लिए बहुत ही आवश्यकता महसूस होती है जितेंद्र जी कि ये प्रभावी और उपयोगी जो है ग्राम पंचायत विकास योजना बने और न केवल बने उसका क्रियान्वयन हो और निर्णय निर्माण निगरानी की प्रक्रिया में समुदाय के हर वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित हो, वो आवश्यक है।
1: तो देखा साथियों आपने, पंचायतें तभी अपनी अच्छी योजना बना पाएंगी जब पंचायतों के साथ में आपका भी जुड़ाव होगा, मतलब कि आप भी पंचायतों के साथ में उनकी योजनाओं के भागीदार होंगे, बच्चे से लेकर अंतिम व्यक्ति तक, मतलब युवा, बुजुर्ग, महिलाएं, शिक्षित, अशिक्षित, तभी तो पंचायत अपनी योजनाओं को स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता में रख पाएंगी। नहीं चाहते कि आपके आपका गाँव स्वच्छ हो, हरा भरा हो, आपके गाँव में बीमारियाँ कम से कम हो। तो चलिए आज हमारे साथ में हमारे ही जिले के जिला पंचायत के श्री रावत जी भी हैं, उनसे समझते हैं कि रावत जी पंचायतों को योजना बनाने के लिए किस प्रकार के वित्तीय प्रावधानों का भारत सरकार द्वारा प्रावधान किया गया है।
3: थैंक यू सर। हमारे साथ पंकज पांडे साहब भी दिल्ली से हमारे बीच उपस्थित हैं और आप भी भोपाल से यहाँ मार्गदर्शन करने के लिए हमारे बीच में उपस्थित हैं। हमारे श्रीकांत जी साथी हैं और हमारे यहाँ के आयोजक, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। और चूंकि GPDP के ऊपर आप लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से 15 वित्त योजना में ग्राम पंचायत की जो क्या भूमिका हो सकती है उसके संबंध में आपने मार्गदर्शन दिया है। मेरा जो सुझाव है कि ग्राम पंचायतें, उसमें ग्राम सभा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि जो त्रिस्तरीय पंचायत में जिले, ब्लॉक और ग्राम पंचायत तीनों लेवल पे इस कार्य योजना को बेहतर तरीके से योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए और लोगों की समस्या के समाधान के लिए ग्राम सभा स्तर से इसको क्रियान्वित किए जाने के शासन के जो निर्देश हैं, जिससे कि जो स्थानीय व्यक्ति को उसका जो लाभ मिले, तो 15 वित्त आयोग सबसे बेहतरीन योजना है। इसमें टाइड और अनटाइड में 60% और 40% का जो अनुपात है, उसमें टाइड में पेयजल और स्वच्छता के लिए 60% राशि और उसको भी आधी आधी राशि उसमें व्यय करना है, और 40% योजना का उसमें अनटाइड फंड है, उसमें कोई भी जो पेयजल स्वच्छता के अलावा भी जरूरत के कार्य को किए जा सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले तो जो पंचायत में इसकी चर्चा होना चाहिए, प्रचार प्रसार ग्राम सभा में गांव में लोगों के बीच में चर्चा होनी चाहिए, और इसके लिए ट्रांजिट वॉक होना चाहिए ताकि गांव में घूम के जो स्थानीय स्तर पर जो संसाधन उपलब्ध हैं सबसे पहले उनका आकलन किया जाए, उसका मैप बनाया जाए, और इसके बाद में जिन चीज़ों की आवश्यकता है, जो काम किया जाना शेष है, तो उसको मैप के ऊपर चिन्हित किए जाए, और इसके बाद में 15 वित्त के जो अनुमति काम है उन कामों की सूची से जो काम लिए जा सकते हैं उनको करने के लिए, चाहे उसमें पंचायत भवन हो, सामुदायिक भवन हो, स्कूल के भवन हो, उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण हो, खेल का मैदान हो, पार्क है, इसके बाद रोड पे स्ट्रीट लाइट लगाने का सोलर लाइट और LED वगैरह लगा सकते हैं, पार्क में पेवर ब्लॉक लगा सकते हैं, नर्सरी स्थापित कर सकते हैं, जिससे कि, और इसके बाद गांव में स्वच्छता बनी रहे, और जो जल जीवन मिशन है उसमें हर घर नल का जो शासन का जो कॉन्सेप्ट है उसको पूर्ण करने के लिए जो प्राथमिकता दी गई है वो सारे काम लिए जाने हैं, और इसके बाद में स्वच्छ भारत मिशन के उसमें 15 वित्त में ही स्वच्छ भारत मिशन को कन्वर्ज किया जा सकता है, और फंड की जरूरत हो तो आपके जो जल संतृप्त परिवार उसके लिए पेयजल आपूर्ति के लिए आपको रोजगार गारंटी से पेयजल के लिए तालाब कुएं बना सकते हैं। इसके बाद में जो जल संरचनाएं बनाई जा सकती है, स्टॉप डैम बनाए जा सकते हैं,

0: समूह द्वारा संचालन के लिए लिए जा सकते हैं। तो सामुदायिक और हितग्राही मूलक ये जो काम है इनको लिए जाने का जो प्रावधान है इसको करने के लिए ग्राम सभा के जो संकल्प है उसको पारित करके और जो हमारा ग्राम स्वराज के जो पोर्टल दिए हैं उसको संकल्प पारित करके उस अनुमोदन के बाद में उसको उस पर अपलोड करना है और फिर उस वर्कबोर्ड के आधार पर काम स्वीकृत करके DPR के अनुसार उसके TSS करके काम को कंप्लीट किए जा सकते हैं और गांव एक आदर्श गांव बन सकता है।
1: धन्यवाद धन्यवाद रावत साहब। और देखिए जिस प्रकार से रावत साहब ने बताया कि कई प्रकार के वित्तीय स्रोत हैं, कई प्रकार की योजनाएं हैं, लेकिन ये तभी संभव होगा जब आप लोग मिलजुल कर इस योजना को बनाएंगे और पंचायत को सहयोग करेंगे। अब हमारे साथ में खातेगांव जनपद से राधिका जी जुड़ी हुई हैं जिन्होंने इस बार इस कार्य योजना को महिला समूह पंचायतों के साथ मिलकर बनाया है। राधिका जी आपका क्या अनुभव रहा ये योजना बनाते समय और लोगों का जुड़ाव कैसा था और आपको क्या लगता है किस तरह से इस योजनाओं को अच्छे से बनाया जा सकता है गांव स्तर पर?
2: जितेन जी, इस बार हम लोगों ने खातेगांव में इसको बहुत ही मतलब तरीके के साथ इनिशिएट किया है कि जिस प्रकार से एक पंचायत में जब हमने डेमोन्स्ट्रेशन करके देखा कि इस प्रकार की जो प्रक्रिया की जो हम बात करते हैं, क्योंकि क्या है GPDP या प्लान इस प्रकार के बनते आ रहे हैं, लेकिन हम क्या प्रक्रिया वाइज प्लान बना सकते हैं? तो उस प्रक्रिया को जब हमने वहाँ करके देखा और उसमें जब वो लोगों का जुड़ाव हमने उस समय में देखा कि दीदियाँ आती हैं अपनी बात रखती हैं या हम जो बच्चों के मुद्दों की बात करते हैं तो वो बच्चों से ही निकल सकते हैं, हम अपने दिमाग से उनको नहीं निकाल सकते, या महिलाओं के जो मुद्दे हैं वो महिलाओं की सभा के द्वारा निकाले जा सकते हैं। तो हमारा एक ऐसा अनुभव रहा कि इस प्रकार की प्रक्रिया को हम ब्लॉक स्तर पर किस तरीके से कर सकते हैं, तो उसी को लेकर जब हमने इस पूरी प्रक्रिया को अपनाया तो काफी अच्छा रिजल्ट हमको वहाँ देखने को मिला कि जो प्लान हमारे पहले बनते चले आ रहे थे, लेकिन इस बार जो प्लान हमारे बने हैं उसमें यह है कि समुदाय की जो भागीदारी जिसको हम बोलते हैं कि वो सुनिश्चित होना बहुत जरूरी है, क्यों? क्योंकि उन्हीं उनका जो विकास है उनसे ज्यादा बेहतर कोई समझ नहीं सकता है। तो जो अगर वो कोई नहीं समझ सकता है तो जो समझते हैं उनको आगे आने की आवश्यकता बहुत है। इसमें हम आगे भी इसको इसी प्रकार से कोशिश कर रहे हैं कि जिस प्लान को जो समुदाय ने बनाया है, जो पंचायत के लोगों ने मिलकर के बनाया है, उसको हम किस तरीके से और आगे जिला लेवल पर जाके, राज्य स्तर पर जाकर के, नेशनल स्तर पर जाकर के उसको हम किस तरीके से इंटीग्रेट करके और हम उसका रियलाइजेशन उस धरातल पर लेकर जा सके, ये हमारा आगे का प्रक्रिया रहेगी।
1: धन्यवाद धन्यवाद राधिका जी। तो साथियों आपने जाना किस प्रकार एक गांव की कार्ययोजना हम बना सकते हैं, वित्तीय स्रोतों के प्रावधान क्या है और सबसे बड़ी बात कि इसमें जवाबदारी जिम्मेदारी किसकी है। तो साथियों जब आप इस योजना को बनाएंगे तो याद रखिए पंचायतों के स्तर पर बनने वाली इस योजनाओं को क्रियान्वित करने की आधी जिम्मेदारी आपकी है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सारे कामों के अंदर जिनमें किसी प्रकार के बजट की जरूरत नहीं है, उन सारी गतिविधियों के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी समुदाय पर है। बच्चों को स्कूल तक लेकर जाना, गर्भवती महिलाओं के चेकअप करवाना, IFA टेबलेट को समय पर खाना, बच्चों को समय पर स्तनपान, घर के आगे कचरा जमा ना होने देना, पानी को साफ रखना, जल स्रोतों को साफ रखना, बच्चों की देखभाल करना, उनके गृह कार्य करवाना स्कूल से, ये सारे काम ऐसे हैं जिसमें किसी प्रकार के किसी वित्तीय स्रोत की आवश्यकता नहीं, लेकिन इसमें जरूरत है आपको आगे आने की।
0: तो इसमें सर कुछ अगर मान लो कुछ बड़े काम है जो दो से ज्यादा ग्राम पंचायतें मिलकर कर सकती है, समस्याएं अगर बड़ी है तो उसके समाधान के लिए जो BPDP के प्लान में और DPDP का जो प्लान है उसमें इसको सम्मिलित करके और अन्य विभाग को अन्य विभागीय योजनाओं को कन्वर्ट करके उस बड़े काम को भी लिए जा सकते हैं। और इस कार्य योजना को BPDP कार्य योजना जब बन जाती है इसके बाद DPC के अनुमोदन के बाद में ये काम स्वीकृत होकर समस्याओं का आसानी से समाधान हो सकता है।
1: बहुत ही बढ़िया, थैंक यू। तो हम आशा करते हैं कि आप अपने गांव की पंचायतों की एक बहुआयामी मतलब बहुत सारे विषयों की कार्य योजना बनाएंगे और पंचायत, महिला समूह, युवा, बुजुर्ग, गांव के किसान और आप समुदाय के लोग मिलकर उसको अच्छे से क्रियान्वित करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू
0: सर। आप लोग भी थैंक यू।
3: आप सभी अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतनी दूर से सफर कर हमारे स्टूडियो में आए, आप सभी ने इतना समय निकाला और इतनी अहम साथ ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं को दी। हम आशा करते हैं कि हमारे श्रोताओं को भी यह कार्यक्रम काफी अच्छा लगा होगा और वो इससे लाभान्वित होंगे। अभी वक्त हो चला है हमारा आपसे विदा लेने का, लेकिन हम वादा करते हैं फिर हाजिर होंगे इसी समय एक नए विषय को लेकर। अभी के लिए अपनी दोस्त RJ भावना को दीजिए इजाजत, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए रेडियो टाइम टेबल 90.8 FM झाबुआ की आवाज़, RJ भावना के साथ। नमस्कार।

0: रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम टांट्या भील रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान आपू रोज करहू वाते खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा एत्रे हमलता रेजो टांट्या भील नो रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम। किसान साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, रेडियो टांट्या भील 90.8 एफएम झाबुआ की आवाज आपके लिए खेती संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियों को अब तक आप तक पहुंचाता आया है। साथ ही रेडियो टांट्या भील 90.8 एफएम की एप्लीकेशन के माध्यम से भी काफी किसानों ने इस एप्लीकेशन को अपने फोन में डाउनलोड किया है और एग्रीकल्चर के विद्यार्थियों ने भी इस एप्लीकेशन को अपने फोन में डाउनलोड किया है। आइए सुनते हैं खुटाया स्कूल के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के 12वीं कक्षा के छात्र से।
1: मैं कक्षा 12वीं का छात्र हूं और मेरा सब्जेक्ट एग्रीकल्चर है और मैं रोज टांट्या भील रेडियो को सुनता हूं। उससे मुझे बहुत अच्छी जानकारी मिलती है और कृषि संबंधित बहुत अच्छी ही जानकारी मिलती है। मैं मेरे दोस्तों को भी प्रोत्साहित करता हूं कि वो इस रेडियो को सुने और कृषि संबंधित जानकारी प्राप्त करें।
2: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांट्या भील 90.8 एफएम।
0: आपनो रेडियो आपड़ी बातें। एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है किसान साथियों आपका आपके अपने कार्यक्रम खेती बाड़ी में। किसान साथियों, जैसा कि रेडियो टांट्या भील 90.8 एफएम झाबुआ की आवाज खेती संबंधी बहुत सी जानकारियों को अब तक आप तक पहुंचाता आया है, आज भी हम बात करने वाले हैं खेती संबंधी और कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को। तो आज हम आपसे मिलवाते हैं झाबुआ ब्लॉक के कलीपुरा गांव के रीता मेड़ा से, जो कि अपने गांव में अपने एक छोटे से घर में उन्होंने कड़कनाथ पालन की शुरुआत की और आजीविका को चलाने के लिए कड़कनाथ पालन शुरू किया। अभी उनके पास 300 से अधिक कड़कनाथ मुर्गियां हैं और अभी वो मुर्गियों के अंडों को बेचकर अच्छा मुनाफा भी कमाती है। आपको मिलवाते हैं रीता जी से, उससे पहले आइए सुनते हैं ये सुंदर सा प्यारा सा भीली गीत।
3: रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम टांट्या भील रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान आपू रोज करहूं वाते खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा एत्रे हमलता रेजो टांट्या भील नो रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम।

0: ब्रेक के बाद बहुत बहुत स्वागत है किसान भाइयों। अभी आपने एक सुंदर से प्यारे से बेली गीत को सुना। आइए सुनते हैं अब रीता जी से, जो कि झावा ब्लॉक के अंतरवेला के पास स्थित कलीपुरा गांव की रहने वाली है। उन्होंने अपनी आजीविका को सशक्त बनाने के लिए कड़कनाथ पालन की शुरुआत की और अभी उनके पास 300 से अधिक कड़कनाथ है। और आइए जानते हैं कैसे वो उन मुर्गियों का देखभाल करती है, उनके लिए क्या खाना पानी देती है और क्या उनके लिए कौन कौन सी सावधानियां वो बरतती है। आइए सुनते हैं उन्हीं की जबानी।
1: कौन क्या
2: है? रीता।
1: अच्छा अच्छा, ये कड़कनाथ आप पालती हैं?
2: हाँ।
1: कैसे पाले जाते हैं?
2: मैं इसको सुबह में पानी देती हूँ।
1: हाँ।
2: और खाना देती हूँ।
1: हाँ।
2: और चावल भी बना के देती हूँ इसको।
1: अच्छा अच्छा, इसको कहाँ से भी इनके वो आए थे बच्चे?
2: बच्चे झाबुआ से आए।
1: झाबुआ से? कितने बच्चे आपने पाले थे शुरुआत?
2: मैंने शुरुआत में तो 50 पाले।
1: अब कितने हो गए उनके?
2: अब तो उनके हो गए, ये तो बहुत सारे हो गए, गिन नहीं पाते ये। अच्छा। बड़े बड़े तो
1: कहाँ पे बेचते हैं इसको?
2: ये इधर टेम्पल लेने आया था।
1: अच्छा, कितने का जाता है?
2: 18,000 का तो ले गए थे वो।
1: अच्छा अच्छा,
2: 18,000।
0: रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांटिया भील, रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान। आपु रोज करहूं बातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा। एत्रे हमरता रेजो टांटिया भील नो रेडियो स्टेशन, रेडियो स्टेशन 90.8 FM। किसान साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी वर्तमान सरकार हमारी सहूलियत के लिए अनेकों योजनाएं हमारे लिए लेकर आती रहती है और इसकी अधिकतर जानकारी कृषि विज्ञान केंद्र से मिलती है। हाँ जी, कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से किसान इन योजनाओं का लाभ ले सकता है। योजनाओं को लेकर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, उससे पहले आइए सुनते हैं इस छोटी सी रिपोर्ट को।
3: खेती से जुड़ी नई नई जानकारियों को किसानों तक पहुंचाने में कृषि विज्ञान केंद्र एक सेतु की भूमिका निभाते हैं। देश भर में करीब 721 कृषि विज्ञान केंद्र हैं, जो किसानों को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। खेती में उत्पादन व उत्पादकता बढ़े, साथ ही आगे आने वाले कल में खेती के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़े, ये बहुत जरूरी है। अन्यथा भविष्य में जो चुनौतियां आएंगी उससे निपटना मुश्किल होगा। इन समस्याओं के समाधान में केवीके अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं।
4: जैसे कि ये कहा जाता है कि पूरे भारत में भी हर एक जिले में कृषि विज्ञान केंद्र है, तो हमारे जो जिला है उधम सिंह नगर उत्तराखंड, उसका कृषि विज्ञान केंद्र यहाँ काशीपुर में स्थित है। जहाँ तक इनके उद्देश्यों की बात है, उसके उद्देश्य ये होते हैं कि जो भी तकनीकी जो शोध संस्थान द्वारा, विश्वविद्यालय द्वारा, ICAR के द्वारा जो विकसित की जाती है, उनको किसानों तक कैसे पहुंचाया जाए, ये हमारा मुख्य उद्देश्य होता है। इसके लिए हम कई तरीके अपनाते हैं। हम अपने यहाँ किसानों के प्रक्षेत्र पर भी और कृषि विज्ञान केंद्र पर भी ट्रेनिंग प्रोग्राम, यानी कि उनको प्रशिक्षण कार्यक्रम जो है उनका आयोजन करते हैं। यहाँ पर उनको ये बताया जाता है कि कृषि में जो जो नए नए अभिनव प्रयास हो रहे हैं वो आपके लिए कैसे फायदेमंद हैं। इसके अतिरिक्त हम कृषकों के प्रक्षेत्र पर जाकर प्रथम पंक्ति प्रदर्शन का आयोजन करते हैं। उनको ये बताया जाता है कि जो भी नवीनतम तकनीकी है वो कैसे आपके लिए फायदेमंद है, उन्हें हम वहाँ हम करके दिखाते हैं। हम इसमें कुछ कृषकों का चयन करते हैं और उन्हें करके बताते हैं शुरू से लेकर लास्ट तक कि कैसे बुआई करनी है और कैसे इसकी कटाई करनी है और कैसी ये तकनीक जो है उनके लिए फायदेमंद है। इसके अलावा हम प्रयास करते हैं कि जो हमारे प्रक्षेत्र पर जो भी हमारे पास लगभग 20 हेक्टेयर का फॉर्म है, इस फॉर्म पे हम लोग उन्नतशील प्रजातियों के जैसे गेहूं के, धान के, सब्जियों के और लेग्यूम्स के, दलहनी फसलों के, तिलहनी फसलों के बीज बनाते हैं और हम उनको उचित रेट पर किसानों को उपलब्ध कराते हैं। और इसके अतिरिक्त जो भी ये उन्नतशील हमारे पास सब्जियों की पौध होती है या उन्नतशील फल पौध होती है हमारी, वो भी हम किसानों को समय के अनुसार और उनकी ऐसे एज पर देयर नीड्स उनको हम किसानों को हम देते हैं। इसके लिए हमारे पास कई तरह से किसान भी आते हैं जो डिमांड भी करते हैं कि सर हमको फलानी वैरायटी का ये बीज चाहिए, तो वो हम बीज को हम अपने बनाकर किसानों को देते हैं। इस तरह से हम अपने जो उद्देश्य हैं उसको हम कार्य कर रहे हैं।
3: केवीके ने अपने आयामों में समय के साथ इजाफा किया है। आज किसान केवीके से न सिर्फ खेती के आधुनिक तरीके सीख रहे हैं बल्कि उन्नत बीजों का क्रय भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, केवीके अब किसानों को पौध भी उपलब्ध करा रहा है, क्योंकि केवीके का लक्ष्य है कृषि में समृद्ध दायरे को बढ़ाना।
0: रेडियो स्टेशन 90.8 FM, रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान। आपु रोज करहूं वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा। एत्रे हमरता रेजो टांट्या भिलनो रेडियो स्टेशन, रेडियो स्टेशन 90.8 FM। किसान भाइयों, आप सुन रहे हैं खेती बाड़ी कार्यक्रम। किसान साथियों, आइए शुरू करते हैं कड़कनाथ पालन को लेकर कुछ और विशेषज्ञों की राय। कैसे कड़कनाथ पालन हम कर सकते हैं, कहां से हमें लेना चाहिए और कड़कनाथ पालन में हमें कितना खर्चा लगता है और कड़कनाथ पालन के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, कड़कनाथ पालन कैसे कर सकते हैं, उनमें क्या खाना हमें देना चाहिए, क्या दवाई हमें उन्हें देना चाहिए और कैसे रखना चाहिए कड़कनाथ मुर्गी का ख्याल, जानेंगे इन सारी महत्वपूर्ण जानकारियों को।
5: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया भील 90.8 FM।
0: आपनू रेडियो, आपड़ी बातें।
6: खेती के साथ पशुपालन हमारी परंपरा का हिस्सा रहा है, क्योंकि ये एक दूसरे के पूरक है। कृषि से मिलने वाले फसल अवशेषों का इस्तेमाल पशु आहार के रूप में किया जा सकता है, वहीं पशुओं से मिलने वाले अवशिष्ट का प्रयोग जैविक खाद के रूप में। यही वजह है कि किसान खेती के साथ साथ गाय, भैंस, बकरी या फिर मुर्गी पालन करके दोहरा लाभ कमा रहे हैं। खेती के साथ कड़कनाथ पालन कैसे किया जाए, आइए जानते हैं। काले पंखों से ढका, खूबसूरत काली आंखें और काले पंजों वाला ये मुर्गा कड़कनाथ शोध में पाया गया है कि इसके सेवन से इंसान का शरीर मजबूत होता है, इसीलिए इसका नाम कड़कनाथ रखा गया है। इसके गुणों के कारण ही इसकी मांग साल भर बाजार में बनी रहती है। क्या है कड़कनाथ की खूबियां, आइए जानते हैं। कड़कनाथ में वसा की मात्रा सिर्फ 2.9% होती है। इसके 100 ग्राम मीट पे कोलेस्ट्रॉल महज 59 मिलीग्राम होता है। प्रोटीन की मात्रा 20-24% होती है। कड़कनाथ में लौह तत्व, कैल्शियम, विटामिन बी और विटामिन सी भी पाया जाता है। इसकी प्रतिरोधक क्षमता सामान्य मुर्गे की तुलना में कहीं ज्यादा होती है। इसके अंडे और मांस सामान्य मुर्गे की तुलना में ज्यादा दाम पर जाते हैं। कड़कनाथ की खूबियों से प्रभावित होकर दिल्ली के एक युवा किसान राजा सिंह ने इसका पालन शुरू किया। राजा सिंह ने दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में एक फार्म हाउस बनाया है जिसका नाम है RB ऑर्गेनिक फार्म। इस फार्म में राजा सिंह मौसमी सब्जियों के साथ कड़कनाथ मुर्गी पालन भी करते हैं, जिसमें कड़कनाथ को जैविक आहार देकर पाला जाता है।
7: इस काम को पूरा ऑर्गेनिक तरीके से करते हैं। कड़कनाथ पालना हम बच्चे से लेके बड़े तक शुरू पालते हैं। एक बार कड़कनाथ के बच्चे को बड़ा होने में पूरे 5.5 से 6 महीने लगते हैं, तो 5.5 से 6 महीने में सारा गेम होता है आपका मुनाफा कमाने का, कॉस्ट कंट्रोल करने का। हम लोग कॉस्ट कैसे कंट्रोल करते हैं, जब जैसे बच्चा जब बड़ा होता है और जैसे ही पता लगता है कि मुर्गा मुर्गी कौन है, तो हम मुर्गी को अलग कर देते हैं और मुर्गी को अलग करके हम पूरा हरे चारे पे ले आते हैं, उसको पूरा ग्रीन वेजिटेबल्स देते हैं जो भी हम अपने फार्म पे ऑर्गेनिकली उगाते हैं, जैसे ब्रोकली के पत्ते, मूली के पत्ते, पालक। पालक तो इनके लिए एक तरह से संजीवनी बूटी का काम करते हैं, क्योंकि इसमें विटामिन्स होते हैं, विटामिन ई। और दूसरी चीज़, हम मुर्गों को खुला छोड़ देते हैं जिससे वो धूप में घूमते हैं, उनको विटामिन डी भी मिलता है जिससे ये सारे गुण इनके मीट में जाते हैं जिससे इनका मीट और गुणवाड़ी बनता है। प्लस हम लोग जो मुर्गियां होती है, मुर्गियों को भी अगर आपने हमारा शेड देखा होगा तो शेड को बाहर से भी ओपन बनाया हुआ है ताकि मुर्गियां बाहर निकल सके दिन में और धूप सेक सके और बाहर हरी सब्जियां खा सके, खुले में खा सके, और ये सारे गुण इनके अंडे में जाते हैं जिससे अंडा भी हेल्दी होता है।
6: कृषि के साथ साथ कड़कनाथ मुर्गी पालन कर रहे, खेती में हर तरह की सब्जियां लगी है। कड़कनाथ में भरपूर मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं। कड़कनाथ की प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है। करीब 3 साल से कड़कनाथ पालन कर रहे हैं। परिवार का हर सदस्य इस काम को आसानी से कर सकता है। कड़कनाथ को आहार में हरी पत्तेदार सब्जियां देते हैं। ये सब्जियां जैविक तरीके से उगाई जाती हैं। जैविक आहार देने से इनका विकास अच्छा होता है। इनके आवास का भी रखते हैं खास ख्याल। शेड ऐसा होना चाहिए जिसमें खुला क्षेत्र भी शामिल हो।
7: कड़कनाथ फार्मिंग में एक चीज का ध्यान देना बहुत जरूरी है, जब भी आप शेड बनाओ तो उसमें कोई कंजूसी ना करें, अंदर से उसमें पक्का फर्श डलवाएं और कंक्रीट का और ईंटों का अच्छा मजबूत शेड बनाएं, क्योंकि ये आपका लॉन्ग टर्म चलेगा। कम से कम ऐसा शेड बनाएं जो 10 से 20 साल चले आपका। प्लस शेड के साथ अपने फार्म में ओपन एरिया जरूर रखें जहां आपके बड़े बच्चे बड़े होते रहेंगे, उसके साथ ही साथ आप हरी सब्जियां उगाते रहे ताकि जैसे ही वो बच्चे बड़े हो आप उनको ये हरी सब्जियां 2 महीने के बाद हरी सब्जियां देना शुरू करें जिससे आपकी फीड की कॉस्ट कम आ जाए। साथ ही साथ आप अजोला भी कर सकते हैं। अजोला में प्योर प्रोटीन और विटामिन होते हैं जो मुर्गे बहुत ही चाव से खाते हैं और इनकी ग्रोथ अच्छी होती है, इनकी सेहत बनती है और इससे आपकी फिर से फीड की कॉस्ट कम आती है। तो जितनी फीड की कम कॉस्ट आएगी उतना ही ज्यादा आपका मुनाफा होगा, उतनी कम आपके ऊपर सरदर्दी रहेगी इनको बेचने की और फीड का खर्चा उठाने की।
6: राजा सिंह मानते हैं कि खेती या पशुपालन का काम शुरू करने से पहले प्रशिक्षण जरूर लेना चाहिए। प्रशिक्षण के दौरान हर छोटी लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी दी जाती है जिससे जोखिम कम होता है। करीब 3 साल से कड़कनाथ पालन कर रहे हैं राजा सिंह। अब खुद भी लोगों को प्रशिक्षण देने का काम कर रहे हैं जिससे युवा नौकरी के लिए परेशान ना होकर खुद का व्यवसाय शुरू कर सके।
7: युवाओं से तो मैं ये कहना चाहूंगा, अगर आप इसको स्टार्ट करते हैं पूरा डेडिकेशन के स्टार्ट करिए। खासकर जब ब्रूडिंग प्रोसेस होता है 21 दिन का कड़कनाथ को पालने का, उसमें पूरा ध्यान देना पड़ता है। 100% बच्चों का देखरेख करनी पड़ती है, वो कैसे इकट्ठा तो नहीं हो रहे कहीं एक जगह पे, क्या हरकतें कर रहे, ऑब्जर्व करनी पड़ती है। तो मेनली यही होता है। उसके बाद पूरा 6 महीने आपको पूरा ध्यान देना पड़ता है अगर करें 100% करें।
6: राजा सिंह ने खेती के साथ कड़कनाथ पालन करके लागत को न्यूनतम कर लिया है। इस तरह सही जानकारी लेकर किया गया काम सफलता की राह पर ले जाता है।
5: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया व्हील 90.8 FM।
0: आपनो रेडियो आपड़ी बातें। किसान साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया व्हील 90.8 FM झाबुआ की आवाज। मुर्गी पालन से संबंधित और भी महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले आइए लेते हैं छोटा सा ब्रेक और सुनते हैं एक सुंदर से प्यारे से भिली गीत को।

0: भी दुकान से पूछ कर अरविंद भाई के यहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं।
1: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM।
2: आपनो रेडियो आपड़ी बातें।
0: किसान साथियों, कड़कनाथ पालन में हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, इन सब जानकारियों को जानेंगे। उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और सुनते हैं एक सुंदर से प्यारे से भिली गीत को।

0: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM।
1: आप लोग रेडियो आपड़ी बातें। ब्रेक के बाद पुनः आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है खेती बाड़ी कार्यक्रम में। आइए जानते हैं अरविंद भाई से कड़कनाथ पालन में हमें किन किन चीजों को लेकर सचेत होना चाहिए, किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए, आइए सुनते हैं उन्हीं की जबानी। तो आपको इस ये बिजनेस आप कर रहे हो, आपको क्या ऐसा क्या?

0: क्या क्या चीजें हैं जो आपको मतलब ऐसा लगा कि हमको मतलब किसानों को सचेत रहना चाहिए इस चीज को करने से पहले, क्या क्या चीजें जरूरी होती है ये पालने के लिए, और क्या क्या किन किन चीजों की आवश्यकता होती है कि हम इसको अच्छे से पाले और अच्छे स्तर पे इसको ले जा सकें।
1: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM। आप लो रेडियो, आपड़ी बातें।
2: देखो मेरा ये सुझाव है कि जैसे 100 मुर्गे पाले पहले, अभी 100 मुर्गे पालने से अपने को अनुभव हो जाएगा
0: बिल्कुल
2: कि अपने को फायदा कितना हो रहा, घाटा कितना हो रहा,
0: बिल्कुल
2: कितने बिक रहे हैं,
0: बिल्कुल
2: है ना,
0: बिल्कुल
2: और कितना खा रहे हैं,
0: कितना खा रहे हैं,
2: वो सब अनुमान लग जाएगा।
0: हाँ।
2: तो उसके पहले अपने को ये फॉर्म बनाना पड़ेगा,
0: फार्म बनाना पड़ेगा
2: उसको,
0: बिल्कुल।
2: और थोड़ा ऊंचाई में रहना है चाहिए वो,
0: अच्छा ऊंचाई में होना चाहिए,
2: कम से कम 13-14 फीट।
0: बिल्कुल।
2: उससे क्या है कि गर्मी नहीं लगेगी उसको,
0: बिल्कुल बिल्कुल।
2: और फिर उसके पहले बनने के बाद,
0: हाँ,
2: फिर ये लकड़ी का भूसा रहता ना,
0: छुरी को
2: डाल देने के नीचे,
0: बिल्कुल।
2: और इसके बाद लाइट की व्यवस्था करनी पड़ेगी,
0: बिल्कुल इनको लाइट की जरूरत रहती है,
2: लाइट बहुत गर्मी उसको चाहिए,
0: अच्छा गर्मी ज्यादा चाहिए,
2: हाँ, और ठंडक में गर्मी और गर्मी में ठंडक होनी चाहिए, है ना, इस बात का ध्यान रखना है,
0: वातानुकूलित उनके हिसाब से रखने की जरूरत पड़ती है, ठीक है।
2: और क्या है कि इनको मतलब ज्यादा हवा में नहीं छोड़ने का,
0: अच्छा,
2: इससे क्या है कि वायरस आ जाए,
0: वायरस आने के डर,
2: और जो बाहर जो फार्म है वहाँ पे मतलब बाहरी व्यक्ति को भी अंदर नहीं जाने देने का,
0: अच्छा अच्छा अच्छा,
2: क्या है इससे अगर आए तो वो क्या है ये जो दरवाजा है ना, दरवाजे के पास में चूना लगा के रखना चाहिए,
0: अच्छा अच्छा अच्छा,
2: तो चूने से क्या है कि वो सारे जो कीटाणु रहते हैं ना,
0: अच्छा अच्छा,
2: चप्पल से है,
0: अच्छा सारे
2: वो उसको ऊर्जा के कारण वो नीचे गिर जाते हैं,
0: अच्छा,
2: और चूने में गिर जाते हैं, तो मर जाएंगे,
0: मर जाएंगे
2: ऐसा।
0: ओके, बहुत ही अच्छी बात बताई आपने अरविंद भाई हमको कि किस तरीके से हमें चूना सामने रख के किस तरीके से इनका बचाव कर सकते
2: हैं। और अपन एक ये भी बात है कि जैसे लाइट,
0: अच्छा लाइट,
2: लाइट को मतलब लगातार जलाना चाहिए उसको,
0: बिल्कुल लगातार उसको जलाते रहना चाहिए,
2: जैसे गर्मी में वो वाले बल्ब ले आओ,
0: बिल्कुल
2: वो छोटे वाले।
1: किसान भाइयों, अरविंद भाई ने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में बताया, कैसे हमें उन्हें खुले में नहीं छोड़ना चाहिए, कौन कौन सी दवाएं उन्हें देनी चाहिए, साथ ही हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे एक नए आदमी को फॉर्म में जाने से पहले हमें चूने का प्रयोग करना चाहिए, और किस प्रकार से लाइट का उपयोग होना चाहिए, कैसा वातावरण कड़कनाथ मुर्गियों के लिए अनुकूलित होता है, साथ ही अन्य जानकारियों को भी हमने जाना।
3: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM।
1: आप लो रेडियो, आपड़ी बातें। किसान साथियों, आप सुन रहे थे कड़कनाथ से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को, कैसे हमें सचेत रहना चाहिए, हमें किस समय पर किन किन चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए आदि जानकारियों को आपने जाना। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आइए सुनते हैं एक सुंदर सा प्यारा सा भीली गीत।

0: ब्रेक के बाद पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं किसान साथियों आपका। आप सुन रहे हैं खेती बाड़ी कार्यक्रम रेडियो टांट्याबिल 90.8 एफएम के साथ। किसान भाइयों, आप सुन रहे थे अरविंद भाई की कलीपुरा के सफल किसान की दास्तां। आइए सुनते हैं एक और सफल किसान की दास्तां।
1: अच्छा। मुनाफा कितना हुआ?
2: मुर्गी पालन का व्यवसाय मैंने इसलिए अपनाया, जैसे आप देख सकते हैं, आप हमारे ये पास ये जमीन है मेरे दादाजी की ली हुई, तो दादाजी को मुर्गी पालन का बहुत शौक था। पर जब दादाजी मुर्गियां लेके आते थे उनकी मृत्यु हो जाती थी किसी कारणवश, तो मैंने देखा कि हम लोग पढ़े लिखे क्यों ना इनको बचाया जाए, तो मैंने पोल्ट्री फार्मिंग का कोर्स किया। तब पता लगा हम क्या गलतियां कर रहे हैं और फिर वहां से शुरू किया। तो जब मैंने उसी कोर्स के दौरान मैंने कड़कनाथ ब्रीड के बारे में पढ़ा, तो ये बड़ी नई ब्रीड लगी, बड़ी एक्साइटिंग ब्रीड लगी। सो हम लोग जाके फिर शुरुआत में 5 मुर्गियां 2 मुर्गे लेके आए और एक छोटे से कमरे पालना शुरू किया, और करते करते वो 40 हो गई और उनको देख के लोग डिमांड करने लगे, तो डिमांड करते करते इसको एज अ व्यवसाय कर लिया एंड हम लोग मुनाफा कमाने लगे।
3: बड़े पैमाने पर मुर्गी उत्पादों का निर्यात करता है। 2020-21 के दौरान ही 2.5 लाख टन से ऊपर के उत्पाद दूसरे देशों को भेजे गए। इससे 435 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की आमदनी हुई। अगर आप भी खेती के साथ अतिरिक्त आमदनी चाहते हैं, तो मुर्गी पालन आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकता है। मुर्गी पालन न सिर्फ आसान है, बल्कि इसे शुरू करने के लिए बहुत ज्यादा पैसों की भी जरूरत नहीं होती।
4: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया व्हील 90.8 एफएम। आपनू रेडियो आपड़ी बातें।
3: मुर्गी पालन के लिए बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं पड़ती और ये जल्दी ही आमदनी भी देनी शुरू कर देता है, साथ ही लाभ भी अच्छा है और लगातार आमदनी होती रहती है। इस व्यवसाय के लिए जगह भी बहुत कम चाहिए। अगर प्रशिक्षण लेकर काम शुरू करेंगे तो नुकसान की संभावना कम रहेगी। हमारे देश में खुले आसमान के नीचे भी मुर्गी पालन का रिवाज है, लेकिन इस विधि में अंडा उत्पादन कम और पक्षियों के बीमार पड़ने की आशंका ज्यादा रहती है, इसलिए बेहतर है कि इन्हें आवास में ही पाला जाए। मुर्गी पालन के लिए आपको हैचरी से 1 दिन का चूजा लेना होगा और 20 हफ्तों तक उसे पालना होगा। उसके बाद मुर्गियां अंडे देना शुरू कर देती हैं और करीब 70 हफ्तों तक अंडे देती रहती हैं। आप चाहें तो बिछावन के ऊपर भी चूजों को रख सकते हैं और चाहें तो पिंजरों में भी पाल सकते हैं। संगठित क्षेत्र में बड़े किसान 10,000 तक मुर्गियां पालते हैं, जबकि अगर आप छोटे स्तर पर काम करना चाहते हैं तो 1,000 चूजों से भी शुरू कर सकते हैं। अच्छे मुनाफे के लिए 4 किस्में प्रमुख हैं। इनके नाम हैं बैबकॉक, हाईलाइन, बोवंस और लोमैन। बैबकॉक की 80-85% किस्में भारत में पाई जाती हैं।
5: ने एक मुर्गी से एक हैचिंग पीरियड बोलता है, लेइंग पीरियड बोलता है, उसी लेइंग पीरियड में कम से कम 200 से 250 अंडा निकाल सकते हैं। अगर 200 से 250 अंडा एक मुर्गी निकालते हैं तो हमने ये देखा गया है जो 200 मुर्गी से कम सालाना 4 लाख से 5 लाख रुपया उनकी किसान की आमदनी होती है। तो अगर 4 लाख से 5 लाख रुपया साल में आमदनी होती है तो लगभग आप देख लीजिए उनसे कितना महीने में कितना अंडा आ रहा है। और ये जो आमदनी होती है ये रोज का आमदनी है।
3: कौन सी किस्म आपको चुननी है ये इस बात पर निर्भर करेगा कि आप किस उद्देश्य से मुर्गी पालन कर रहे हैं। अंडा उत्पादन के लिए अलग किस्में चुननी होंगी और मांस उत्पादन के लिए अलग। अंडे देने वाली मुर्गी 20 हफ्ते में ही आमदनी देना शुरू कर देती है। 20 हफ्तों तक करीब 200 रुपए प्रति मुर्गी की लागत आएगी। इसके बाद करीब 2.5 रुपए हर रोज का खर्च एक मुर्गी पर करना होगा। आप घर पर दाना तैयार करके लागत 20% तक घटा सकते हैं।
2: देखा जाए तो अभी हम बहुत अच्छे मुनाफे में है। हमारे पास जो अभी हम जैसे हमारा साइकिल कैसे चलती है वो है कि हम बच्चे पालते हैं, बच्चे में से जो मुर्गियां होती है मुर्गी हम रखते हैं अंडे की प्रोडक्शन के लिए और मुर्गा बेच देते हैं। मुर्गा तो जल्दी निकल जाता है, तो हम क्या करते हैं लोगों को, हम इसी बहाने इकोनॉमी बढ़ाने के लिए दूसरे लोगों से मुर्गियां खरीदते, मुर्गे खरीदते, मुर्गी हमारी खुद की रहती, मुर्गे खरीदते और हर महीने मुर्गा बेच देते। तो हम हर महीने पूरे हिंदुस्तान से कम 200 से 500 मुर्गे मंगा के बेचते रहते हैं पूरी दिल्ली NCR में। तो ऐसे हमारा मुनाफा भी बढ़ता रहता है, हमारी मुर्गी की प्रोडक्शन भी चलती रहती है और दूसरे किसान भाइयों की भी हम मदद कर देते हैं।
3: सर्दियों में अंडे की खपत ज्यादा होती है और इसकी कीमत भी बढ़ जाती है, इसलिए चूजे ऐसे समय पर खरीदें जिससे सर्दियों के दौरान आपको ज्यादा से ज्यादा अंडे मिल सकें।

0: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 एफएम।
1: आपनू रेडियो आपड़ी बातें। किसान साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी प्रकृति में हमेशा से बदलाव आते रहे हैं। मौसम के उतार चढ़ाव के कारण फसलों में और जीव जंतुओं में भी इसका प्रभाव देखा जा सकता है। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं कैसे हम भिन्न भिन्न परिस्थितियों में बदलते वातावरण में कैसे हम हमारे पशुओं को, हमारे चूजों को वातानुकूलित रख सकते हैं, किन किन बातों का ध्यान रखकर कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, आइए जानते हैं।
2: मुर्गी पालन के लिए आपको चूजे हैचरी से लेने होंगे। वहां से सिर्फ एक दिन के चूजे दिए जाते हैं। 6 हफ्तों तक इन्हें अलग आवास में रखेंगे। ये आवास चारों तरफ से बंद हो ताकि बाहर की हवा अंदर न जाने पाए। 6 हफ्ते बाद ग्रोअर स्टेज शुरू हो जाएगी। अब चूजों को दूसरे आवास में ले जाएंगे। याद रहे कि हर मुर्गी को 1 से 1.5 वर्ग फुट की जगह चाहिए। यानी अगर आप 1000 मुर्गियां पाल रहे हैं तो 1000 से 1500 वर्ग फुट के आवास

0: बरसात के मौसम में खिड़की के बाहर प्लास्टिक की शीट लगा दें, ताकि बारिश का पानी अंदर न जाने पाए। आवास में लकड़ी के बुरादे या धान की भूसी की बिछावन करनी होगी। ध्यान रहे, बिछावन को गीला होने पर तुरंत बाहर निकाल दें। गीला बिछावन मुर्गियों के साथ साथ इंसानों के लिए भी नुकसानदेह है। अंडों के लिए आवास में बक्से जरूर रखें। हर 10 अंडे देने वाली मुर्गियों के लिए एक बक्से की जरूरत होगी। मुर्गी इसी में जाकर अंडा देगी। मुर्गी की 3 स्टेज होती है, चूजे, ग्रोअर स्टेज और परिपक्व मुर्गी। तीनों के लिए अलग अलग तरह के दाने की जरूरत होती है। अंडे देने वाली मुर्गियों के दाने में कम से कम 17% प्रोटीन और 27 से 28% कैलोरी होनी चाहिए। साथ ही 3 से 4% कैल्शियम भी हो, वरना अंडों के छिलके बहुत पतले रह जाएंगे।
1: जो भी किसान भाई मुर्गी को पालेंगे उसको बायोसिक्योरिटी बोलते हैं, हाइजीन मेंटेन करके पाले। और मुर्गी के लिए सारे टीका उपलब्ध हैं, सारे के सारे मुर्गी को सब टीका लगा सकते हैं और वो सरकारी में भी उपलब्ध है और बाहर से भी खरीद सकते हैं। वो खरीद के सारे टीका लगा लीजिए। मान लीजिए आपकी छोटे उम्र से गांबोरो लगा लीजिए, रानीखेत लगा लीजिए, उसमें रानीखेत दो बार लगाते हैं, और उसमें हमने फाउल कॉलेरा लगा लीजिए, फाउल टाइफाइड लगा लीजिए, जो सारे बीमारी। और हमने जो किसान को बोलते हैं, आप देसी के साथ जो विदेशी वैरायटी का जो क्रॉस होता है उसको पालिए, तो उसके रोग प्रतिरोध क्षमता ज्यादा होती है।
0: मुर्गियों में आमतौर पर रानीखेत, ब्रुसेल संक्रामक रोग और मैरेक्स जैसी बीमारियां लग सकती हैं। कभी कभी फाउल पॉक्स भी लग जाती है। आजकल रेबिल इन्फ्लुएंजा की भी शिकायत मिलने लगी है। सभी बीमारियों के लिए टीके उपलब्ध हैं। ये टीके 2-3 बार लगाने होंगे। टीके सही वक्त पर लगवाएंगे तो बीमारी का खतरा नहीं होगा। वैसे हैचरी से मैरेक्स और रानीखेत का टीका लगाकर ही आता है। हाँ, कुछ हैचरी सिर्फ मैरेक्स का ही टीका लगाकर देती हैं। ऐसी स्थिति में रानीखेत का टीका 2 से 3 दिन बाद आपको अपने फार्म पर लगवाना होगा। विशेषज्ञों का कहना है कि एक अंडे पर 50 पैसे से 1 रुपए तक का फायदा मिलता है। इस हिसाब से 1000 मुर्गियों से हर महीने 20,000 रुपए तक कमाए जा सकते हैं। हाँ, आपको मार्केटिंग अच्छे से करनी होगी। के पालकों को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत मुर्गी पालकों को लोन भी दिया जा रहा है। इसके अलावा भी कई और कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। सरकार राष्ट्रीय पशुधन मिशन चला रही है। इसमें कुक्कुट पालन के लिए भी कई घटक शामिल किए गए हैं। खासकर ग्रामीण बैकयार्ड कुक्कुट विकास और नवाचार कुक्कुट उत्पादकता परियोजनाएं चल रही हैं। इन परियोजनाओं के जरिए मुर्गी का आवास, आहार, दवाई और जरूरी यंत्र उपलब्ध कराने में सरकार मदद कर रही है। इसके अलावा केंद्र सरकार पशुधन स्वास्थ्य और व्याधि नियंत्रण के अंतर्गत राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम कर रही है। इसके अंतर्गत अलग अलग बीमारियों के लिए टीकाकरण की व्यवस्था की गई है। इस काम के लिए जिला प्रयोगशालाओं को उन्नत बनाने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता दी जा रही है।
2: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया व्हील 90.8 FM।
3: आपनो रेडियो आपड़ी बातें।
4: किसान साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो टांटियाबिल 90.8 FM छावा की आवाज, खेती बाड़ी कार्यक्रम। किसान साथियों, आज आपने मुर्गी पालन को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियों को जाना। मुर्गी पालन में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, मुर्गियों में कौन कौन सी बीमारियां आती है, साथ ही हमें मुर्गियों को भिन्न भिन्न परिस्थितियों में कैसे उनका ध्यान रखना चाहिए, साथ ही हमें कौन कौन से टीके लगाने चाहिए, समय समय पर क्या खाना पानी देना चाहिए, महत्वपूर्ण जानकारियों को जाना। किसान साथियों, अगर आप कड़कनाथ मुर्गी लेना चाहते हैं या कड़कनाथ मुर्गियों के अंडे लेना चाहते हैं, तो आप कल्लीपुरा के अरविंद जी से संपर्क कर सकते हैं। उनका नंबर है 8770939905। किसान साथियों, आप उन्हें कॉल करके या फिर उनके घर जाकर भी उनसे संपर्क कर सकते हैं।
2: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया व्हील 90.8 FM।
3: आपनो रेडियो आपड़ी बातें।
4: दोस्तों, यहाँ पर

0: जिंदगी के रंग गीतों के संग प्रोग्राम में दोस्तों आपका स्वागत है। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे आपके जैसे सज्जनों और महिलाओं से, जिनकी बातें सुनकर, जिनसे बातचीत करके आपको बड़ा मजा आएगा और उन्हीं के पसंद के गीत भी हम इस प्रोग्राम में सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं जिंदगी के रंग गीतों के संग, जहां हम मिलते हैं उन लोगों से जिनकी जिंदगी खुद एक कहानी होती है। आज हमारे साथ हैं जयपुर की एक बहुत ही इंस्पायरिंग पर्सनालिटी। 73 इयर्स की उम्र में भी वो क्लासरूम में उतनी ही एनर्जी, उतने ही पैशन और उतने ही डेडिकेशन के साथ खड़ी रहने वाली एक एजुकेशनिस्ट हैं। फाउंडर प्रिंसिपल, मेंटर और हजारों बच्चों के फ्यूचर की एक आर्किटेक्ट, मिसेस नमिता गीर जी। तो चलिए जानते हैं नमिता जी को थोड़ा और सुनते हैं जिंदगी के रंग गीतों के संग नमिता गीर जी के साथ। तो नमिता गीर मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के जिंदगी के रंग गीतों के संग पर। कैसा महसूस कर रहे हैं आप?
2: थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद तनुषा जी, बहुत अच्छा लग रहा है आज आपके साथ होने से।
1: जी मैम, हम भी बहुत एक्साइटेड हैं और हम बहुत ग्रेटफुल हैं आपके लिए कि आप इतने एक्सपीरियंस से जो आप हेल करते हैं उसके बावजूद आपने हमें आपका समय दिया और आपने ये समय निकाला एसएन रेडियो के साथ इंटरव्यू के लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस टुडे।
2: थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स।
1: जी तो चलिए शुरू करते हैं मैम। सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि आपको ये जो 50 इयर्स का, लाइक 5 डेकेड्स का जो एक्सपीरियंस है एजुकेशन फील्ड में, इतनी जनरेशंस आपके अंडर ग्रो हुई हैं, उनको आपने देखा है आपके सामने, लाइक यू नो वो सीड सो हुआ, वो कैसे यू नो ब्रांच आउट हुआ, कैसे वो पहले शर्ब बना फिर वो ट्री में कन्वर्ट हुआ, तो इट मस्ट हैव बीन अ ब्यूटिफुल जर्नी टू विटनेस इतने सारे बच्चों की जर्नी ओवर द कोर्स ऑफ 50 लॉन्ग ईयर्स। तो जब आप आज जब हम बात कर रहे हैं तो कभी एक मोमेंट आता है, आई एम श्योर ऐसे मोमेंट्स आते होंगे जब आप खुद के साथ बैठते होंगे और ये सोचते होंगे कि ये सफर किस तरह से शुरू हुआ था और कहाँ आपकी जर्नी शुरू हुई थी और आज आपको वो मोमेंट्स किस तरह से सुकून देते हैं, किस तरह की फीलिंग्स आपके अंदर आती हैं जब आप मुड़ के देखते हैं अपने इस ग्लोरियस सफर को।
2: जब मैंने ज्वाइन किया था, मुझे पैशन था शुरू से पढ़ाने का जी। बच्चे मुझे बहुत पसंद थे, फिर धीरे धीरे वो इतना ज्यादा लगाव हो गया बच्चों से कि फिर पीछे मुड़कर देखने की जरूरत ही ना पड़ी। बहुत वो मेरे एक अभिन्न अंग बन गए थे मेरे, मुझे बच्चों के अलावा कुछ समझ ही नहीं आता था। मैं सोचती थी, रात में सोती थी तभी भी मैं सोचती, अच्छा उनको और किस तरह से पढ़ाया जाए, किस तरह से उनके लिए चीज इजी बनाई जाए, कैसे बेटर हुए चीजें जो बच्चे समझे। तो जब पीछे मुड़कर देखती हूँ तो बहुत इस बात की खुशी होती है कि आज वो बच्चे इतने बड़े हो गए हैं, सब इतने अच्छे अच्छे मुकाम पर पहुंच गए हैं, बहुत सक्सेसफुल है लाइफ में। अब कभी कहीं बाहर जाती हूँ, कोई बच्चे मिल जाते हैं, पहुंच होते हैं, बोलते मैम आपने पहचाना, आप नमिता मैम है ना, तो इतना अच्छा लगता है। वो मेरे को लगता है, मुझे लगता है कि हाँ उन्होंने, वो मुझे भूले नहीं, तो कुछ तो कहीं मैंने कोई छाप छोड़ी होगी उनको, कहीं मैं समझ में आई होंगी। तो जब मैं उनका नाम लेती हूँ तो और ज्यादा वो सरप्राइज हो जाते हैं, बोलते मैम आपको हमारा नाम याद है, कहा अपने बच्चों को भूलती नहीं हो। और जब पेरेंट्स आके थैंक यू बोलते हैं, बोलते मैम आपकी बेसिक फाउंडेशन की वजह से आज हमारा बच्चा इस मुकाम पर पहुंचा है, तो ज्यादा खुशी और ज्यादा बेटर रिवॉर्ड मुझे लगता है और किसी फील्ड में हो ही नहीं सकता है। आज बच्चों के मतलब आज वो माता पिता बन गए और वो जब अपने बच्चों को मेरे यहाँ एडमिशन किए जाते हैं तो मुझे, मैंने इनके बच्चों को भी मतलब इनको भी पढ़ाया है, इनके बच्चों को, फिर वो इतने खुशी से अपने बच्चों को बताते हैं कि ये हमारी भी मैम थी, ये हमारी भी मैम है, तो बहुत खुशी मिलती है।
1: वाह,
3: किस तरह से ये चेंज शुरू होता है, कैसे एक टीचर एक कैटलिस्ट होता है इतने बड़े चेंज का। और एक्चुअली जनरेशंस की जनरेशंस आपने पढ़ाई होंगी, जैसे आपने बताया कि अब वो भी पेरेंट्स बन गए और उनके बच्चे भी आपके स्कूल में आते हैं। तो मैम, दिस इज सच एन अचीवमेंट एंड सल्यूट टू यू, सल्यूट टू योर जर्नी। इतनी खूबसूरत जर्नी के लिए आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। एंड वंस अगेन हम बहुत बहुत थैंकफुल हैं कि आज आपने हमें ज्वाइन किया और अपने एक्सपीरियंसेस साझा करने के लिए आप हमारे साथ तत्पर हैं आज के इस एपिसोड में। इसी एहसास के साथ हम सुनेंगे आज का हमारा पहला गीत, आज फिर जीने की तमन्ना है, फिल्म गाइड।

0: वेलकम बैक मेरे प्यारे श्रोताओं, वेलकम बैक नमिता मैम। आगे चलते हैं मैम, मैं आपसे जानना
1: हेलो
0: चाहूंगी। जी आगे चलते हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपने बहुत सारे फाउंडेशंस क्रिएट किए स्कूल्स के लिए, आपने उन्हें सिर्फ मैनेज नहीं किया, उन्हें शुरुआत से बिल्ड किया, लाइक बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह यू क्रिएटेड देम। तो जब आप एक स्कूल खड़ा करते हैं, जब आप उसके फाउंडिंग मेंबर्स होते हैं, आप उसकी फाउंडेशनल स्टोन रखते हैं, तो बहुत इमोशनल और बहुत यू नो फिजिकल लेवल पे चैलेंजेस आते होंगे। तो सबसे बड़ा इमोशनल स्ट्रगल क्या रहा आपके लिए, और सबसे बड़ा यू नो एक फिजिकल एक सर्कमस्टेंशियल जो स्ट्रगल था वो क्या रहा? आई एम श्योर बहुत सारे, अनलेस आप अपनी फैमिली के फर्स्ट जनरेशन टीचर हैं या आपकी फैमिली में यू नो देर हैव बीन टीचर्स इन योर पास्ट, दैट ऑल्सो इफ यू कैन एड्रेस दैट, वॉज इट अ लेगेसी जो आपने कैरी फॉरवर्ड करी, या आप फर्स्ट जनरेशन टीचर हैं अपनी फैमिली के, तो ये किस तरह से सफर बिल्ड हुआ, क्या स्ट्रगल्स थे इमोशनली एंड फिजिकली सर्कमस्टेंशियली, वो अगर हमारे साथ साझा करें।
1: मैं अपने फैमिली की फर्स्ट टीचर थी, और इनफैक्ट मैं जिस फैमिली को बिलोंग करती हूँ, इट वॉज अ वेरी ऑर्थोडॉक्स फैमिली, राजपूत फैमिली, एंड बहुत पर्दा सिस्टम और सब था। और ये सोचा जाता था कि हाँ ठीक है, पढ़ ली, स्कूल कर लिया, उसके बाद में तो शादी करनी है। बट मेरे फादर को मुझसे बहुत उम्मीदें थी। माई फादर वॉज अ वेरी फार साइटेड पर्सन, वो चाहते थे कि मैं बहुत पढ़ू, मैं कुछ करूँ अपना, उनको बहुत उम्मीद थी मुझसे। वो शुरू में किसी ने सोचा नहीं था कि हाँ इस तरह का भी मैं कुछ करूंगी। और 1988 में जब मैंने अपना पहला स्कूल खोला, तो बहुत डिफिकल्ट था उस वक्त। मीन्स सब मुझे डिस्करेज कर रहे थे कि लाइक जॉब कर रहे हो, फिक्स सैलरी आ रही है, व्हाई डू यू वांट टू ओपन योर ओन स्कूल, क्या आईडी स्कूल चलेगा। मुझे लगता था कि नहीं, जब हम मेहनत करते हैं, और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था कि जो मैं उनको दूंगी, मुझे मालूम है कि बच्चे बहुत इजीली सिलेक्ट होंगे। इट वॉज अ प्री स्कूल, तो उस वक्त सबका मन ये होता था कि हमारी डॉटर है तो एमजीडी में जाए, बेटा है सेंट जेवियर्स में जाए, एसएमएस में जाए, ये उन लोग का टारगेट होता था कि ये स्कूल में जाना है। तो मुझे लगता था जो मैं उनको दूंगी बच्चों को, तो डेफिनेटली मैं पीछे नहीं हट सकूंगी। मुझे मालूम था कि हाँ मुझे आगे ही जाऊंगी मैं,
0: राइट।
1: और फिजिकल चैलेंजेस की जैसे आपने बात की, तो मेरे मदर की हवेली में ही मैंने अपना फर्स्ट स्कूल खोला था। पुराने वो गोडाउन होते थे ग्राउंड फ्लोर पे, उनको सारा डन अप कराना, चूने का काम होता था, इजी था चूने वाले मिलना। मतलब ये सब तो बाद में सीमेंट और ये सब चीज चालू हो गई थी
0: बिल्कुल
1: टाइम पर, क्योंकि सब लोग डिस्करेज कर रहे थे, तो दे वांटेड टू सी कि मैं अकेली क्या कर सकती हूँ।
0: करेक्ट।
1: तो मैं मई जून की गर्मी में, जुलाई से मैंने स्टार्ट किया था 1988 में, और मैं दोपहर में जाकर के, सुबह जाके मजदूर ला रही हूँ, चूने वाले के पास जा रही हूँ, सीमेंट वाले के पास जा रही हूँ, इलेक्ट्रिशियंस को बार बार मैं फोन कर रही हूँ, कार्पेंटर से फर्नीचर की तैयारी करवा रही हूँ। तो ये सब चीजें बहुत आसान नहीं थी, बहुत डिफिकल्ट था। जब मन आप कोई चीज बना ले कि हाँ मुझे ये करना है, तो आई थिंक भगवान भी साथ देता है। और मैं इस चीज को बिलीव करती हूँ, जब हम कड़ी मेहनत करते हैं तो आपको टीथिंग प्रॉब्लम हर उसमें आती है, हर मतलब तो कोई भी आप चीज स्टार्ट करेंगे तो सबके लिए ही है ये बात, ना स्टैंड ट्रू फॉर ऑल, टीथिंग प्रॉब्लम होती ही है, और इनसे घबरा कर अगर हम बैठ जाएं तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। हार्डवर्क एंड डेडिकेशन आर अ पार्ट ऑफ इट। कुछ लोगों ने मुझे ये भी कहा कि क्यों, क्या गारंटी है। मैंने सबको फिर, क्योंकि जब बहुत अच्छा चला, मेरे हर बच्चे का एडमिशन जहाँ वो चाहते थे वो जाता था, तो दैट वाज लाइक यू नो सबको, मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ी कभी।
0: बिल्कुल, आपका काम बोलता था। जी
1: हाँ, पैशन होना चाहिए, जो भी काम करें उसके लिए पैशन होना चाहिए, बेसिकली सबसे बहुत जरूरी चीज है।
0: राइट राइट। और सब लोग सिर्फ एक एंड प्रोडक्ट देखते हैं, वो ग्लिटर देखते हैं, वो गोल्ड देखते हैं, बट उसके पीछे के जो स्ट्रगल्स हैं, जो उसके पीछे की मेहनत है और जो ग्राउंड वर्क है, जो लिटरली आपको एकदम निचोड़ के रख देता है, जो सिर्फ आपको पता है कि आप उसको कैसे गो थ्रू करते हैं, वो बहुत कम लोग देखते हैं। बट आई थिंक जैसे आपने कहा, डेडिकेशन, पैशन एंड कंसिस्टेंसी, कि मेरा ड्रीम है एंड आई हैव टू फुलफिल
1: बिल्कुल
0: इट। तो आई थिंक इट्स कमेंडेबल मैम आपकी जर्नी में। अगेन आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट, 50 लॉन्ग ईयर्स का एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन इट सेल्फ स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट यू एंड योर पर्सनैलिटी एंड योर डेडिकेशन। सो आगे चलते हैं मैम, आपने फाउंडेशनल लिटरेसी पे बहुत फोकस रखा है आपकी टीचिंग में, आपके एजुकेशन सिस्टम में, आपके लिए बहुत कोर एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है। तो किस हिसाब से आप जब एक 4 से 5 साल का बच्चा या उससे भी छोटा बच्चा जब आता है, तो उसकी पर्सनालिटी और उसके कॉन्फिडेंस को किस तरह से फाउंडेशनल लिटरेसी शेप कर सकती है, क्या फायदे होते हैं उसके, अगर आप थोड़ा सा एजुकेट करना चाहें तो?
1: तनुषा जी, वो 4-5 साल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों की जिंदगी में. उनके जो माइंड्स होते हैं, दे आर लाइक स्पॉन्ज. उसमें हम जितना उनको दे सकते हैं, हम लोग शायद दे ही नहीं पाते हैं उस उम्र में. दे आर केपेबल ऑफ लर्निंग 4 to 5 languages एट अ टाइम. इतना उनकी कैपेबिलिटी होती है, इतनी कैपेसिटी होती है. आज हर जगह स्कूल खुल गए हैं, है ना, पर इंग्लिश मीडियम स्कूल्स का, अगर जैसे पेरेंट्स का मन होता है कि हम हमारे बच्चे इंग्लिश में बात करें, बिकॉज दैट्स द नीड ऑफ द आवर,
0: करेक्ट,
1: इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज. बाकी हर लैंग्वेज इम्पोर्टेंट है, हिंदी क्योंकि हमारी मातृभाषा है, तो हिंदी पे भी मैंने बहुत फोकस किया कि हिंदी की मात्राएं गलत नहीं होनी चाहिए. तो मेरा कोई, ठीक है, जो स्कूल में सिलेबस एक प्रिस्क्राइब होता है, बट मैं खेलने के माध्यम से, थ्रू प्ले वे मेथड ढूंढी, मैं उनको पढ़ाया करती थी, है ना. बिकॉज जब बच्चे को अगर आप बुक लेकर के आप पढ़ाना चाह रहे हो, सपोज प्रेपोजिशन करा रहे हैं, तो कोई सोचेगा प्री स्कूल के बच्चे को प्रेपोजिशन कौन कर पाता है. वो वहीं पे हम नींव उनकी मजबूत कर रहे हैं, हम वहीं पे उनको फाउंडेशन ले कर रहे हैं. तो खेलने खेलने में ट्रायल्स रख देते थे, जंप अक्रॉस, सो दे यू नो विथ योर एक्शन आप बता रहे हो कि अक्रॉस, सो दे नो कि हाँ इधर से उस तरफ चले जाएंगे, तो दैट इज अक्रॉस.
0: हाउ अमेजिंग.
1: यू नो टायर लिया, टायर में से, अच्छा गो थ्रू दिस, टनल में से कम ऑन गो थ्रू दिस, तो उनको थ्रू, फिर ये वाली जो प्लेसमेंट है, पोजिशन है, ये पता होनी बहुत जरूरी है. सो इस तरह से खेल खेल में उन्होंने बहुत, और फिर जब सीखते हैं खुद करके, तो वो कभी भूलते नहीं है. हाँ, रोट लर्निंग नहीं हुई है उनकी, उनको याद करवाने की जरूरत नहीं पड़ी है. एक प्रिस्क्राइब्ड कोर्स करवाना इज नॉट द क्राइटेरिया. बच्चों के लेवल पर जाकर उन्हें सिखाना पड़ता है. हर बच्चा डिफरेंट है. हाँ, वी नीड टू मेक देम अंडरस्टैंड थिंग्स इन डिफरेंट वेज, वेरिड वेज, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो. और सबसे इम्पोर्टेंट वो ही है.
0: जी, और उसके लिए खुद को कितना प्रिपेयर होना पड़ता है, खुद के पास इतने सारे मेथड्स होने पड़ेंगे डिवाइस करने के लिए, कितना दिमाग खुलना पड़ेगा और कितनी मेहनत बिहाइंड द सीन्स करनी पड़ेगी टू एक्चुअली कम अप विद दीज नोवस मेथड्स, जैसे कि आपने बताया कि अक्रॉस समझाने के लिए, प्रेपोजिशन समझाने के लिए, वो बच्चा शायद कभी नहीं भूलेगा अगर वो टायर से अक्रॉस और थ्रू का कॉन्सेप्ट समझ जाए, जो बहुत बहुत सारे लोग गलती करते हैं आज भी, जिनकी इंग्लिश अदरवाइज शायद बहुत अच्छी हो, बट देन प्रेपोजिशन रॉन्ग होते हैं हमारे. तो ये जो नुआंस्ड अंडरस्टैंडिंग है ऑफ थिंग्स, इट स्पीक्स वॉल्यूम्स ऑफ द एक्सपीरियंस जो आपके पास है मैम. और अगर कोई मेथड, अगर आप कुछ नोवस मेथड हमारे साथ साझा करना चाहें, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे ये कॉन्वर्जेशन, सो इफ वी कैन जस्ट एक्सटेंड दिस आंसर थोड़ा सा.
1: श्योर, हम लोग फील्ड ट्रिप्स पे लेके जाते हैं बच्चों को. तो अब जैसे पार्क लेके जाते हैं, पेरेंट्स को जनरली लगता है कि नहीं पिकनिक पे लेके जा रहे हैं, इट्स नॉट अबाउट द पिकनिक. हम उनको लेके जाते हैं तो उनको वहां पे एक्सप्लोर करने देते हैं कि अच्छा पिकअप डिफरेंट काइंड ऑफ लीव्स, तो देखते हैं शेप सबका अलग है, साइज सबका अलग है ना, मोस्ट लीव्स आर ग्रीन. तो ये जब साइंस में आगे क्लास 3 में 2 में पढ़ते हैं, उससे पहले इनको सब आ गया प्री स्कूल में कि लीव्स कैन बी डिफरेंट शेप्स, दे कैन बी ऑफ डिफरेंट साइज, है ना. कौन गार्डन को लुक आफ्टर करता है, कौन पार्क को लुक आफ्टर कर रहा है, क्या इंसेक्ट्स है वहां पर, ट्री, हम बोलते हैं गो एंड हग द ट्री, यू नो मेक अ लाइक सर्कल अराउंड द ट्री, अराउंड आ गया उनको है ना, हाँ ट्री ट्रंक. तो उनको ट्री ट्रंक मतलब यू नो वोकैबुलरी बिल्ड करना होता है बच्चों की. तो हम कहीं भी जाते हैं पेरेंट्स को बताना चाहूंगी कि जब ये बच्चा जब से पैदा होता है और जब तक हम जिंदा हैं, हम कोई समय नहीं है सीखने का, हम पूरे समय सीखते हैं
0: बिल्कुल.
1: तो उसकी कोई लिमिट नहीं है. तो जैसे हम कार में जा रहे हैं बच्चों को बोलते हैं ओके देखो दिस इज अ बैनियन ट्री, बैनियन ट्री के प्रॉप रूट्स होते हैं. तो जब तक जब उनको देखते हैं तो अब बुक्स में पढ़ने से ये सब चीजें नहीं आती हैं,
0: नहीं आ सकती जी,
1: इतना अच्छे क्लियर मतलब क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता इतना.
0: बिल्कुल.
1: तो इस तरह से मेरे फील्ड ट्रिप्स भी मेरा बहुत एक यू नो बड़ा वो रहा है.
0: राइट,
1: ले जाने से उनको बहुत सीखने को मिलता है. तो जब उनके कोर्स में जब ये सब चीजें आती हैं तब तक उनको ऑलरेडी पता होती है वो चीजें.
0: तो फिजिकल वर्ल्ड में उसको फील कर चुके
1: हैं. राइट. एंड आई थिंक टू फोनिक्स, तो फोनिक्स बहुत जरूरी है बच्चों के लिए. ABCD करके वो हर स्पेलिंग बच्चा नहीं लर्न कर सकता, इट इज नॉट पॉसिबल. जितना साउंड से हम करा सकते हैं, साइट वर्ड्स होते हैं जिनका साउंड से नहीं रिलेशन है, तो वो हम बच्चे को खाली उतना सा ही लर्न करने का यू नो तो हम उनका बर्डन कम कर सकते हैं.
0: बिल्कुल बिल्कुल, कर सकते हैं. राइट,
1: हाँ जी. तो उससे क्या रीडिंग बहुत अच्छे से आती है. एंड व्हेन द चिल्ड्रन लिसन टू एनी लैंग्वेज, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे कोई और भाषा हो, जब वो सुनते हैं तो धीरे धीरे उनको समझ आने लगती है. जब समझ आएगी तो फिर वो बोलने की कोशिश करेंगे.
0: बिल्कुल.
1: व्हाट दे लैक इज वोकैबुलरी, तो हम वोकैबुलरी उनकी बिल्ड करते हैं. बच्चे को पानी पीना है, जनरली मदर्स बोलते हैं मम्मम. तो आप ये ऐसे वाले बेबी वर्ड्स अगर आप बच्चों को सिखा रहे हो तो आप बच्चों के लिए ठीक नहीं कर रहे हो.
0: बिल्कुल.
1: है ना, उनको बोलना चाहिए वाटर, वांट वाटर. हिंदी तो वो सीख ही रहे हैं, अपने माहौल से सीख ही रहे हैं, अपने
0: एनवायरमेंट. बिल्कुल.
1: आप कोई भी भाषा सिखाना चाह रहे हैं तो आप उसके वर्ड्स आप प्रोवाइड करेंगे बच्चों को.
0: करेक्ट.
1: जी हाँ. और आई थिंक रीडिंग पे सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए. अगर रीडिंग आ गई, समझ आ गया, तो लिखने में तो बच्चा कभी भी लिख लेगा.
0: बिल्कुल बिल्कुल, सोच ही डेवलप होगी रीडिंग से.
1: जी हाँ, वोकैबुलरी बिल्ड होएगी, सोच डेवलप होएगी. कितना आप जानोगे, वर्ल्ड को जानोगे, पूरी दुनिया जानोगे आप. एंड जब छोटे छोटे वर्ड इनको KG में, लोअर KG में सब सिखा लेते हैं, आई टेल द पेरेंट्स होर्डिंग्स वगैरह इनको पढ़ने दीजिए. जब जाते हैं लेट देम रीड, यू नो दे शुड बी एबल टू एसोसिएट जो पढ़ रहे हैं उसका क्या है, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट.
0: करेक्ट. और वो क्या वहाँ क्यों है, वो बिलबोर्ड क्यों है. करेक्ट.
1: राइट राइट
0: करेक्ट.
1: मैथ्स हम जब सिखाते हैं तो उनको बोलते हैं कि नहीं आप बाजार जाते हैं बच्चे को. तो ये ना टिप्स है पेरेंट्स के लिए कि अगर वो मनी उनको हैंडल करने दें, दे विल नो. अगर आप प्लस माइनस, अगर आप एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं जानोगे आपको तो कोई भी चीट कर लेगा.
0: करेक्ट करेक्ट.
1: इस तरह से
0: जी मैं कई बार ये सोचती हूँ, और बहुत हाल ही में मेरा कोई डिस्कशन भी हुआ था कि हम जब छोटे थे, लाइक आवर जनरेशन आई थिंक वाज द लास्ट जनरेशन जिनको घर से बाहर भेजा जाता था कि जाओ 1 किलो टमाटर लेके आओ, भाग के हम साइकिल पे जाते थे और अपनी शायद 1 रुपए की टॉफी के लालच में वो टमाटर लेके आते थे भरी दोपहरी में, आई मुझे याद है. और उसमें कोई इफ एंड बट नहीं होता था, बस जाओ ये कहा जाता था. तो वो जो प्रैक्टिकल एक्सचेंज होता था, चाहे वो सब्जी वाले से, चाहे वो वहां चार खड़े लोगों से, चाहे उनसे जो व्यवहार डेवलप होता है, एंड ऑफकोर्स जो मैथमेटिक्स आप लर्न, जिसकी आपने भी बात की, तो दीज आर सच स्मॉल थिंग्स जो हम अनोइंगली अनकॉन्शियसली जस्ट सेटल्स आपके अंदर और आप सीख जाते हैं. वो जो कॉन्सेप्ट हैं वो अब बिल्कुल यू नो एलियन होते जा रहे हैं, एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं. तो आई एम वेरी श्योर कि इस तरह के स्कूल्स और आपके स्कूल्स जैसे आपके प्री स्कूल्स जैसी जो लर्निंग है, मॉड्यूल्स हैं, उनसे बच्चे सच में वापस प्रैक्टिकल लेवल्स पे आ सकते हैं, वापस उन रूट लेवल प्रैक्टिसेस पे आ सकते हैं जो एक टाइम पे आम होती थी. वो दे वर अ वे ऑफ लिविंग. तो वेरी वेरी ब्यूटिफुल मैम. इसी एहसास के साथ हम सुनते हैं हमारा अगला गीत, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, फिल्म इम्तिहान.

0: वेलकम बैक मेरे प्यारे श्रोताओं, वेलकम बैक नमिता मैम.
1: जी
0: मैम, आज भी आई डोंट वांट टू टेक योर एज, बट मैं चाहती हूं कि मेरे लिसनर्स आपकी एज जाने और इंस्पायर हों कि इस एज में भी कोई इतना पैशनेट हो सकता है, कोई इतना डेडिकेटेड हो सकता है टुवर्ड्स देयर कॉज. तो एट दिस एज ऑल्सो व्हेन यू आर 73, आप क्लासरूम टीचिंग उतने ही पैशन से करती हैं और खुद क्लास में जाती हैं, पढ़ाती हैं. तो आपको ये एनर्जी और ये लव फॉर टीचिंग आता कहाँ से? व्हाट इज योर फ्यूल? आई जस्ट वांट टू नो, क्या आपको ट्रिगर करता है, क्या आपको फ्यूल करता है, क्या आपको लुक फॉरवर्ड एवरी डे करने के लिए इंस्पायर करता है, वो अगर आप साझा करना चाहें. क्योंकि हम बहुत सारे इस जनरेशन में बहुत सारे लोग हैं जो शायद 10 साल के अपने कॉर्पोरेट लाइफ में आफ्टर 10 ईयर्स दे गिव अप बिकॉज दे आर लाइक ब्रेन रॉट हो रहा है, या हम डाई आउट हो जाते हैं, हमारी एनर्जीज डाई आउट हो जाती हैं और वी फील बर्नड आउट. सो दिस पैशन, द काइंड ऑफ पैशन दैट यू गेट फॉर टीचिंग, आज भी वो कहाँ से आता है? व्हाट इज योर, यू नो, व्हाट इज योर सोर्स, इफ वी कैन टैप इन टू दैट सोर्स?
1: My students give me that energy. I love that age group, you know, the preschoolers. मुझे इतने, मैं उनको देख के मेरा चेहरा खिल जाता है. सब थकान, सब टेंशन अगर कोई होती है, हर चीज दूर हो जाती है. उस वक्त आपको सिर्फ बच्चे दिखते हैं और उन उनसे जो खुशी मिलती है वो बयान नहीं कर पा सकती हूँ. और किसी और चीज में मिल ही नहीं सकती है. When they come, they hug me, you know. ऐसा दूर दूर नहीं रखती हूँ मैं बच्चों को. आई यू नो दे कम दे हग मी, दे टेल मी मैम आई लव यू. चिल्ड्रन हु पास आउट लाइक यू नो हु ग्रेजुएट फ्रॉम माय क्लास एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्लास इन ग्रेड वन एंड ऑल, व्हेन दे कम मैम आई एम मिसिंग यू, आई सेड आई एम ऑलवेज हियर. सो लाइक यू नो जब उनको टाइम मिलता है बीच बीच में आकर के, मैम यू नो दे लाइक टू पीप इन माई क्लास, कैन वी कम एंड हग यू, मैम आई लव यू. संडे सैटरडे या कोई छुट्टियां आती हैं, कोई कोई बच्चे आके मुझे बोलते मैम वी मिस्ड यू, मैम आई मिस्ड यू. ये मेरे लिए बहुत टॉनिक का काम करते हैं और इससे बड़ा रिवॉर्ड कुछ हो ही नहीं सकता है. बिकॉज यू नो इतने प्यारी एज होती है ये, इतनी अच्छी एज होती है बहुत. हाँ, सो दिस लॉट ऑफ मोटिवेशन एनर्जी. जैसे पेरेंट्स जब आके बोलते हैं कि नहीं मैम हमें घर में कुछ नहीं कराना पड़ता, वो उसको ऑलरेडी आता है. जब स्कूल से आते हैं हम पूछते हैं तो उसको आता है. लगता है कि हाँ यू रियली नीड टू पुट इन मोर एफर्ट्स, और बच्चे के लिए और कितना हम और कर सकते हैं.
0: बिल्कुल. तो ये जो प्योरिटी है ये आपको भी यंग रखती है, आपको भी हमेशा फूल की तरह खिले रहने की एक इंस्पिरेशन देती है. बिकॉज आई थिंक चिल्ड्रन आर अ गार्डन ऑफ फ्लावर्स. तो मैम, कोई ऐसा इंस्टेंस, अगर कोई ऐसा वाकया किसी एक बच्चे के साथ, या कोई एक स्पेशल मोमेंट अगर अभी हमसे बात करते करते आपके जहन में आ रहा है जो आपके लिए बहुत स्पेशल चाइल्ड था, या कोई एक मोमेंट जो आपके साथ रह गया जो आज भी आप सोचते हैं तो यू नो इट जस्ट आपको मूव कर देता है, अगर कुछ आप साझा करना चाहें?
1: हाँ, एक बच्चा था, मैंने अपनी कैथरेक्ट का ऑपरेशन हुआ था, मेरी सर्जरी हुई थी.
0: हाँ जी.
1: तो मैं उन दिनों क्लास नहीं थी, बट वहां पर एक अपने रूम में थी मैं. एंड उन्होंने मेरे सन से पूछा, डॉटर से पूछा कि व्हाई इज मैम नॉट कमिंग, व्हाई इज मैम, वेयर इज मैम. मैंने कहा मैम इज जस्ट, उनकी सर्जरी हुई है, उनकी आंख का ऑपरेशन हुआ है. वो बच्चा घर जाकर के उसने अपने मम्मी को बोला मेरी मैम का ऑपरेशन हुआ है, वो तो ऑपरेशन में तो बहुत पैसे लगते हैं. हाँ, उसने अपना पिगी बैंक तोड़ा और नेक्स्ट डे वो पैसे, उसकी मदर ने आके मुझे बताया कि मैम ही कॉल्ड मी अप और बोला कि मेरे लिए ना फ्लावर्स लेके आना, मैम को फ्लावर्स देने हैं मुझे. जे वो अपना पिगी बैंक का जितना भी पैसा था वो ही ब्रॉट इट टू मी मैम.
0: इमेजिन.
1: तो वो चीजें मैं भूल ही नहीं सकती हूँ.
0: सच अ स्पेशल फीलिंग. कितने
1: मासूम,
0: बहुत ही खूबसूरत मैम, बहुत ही खूबसूरत. आगे चलते हैं. आप खुद एक एक्स एमजीडियन हैं, बहुत अच्छी स्कूल से आपकी स्कूलिंग हुई है मैम. तो आपको क्या लगता है कि स्कूलिंग और टीचर्स का जो अंदर इफेक्ट होता है हमारे हमारे कॉन्फिडेंस पे, हमारी वैल्यू पे, हमारी फाउंडेशन पे, वो कितना इम्पोर्टेंट होता है?

0: है, और इससे आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो पेरेंट्स हमें सुन रहे हैं आज, कि स्कूलिंग कितनी इम्पोर्टेंट है और कैसे वो उस स्कूलिंग से कॉम्प्रोमाइज ना करें अपने बच्चों के लिए। अगर कुछ मैसेज आप बताना चाहें और अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहें, बीइंग एन एक्स एमजीडियन।
1: हर स्कूल में कोई ना कोई जरूर ऐसी टीचर्स होती हैं जो आप इंस्पायर करती हैं और आपको मोटिवेट करती हैं कि हम उनके जैसे बने। वो कहीं ना कहीं हमारी इंस्पिरेशन बन जाती हैं। एंड पेरेंट्स को ये देखना चाहिए कि अगर टीचर उनके लिए कुछ बोल रही हैं, बच्चे को अगर कभी जरूरत होती है डांटने की भी, जब डिसिप्लिन जहाँ आता है, अगर हम डिसिप्लिन नहीं करेंगे, बिकॉज डिसिप्लिन एंड लव दे शुड गो हैंड इन हैंड,
0: एब्सोल्युटली
1: है ना। खाली प्यार प्यार करने से बच्चा, आप अगर सोचें कि बहुत अच्छा एक ह्यूमन बीइंग आप क्रिएट कर रहे हैं, नहीं।
0: बिल्कुल
1: डिसिप्लिन लाइफ में बहुत जरूरी है। टाइम से आना, टाइम से पढ़ना, हर चीज का एक समय होना चाहिए। तो अगर पेरेंट को टीचर कुछ बोल रही है तो उनको समझना चाहिए चाहिए कि हाँ, जो ये बता रही है वो एक्सपीरियंस से बता रही है।
0: करेक्ट
1: इट इज नॉट अबाउट मी, इट इज अबाउट ऑल द टीचर्स। आई मीन टीचर बता रही है उनको, आप घर में रह रहे हैं, आप इतना अच्छा शायद नहीं कर, क्योंकि उनका प्रोफेशन है, क्योंकि वो ज्यादा जानती हैं कि हाँ, कि क्या चीज आपके बच्चे के लिए हिट करे, क्या चीज बेटर है आपके बच्चे के लिए। मतलब छोटी छोटी चीजें अगर मैं बोलूं, दरवाजा, कभी पेरेंट्स दिखते में एक दरवाजा बच्चे के लिए खोल देते हैं, नहीं, हम हिंडर कर रहे हैं उनका ग्रोथ।
0: करेक्ट
1: बच्चे को अपने आप खोलना, हमें सिखाना चाहिए क्या करना चाहिए। और एक जो आजकल रोकते हैं पेरेंट्स के, नहीं, धूप में मत खिलाइए बच्चों को। हम, धूप से विटामिन डी मिलता है,
0: बिल्कुल
1: जितने डॉक्टर्स बोलते हैं विटामिन डी की कमी है, धूप में बिठाओ, विटामिन डी कैप्सूल दो, तो इट इज बेटर कि बच्चा धूप में खेले। हम लोग सब खेले हैं, आप भी खेले हैं, हम भी खेले हैं।
0: करेक्ट
1: धूप तो उतनी थी, गर्मी तो उतनी थी।
0: करेक्ट
1: जब मई जून में हम लोग नानी के घर जाते थे, कहीं जाते हैं, तो क्या हम घर में बैठे रहते थे एसी में, कूलर्स में? नहीं।
0: बिल्कुल नहीं, बिल्कुल
1: जहाँ खेत खलियान थे, लोग खेत खलियानों में भी जाते थे, सब करते हैं। तो
0: बिल्कुल
1: बच्चे को हमें स्ट्रांग बनाना है, हमें बच्चों को वीक नहीं बनाना है।
0: यस
1: ये
0: यस
1: हम पे डिपेंड करता है।
0: वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैम, वेरी इंपॉर्टेंट
1: तो
0: यस
1: बच्चे को बहुत इतना ज्यादा पैम्पर ना करा जाए कि
0: बिल्कुल
1: बच्चा आगे जाके तकलीफ बच्चे को ही मिलेगी।
0: करेक्ट करेक्ट आप तो आप थोड़ी उसके सर्कमस्टेंस में उसके साथ खड़े रहेंगे। जब वो एक्चुअल
1: बिल्कुल
0: धूप में जाएगा तो उसको वो धूप सहनी पड़ेगी, जैसे हर
1: बिल्कुल
0: इंसान को सहनी पड़ती है। जी
1: बिल्कुल। तो
0: बिल्कुल
1: खाली धूप का मतलब कई चीजें होती है, नहीं,
0: हाँ धूप
1: असेंबली
0: ऑफ यस
1: असेंबली
0: यस
1: नहीं
0: यस बिल्कुल
1: कर। तो हमें तो स्ट्रांग बनाना है। पेरेंट्स को यही मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि बच्चे को स्ट्रांग बनाइए,
0: बिल्कुल
1: वीक नहीं बनाइए कि हाँ ये नहीं करना चाहिए, ये खेलने दीजिए, मिट्टी में खेलने दीजिए, उस वजह से करने दीजिए। कभी कोई चीज गिर जाती है, दूध फैल गया बच्चे से, डांटने की जगह उस वक्त हो गया, वो चीज हो गई है
0: करेक्ट
1: ना, उसको खराब वो मत करिए, उसके मेमोरीज में के लिए खराब उसको वो मत करिए। उसको ठीक है, हो गया, चलो हम मिलकर के उसको साफ कर देते हैं।
0: करेक्ट
1: तो एक वो आएगा कि हाँ, कोई चीज ऐसे हो गया हम उसको। और हर हर इंसान गलती करता है,
0: करेक्ट
1: हम भी करते हैं एज टीचर्स,
0: बिल्कुल
1: पेरेंट्स भी करते हैं। तो बच्चे को ये भी सिखाना बहुत जरूरी है कि गलतियां होती हैं, बट दैट इज लाइफ, एवरीवन
0: बिल्कुल
1: मेक्स मिस्टेक्स,
0: बिल्कुल
1: पर वो मिस्टेक हम दोबारा ना करें, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए,
0: करेक्ट करेक्ट करेक्ट
1: राइट?
0: बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत आपने एग्जाम्पल दिया कि दूध गिर गया कोई बात नहीं, बट अब उसे ये सिखाएं कि अब इसको साफ हम मिलके करें, और कैसे अगर फ्यूचर में भी आपसे गलतियां होती हैं, चाहे लाइफ में चाहे ये छोटी मोटी गलतियां, तो गलती हो गई, अब हो गई, बट उसको ठीक कैसे किया जाए, उससे वापस खड़ा कैसे हुआ जाए, तो
1: एग्जैक्टली
0: वो सिखाना, और सिर्फ मॉली कॉडलिंग नहीं करना जो आजकल बहुत ही अपेरेंट है, बहुत रैम्पेंट है पेरेंटिंग में। आई होप जो पेरेंट्स हमें सुन रहे हैं वो इस बात की इम्पोर्टेंस समझें कि आपके चाइल्ड को रेजिलियंट बनाने की कितनी जरूरत है, और ये कितना एक फाउंडेशनल एक एक शख्सियत है एक बच्चे की बिल्डिंग अप में, जो आपको इंस्टिल सिर्फ आप ही कर सकते हैं, या तो टीचर कर सकती है या पेरेंट्स कर सकते हैं, नोबडी एल्स विल टीच यू दिस। तो बहुत जरूरी है मैम, बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉक्स हम आपसे कर रहे हैं और जान रहे हैं। आगे चलते हैं आपके अचीवमेंट्स की तरफ। आपने वुमेन आचार्य अवार्ड और दुबई में बेस्ट प्री स्कूल ऑफ द ईयर जैसे प्रेस्टिजियस अवार्ड आपको मिले हैं मैम, वो मोमेंट्स आपके लिए कैसे थे, इमोशनली किस तरह से उन्होंने आपको मूव किया, एंड हाउ प्राउड यू फील अबाउट दोज मोमेंट्स, बिकॉज इट्स श्योर हार्ड वर्क जिसने आपको वहां पे पहुंचाया है. तो ये किस तरह से आपको ये अवार्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी लगते हैं, अचीवमेंट्स लगते हैं, या मिक्स ऑफ बोथ?
1: बोथ
0: जी.
1: आपको बहुत खुशी होती है जब आपके काम को सराहा जाता है, आपके काम को की वैल्यू समझ के कोई अगर आपके अप्रिशिएट करता है. आई थिंक दैट्स ह्यूमन नेचर, सबको अच्छा लगता है. बट यू नो आपके लिए एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है. एक लगता है आपको कि ठीक है, अब इससे भी ज्यादा अच्छा हमें करना है. एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये. और जब पेरेंट्स आपके भरोसे बच्चे टीचर को भरोसे जब बच्चा छोड़ते हैं, टीचर की पूरी ड्यूटी होती है कि हर चीज वो अपने ऊपर लेके पूरी उसी के टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बच्चे का भविष्य को देखते हुए जो कर सकें. तो अवार्ड जब मिलता है तो रिकग्निशन है, ठीक है आपने किया, आपको मिला उसका रिवॉर्ड. पर सबसे जैसे मैंने पहले बताया, जब पेरेंट्स खुश होके जब बताते हैं अपने बच्चे के कि नहीं इट इज बिकॉज ऑफ यू, तो वो उससे बड़ा रिवॉर्ड नहीं हो सकता है. जब बच्चे आपको पहचान करके और वापस से आपको आके एंड यू नो दे वांट टू मीट यू, दे वांट टू यू नो कीप इन टच विथ यू बड़े होने के बाद में भी, दैट इज नो ये और बहुत बड़े रिवॉर्ड है.
0: प्राइसलेस.
1: तो ये ज्यादा प्रेशियस है. बट यस, जब आपका वर्क रिकग्नाइज किया जाता है, अप्रिशिएट किया जाता है, तो यू फील वेरी नाइस.
0: राइट राइट. वेरी लॉट ऑफ कंग्रेचुलेशन टू यू मैम जी. तो चलिए दोस्तों, इसी खूबसूरत एहसास के साथ, इन्हीं प्यारी बातों के बीच हम सुनेंगे हमारा अगला रेजिलियंट गीत, जिंदगी की ना टूटे लड़ी. क्रांति.

0: मैम, आपने बच्चों को इंग्लिश और हिंदी फ्लुएंटली बोलना सिखाया, पढ़ना सिखाया, उनका डिक्शन ठीक किया। तो अब आपके हिसाब से जब एक टीचर से सब्जेक्ट सिखाता है, विजिबली जब एक टीचर उस सब्जेक्ट के साथ साथ वैल्यूज ऑफ लाइफ सिखाता है, क्योंकि पहले जब हम बड़े हो रहे थे तो हमारे पास एक सब्जेक्ट होता था मॉरल साइंस, जिससे हम बहुत सारे एक्चुअल वैल्यूज लेसन वाइज सीखते थे और शायद कहीं ना कहीं कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली वो अब्सॉर्ब होते थे। आज के जमाने में कितना डिफरेंस है उसमें कि जब टीचर सिर्फ एक सब्जेक्ट लर्निंग करता है, सब्जेक्ट डिलीवर करता है बच्चे को, बट साथ में वो जो वैल्यू सिस्टम है रीइन्फोर्स करना, उसका खुद पे यकीन डेवलप करना, बच्चे का कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, उन सब पे जब एक टीचर काम करे तो उससे क्या फर्क पड़ता है, क्या चेंज कैटलाइज हो सकता है और कितना जरूरी है वो आज के जमाने में, जब हम एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे मॉरल साइंस एनी मोर, बट इट इज इम्पोर्टेंट नन द लेस आई थिंक। सो अगर आप इस पे
1: एब्सोल्युटली,
0: हमारे व्यूज दें। जी
1: वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करना सबसे इम्पोर्टेंट है, बिकॉज
0: जी
1: कॉन्फिडेंस आपको आगे लाइफ में बहुत वही हेल्प करेगा।
0: राइट
1: इंग्लिश हिंदी मतलब लैंग्वेजेस यहाँ पे फिर आकर के इतनी इम्पोर्टेंट नहीं रह जाएंगी, जो जितना आपका कॉन्फिडेंस आपका इम्पोर्टेंट रहता है। हर बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो, लीडरशिप क्वालिटी हो, तो टीचर शुड फोकस ऑन दीज थिंग्स डेफिनेटली।
0: राइट राइट
1: हाँ जी, और ये वैल्यूज की जब हम बात करते हैं, तो जब मॉरल साइंस पढ़ाया जाता है, मुझे लगता है कि टीचर को उसमें बुक से पढ़ाने की मॉरल साइंस की जरूरत नहीं है। रोज
0: राइट
1: बुक की जो हम चीजें होती हैं उसी में अगर हम रोज बताएं, टीचर्स के पास में बच्चा कोई काम हो गया खत्म, कोई नेक्स्ट पीरियड के लिए वेट करने, तो अगर 5 मिनट भी होते हैं, 2 मिनट भी होते हैं, हम उस वक्त क्यों नहीं उनसे अच्छी बातें कर सकते हैं, क्यों नहीं हम उनसे इन बारों बातें में इन चीजों के बारे में डिस्कस कर सकते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: ना हम जब उनको बोलते हैं कि हाँ कोई बच्चा सच बोल रहा है, बोले दैट इज वेरी गुड,
0: बिल्कुल
1: डजंट मैटर। और जब ये लोग जब डिक्टेशन वगैरह दिया जाता है, कुछ काम दिया जाता है, तो आई ऑलवेज टेल देम कि लाइक नहीं, चीटिंग नहीं करेंगे, डजंट मैटर इफ इट इज रॉन्ग, इट्स
0: करेक्ट
1: एब्सोल्युटली ओके,
0: करेक्ट
1: क्योंकि रॉन्ग होएगा तो हमें पता चलेगा कि ठीक है हमको ये नहीं आता है, हम उसको दोबारा लर्न करेंगे।
0: करेक्ट
1: पर चीटिंग, सो दीज आर स्मॉल स्मॉल थिंग्स, तो ये अगर हम यहीं से बिल्ड करेंगे कि नो चीटिंग इज रॉन्ग, है
0: राइट
1: ना, सच बोलना है, डजेंट मैटर क्या होएगा, आपको गुस्सा करेगा कोई, कोई बात नहीं है, हम क्योंकि हमने गलती की है तो हमें थोड़ा गुस्सा भी बेयर करना पड़ सकता है कभी,
0: राइट
1: बस इसमें हमें हाँ, तो वो चीज उनको बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर कॉन्फिडेंस होएगा तो आप लाइफ में सच भी बोलेंगे, राइट।
0: बिल्कुल
1: एंड हाँ, तो ये चीजें तो बहुत जरूरी है, बेझिझक अपनी बात कह सकें वो बहुत जरूरी है,
0: बिल्कुल अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकें।
1: पॉइंट ऑफ व्यू रख सकें अपना।
0: जी,
1: जी
0: बहुत ही सुंदर मैम। अब मैं हमारे आखिरी सवाल और आखिरी सेगमेंट की तरफ जाऊंगी, जहां ऑलरेडी आपने बहुत सारी सीख हमारे लिसनर्स के साथ साझा की है, बहुत सारी बातें हमने ऐसी की हैं जिनसे बहुत सारी चीजों का एक सार समझ आया है, एक तरीका समझ आया है, एक एक रास्ता आपने हमें दिखाया है। इसी के साथ अगर एंड में कोई प्रैक्टिकल मैसेज अगर आप हमारे लिसनर्स के लिए, जो अभी नए पेरेंट्स हैं या नए टीचर्स हैं जो इस फील्ड में कदम रख रहे हैं, उनके लिए
1: जी
0: अगर आप कोई मैसेज देना चाहें जिससे वो बच्चों को इमोशनली सिक्योर, कॉन्फिडेंट और काइंड चिल्ड्रन बना सकें, तो वो क्या
1: जी
0: होगा?
1: तो आज के पेरेंट्स को यही कहना चाहूंगी, टीचर्स को यही कहना चाहूंगी, स्पेशली पेरेंट्स को, अभी बच्चों को फोन और टीवी से दूर रखें, थोड़ा बच्चों पे ध्यान दें, फोन अपनी जगह नहीं ले सकते, वो उनकी जगह, पेरेंट्स की जगह नहीं ले सकते, ना ही एक्सपेंसिव टॉयज उनकी जगह ले सकते हैं, उनके साथ खेलिए, क्योंकि बचपन बार बार में नहीं आएगा, उनको कहानियां सुनाइए, स्टोरी बुक्स खरीद के दीजिए, टॉयज खरीदने की जगह, टैबलेट्स खरीदने की, क्लास 2 3 में मैम आई हैव गॉट अ टैबलेट, माई फादर्स गिव मी अ टैबलेट, नॉट रिक्वायर्ड, तो रॉन्ग थिंग्स को ब्लाइंडली एक्सेप्ट मत कीजिए, क्योंकि ये टाइम जो चला गया, इफ इट इज लॉस्ट इट विल नेवर कम बैक अगेन, प्यार की जगह प्यार दीजिए, बट एट द सेम टाइम लाइक आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, इतना मत पैम्पर कीजिए, क्योंकि सही गलत सब चीज को हम सही माने, है
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: ना, एंड डोंट से नेगेटिव थिंग्स टू द चिल्ड्रन, वेदर इट्स टीचर्स और पेरेंट्स, डोंट से नेगेटिव थिंग्स टू द चिल्ड्रन और क्रिटिसाइज देम, एंड स्पेशली इन फ्रंट ऑफ देम,
0: राइट
1: स्पेशली इन फ्रंट ऑफ देम,
0: राइट
1: अगर हम बार बार मैं बच्चे को बोलूंगी ये बेवकूफ है या वॉट एवर ना, वो बच्चे के दिमाग में बैठता जाएगा, ये बोलते नहीं मैम ये सुनता ही नहीं है, तो वो नहीं सुनेगा। आप जब बार बार मैं उसको बोलूंगी ये सुनता ही नहीं है, ये बड़ों को रिस्पेक्ट नहीं करता, ये नमस्ते नहीं करता है, आप करेंगे वो आपको देख करके जरूर फॉलो करेंगे, आपके बोलने से नहीं करेंगे, पर आपके जो आप जो करेंगे वो उसको डेफिनेटली फॉलो करेंगे वो।
0: Absolutely. बहुत कॉमनली मैं भी ये सुनती हूँ, ये सुनता ही नहीं है, तो हमेशा वंडर करती हूँ कि ये किस तरह की माँ है जो अपने बच्चे के सामने ये बोल रही कि मेरी सुनता नहीं है, तो फिर आप कर क्या रहे हैं एज अ पेरेंट, तो बहुत दुख होता है
1: उनको। एक्चुअली जो मैं देख रही हूँ बहुत टाइम्स बहुत समय से तो ये देख रही हूँ कि मदर्स चाहती हैं कि नहीं फादर का डर होए, क्यों? जब आपके सामने बच्चा कोई गलत काम कर रहा है तो आप अपने लेवल पे बात करिए, है ना, फादर अपने लेवल पे बात करेंगे, टीचर अगर को कुछ कहना है तो नहीं मैं टीचर का डर बेटा आज मैं तुम्हारे टीचर को बोल दूंगी, मैं स्कूल में बोल दूंगी, क्यों?
0: बिल्कुल,
1: आपके सामने गलत कर रहा है आप उसको चेक करिए, इट इज नॉट रॉन्ग एंड द चाइल्ड इज गोइंग टू रिस्पेक्ट यू। जब बड़ा हो जाएगा, जब समझ आ जाएगी, बच्चा जानेगा कि हाँ मेरे मदर ने मुझे चेक किया, मैं गलत था, मदर ने मुझे थप्पड़ मारा,
0: करेक्ट,
1: बट इट ऑल पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप,
0: करेक्ट, वरना गलत नहीं है,
1: गलत नहीं है अगर कोई चीज के लिए हमें बहुत जोर से डांटना पड़े, बच्चा रोए, ठीक है कोई बात नहीं है,
0: एब्सोल्युटली Absolutely. वो भी एक लर्निंग है, प्रोसेस है,
1: दैट इज ऑल्सो लर्निंग, बिल्कुल
0: राइट।
1: बट क्रिटिसाइज कभी भी ना करें बच्चे को, बच्चे के सामने तो कभी भी ना करें, अगर कोई प्रॉब्लम्स है टीचर और पेरेंट मिलकर के सुलझाएं, है ना, और बहुत जरूरी है कि टीचर से बराबर कॉन्टेक्ट रखें पेरेंट्स, ऐसे नहीं पेरेंट टीचर मीट में गए तो बस, वो नहीं, जब अगर कोई प्रॉब्लम है इमीडिएटली जाएं पेरेंट टीचर से बात करें, टीचर को कोई प्रॉब्लम है टीचर पेरेंट से बात करें, बिकॉज दोनों का मकसद तो एक ही है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: पेरेंट चाहते हैं मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, टीचर भी चाहती है मेरा बच्चा, दोनों के लिए बच्चा तो उनका अपना है,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: इसके लिए मेरा बच्चा है, टीचर के लिए भी मेरा बच्चा है, तो दोनों एक ही उस पर जब फोकस कर रहे हैं तो बच्चे को तो अच्छा होना ही है जब मिलकर के करेंगे।
0: बिल्कुल, और जब ये इतना क्लियर और यू नो स्मूथ कम्युनिकेशन रहेगा इंस्टेड ऑफ वन पीटीएम मीटिंग जैसे आपने बताया। जी
1: जी हाँ, मैं तो कभी भी कोई दिक्कत होती है साथ बात करें, और जब तीनों मिलकर के करते हैं उस चीज को, बच्चा पेरेंट एंड चाइल्ड टीचर एंड द पेरेंट, तो 100% द चाइल्ड इज गोइंग टू एक्सेल, द चाइल्ड इज गोइंग टू डू वंडर्स, गारंटीड मैं बोलती हूँ ये चीज।
0: राइट,
1: अगर तीनों मिलकर करेंगे हो ही नहीं सकता है कि बच्चा कमजोर हो जाए।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: एक करी कमजोर रहेगी इफेक्ट बच्चे पे आएगा।
0: राइट राइट, आपसे बात करके मुझे ऐसा लग रहा है कि काश मैं आपके बच्चों से मिल पाती, बिकॉज आई कैन नॉट इमेजिन हाउ अमेजिंग किड्स यू मस्ट हैव रेज्ड मैम, सच अ ब्यूटीफुल थॉट प्रोसेस, इतना इवॉल्व, इतना विजनरी थॉट प्रोसेस है आपका, तो वंस अगेन थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे साथ इतनी सटीक और इतनी गहरी बातें साझा करने के लिए। मैं आपकी हर बात से इत्तेफाक रखती हूँ एंड आई एको ऑल द थॉट्स। आई विश ये कॉन्वर्जेशन थोड़ी और चला सकती मैं और थोड़ी और बातें कर सकती, बिकॉज इट्स रियली इंटरेस्टिंग, बट देन समय बलवान है और समय के साथ हमें हमारा शो अब वाइंड अप करना पड़ेगा। तो थैंक यू सो मच नमिता मैम, अगर आपके कोई एंडिंग थॉट्स हैं तो, एंड कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन टू यू टू हैव दिस विजन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैम।
1: थैंक यू तनुषा जी, थैंक यू सब व्यूअर्स को, थैंक यू
0: जी,
1: थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी देयर, थैंक यू
0: जी जी। तो दोस्तों, नमिता जी से आज बात करके हमने ये एक्सपीरियंस किया कि रोशनी होती कैसी है, एक रोशनी जो दूसरों को इतना रास्ता दिखाए कि उनका रास्ता आसान हो जाए और जीवन बन जाए, जीवन बदल जाए। टीचर सिर्फ पढ़ाते नहीं हैं, वो जिंदगियां गढ़ते हैं। तो दोस्तों, मैं हूं आपकी आरजे आरजे तनुषा, आपके तरानों की हम सफर, मिलूंगी आपसे फिर से एक नए सफर के साथ, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सुनते रहिए

दोस्तों, एक नए दिन की शुरुआत के लिए जोशो खरोश से भरे हुए मैं और आप ये दिन शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। आइए, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में भी हम जानेंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जिया और दूसरों के लिए उन्होंने मिसालें कायम की। इन्हीं लोगों से प्रेरणा लेते हैं और ऐसे बहुत सारे गीत सुनते हैं जो हमें बस खुश कर देंगे, पूरे दिन के लिए तैयार कर देंगे, जोश से भर देंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को जोशो खरोश के साथ।

आइए दोस्तों एक मजेदार कहानी सुनाता हूं। एक था भिखारी। रेलवे में सफर करते हुए भीख मांगने के दौरान एक बार एक सूट बूट पहने हुए सेठ जी से उसकी मुलाकात हो गई। उसने सोचा कि ये व्यक्ति तो बहुत अमीर लगता है, इससे भीख मांगने पर बढ़िया पैसा मिल जाएगा। वो उस सेठ से भीख मांगने लगा। भिखारी को देखकर उस सेठ ने कहा, अरे यार तुम हमेशा मांगते ही हो, क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो? भिखारी बोला, साहब मैं तो भिखारी हूं, हमेशा लोगों से मांगता ही रहता हूं, मेरी इतनी औकात कहां कि किसी को कुछ दे पाऊं। सेठ बोला, देखो जब किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी हक नहीं है। मैं एक व्यापारी हूं और लेन देन में ही विश्वास रखता हूं भाई। अगर तुम्हारे पास मुझे कुछ देने के लिए हो तभी मैं तुमको बदले में कुछ दे पाऊंगा। तभी स्टेशन आ गया जहां पर उस सेठ को उतरना था। वो ट्रेन से उतरा और चला गया। इधर भिखारी सेठ की कही हुई बात के बारे में सोचता रहा। सेठ के द्वारा कही गई बात उस भिखारी के दिल में उतर गई। वो सोचने लगा कि शायद मुझे भीख में अधिक पैसा इसलिए नहीं मिलता क्योंकि मैं उसके बदले में किसी को कुछ दे तो पाता नहीं, लेकिन मैं तो भिखारी हूं, किसी को कुछ देने के लिए कुछ है ही नहीं मेरे पास। लेकिन कब तक मैं लोगों को बिना कुछ दिए मांगता ही रहूंगा, समझ नहीं आ रही बात। बहुत सोचने के बाद भिखारी ने निर्णय लिया कि चलो जो भी व्यक्ति उसे भीख देगा तो उसके बदले में वो भी उसको कुछ ना कुछ देगा जरूर। लेकिन अब उसके दिमाग में ये सवाल उठ गया कि वो खुद भिखारी है तो भीख के बदले में भला क्या दे देगा दूसरे को। ये बात सोचते हुए पूरा दिन गुजर गया लेकिन उसे अपने सवाल का जवाब नहीं मिला। दूसरे दिन जब स्टेशन के पास बैठा हुआ था वो, तभी उसकी नजर कुछ फूलों पर पड़ गई जो स्टेशन के आसपास के पौधों पर खिले हुए थे, जंगली फूल थे। उसने सोचा, अच्छा क्यों ना मैं लोगों को भीख के बदले कुछ फूल दे दिया करूं। तो उसको अपना यह विचार अच्छा लगा और उसने वहां से कुछ फूल तोड़ लिए। वो ट्रेन में भीख मांगने पहुंचा। जब भी कोई उसे भीख देता तो उसके बदले में वो भीख देने वाले को कुछ फूल दे देता। उन फूलों को लोग खुश होकर अपने पास रख लेते। अब भिखारी रोज फूल तोड़ता और भीख के बदले में उन फूलों को लोगों में बांट देता। कुछ ही दिन बीते, उसने महसूस किया कि अब उसे बहुत लोग भीख देने लगे हैं। वो स्टेशन के पास के सभी फूलों को तोड़ लाता था। जब तक उसके पास फूल रहते थे तब तक लोग उसे भीख देते ही रहते थे, लेकिन जब फूल बांटते बांटते खत्म हो गए तो उसे भीख भी नहीं मिलती थी। अब रोज ऐसा ही होने लगा। एक दिन जब वो भीख मांग रहा था तो उसने देखा कि वही सेठ ट्रेन में बैठे हैं, जिसकी वजह से उसे भीख के बदले फूल देने की प्रेरणा मिली थी। वो तुरंत उस व्यक्ति के पास पहुंच गया और भीख मांगते हुए बोला, सेठ जी आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ फूल हैं, आप मुझे भीख दीजिए, बदले में मैं आपको कुछ फूल दे दूंगा। सेठ ने उसे भीख के रूप में कुछ पैसे दिए और भिखारी ने कुछ फूल उन्हें दिए। इस सेठ को यह बात बड़ी पसंद आई। सेठ बोला, वाह क्या बात है, आज तुम भी

मेरी तरह एक व्यापारी बन गए। इतना कहकर फूल लेकर वो सेठ स्टेशन पर उतर गया। लेकिन उस सेठ द्वारा कही गई बात एक बार फिर से उस भिखारी के दिल में उतर गई। वो बार बार उस सेठ के द्वारा कही गई बात के बारे में सोचने लगा और बहुत खुश होने लगा। उसकी आंखें अब चमकने लगी। उसे लगने लगा कि अब उसके हाथ सफलता की वो चाबी लग गई है जिसके द्वारा वो अपने जीवन को बदल देगा। वो तुरंत ट्रेन से नीचे उतरा और उत्साहित होकर बहुत तेज आवाज में ऊपर आसमान की ओर देखकर बोला, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं तो एक व्यापारी हूं। मैं भी उस सेठ जैसा बन सकता हूं, मैं भी अमीर हो सकता हूं। लोगों ने उसे देखा तो सोचा कि शायद ये पागल हो गया है। अगले दिन से वो भिखारी उस स्टेशन पर फिर कभी नहीं दिखा। एक साल गुजर गया। उसी स्टेशन पर दो लोग सूट बूट पहने हुए यात्रा कर रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा तो उनमें से एक ने दूसरे को हाथ जोड़कर नमस्कार किया और कहा, सेठ जी, क्या आपने मुझे पहचाना? सेठ बोला, नहीं तो, शायद हम लोग पहली बार मिल रहे हैं। भिखारी बोला, सेठ जी, आप याद कीजिए, हम पहली बार नहीं बल्कि तीसरी बार मिल रहे हैं। सेठ बोला, भाई मुझे याद नहीं आ रहा, वैसे हम लोग दो बार कब मिले थे? अब पहला व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, हम पहले भी दो बार इसी ट्रेन में मिले थे। मैं वही भिखारी हूं जिसको आपने पहली मुलाकात में बताया कि मुझे जीवन में क्या करना चाहिए, और दूसरी मुलाकात में बताया कि मैं वास्तव में हूं कौन। नतीजा ये निकला कि आज मैं फूलों का एक बहुत बड़ा व्यापारी हूं और इसी व्यापार के काम से बस दूसरे शहर जा रहा हूं। आपने मुझे पहली मुलाकात में प्रकृति का नियम बताया जिसके अनुसार हमें तभी कुछ मिलता है जब हम कुछ देते हैं। लेन देन का यह नियम वास्तव में काम करता है। मैंने ये बहुत अच्छी तरह महसूस किया, लेकिन मैं खुद को हमेशा भिखारी ही समझता रहा। इससे ऊपर उठकर मैंने कभी सोचा ही नहीं था, और जब आपसे मेरी दूसरी मुलाकात हुई तब आपने मुझे बताया कि मैं एक व्यापारी बन चुका हूं। अब मैं समझ चुका था कि मैं वास्तव में एक भिखारी नहीं बल्कि व्यापारी बन चुका हूं। हमारे भारतीय संस्कृति में शायद इसीलिए खुद को जानने पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है। और समझने की बात यह है कि जब हम किसी को कुछ देते हैं तब भी हमें कुछ मिलता है। दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

जिंदगी की तपिश को सहन कीजिए जनाब। अक्सर वो पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में होती है। दोस्तों बने रहिए मेरे साथ आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

ऐसा लिखा गया है कि सुदामा जी जब भगवान के यहां से चले तो भगवान ने उन्हें कुछ नहीं दिया। सम्मान तो किया लेकिन दिया कुछ नहीं। अब दूसरा कोई होता तो नाराज हो जाता कि मैं आपके यहां अब कभी नहीं आऊंगा। आप किस तरह के दोस्त हो? मैं तो गरीब ब्राह्मण हूं और मुझे कुछ भी नहीं दिया। मगर जैसे भगवान हैं वैसे ही सुदामा भी भगवान हो गए, भले ही वो महल में नहीं रहते थे। ऐसा लिखा गया है कि ईश्वर को जानने वाला ईश्वर ही हो जाता है। सुदामा ब्रह्म को पहचानने वाले संत हैं, वो ब्रह्म के समान हो गए। उन्हें वही आनंद चित्त की अवस्था मिल गई, वही श्रद्धा की अवस्था मिल गई जो भगवान को मिली हुई है। तो सुदामा जी ने मांगा कुछ भी नहीं। आज का कोई होता तो हंगामा कर देता, खरी खोटी सुनाता, अनशन पर भी शायद बैठ जाता। सुदामा जी ने भी विचार तो किया कि भगवान ने कुछ दिया नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवान गरीब हो गए हों। वैसे भगवान तो कभी गरीब नहीं हो सकते ना। संपूर्णता में जिनको सब कुछ मिल गया हो उन्हें ही तो भगवान कहा जाता है। भग का मतलब होता है पूरा ऐश्वर्य, पूरी अमीरी, धर्म संपूर्ण, वैराग्य संपूर्ण, ज्ञान संपूर्ण, सभी कुछ तो होता है भग का मतलब। भगवान को गरीबी कैसे आएगी? वो तो समग्र धर्मशाली, धनशाली हैं। क्यों? ऐसा तो नहीं कि कंजूस हो गए भगवान? फिर सुदामा जी ने सोचा कि ऐसा क्यों सोचें? भगवान तो परम उदार भी हैं, कल्याणकारी गुणों के समुद्र हैं, प्रेम, लगाव और शक्ति के समुद्र हैं। भगवान कभी पाप तो करते नहीं। जितने दुर्भाव हमारे मन में आते हैं दोस्तों, उनका मूल कारण पाप ही है। चाहे गुस्सा हो, लालच हो, द्वेष हो, सबके मूल में बैठा है क्या? पाप। सुदामा जी ने समाधान निकाला। अद्भुत भगवान की कृपा है। भगवान ने हमारे परित्याग को, हमारे को जो दिया, रोम रोम से बाहर से भीतर तक हमारा समुदाय की सेवा के लिए जीवन दिया, उससे कहीं हम अलग ना हो जाएं, यही विचार किया होगा। कहीं हम भोगी ना हो जाएं, कहीं हम संतुष्ट ना हो जाएं, कहीं हमारा भजन छूट ना जाए, इसलिए भगवान ने नहीं दिया। कहीं हमारी विशिष्टता लुप्त ना हो जाए, गायब ना हो जाए, कहीं हम समाज के लिए जीना छोड़कर अपने लिए जीना शुरू कर दें, इसलिए भगवान ने हमें कोई भौतिक संसाधन नहीं दिया। अब ये विचारों की महान अवस्था है मित्रों, इससे बड़ा व्यवहार भला क्या होगा। सुदामा जी ने कितना बड़ा समाधान निकाल लिया। अब तो लोग कर्जा लेकर व्यक्तिगत संपत्ति बना लेते हैं, फिर दिवालिया घोषित करके गायब हो जाते हैं। बड़े बड़े शहरों में हजारों लोग पूर्ण संपत्तिवान होकर भी अपना दिवाला निकाल रहे हैं। ऐसे लोगों को कब और कैसे सुकून मिलेगा, कैसे शांति मिलेगी? कभी नहीं मिलेगी। दोस्तों बने रहिए मेरे साथ आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: भैया, यदि लोग गलतियों से सबक लेते हैं तो फिर दूसरी गर्लफ्रेंड क्यों बनाते हैं? दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

ख्वाहिश नहीं मुझे मशहूर होने की, आप मुझे पहचानते हो, बस इतना ही काफी है। अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरा जाना मुझे, जिसकी जितनी जरूरत थी उसने उतना ही पहचाना मुझे। जिंदगी का फलसफा भी कितना अजीब है, शामें कटती नहीं और साल गुजरते चले जा रहे हैं। एक अजीब सी दौड़ है ये जिंदगी, जीत जाओ तो कई अपने पीछे छूट जाते हैं और हार जाओ तो अपने ही पीछे छोड़ देते हैं। बैठ जाता हूं मिट्टी पे अक्सर, मुझे अपनी औकात अच्छी लगती है। मैंने समंदर से सीखा है जीने का तरीका, चुपचाप से बहना और अपनी मौज में रहना। ऐसा नहीं कि मुझमें कोई ऐब नहीं है, पर सच कहता हूं मुझमें कोई फरेब नहीं है। जल जाते हैं मेरे अंदाज से मेरे दुश्मन, जल जाते हैं मेरे अंदाज से मेरे दुश्मन। एक मुद्दत से मैंने न तो मोहब्बत बदली और न ही दोस्त बदले हैं। एक घड़ी खरीद कर हाथ पर क्या बांध ली, वक्त पीछे ही पड़ गया है मेरे। सोचा था घर बनाकर सुकून से बैठूंगा, पर घर की जरूरतों ने मुसाफिर बना डाला मुझे। सुकून की बात मत कर, बचपन वाला इतवार अब नहीं आता। जीवन की भागदौड़ में क्यों वक्त के साथ रंगत खो जाती है, हंसती खेलती जिंदगी भी आम हो जाती है। एक सवेरा था जब हंसकर उठते थे हम, और आज कई बार बिना मुस्कुराए ही शाम हो जाती है। कितने दूर निकल गए रिश्तों को निभाते निभाते, खुद को खो दिया हमने अपनों को पाते पाते। लोग कहते हैं हम मुस्कुराते बहुत हैं, लोग कहते हैं हम मुस्कुराते बहुत हैं, और हम थक गए दर्द छुपाते छुपाते। खुश हूं और सबको खुश रखता हूं, खुश हूं और सबको खुश रखता हूं। लापरवाह हूं खुद के लिए मगर सबकी परवाह करता हूं। मालूम है कोई मोल नहीं है मेरा फिर भी, मालूम है कोई मोल नहीं है मेरा फिर भी, कुछ अनमोल लोगों से रिश्ते रखता हूं, कुछ अनमोल लोगों से रिश्ते रखता हूं। दोस्तों बने रहिए मेरे साथ आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

मैं बचपन से ही अपने से बड़ी उम्र के लड़कों और लफंगों के साथ रहा। मैं महज 7 साल का ही तो था, लेकिन तकरीबन जवान हो चुके लड़कों से मेरी दोस्ती रही। उनके साथ ही क्रिकेट खेला, अखाड़ों में कुश्ती लड़ी, वर्जिश की। अपने उस्ताद के पैरों और पीठ पर सरसों का तेल मला, कुछ दाव लगाने सीखे और फिर उस्ताद के कहने पर पास के गांव में लगने वाले मेले में आयोजित दंगल में भाग लेने जाता था। उन दिनों 3 रंगों की लंगोट हुआ करती थी, लाल, सफेद और काली। उन 3 रंगों में से मैंने अपने लिए लाल रंग की लंगोट चुनी। लफंगों के साथ जंगल में खूब भटका। ज्यादातर दोपहरें पेड़ों पर गुजारी, कबूतरों के पीछे भागा, तीतर

इतर बटेर का पीछा किया, उन्हें कीटनाशक डीडीटी पाउडर खिलाकर मारा, फिर लकड़ी पर सेक के खाया। यही वो दिन थे जब मैंने बीड़ी पीना सीखा, कभी कभी सिगरेट, फिर धीमे धीमे गांव की अंधेरी गलियों में शराब पीना सीखा। देर रात तक गांव की अंधेरी गलियों में बैठकर मैं ये जानने की कोशिश करता था कि कैसे धुएं के छल्ले बनते हैं, बादलों का धुएं से क्या संबंध है। शायद यहीं से कविताओं ने मेरे भीतर जगह बनानी शुरू की होगी, लेकिन तब मैं जानता नहीं था कि कविता भी कोई चीज होती है। हालांकि अब भी मुझे नहीं पता कि कविता क्या होती है, लेकिन मैं उसे बार बार लिखकर समझने की कोशिश करता रहता हूं। मैं अब तक वो कविता नहीं लिख पाया हूं जिसका मुझे सबसे ज्यादा इंतजार है। खैर, मैं असल कहानी पर आता हूं। तो उन दिनों उस नाजुक उम्र में मैंने शराब, सिगरेट और कुश्ती जैसी सारी सख्त चीजें की। इनमें से बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो उस वक्त नहीं की जाना चाहिए थी, लेकिन उम्र हमेशा मुझे अपने से आगे की ओर ही धकेलती रही। मैं उन दिनों जंगल, घास, फूल, कांटे, गायें, बेल, तालाब, कुओं और फसलों की संगत में रहता था। मुझे लगता था एक दिन इनमें से ही कुछ बन जाऊंगा। मैं किसी दिन घास बन जाऊंगा और हवा के साथ रहूंगा। कभी लगता मैं कोई कुआं हो सकता हूं जिसका पानी खेतों में जाएगा। कई बार सोचता था कि हो सकता है मैं बड़ा होकर कोई फूल बन जाऊं जो किसी दिन किसी देवता के सर पर रखा जाऊं, या कोई सुंदर स्त्री के बालों के जूड़े में ठूंस दिया जाऊं। खुले आसमान के नीचे मैं अपने घर की टीन की चद्दरों पर सोए हुए इन्हीं सारी कल्पनाओं में खोया रहता था। कभी आसमान का तारा बन जाता तो कभी जंगल का कोई कांटा। फिर एक दिन मैंने अपने पुरखों से सुना कि मरे हुए लोगों का पेट भरने और उनकी प्यास बुझाने के लिए कौवे छतों पर आते हैं। दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

आइए दोस्तों एक मजेदार कहानी सुनाता हूं। एक समय की बात है, एक राजा हुआ करता था एक राज्य में, जैसे हमेशा होते हैं। उसका एक मंत्री था जो कि बड़ा समझदार था और नाम भी उसका था बुद्धिमान। ज्यादातर मंत्री इस तरह की कहानियों में समझदार ही होते हैं ना दोस्तों। तो एक दिन राजा ने अपने मंत्री को बुलाकर पूछा कि भाई जरा ये बात बताओ, ये भेड़िया धसान का मतलब क्या होता है। मंत्री थोड़ी देर तक तो सोचता रहा और फिर कहा, हुजूर मुझे 2 दिन का मोहलत मिले तो मैं इसका जवाब दे पाऊंगा आपको। राजा ने 2 दिन की मोहलत दे दी। मंत्री जो थे वो सुबह सुबह अगले दिन उठे, नहा धोकर तिलक लगाया और गांव के बाहर तालाब के किनारे चले गए। वहां कई सारे खच्चर घास खा रहे थे। मंत्री ने उनमें से एक की 3 बार प्रदक्षिणा की, यानी कि चक्कर लगाया, और उसका एक बाल नोच कर अपने कान पर रख लिया। तालाब के किनारे कुछ लोग जमा हो गए। एक ने पूछा, मंत्री महाराज ये क्या कर रहे हैं आप? तब मंत्री ने कहा, देखो जी ये खच्चर काशी जी की यात्रा करके आया है। पहले जन्म में कोई ऋषि मुनि रहा होगा, ये देखते नहीं इसकी आंखों में कैसी भक्ति टपक रही है। मंत्री ने जवाब दिया, बस फिर क्या था, एक एक करके सब लोग उसकी चक्कर लगाने लगे, प्रदक्षिणा करने लगे और उसका एक एक बाल नोच कर कानों पर लगाने लगे। गांव भर में सनसनी फैल गई। सभी लोग वही करने लगे जो मंत्री ने किया था। थोड़ी ही देर में उस खच्चर के सारे बाल नुच गए। वो बेचारा लहू लुहान हो गया और तड़पने लगा। इतने में राजा को भी ये खबर लग गई। वो भी वहां आ पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने भी खच्चर की 3 बार प्रदक्षिणा की, चक्कर लगाया और खोज ढूंढ कर एक बाल नोच लिया। बेचारा खच्चर मौत का मेहमान हो गया। इतने में खच्चर वाला आ गया दौड़ता हुआ और खच्चर को मरा पड़ा देखकर हाय तौबा मचाने लगा। वो राजा के पास अपनी शिकायत ले आया। दुहाई हो सरकार की, दुहाई हो, मैं तो बाल बच्चे वाला आदमी हूं, बड़ा गरीब हूं, किसी तरह इस खच्चर पर माल लादकर और उसके किराए के पैसों से पेट पालता था। अब खच्चर तो मर गया, अब इसका दाम कौन देगा? राजा ने मंत्री को बुलाकर पूछा, भाई क्या हो गया, ये क्या करें अब इसका? मंत्री ने कहा, महाराज आप भेड़िया धसान का मतलब जानना चाहते थे ना, देखिए यही है भेड़िया धसान। जो मैंने कर दिया सब आंख मूंद कर उसी को करने लग पड़े। अब तो आपने अपनी आंखों से देखा ना, कहिए समझ में आया भेड़िया धसान का मतलब? राजा मंत्री की बात सुनकर बड़ा ही खुश हुआ और बहुत शर्मिंदा भी हुआ। उसने खच्चर वाले को खच्चर का दाम दिया और रवाना किया। तो दोस्तों खामखा में किसी एक चीज को बिना समझे पीछे पीछे मत जाइए। दोस्तों बने रहिए मेरे साथ आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

सफर में धूप तो होगी, सफर में धूप तो होगी, जो तुम चल सको तो चलो। सभी हैं भीड़ में, जो तुम चल सको तो चलो। इधर उधर हैं कई मंजिलें, इधर उधर हैं कई मंजिलें, जो तुम चल सको तो चलो। बने बनाए हैं सांचे, जो तुम ढल सको हाँ तो चलो। सफर में धूप तो होगी, जो तुम चल सको तो चलो। किसी के वास्ते कहां बदलती है जिंदगी, जो तुम खुद को बदल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, जो तुम चल सको तो चलो। यही है जिंदगी, कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें, इन्हीं खिलौनों से बहल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, जो तुम चल सको तो चलो। कहीं नहीं कोई सूरज, कहीं नहीं कोई सूरज, धुआं धुआं है फिजा, खुद अपने आप से बाहर निकल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। यहां कोई किसी को नहीं देता रास्ता, जो मुझे गिरा कर चल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, जो तुम चल सको तो चलो। दोस्तों बने रहिए मेरे साथ, आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

तो दोस्तों, इस जोश को, इस उत्साह को, इस खुशी को बनाए रखिएगा पूरे दिन। कल सुबह हम लोग फिर मुलाकात करेंगे एक नए जोश के साथ, नए उत्साह के साथ जिंदगी को जीने के लिए। मैं आपका दोस्त हूँ समीर, कल मिलते हैं।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार है बस अभी पता चलता है।

दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम की अदाकारा हैं दिव्या भारती। दिव्या भारती जी का जन्म 25 फरवरी 1974 में हुआ था। ये हिंदी फिल्मों की ऐसी अभिनेत्री थीं जिनकी अभिनय विविधता ने उन्हें अपनी पीढ़ी की सबसे आकर्षक युवा अभिनेत्री होने का गौरव दिया। लीजिए पेश खिदमत है उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

मैं समीर बोल रहा हूं, आपका रेडियो दोस्त। बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों, 90 की दशक से अपने करियर की शुरुआत करने के बाद दिव्या ने कई बेहद सफल फिल्मों में अभिनय किया। हिंदी फिल्मों के अलावा उन्होंने दक्षिण भारतीय फिल्मों में भी अभिनय किया। लीजिए सुनते हैं उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

कैसे हैं दोस्तों, आप हैं आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। मनुष्य के शरीर के बारे में और मस्तिष्क के बारे में एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं दोस्तों। मनुष्य का मस्तिष्क, जो कि हमारा कंट्रोलर माना जाता है, जहां पर सारी पढ़ाई लिखाई अनुभव स्टोर होते हैं, आपको पता है वो किसी भी बात को सिर्फ पिक्चर्स में, छवियों में ही समझता है। मस्तिष्क के लिए शब्द कोई मायने नहीं रखते, सिर्फ छवियां, पिक्चर्स, फोटोज मायने रखती है। जब हम कहते हैं पेड़ तो मस्तिष्क एक पेड़ की छवि बनाता है। जब हम कहते हैं चिड़िया, हाथी, जंगल, जानवर, इंसान, तो मस्तिष्क सिर्फ छवियां बनाता है और उन्हीं को समझता है। इसलिए जब हम मोबाइल पर पिक्चर देखते हैं तो मस्तिष्क का काम तो हो गया ना, यानी कि मस्तिष्क चुपचाप बैठ जाता है, उसे छवि बनाने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि छवियां पहले से बनी बनाई हमें दिखाई देती हैं। लेकिन जब हम किसी चीज को सुनते हैं तो मस्तिष्क उन सुनी हुई चीजों पर छवियां बनाता है, यानी कि मस्तिष्क की कोशिकाएं यानी कि मसल्स काम करती है और हमारा दिमाग तेज होता जाता है। तो इसलिए दोस्तों रेडियो सुनते रहिए, क्योंकि मस्तिष्क उन सुनी हुई ध्वनियों पर, आवाजों पर छवि बनाता है और तंदुरुस्त रहता है। तो बने रहिए आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। 1992 से लेकर 1993 यानी कि सिर्फ एक साल में ही दिव्या भारती ने मात्र 19 साल की उम्र में 7 हिंदी फिल्में और 7 दक्षिण भारतीय फिल्में की। इतने कम समय में इतनी सारी फिल्मों करने का उन्हें ये उपलक्ष्य हमेशा दिया गया। लीजिए सुनिए उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

सुने सरसाए, सांप सुने सरसाए, साए साए सुरमा सा सा संग समाए, समय सबक समझाए, खोखा खोखा जी मेरा खोखा खोखा है। फांसी फंदा फुसकी फांके फुंगी फन फैलाए, फिरते फिरते फेरा फेरी फेरे

मैं समीर बोल रहा हूं, आपका रेडियो दोस्त। बने रहिए मेरे साथ। हालांकि दिव्या भारती को अपने पूरे करियर में कई परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने खुद को ढूंढ ही निकाला और बॉलीवुड में एक सफल मुकाम बनाया। लीजिए सुनते हैं उनकी फिल्म का ये गीत।

मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं समीर, आप मेरे साथ है ना?

देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर।

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

दोस्तों, आज के कलाकार प्रोग्राम की अदाकारा हैं काजोल देवगन। शादी से पहले इनका नाम काजोल मुखर्जी था। अजय देवगन से शादी के बाद काजोल देवगन हुआ। आइए सुनते हैं इन्हीं की फिल्म का ये गीत।

काजोल देवगन का जन्म 5 अगस्त 1974 को बॉम्बे में ही हुआ। इनकी माताजी हैं तनुजा, जो कि खुद एक बहुत सफल अभिनेत्री रहीं। आइए सुनते हैं काजोल की ही फिल्म का ये सुंदर सा गीत।

0: कैसे हैं दोस्तों, आप हैं आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। मनुष्य के शरीर के बारे में और मस्तिष्क के बारे में एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं दोस्तों। मनुष्य का मस्तिष्क, जो कि हमारा कंट्रोलर माना जाता है, जहां पर सारी पढ़ाई लिखाई अनुभव स्टोर होते हैं, आपको पता है वो किसी भी बात को सिर्फ पिक्चर्स में, छवियों में ही समझता है। मस्तिष्क के लिए शब्द कोई मायने नहीं रखते, सिर्फ छवियां, पिक्चर्स, फोटोज मायने रखती है। जब हम कहते हैं पेड़ तो मस्तिष्क एक पेड़ की छवि बनाता है। जब हम कहते हैं चिड़िया, हाथी, जंगल, जानवर, इंसान, तो मस्तिष्क सिर्फ छवियां बनाता है और उन्हीं को समझता है। इसलिए जब हम मोबाइल पर पिक्चर देखते हैं तो मस्तिष्क का काम तो हो गया ना, यानी कि मस्तिष्क चुपचाप बैठ जाता है, उसे छवि बनाने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि छवियां पहले से बनी बनाई हमें दिखाई देती हैं। लेकिन जब हम किसी चीज को सुनते हैं तो मस्तिष्क उन सुनी हुई चीजों पर छवियां बनाता है, यानी कि मस्तिष्क की कोशिकाएं यानी कि मसल्स काम करती है और हमारा दिमाग तेज होता जाता है। तो इसलिए दोस्तों रेडियो सुनते रहिए, क्योंकि मस्तिष्क उन सुनी हुई ध्वनियों पर, आवाजों पर छवि बनाता है और तंदुरुस्त रहता है। तो बने रहिए आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ।
1: पता है शेखर, इंसान को तकलीफ कब होती है? जब वो कोई सपना देखता है और वो पूरा नहीं होता। इसलिए मैंने सोच लिया है कि आज के बाद कोई सपना ही नहीं देखूंगी।
2: बस हार गई। अपनी आंखें बंद करो संजना। बंद आंखों से इंसान सिर्फ सपना ही नहीं, कभी कभी उस हकीकत को भी देख लेता है जिसे खुली आंखें कभी नहीं देख पाती। आंखें बंद करो संजना।

काजोल अपने आप को बहुत ही शरारती, बहुत ही जिद्दी और बहुत ही स्ट्रांग अपनी यंग एज में मानती हैं। वो मानती हैं कि उनके पेरेंट्स को उन पर बहुत नाज रहा और वो भी अपनी मां तनुजा की ही तरह काफी सफल अभिनेत्री रहीं। लीजिए सुनते हैं उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

1995 से 1998 के बीच में काजोल सबसे ज्यादा सफल अभिनेत्रियों में गिनी गईं। लीजिए सुनते हैं उन्हीं की फिल्म का एक और गीत।

मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूँ, समीर। आप मेरे साथ है ना? लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है काजोल की ही फिल्म का एक और गीत।

लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है बेहद खूबसूरत बेहद प्रतिभाशील अभिनेत्री काजोल देवगन की एक और फिल्म का गीत।

दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा बहुत ही खास प्रोग्राम जहां शब्दों में एहसास है और हर शेर में दिल की बात। आज की इस महफिल में पेश है कुछ खूबसूरत गजलें जो आपके दिल को छू जाएंगी। आपके साथ हैं आपकी ही मेजबान, आपकी ही रेडियो दोस्त आरती जी। तो आइए शुरू करते हैं गजलों और सुरों का ये प्यारा सफर।
1: नमस्कार, आदाब और एक बेहद हसीन और खूबसूरत शाम आप सबके नाम। मैं हूं आरती रॉय, 90.8 FM के सुरमई से आसमान पर आप सुन रहे हैं रेडियो SN और रेडियो तांतिया भील। और शुरू हो चुका है आपके दिलों की धड़कनों को छूने वाला सफर, अल्फाज से एहसास तक। दोस्तों, कभी कभी दिन भर की थकन के बाद जब हम अकेले बैठे होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई चीज अधूरी सी है। वो अधूरापन और कुछ नहीं बल्कि खुद से और दिलों के जज्बातों से मिलने का ना एक बहाना होता है। हम अक्सर दुनिया की भीड़ में इतना शोर सुनते हैं कि दिल की वो मासूम सी धीमी सी आवाज कहीं दब जाती है। आज की शाम हम उसी धीमी आवाज को सुनेंगे मौसीकी के सुरों में और बेहतरीन लफ्जों के साए में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन सिलसिला। दोस्तों, जरा गौर फरमाइए इन लफ्जों पर। आते ही एक तरहेदार ने दिल छीन लिया, आते ही एक तरहेदार ने, तरहेदार मतलब एक सजीले सलीकेदार, लाइक गॉर्जियस, यू नो। आते ही एक तरहेदार ने दिल छीन लिया, दिल रूबा बन के दिलदार ने दिल छीन लिया, बांकी चितवन के छिपे प्यार ने दिल छीन लिया, दे के धोखा किसी अय्यार ने दिल छीन लिया। अय्यार मीन्स जादूगर, छलिया। आंखों में जादू, बातों में टोना, आंखों में जादू, बातों में टोना, दिया कैसा चरखा सवेरे सवेरे। चरखा मीन्स घुमा दिया। दोस्तों, कुछ याद आया? मुझे तो बखूबी याद आया। बचपन में जब रेडियो सुना करती थी, रेडियो तो जब तब बजता ही रहता था। कभी किसी भाई का पसंदीदा प्रोग्राम आ रहा होता था तो कभी किसी बहन का। मैं घर में सबसे छोटी थी तो मैं सभी सुनती रहती थी। तब भी मैं जब ये सुन रही होती थी तो उस नन्ही सी जान को भी ये तब बहुत मन भाया। पंकज मलिक की आवाज में सुबह सुबह जब ये बजता था तो स्कूल के लिए तैयार होते होते भी मैं ठिठक कर सुनने लग जाती थी। ये कौन आज आया सवेरे सवेरे, कि दिल चौंक उठा सवेरे सवेरे। कुछ बोल दिल में नक्श हो जाते हैं, जैसे कहा रूप ने चांद है चौदवी का, कहा रूप ने चांद है च

मेरा नन्ना सा आशिक मिजाज दिल झूम ही उठता था, जैसे ये जहानत मुझे विरसे में मिली हो, कि कठिन अल्फाज भी मैं जोड़ तोड़ के समझ जाती थी। नहीं तो आज की किसी 4-5 साल की बच्ची को ये बात समझ में आए? तो सुनिए मेरे बचपन की एक याद, पंकज मलिक की खूबसूरत आवाज में। ये फिल्म 1940 की है दोस्तों, मैं इतनी पुरानी भी नहीं हूं। तो इस फिल्म का नाम था नर्तकी, जिसमें उन्होंने रोल भी किया और इसमें म्यूजिक भी दिया और गाया भी। इसे लिखा था आरजू लखनवी ने। ये उस जमाने की नामतरीन हिट फिल्मों में से एक थी। तो सुनिए फिर पंकज मलिक की आवाज में ये कौन आज आया सवेरे सवेरे, कि दिल चौंक उठा सवेरे सवेरे।

दोस्तों, आज सिलसिला कुछ अलग ही रौ में बह चला है। अगला नगमा भी किसी शाहकार से कम नहीं, जिसके बोल कुछ इस तरह से हैं। औरों को खुशी, मुझको फकत दर्द और रंजो गम। औरों को खुशी, मुझको फकत दर्द और रंजो गम। दुनिया को हंसी और मुझे रोना दिया है। क्या मैंने किया है, क्या मैंने किया है, क्यों मुझसे खफा है तू, क्या मैंने किया है। और बहुत मकबूल मिसरा, हिस्से में सबके आई हैं रंगीन बहारें, हिस्से में सबके आई हैं रंगीन बहारें। बदबख्तियां लेकिन मुझे शीशे में उतारे। पीते हैं लोग रोज शबे मुसर्रतों की। मैं हूं कि सदा खूने जिगर मैंने पिया है। क्या मैंने किया है, क्या मैंने किया है। कुछ याद आया, किस दर्द ने आवाज का लिबास पहना है। जब बात दर्द और सुरीलेपन की हो तो जहन में एक ही नाम गूंजता है, शहंशाह मौसीकी कुंदनलाल सहगल साहब। सहगल वो जादुई फनकार थे जिन्हें सब अपना गुरु मानते थे, चाहे रफी साहब हों, लता दी हों या किशोर कुमार। बिना किसी क्लासिकल तालीम के भी उनकी आवाज में वो कशिश थी जो सीधे रूह को छूती थी। साल 1944 में न्यू थिएटर्स की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था माय सिस्टर। इस फिल्म में सहगल साहब पर एक गाना फिल्माया गया जिसके बोल पंडित भूषण ने लिखे थे और जिसे धुनों से सजाया था महान संगीतकार पंकज मलिक जी ने। इस नगमे में टूटे हुए दिल की वो लाचारी है जो अपनी तकदीर लिखने वाले खुदा से भी सवाल करती है। सहगल साहब की मखमली लेकिन दमदार आवाज में गूंजता ये दर्द आज भी उतना ही पुरकशिश है। तो फिर चलिए बिना और देर किए सुनते हैं साल 1944 का ये अमर नगमा सहगल साहब की आवाज में। ए कातिबे तकदीर, मुझे इतना बता दे, क्यों मुझसे खफा है तू, क्या मैंने किया है, क्या मैंने किया है, क्या मैंने किया है, तू मुझसे खफा है, अरे क्या मैंने किया है। सिर्फ और सिर्फ आपके लिए।

दोस्तों एक और हीरा चुन कर लाई हूँ आपके लिए। आप भी सोचते होंगे कि मुझे ये क्या हो गया है, क्या वाकई? पर मुझे यकीन है कि आप जरूर सुन भी रहे हैं और लुत्फ भी उठा रहे हैं। तो मैं कह रही थी कि एक और हीरा। रुकिए, मैं उनकी मशहूर गजल का मिसरा सुनाती हूँ। फिर वही दानिस्ता ठोकर खाइए, फिर वही दानिस्ता मतलब जानबूझकर, फिर वही दानिस्ता ठोकर खाइए, फिर मेरी आगोश में आ जाइए, फिर मेरी आगोश में गिर जाइए। ये हवा सागर ये हल्की चांदनी, ये हवा सागर ये हल्की चांदनी, जी में आता है यहीं मर जाइए। मेरे प्यारे दोस्तों, ये मिसरे सागर निजामी की मशहूर गजल में से लिए गए हैं, जिसके बोल हैं,

और इसको गाया था, याद आया दोस्तों, मास्टर मदन ने, हिंदुस्तान म्यूजिक हिस्ट्री का वो अजीम सितारा जो सिर्फ 14 साल की उम्र में ही तमाम बुलंदियों को छूकर कहीं छिप गया। मास्टर मदन का जन्म 28 दिसंबर 1927 को पंजाब के जलंधर जिले के खानखाना गांव में हुआ था। उन्होंने महज 3.5 साल की उम्र में अपनी पहली पब्लिक परफॉर्मेंस शिमला में दी थी। जब आम बच्चे ठीक से बोलना भी नहीं सीखते, वो शास्त्रीय रागों के आलाप ले रहे थे। महज 8 साल की उम्र में वो ऑल इंडिया रेडियो के एक बेहद मकबूल और रेगुलर गायक बन चुके थे। बड़े बड़े दिग्गज जैसे उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब भी उनकी गायकी के कायल थे। अपनी छोटी सी जिंदगी में उनकी सिर्फ 8 रिकॉर्डिंग्स ही हैं। उनकी मकबूलियत से जलकर किसी ने उन्हें धोखे से कुछ मिलाकर दूध में पिला दिया था और 14 साल की उम्र में ये सितारा इसी आसमान से गायब हो गया था। तो आइए सुनते हैं ये अजीम शाहकार मास्टर मदन की आवाज में, यूं न रह रह कर हमें तरस आइए, आइए आइए आ जाइए।

दोस्तों, अब जब इस दौर की बात चल ही निकली है तो उस दौर में बहुत सी गुलुकारां भी थीं, जैसे बेगम अख्तर, जोहरा बाई अम्बाले वाली और कानन देवी, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो पहली सिंगिंग सुपरस्टार थीं। उनकी सुरीली और खनकती आवाज़ उस वक्त रेडियो पर सबसे ज़्यादा गूंजती थी। अगर हम फीमेल प्लेबैक सिंगर्स की बात करते हैं तो उसकी नींव रखने वाली कानन देवी ही थी। वो एक मकबूल अदाकारा और गुलुकारा थी। इसके अलावा उस दौर में CH आत्मा और केसी डे भी थे। केसी डे जो कि SD बर्मन के गुरु थे और मन्ना डे साहब के सगे चाचा थे। वे ब्लाइंड थे। लेकिन उनकी बुलंद और रूहानी आवाज़ में एक अजीब सी कशिश थी। उन्होंने पंकज मलिक और सहगल साहब के साथ कई फिल्मों में काम भी किया था। तो दोस्तों, आइए केसी डे की आवाज में उनकी गाई हुई ये पुकार सुनते हैं, जो फिल्म धूप छांव से ली गई है, जो कि 1935 में रिलीज हुई थी। पंडित सुदर्शन ने बोल लिखे और RC बोराल ने म्यूजिक दिया। ये नगमा उन्हीं पर ही पिक्चराइज भी है। तो आइए सुनते हैं केसी डे की आवाज में, मन की आंखें खोल बाबा, मन की आंखें खोल।

0: है, कितना प्यारा है।
1: गला कितना प्यारा है।
0: तुमने ऐसा गाना कभी सुना भाई?
1: और लीजिए।
0: कैसी बहुत भरी आवाज।
1: क्या दर्द भरी आवाज।
0: चलो फिर कल आएंगे।
1: और लीजिए।
2: मतलब की

दोस्तों, 1930 और 40 के दौर में एक और दमदार और भारी क्लासिकल आवाज थी, जोहराबाई अंबाले वाली की। उनकी तान और नजाकत ने रेडियो पर धूम मचा दी थी। उनकी आवाज में कुछ अलग किस्म की झनकार सी थी। आइए सुनते हैं उनकी बहुत मशहूर फिल्म रतन से लिया गया ये नगमा, जो कि 1944 में रिलीज हुई थी। इस नगमे को लिखा था डीएन मदहोक ने और इसके मौसिकार थे नौशाद साहब। ये गाने में वो अदाकारा भी थी और उनके साथ मशहूर हीरो करण दीवान थे। तो सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा नगमा जोहराबाई अंबाले वाली की आवाज में।

दोस्तों, एक और बड़े नामचीन गुलूकार हुए 1940 में, जिनका नाम था सीएच आत्मा। ये 1940 के दशक की बात हो रही है। हालांकि इनकी मकबूलियत 1940 के दशक के आखिर में हुई, जब 1947 में सहगल साहब का इंतकाल हुआ, तो देश ने सीएच आत्मा के रूप में सहगल की परछाई को पाया। क्योंकि सहगल साहब के जाने के बाद जिस गायक ने उनके दर्द और गायकी को की विरासत को जिंदा रखा, वे यही थे। सीएच आत्मा की एक मशहूर गजल है प्रीतम आन मिलो, जो कि सबसे मकबूल गैर फिल्मी गजल है, जिसके मौसेकार थे ओपी नैयर साहब और लिखा था सरोज मोहनी नैयर ने। दुनिया सुहानी रात रसीली, उस पर ये रुतमत वाली, ऐसे में कोई कैसे जिए जब सुनी हो दिल की था। गजल सुनिए। तुम बिन सोना जीवन मेरा प्रीत हुई बेरान, प्रीतम आन मिलो, प्रीतम आन मिलो। सीएच आत्मा की आवाज में सुनिए दोस्तों।

दोस्तों, 1940 के दशक की बात हो रही है, तो हम सुरैया की बात ना करें तो बात कुछ अधूरी सी रह जाएगी। उनके बारे में बहुत सी दिलचस्प बातें हैं, जैसे वो पहली सिंगिंग सुपरस्टार थी जिन्होंने प्लेबैक सिंगिंग के दौर में भी किसी और से अपनी फिल्मों में गाना नहीं गवाया। वो खुद ही स्क्रीन पर एक्टिंग करती और अपनी आवाज देती थी। फिर उन्होंने महज 16-17 साल की उम्र में उस जमाने के संगीतकार और गीतकार और बहुत मकबूल गुलूकार पंकज मलिक और शहनशाह संगीत KL सहगल के साथ शाहजहां और परवाना जैसी फिल्मों में गाने गाए। 1947 के पार्टीशन में जहां नूरजहां और खुर्शीद जैसी बड़ी सिंगर्स पाकिस्तान चली गई, तो सुरैया ने हिंदुस्तान में ही बस जाने का फैसला किया था। उनके गाए हुए तमाम गीतों और गज़लों में से मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मिर्ज़ा गालिब की लिखी वो अमर गज़ल, जिसे गाकर सुरैया ने इतिहास रच दिया और जिसे सुनने के बाद पंडित नेहरू ने उन्हें कॉम्प्लीमेंट दिया था कि सुरैया, तुमने तो मिर्ज़ा गालिब की रूह को ज़िंदा कर दिया। 1954 में आई इस फिल्म में उन्हें नेशनल अवार्ड से नवाजा गया था। तो प्रोग्राम की ये आखिरी गज़ल है, सुनते हैं। मैं बुलाता तो हूँ उसको मगर ऐ जज्बाए दिल, मैं बुलाता तो हूँ उसको मगर ऐ जज्बाए दिल, उस पे बन जाए कुछ ऐसी कि बिन आए ना बने। एक और मिसरा सुनिए। गैर फिरता है लिए यूं तेरे खत को कि अगर, गैर फिरता है लिए यूं तेरे खत को कि अगर, कोई पूछे कि ये क्या है तो छुपाए ना बने। इश्क पर जोर नहीं है, इश्क पर जोर नहीं है ये वो आतिश गालिब की लगाए ना लगे और बुझाए ना बने। दोस्तों, जब आप 1954 की फिल्म मिर्ज़ा गालिब की ये गज़ल सुनेंगे तो गौर कीजिएगा, सुरैया की आवाज़ में शास्त्रीय संगीत का कोई दिखावा नहीं। उनकी गायकी बिल्कुल सहज, मखमली और सीधे दिल में उतर जाने वाली है, इसलिए शायद पर्दे पर मोती बेगम का किरदार निभाते हुए जब उन्होंने इस गजल को गाया तो जैसे इतिहास रच दिया। आपकी नजर है ये मशहूर गजल।

आज समाज में बालिकाओं के प्रति पुरुष तो ठीक, महिलाएं भी परंपराओं का हवाला देकर अपनी फूल सी कोमल बच्चियों को अपनी जिंदगी को ठीक से जीने नहीं देती। हमारे समाज में अनेक बच्चियां रूढ़िवाद एवं सामाजिक प्राचीन परंपराओं के कारण माँ के कोख में ही खत्म कर दी जाती है। यदि जन्म लेती है तो परिवार पर बोझ बन जाती है, यह रूढ़िवादी परंपरा है। बच्चियां अपनी सिसकियां अपने हृदय में संजोकर अपने पिताजी की गोद में शायद यह जरूर अभ्यंतर से कहती होगी,

0: रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांटिया भील रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान आपु रोज करहूं वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा एत्रे हमरता रेजो टांटिया भील नो रेडियो स्टेशन 90.8 FM
1: भावना।

0: આપણ હંગલા ભાઈઓનો ઘણું ઘણું સ્વાગત કરીએ છે આપણા ઝાબુઆના સામુદાયિક રેડિયો સ્ટેશન રેડિયો ટંટાવેલ 90.8 એફએમ ઝાબુઆની આવાજ પર.
1: રેડિયો સ્ટેશન 90.8 એફએમ ટંટ્યા ભીલ રોજ સાંજે 6-8 વાગે આપણી સમસ્યા અને આપણો સમાધાન આપુ રોજ કરું વાતે ખેતીના બારામાં અને કમાઈના બારામાં એત્રે હમળતા રહેજો ટંટ્યા ભીલનો રેડિયો સ્ટેશન 90.8 એફએમ.
2: किसान साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, रेडियो टंट्या भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज आपके लिए खेती संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियों को अब तक आप तक पहुंचाता आया है. साथ ही रेडियो टंट्या भील 90.8 FM की एप्लीकेशन के माध्यम से भी काफी किसानों ने इस एप्लीकेशन को अपने फोन में डाउनलोड किया है और एग्रीकल्चर के विद्यार्थियों ने भी इस एप्लीकेशन को अपने फोन में डाउनलोड किया है. आइए सुनते हैं खुटाया स्कूल के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के 12वीं कक्षा के छात्र से.
3: मैं कक्षा 12वीं का छात्र हूं और मेरा सब्जेक्ट एग्रीकल्चर है और मैं रोज टंट्या भील रेडियो को सुनता हूं. उससे मुझे बहुत अच्छी जानकारी मिलती है और कृषि संबंधित बहुत अच्छी ही जानकारी मिलती है. मैं मेरे दोस्तों को भी प्रोत्साहित करता हूं कि वो इस रेडियो को सुने और कृषि संबंधित जानकारी प्राप्त करें.
4: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टंट्या भील 90.8 FM.
2: आपनो रेडियो आपड़ी बातें. एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है किसान साथियों आपका आपके अपने कार्यक्रम खेती बाड़ी में. किसान साथियों, जैसा कि रेडियो टंट्या भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज खेती संबंधी बहुत सी जानकारियों को अब तक आप तक पहुंचाता आया है, आज भी हम बात करने वाले हैं खेती संबंधी और कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को. तो आज हम आपसे मिलवाते हैं झाबुआ ब्लॉक के कलीपुरा गांव के रीता मेड़ा से, जो कि अपने गांव में अपने एक छोटे से घर में उन्होंने कड़कनाथ पालन की शुरुआत की और आजीविका को चलाने के लिए कड़कनाथ पालन शुरू किया. अभी उनके पास 300 से अधिक कड़कनाथ मुर्गियां हैं और अभी वो मुर्गियों के अंडों को बेचकर अच्छा मुनाफा भी कमाती है. आपको मिलवाते हैं रीता जी से. उससे पहले आइए सुनते हैं ये सुंदर सा प्यारा सा भीली गीत.
1: रेडियो स्टेशन 90.8 FM टंट्या भील रोज सांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान આપુ રોજ કરું વાતે ખેતીના બારામાં અને કમાઈના બારામાં એત્રે હમળતા રહેજો ટંટ્યા ભીલનો રેડિયો સ્ટેશન 90.8 FM.

0: ब्रेक के बाद बहुत बहुत स्वागत है किसान भाइयों। अभी आपने एक सुंदर से प्यारे से भीली गीत को सुना। आइए सुनते हैं अब रीता जी से, जो कि झावा ब्लॉक के अंतरवेला के पास स्थित कलीपुरा गांव की रहने वाली है। उन्होंने अपनी आजीविका को सशक्त बनाने के लिए कड़कनाथ पालन की शुरुआत की और अभी उनके पास 300 से अधिक कड़कनाथ है। और आइए जानते हैं कैसे वो उन मुर्गियों का देखभाल करती है, उनके लिए क्या खाना पानी देती है और क्या उनके लिए कौन कौन सी सावधानियां वो बरतती है। आइए सुनते हैं उन्हीं की जबानी।
1: कौन क्या
2: है? रीता।
1: अच्छा अच्छा, ये कड़कनाथ आप पालती हैं?
2: हाँ।
1: कैसे पाले जाते हैं?
2: मैं इसको सुबह में पानी देती हूँ।
1: हाँ।
2: और खाना देती हूँ।
1: हाँ।
2: और चावल भी बना के देती हूँ इसको।
1: अच्छा अच्छा, इसको कहाँ से भी इनके वो आए थे बच्चे?
2: बच्चे झाबुआ से आए।
1: झाबुआ से? कितने बच्चे आपने पाले थे शुरुआत?
2: मैंने शुरुआत में तो 50 पाले।
1: अब कितने हो गए?
2: अब तो उनके हो गए, ये तो बहुत सारे हो गए, गिन नहीं पाते ये। अच्छा। बड़े बड़े तो
1: कहाँ पे बेचते हैं इसको?
2: ये इधर टेम्पल लेने आया था।
1: अच्छा, कितने का जाता है?
2: 18,000 का तो ले गए थे वो।
1: अच्छा अच्छा,
2: 18,000 का।
0: रेडियो स्टेशन 90.8 FM टैंटिया भील, रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान। आपू रोज करहूं बातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा। एत्रे हमलता रेजो टांटिया भीलनो रेडियो स्टेशन, रेडियो स्टेशन 90.8 FM। किसान साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी वर्तमान सरकार हमारी सहूलियत के लिए अनेकों योजनाएं हमारे लिए लेकर आती रहती है और इसकी अधिकतर जानकारी कृषि विज्ञान केंद्र से मिलती है। हाँ जी, कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से किसान इन योजनाओं का लाभ ले सकता है। योजनाओं को लेकर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, उससे पहले आइए सुनते हैं इस छोटी सी रिपोर्ट को।
3: खेती से जुड़ी नई नई जानकारियों को किसानों तक पहुंचाने में कृषि विज्ञान केंद्र एक सेतु की भूमिका निभाते हैं। देश भर में करीब 721 कृषि विज्ञान केंद्र हैं, जो किसानों को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। खेती में उत्पादन व उत्पादकता बढ़े, साथ ही आगे आने वाले कल में खेती के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़े, ये बहुत जरूरी है। अन्यथा भविष्य में जो चुनौतियां आएंगी उससे निपटना मुश्किल होगा। इन समस्याओं के समाधान में केवीके अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं।
4: जैसे कि ये कहा जाता है कि पूरे भारत में भी हर एक जिले में कृषि विज्ञान केंद्र है, तो हमारे जो जिला है उधम सिंह नगर उत्तराखंड, उसका कृषि विज्ञान केंद्र यहाँ काशीपुर में स्थित है। जहाँ तक इनके उद्देश्यों की बात है, उसके उद्देश्य ये होते हैं कि जो भी तकनीकी जो शोध संस्थान द्वारा, विश्वविद्यालय द्वारा, ICAR के द्वारा जो विकसित की जाती है, उनको किसानों तक कैसे पहुँचाया जाए, ये हमारा मुख्य उद्देश्य होता है। इसके लिए हम कई तरीके अपनाते हैं। हम अपने यहाँ किसानों के प्रक्षेत्र पर भी और कृषि विज्ञान केंद्र पर भी ट्रेनिंग प्रोग्राम, यानी कि उनको प्रशिक्षण कार्यक्रम जो है उनका आयोजन करते हैं। यहाँ पर उनको ये बताया जाता है कि कृषि में जो जो नए नए अभिनव प्रयास हो रहे हैं वो आपके लिए कैसे फायदेमंद हैं। इसके अतिरिक्त हम कृषकों के प्रक्षेत्र पर जाकर प्रथम पंक्ति प्रदर्शन का आयोजन करते हैं। उनको ये बताया जाता है कि जो भी नवीनतम तकनीकी है वो कैसे आपके लिए फायदेमंद है, उन्हें हम वहाँ हम करके दिखाते हैं। हम इसमें कुछ कृषकों का चयन करते हैं और उन्हें करके बताते हैं शुरू से लेकर लास्ट तक कि कैसे बुआई करनी है और कैसे इसकी कटाई करनी है और कैसी ये तकनीक जो है उनके लिए फायदेमंद है। इसके अलावा हम प्रयास करते हैं कि जो हमारे प्रक्षेत्र पर जो भी हमारे पास लगभग 20 हेक्टेयर का फॉर्म है, इस फॉर्म पर हम लोग उन्नतशील प्रजातियों के जैसे गेहूं के, धान के, सब्जियों के और लेग्यूम्स के, दलहनी फसलों के, तिलहनी फसलों के बीज बनाते हैं और हम उनको उचित रेट पर किसानों को उपलब्ध कराते हैं। और इसके अतिरिक्त जो भी ये उन्नतशील हमारे पास सब्जियों की पौध होती है या उन्नतशील फल पौध होती है हमारी, वो भी हम किसानों को समय के अनुसार और उनकी ऐसे एज पर देयर नीड्स उनको हम किसानों को हम देते हैं। इसके लिए हमारे पास कई तरह से किसान भी आते हैं जो डिमांड भी करते हैं कि सर हमको फलानी वैरायटी का ये बीज चाहिए, तो वो हम बीज को हम अपने बनाकर किसानों को देते हैं। इस तरह से हम अपने जो उद्देश्य हैं उसका हम कार्य कर रहे हैं।
3: केवीके ने अपने आयामों में समय के साथ इजाफा किया है। आज किसान केवीके से न सिर्फ खेती के आधुनिक तरीके सीख रहे हैं बल्कि उन्नत बीजों का क्रय भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, केवीके अब किसानों को पौध भी उपलब्ध करा रहा है, क्योंकि केवीके का लक्ष्य है कृषि में समृद्ध दायरे को बढ़ाना।
0: रेडियो स्टेशन 90.8 FM टैंटिया भील, रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान। आपु रोज करहूं वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा, एत्रे हमलता रेजो टांटिया भिलनो रेडियो स्टेशन, रेडियो स्टेशन 90.8 FM। किसान भाइयों, आप सुन रहे हैं खेती बाड़ी कार्यक्रम। किसान साथियों, आइए शुरू करते हैं कड़कनाथ पालन को लेकर कुछ और विशेषज्ञों की राय। कैसे कड़कनाथ पालन हम कर सकते हैं, कहां से हमें लेना चाहिए और कड़कनाथ पालन में हमें कितना खर्चा लगता है और कड़कनाथ पालन के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, कड़कनाथ पालन कैसे कर सकते हैं, उनमें क्या खाना हमें देना चाहिए, क्या दवाई हमें उन्हें देना चाहिए और कैसे रखना चाहिए कड़कनाथ मुर्गी का ख्याल, जानेंगे इन सारी महत्वपूर्ण जानकारियों को।
5: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM।
0: आपनू रेडियो, आपनी बातें।
6: खेती के साथ पशुपालन हमारी परंपरा का हिस्सा रहा है, क्योंकि ये एक दूसरे के पूरक है। कृषि से मिलने वाले फसल अवशेषों का इस्तेमाल पशु आहार के रूप में किया जा सकता है, वहीं पशुओं से मिलने वाले अवशिष्ट का प्रयोग जैविक खाद के रूप में। यही वजह है कि किसान खेती के साथ साथ गाय, भैंस, बकरी या फिर मुर्गी पालन करके दोहरा लाभ कमा रहे हैं। खेती के साथ कड़कनाथ पालन कैसे किया जाए, आइए जानते हैं। काले पंखों से ढका, खूबसूरत काली आंखें और काले पंजों वाला ये मुर्गा कड़कनाथ, शोध में पाया गया है कि इसके सेवन से इंसान का शरीर मजबूत होता है, इसीलिए इसका नाम कड़कनाथ रखा गया है। इसके गुणों के कारण ही इसकी मांग साल भर बाजार में बनी रहती है। क्या है कड़कनाथ की खूबियां, आइए जानते हैं। कड़कनाथ में वसा की मात्रा सिर्फ 2.9% होती है। इसके 100 ग्राम मीट पे कोलेस्ट्रॉल महज 59 मिलीग्राम होता है। प्रोटीन की मात्रा 20-24% होती है। कड़कनाथ में लौह तत्व, कैल्शियम, विटामिन बी और विटामिन सी भी पाया जाता है। इसकी प्रतिरोधक क्षमता सामान्य मुर्गे की तुलना में कहीं ज्यादा होती है। इसके अंडे और मांस सामान्य मुर्गे की तुलना में ज्यादा दाम पर जाते हैं। कड़कनाथ की खूबियों से प्रभावित होकर दिल्ली के एक युवा किसान राजा सिंह ने इसका पालन शुरू किया। राजा सिंह ने दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में एक फार्म हाउस बनाया है, जिसका नाम है RB ऑर्गेनिक फार्म। इस फार्म में राजा सिंह मौसमी सब्जियों के साथ कड़कनाथ मुर्गी पालन भी करते हैं, जिसमें कड़कनाथ को जैविक आहार देकर पाला जाता है।
7: इस काम को पूरा ऑर्गेनिक तरीके से करते हैं। कड़कनाथ पालना हम बच्चे से लेके बड़े तक शुरू पालते हैं। एक बार कड़कनाथ के बच्चे को बड़ा होने में पूरे 5.5-6 महीने लगते हैं, तो 5.5-6 महीने में सारा गेम होता है आपका मुनाफा कमाने का, कॉस्ट कंट्रोल करने का। हम लोग कॉस्ट कैसे कंट्रोल करते हैं, जब जैसे बच्चा जब बड़ा होता है और जैसे ही पता लगता है कि मुर्गा मुर्गी कौन है, तो हम मुर्गी को अलग कर देते हैं और मुर्गी को अलग करके हम पूरा हरे चारे पे ले आते हैं, उसको पूरा ग्रीन वेजिटेबल्स देते हैं जो भी हम अपने फार्म पे ऑर्गेनिकली उगाते हैं, जैसे ब्रोकली के पत्ते, मूली के पत्ते, पालक। पालक तो इनके लिए एक तरह से संजीवनी बूटी का काम करते हैं, क्योंकि इसमें विटामिन होते हैं, विटामिन ई। और दूसरी चीज़, हम मुर्गों को खुला छोड़ देते हैं जिससे वो धूप में घूमते हैं, उनको विटामिन डी भी मिलता है, जिससे ये सारे गुण इनके मीट में जाते हैं जिससे इनका मीट और गुणवाड़ी बनता है। प्लस हम लोग जो मुर्गियां होती है, मुर्गियों को भी, अगर आपने हमारा शेड देखा होगा तो शेड को बाहर से भी ओपन बनाया हुआ है ताकि मुर्गियां बाहर निकल सके दिन में और धूप सेक सके और बाहर हरी सब्जियां खा सके, खुले में खा सके, और ये सारे गुण इनके अंडे में जाते हैं जिससे अंडा भी हेल्दी होता है।
6: कृषि के साथ साथ कड़कनाथ मुर्गी पालन कर रहे, खेती में हर तरह की सब्जियां लगी है। कड़कनाथ में भरपूर मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं। कड़कनाथ की प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है। करीब 3 साल से कड़कनाथ पालन कर रहे हैं। परिवार का हर सदस्य इस काम को आसानी से कर सकता है। कड़कनाथ को आहार में हरी पत्तेदार सब्जियां देते हैं। ये सब्जियां जैविक तरीके से उगाई जाती हैं। जैविक आहार देने से इनका विकास अच्छा होता है। इनके आवास का भी रखते हैं खास ख्याल। शेड ऐसा होना चाहिए जिसमें खुला क्षेत्र भी शामिल हो।
7: कड़कनाथ फार्मिंग में एक चीज का ध्यान देना बहुत जरूरी है, जब भी आप शेड बनाओ तो उसमें कोई कंजूसी ना करें, अंदर से उसमें पक्का फर्श डलवाएं और कंक्रीट का और ईंटों का अच्छा मजबूत शेड बनाएं, क्योंकि ये आपका लॉन्ग टर्म चलेगा। कम से कम ऐसा शेड बनाएं जो 10 से 20 साल चले आपका। प्लस शेड के साथ अपने फार्म में ओपन एरिया जरूर रखें, जहां आपके बड़े बच्चे बड़े होते रहेंगे उसके साथ ही साथ आप हरी सब्जियां उगाते रहे, ताकि जैसे ही वो बच्चे बड़े हो आप उनको ये हरी सब्जियां 2 महीने के बाद हरी सब्जियां देना शुरू करें, जिससे आपकी फीड की कॉस्ट कम आ जाए। साथ ही साथ आप अजोला भी कर सकते हैं। अजोला में प्योर प्रोटीन और विटामिन होते हैं जो मुर्गे बहुत ही चाव से खाते हैं और इनकी ग्रोथ अच्छी होती है, इनकी सेहत बनती है और इससे आपकी फिर से फीड की कॉस्ट कम आती है। तो जितनी फीड की कम कॉस्ट आएगी उतना ही आपका मुनाफा होगा, उतनी कम आपके ऊपर सरदर्दी रहेगी इनको बेचने की और फीड का खर्चा उठाने की।
6: राजा सिंह मानते हैं कि खेती या पशुपालन का काम शुरू करने से पहले प्रशिक्षण जरूर लेना चाहिए। प्रशिक्षण के दौरान हर छोटी लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी दी जाती है जिससे जोखिम कम होता है। करीब 3 साल से कड़कनाथ पालन कर रहे हैं राजा सिंह, अब खुद भी लोगों को प्रशिक्षण देने का काम कर रहे हैं, जिससे युवा नौकरी के लिए परेशान ना होकर खुद का व्यवसाय शुरू कर सके।
7: युवाओं से तो मैं ये कहना चाहूंगा, अगर आप इसको स्टार्ट करते हैं पूरा डेडिकेशन के स्टार्ट करिए, खासकर जब ब्रूडिंग प्रोसेस होता है 21 दिन का कड़कनाथ को पालने का, उसमें पूरा ध्यान देना पड़ता है, 100% बच्चों का देखरेख करनी पड़ती है, वो कैसे इकट्ठा तो नहीं हो रहे कहीं एक जगह पे, क्या हरकतें कर रहे, ऑब्जर्व करनी पड़ती है। तो मेनली यही होता है, उसके बाद पूरा 6 महीने आपको पूरा ध्यान देना पड़ता है, अगर करें 100% करें।
6: राजा सिंह ने खेती के साथ कड़कनाथ पालन करके लागत को न्यूनतम कर लिया है। इस तरह सही जानकारी लेकर किया गया काम सफलता की राह पर ले जाता है।
5: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया व्हील 90.8 FM।
0: आपनो रेडियो आपड़ी बातें। किसान साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया व्हील 90.8 FM झाबुआ की आवाज। मुर्गी पालन से संबंधित और भी महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर हम चर्चा करेंगे, उससे पहले आइए लेते हैं छोटा सा ब्रेक और सुनते हैं एक सुंदर से प्यारे से भिली गीत को।

0: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 एफएम।
1: आपनो रेडियो आपड़ी बातें। किसान साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस ब्रेक के बाद। आइए चर्चा करते हैं मुर्गी पालन से जुड़ी हुई कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर।
2: मुर्गी कारोबार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। 1951 के दौरान भारत में मुर्गियों की संख्या 7,35,00,000 थी, जो 2019 में बढ़कर 85 करोड़ को भी पार कर गई। अकेले अंडा उत्पादन की ही बात करें तो सालाना 10.19% की दर से बढ़ रहा है। हालांकि ये भी सच है कि मुर्गी पालन कारोबार में 75.32% हिस्सा मांस का और 24.67% अंडों का है। अंडा उत्पादन के मामले में भारत 5वें नंबर पर है, जबकि मांस के क्षेत्र में मुर्गी मीट का कारोबार पूरी दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रहा है। भारतीय लोगों को भी मुर्गी का मीट काफी पसंद है। यही वजह है कि यहाँ जितना भी मांस उत्पादन होता है उसका आधा मुर्गियों से आता है। 2018-19 के दौरान मुर्गी मीट का उत्पादन 40,00,000 टन था। मुर्गी कारोबार में तेज बढ़ोतरी के पीछे कई फैक्टर काम कर रहे हैं। खासकर प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी के बाद लोगों का रुझान अच्छे खान पान की तरफ गया है और मुर्गी उत्पादों के भाव में कमी ने भी इस कारोबार को फलने फूलने में मदद की है। अंडा और मांस में अच्छी क्वालिटी की प्रोटीन पाई जाती है, इसलिए मुर्गी व्यवसाय कुपोषण

0: खिलाफ जंग में अहम हथियार साबित हो सकता है।
1: हमारी देश में जो प्रोटीन की उपलब्धता है वो WHO के हिसाब से अभी भी बहुत कम है। WHO की गाइडलाइन के हिसाब से अभी हमें 3 अंडे एक हफ्ते में खाना चाहिए, और वो 3 अंडे हमारी अगर लेते हैं तो बहुत लगभग 200 बिलियन अंडा प्रोडक्शन की होना चाहिए देश में। वहाँ हम तो हमने पहुँचा है अभी तक इस साल की आंकड़े के हिसाब से 122 बिलियन तक। तो मुर्गी जो किसान अपने घर पे रखते हैं, लग ली मान लीजिए किसी किसान 50 मुर्गी रख ली, 50 मुर्गी से रोजाना एक अंडा अगर निकालते हैं तो हिसाब से लगभग 30 से 40 अंडा डेली निकालता है। 30 से 40 अंडा तो किसान खुद खा नहीं सकते हैं, बाकी अंडा वो बाजार में बेचते हैं।
0: सिर्फ अंडा और मांस ही नहीं बल्कि मुर्गियों की बीट से भी पैसा बनाया जा सकता है। बीट में मिट्टी के लिए जरूरी कई पोषक तत्व पाए जाते हैं जो खेतों में बेहतरीन खाद का काम करते हैं, बल्कि मशरूम पालन में मुर्गियों की बीट की जरूरत पड़ती है। इस तरह मशरूम उत्पादकों और किसानों को बीट बेचकर भी अलग से कमाई की जा सकती है। मुर्गियों की बात चली है तो कड़कनाथ का नाम कैसे भूल सकते हैं। काले रंग के इस मुर्गे का मीट और अंडा दोनों ही बहुत महंगे बिकते हैं। एक वयस्क सफेद मुर्गा जहां करीब 200 रुपए में बिकता है, वहीं कड़कनाथ की कीमत 500 से 600 रुपए तक हो सकती है। दूसरी ओर आम मुर्गों के मुकाबले कड़कनाथ पोषण के लिहाज से भी बेहतर है, इसलिए कड़कनाथ के बढ़ती मांग को देखते हुए आज के युवा भी इसके कारोबार से जुड़ने लगे हैं।
2: मुर्गी पालन आज के दौर में अच्छा और सफल व्यवसाय बनता जा रहा है।
3: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया व्हील 90.8 FM। आपड़ू रेडियो, आपड़ी बातें।
4: किसान साथियों, आइए चलते हैं कल्लीपुरा गांव में और मिलते हैं अरविंद भाई से और जानेंगे कैसे अरविंद भाई अपने फार्म में मुर्गियों का दाना पानी करते हैं, उनका देखरेख करते हैं, उन्हें समय समय पर भिन्न भिन्न दवाइयों के माध्यम से उनमें आने वाले रोगों और उनमें उनको क्या दवाइयां देनी चाहिए, उन सारी चीजों को हमें बतलाएंगे। आइए सुनते हैं उन्हीं की जबानी।
5: अरविंद भाई, आप हमने कल्लीपुरा में आप उभा है कड़कनाथ नो बिजनेस शुरू करियो है, तो ये कांती कुकड़ा लायो ने केरती शुरू करियो इन?
6: मैं 2 साल पहलखो तो चालू करेलो यो बिजनेस, पहलखो हो कुकड़ा लावेलो अनुभव ले दो।
5: अच्छा,
6: ते तीने डॉग ताहर का जो वेटनरी डॉक्टर साहब रे,
5: अच्छा
6: तीने ही बता दियो के तो एक फटो मारो बचे है तो 500 ले जाऊं, પણ મેં પછી તને કીધું કે તું તને એક રાય બતાડી કે તું હો પાળી દેખ બિલકો કેટલો ફાયદો મળે કેટલો નહીં, તેની બાદ તું વધારે લેજે એમ કરી। તો મારા મનમાં એમ થયું કે સાલો હો લીલી હાવ ઇન્સાન ને થોડોક લાલચ રહે મતલબ કમાવાની,
5: બિલકુલ બિલકુલ।
6: તે 500 એક હટવા ન તે ફેર મારા મનમાં એમ થયું કે હો પાળી દેખું એમ, તે હો પાડવા બાદ ફેર મને બેનિફિટ થયો, ફાયદો થયો,
5: ફેંકવા પડે એવું કદી એવો સમય આવેલો કદી?
6: નહીં, મેં એક ટ્રેનિંગ લીધેલી કડકનાથ ના ઉપર, જેસે ઊંઘાવા લાગી જાય તેની દવા હે, અને હેલી કઈ અચાનક બીમારી થઈ જાય તેની દવા હે, તે કઈ વાયરસ જેવી હોય તેની દવા હે, તે હું તીન સમય સમય ઉપર ઉપયોગ કરું તો કુકડો એક બી નહીં મરે।
5: અચ્છા અચ્છા અચ્છા, તો મતલબ કહેવાનો મતલબ એમ હે કે આપણે સમય સમય પર અગર સહી બીમારી ધરીને સહી દવા દઈ આપું તો ત્યાં આપણે વસાડી શકીએ। તે મતલબ હમણાં તારો શું હોશિયાર છે, અગાડી તું કેટલા કુકડા પાડવાનો હોશિયાર હે?
6: હમણાં મારો એક હેચરી લગાડવાની છે, જો ઈંડા મેલીન તે ડાયરેક્ટ ચેલા નીકળે હેચરી।
5: અચ્છા, હેચરી, હા
6: હેચરી લગાડવાની છે, અને થોડો મોટો લોન લેવાનો સરકાર થી કઈ આગ્રહ કરું।
5: અચ્છા અચ્છા અચ્છા,
6: એ થઈ જાય તો મારી જમીન છે તાર કો બનાવતી મોટું ફાર્મ।
5: અચ્છા અચ્છા,
6: 2000 સુજાનું।
5: બિલકુલ બિલકુલ, તો હમણે મતલબ હમણે સરકારીમાં હું મદદ કરી રહી ફિલહાલ અરુ
6: સરકાર તે હમણાં એક લોન ના બારામાં ઇસાલી મતલબ આયુ છે, હું पशुपालन विभाग में गेलो
5: अच्छा
6: ताहर की ये जानकारी मिली कि तुम लोन ली सको
5: अच्छा
6: है ने लोन ली सको कुकड़ा पाली सको ते बदा डॉक्यूमेंट बताड़िया से ते मैं तैयार करी रो से
5: अच्छा
6: अने कराऊ पड़े यो लोन ताकि ये तेरते आपो गाड़ी बढ़ी सकिन
5: हां हां बिल्कुल
6: अन तिनमा तिना ही बताड़ियो के इनमा मतलब अनुदान भी से
5: अच्छा
6: ते अनुदान हरु मतलब आपो करी सकी कई
5: बिल्कुल तो इन्हें हरु कौन कौन आदमी अगाड़ी आवीन यो लोन कौन कौन ली सके इन्हें हरु कहीं मतलब हेम तो नहीं के खाली मतलब जगह जो या हूँ इनो प्रावधान है अगर अगर कहीं लेवा मांगे तो नहीं
6: हमारा मतलब एम है कि आप हमारा हेली कहवा मतलब जिना जगह है ने
5: हाँ।
6: जगह हो है किसान बनेल हो है क्यों ली सके
5: बिल्कुल
6: फिर तीन माह एम है कि हेली વધારે અગર મોટો લોન લેવો હોય ને
5: હા
6: તે યુ પૂરો પ્રોજેક્ટર તૈયાર કરવું પડે
5: અચ્છા
6: હા તિનમાં હું કેતરું લાગે ખાવાનું
5: અચ્છા બિલકુલ બિલકુલ
6: લાવો સબ લખવું પડે
5: બિલકુલ અગર આપો કોઈનો ગામનો કોઈ નિવાસી અગર ઇને એના પ્રોજેક્ટ ને કરવા માંગે તો કુની મદદ લઈ શકે યો
6: યે પશુપાલન
5: પશુપાલન પશુપાલન વિભાગ
6: વેટરનરી ડોક્ટર થી મળે
5: અચ્છા
6: અને તાહરકુ સેશન કરાવવું પડે તાહરકુ ફોર્મ ભરાવવું પડે
5: ઉદ્યોગિક
6: વિભાગ માં જવું પડે
5: બિલકુલ બિલકુલ हाँ तो सबीना मैडम हम तारती हमला मांगी कि तुम भी आते आते अरविंद भाई ने आते आते तुम भी कुकड़ा पाली रहा है तो इनमें मतलब कितरो फायदो थई रो तमारो हूँ होशियार से कड़कनाथ ने लीने
7: ફાયદો તે છે એના મતલબ નાના સુજા આલે તે તેના મોટા કરવાના અમારા હાથમાં
5: બિલકુલ
7: મતલબ બીમાર તે અચાનક થી થઈ જાય એના આંખોમાં મતલબ આંખો થી બીમારી થાય દિખાઈ નહીં દેતા
5: દિખાઈ નહીં
7: હા દિખાઈ નહીં દેતા બાકી અચ્છા હૈ બિઝનેસ બિઝનેસ કરને દો મતલબ દો સાલ હો ગયે હમ બિઝનેસ કર રહે તો હમકો અચ્છા લગ રહા
5: બિલકુલ
7: બાકી ઇનકો બડે કર રહે મતલબ ઇતે મતલબ એક એક દો એક દો બિકતે રહેતે બાકી મેરા વિચાર હૈ કે યે પૂરે ક્યું નહીં બિક રહે
5: અચ્છા થોડા સા બડે લેવલ પે ઉસકો બેચે હા
7: બડે લેવલ પે બેચે તો તાકી હમકો ભી થોડા ફાયદા મિલે
5: બિલકુલ બિલકુલ
7: જિનકો મતલબ
5: હા
7: વો કર બિઝનેસ કરને સે ફાયદા મિલના ચાહીએ યું
5: બિલકુલ મતલબ જેતરા મોટા થઈ રહ્યા એતરા આપણ વૈસે જવા દો
7: હા ફિર
5: મોટો મોટા કરી નો કરે હે ને
7: અભી કરીબ 150 બડે બડે મુર્ગે મુર્ગિયા હૈ પર વો મે બેચના ચાહતી પર અભી બિક નહીં રે વો
5: અચ્છા ઓર
7: છોટે સુજે અભી 200 કે હૈ
5: બિલકુલ તમારા કાફી ફાયદા હોગા
7: તો હમારા ક્યા હૈ મુર્ગા ફાર્મ અંદર થોડા છોટા બના રખા થા
5: હા હા હા
7: તો હમને એસા મતલબ સોચા કે ક્યું નહીં હમ રોડ પે લે જાય
5: બિલકુલ
7: તાકી યે બિઝનેસ હમારા અચ્છા ચાલે यूँ करके हमने रोड हाईवे रोड पे लाए हैं ताकि बिके यूँ करके तो बिजनेस करने से अच्छा है।
4: किसान भाइयों जैसे कि अभी हम सुन रहे थे सबीना जी बता रहे थे कि उनका जो पोइट्री फार्म है उसमें काफी उनके पास अभी काफी मात्रा में मुर्गी मुर्गियां है और पोइट्री फार्म का गांव के अंदर होने की वजह से लोगों में ज्यादा पता नहीं था इस बारे में लोगों को थोड़ी सी समस्या होती थी वहां तक पहुंचने में तो अभी उन्होंने अपने पोइट्री फार्म को रोड के एकदम करीब अपना खुटाया स्कूल के जस्ट पास में उन्होंने अपनी नया घर उन्होंने बनाया है और साथ में एक छोटा सा पोइट्री फार्म भी रखा है जहां पर उनकी एक छोटी सी दुकान है और वो वहां पर अंडे और मुर्गियां दोनों वहां पर बेचते हैं। दोस्तों आप अपना अंतरवेलिया से भगोर वाले रास्ते पे अगर आप जा रहे हैं तो आप जरूर इनके अपने कड़कनाथ फार्म पे विजिट कर सकते हैं। इनसे इन कड़कनाथ से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को ले भी सकते हैं और अगर आपको अधिक मात्रा में या कम मात्रा में अगर आपको कड़कनाथ लेना चाहते हैं तो आप अरविंद भाई से संपर्क भी कर सकते हैं। हम इनका नंबर आपको दे देंगे और आप भी खुद उस रास्ते से निकल रहे हैं तो आप उन कहीं पे पास की किसी भी दुकान से पूछ कर अरविंद भाई के यहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं।
3: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM।
4: आपनू रेडियो आपड़ी बातें। किसान साथियों कड़कनाथ पालन में हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए इन सब जानकारियों को जानेंगे। उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और सुनते हैं एक सुंदर से प्यारे से भिली गीत को
8: ले लो।

0: आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया व्हील 90.8 एफएम।
1: आपनू रेडियो आपड़ी बातें। ब्रेक के बाद पुनः आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है खेती बाड़ी कार्यक्रम में। आइए जानते हैं अरविंद भाई से कड़कनाथ पालन में हमें किन किन चीजों को लेकर सचेत होना चाहिए, किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए, आइए सुनते हैं उन्हीं की जबानी।
2: तो आपको इस ये बिजनेस आप कर रहे हो, आपको क्या ऐसा क्या क्या चीजें हैं जो आपको मतलब ऐसा लगा कि हमको मतलब किसानों को सचेत रहना चाहिए इस चीज को करने से पहले, क्या क्या चीजें जरूरी होती है ये पालने के लिए और क्या क्या किन किन चीजों की आवश्यकता होती है कि हम इसको अच्छे से पाले और अच्छे स्तर पे इसको ले जा सके।
0: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया व्हील 90.8 एफएम।
1: आपनू रेडियो आपड़ी बातें।
3: देखो मेरा ये सुझाव है कि जैसे 100 मुर्गे पालें पहले, अभी 100 मुर्गे पालने से अपने को अनुभव हो जाएगा
2: बिल्कुल
3: कि अपने को फायदा कितना हो रहा, घाटा कितना हो रहा,
2: बिल्कुल
3: कितने बिक रहे हैं
2: बिल्कुल
3: है ना,
2: बिल्कुल
3: और कितना खा रहे हैं,
2: कितना खा रहे हैं,
3: वो सब अनुमान लग जाएगा।
2: हाँ।
3: तो उसके पहले अपने को ये फॉर्म बनाना पड़ेगा,
2: फार्म बने।

0: इस बात का ध्यान रखना
1: है। वातानुकूलित उनके हिसाब से रखने की जरूरत पड़ती है, ठीक है।
0: और क्या है कि इनको मतलब ज्यादा हवा में नहीं छोड़ने का।
1: अच्छा,
0: इससे क्या है कि वायरस आ जाए,
1: वायरस आने के डर।
0: और जो बाहर जो फार्म है वहाँ पे मतलब बाहरी व्यक्ति को भी अंदर नहीं जाने देने का।
1: अच्छा अच्छा अच्छा,
0: क्या है इससे अगर आए तो वो क्या है, ये जो दरवाजा है ना, दरवाजे के पास में चूना लगा के रखना चाहिए।
1: अच्छा अच्छा अच्छा, चूना।
0: चूने से क्या है कि वो सारे जो कीटाणु रहते हैं ना, चप्पल से वो उसको ऊर्जा के कारण वो नीचे गिर जाते हैं। अच्छा, और चूने में गिर जाते हैं तो मर जाएंगे।
1: ओके, बहुत ही अच्छी बात बताई आपने अरविंद भाई हमको कि किस तरीके से हमें चूना सामने रख के किस तरीके से इनका बचाव कर सकते
0: हैं। और अपन एक ये भी बात है कि जैसे लाइट,
1: अच्छा लाइट,
0: लाइट को मतलब लगातार जलाना चाहिए उसको।
1: बिल्कुल, लगातार उसको जलाते रहना चाहिए।
0: जैसे गर्मी में वो वाले बल्ब ले आओ।
1: बिल्कुल,
0: वो छोटे वाले,
1: छोटे वाले।
0: हाँ,
2: किसान भाइयों, अरविंद भाई ने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में बताया, कैसे हमें उन्हें खुले में नहीं छोड़ना चाहिए, कौन कौन सी दवाएं उन्हें देनी चाहिए, साथ ही हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे एक नए आदमी को फॉर्म में जाने से पहले हमें चूने का प्रयोग करना चाहिए, और किस प्रकार से लाइट का उपयोग होना चाहिए, कैसा वातावरण कड़कनाथ मुर्गियों के लिए अनुकूलित होता है, साथ ही अन्य जानकारियों को भी हमने जाना।
3: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM।
2: आपनो रेडियो, आपड़ी बातें। किसान साथियों, आप सुन रहे थे कड़कनाथ से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को, कैसे हमें सचेत रहना चाहिए, हमें किस समय पर किन किन चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, आदि जानकारियों को आपने जाना। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आइए सुनते हैं एक सुंदर सा प्यारा

0: ब्रेक के बाद पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं किसान साथियों आपका। आप सुन रहे हैं खेती बाड़ी कार्यक्रम रेडियो टाइमटेबल 90.8 एफएम के साथ। किसान भाइयों, आप सुन रहे थे अरविंद भाई की कलीपुरा के सफल किसान की दास्तां। आइए सुनते हैं एक और सफल किसान की दास्तां।
1: अच्छा। मुनाफा कितना हुआ?
2: मुर्गी पालन का व्यवसाय मैंने इसलिए अपनाया, जैसे आप देख सकते हैं, आप हमारे ये पास ये जमीन है मेरे दादाजी की ली हुई, तो दादाजी को मुर्गी पालन का बहुत शौक था। पर जब दादाजी मुर्गियां लेके आते थे उनकी मृत्यु हो जाती थी किसी कारणवश, तो मैंने देखा कि हम लोग पढ़े लिखे क्यों ना इनको बचाया जाए, तो मैंने पोल्ट्री फार्मिंग का कोर्स किया। तब पता लगा हम क्या गलतियां कर रहे हैं और फिर वहां से शुरू किया। तो जब मैंने उसी कोर्स के दौरान मैंने कड़कनाथ ब्रीड के बारे में पढ़ा, तो ये बड़ी नई ब्रीड लगी, बड़ी एक्साइटिंग ब्रीड लगी। सो हम लोग जाके फिर शुरुआत में 5 मुर्गियां 2 मुर्गे लेके आए और एक छोटे से कमरे पालना शुरू किया, और करते करते वो 40 हो गई, और उनको देख के लोग डिमांड करने लगे, तो डिमांड करते करते इसको एज अ व्यवसाय कर लिया एंड हम लोग मुनाफा कमाने लगे।
3: बड़े पैमाने पर मुर्गी उत्पादों का निर्यात करता है। 2020-21 के दौरान ही 2.5 लाख टन से ऊपर के उत्पाद दूसरे देशों को भेजे गए। इससे 435 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की आमदनी हुई। अगर आप भी खेती के साथ अतिरिक्त आमदनी चाहते हैं, तो मुर्गी पालन आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकता है। मुर्गी पालन न सिर्फ आसान है, बल्कि इसे शुरू करने के लिए बहुत ज्यादा पैसों की भी जरूरत नहीं होती।
4: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया व्हील 90.8 एफएम।
5: आपनो रेडियो आपड़ी बातें।
3: मुर्गी पालन के लिए बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं पड़ती और ये जल्दी ही आमदनी भी देनी शुरू कर देता है, साथ ही लाभ भी अच्छा है और लगातार आमदनी होती रहती है। इस व्यवसाय के लिए जगह भी बहुत कम चाहिए। अगर प्रशिक्षण लेकर काम शुरू करेंगे तो नुकसान की संभावना कम रहेगी। हमारे देश में खुले आसमान के नीचे भी मुर्गी पालन का रिवाज है, लेकिन इस विधि में अंडा उत्पादन कम और पक्षियों के बीमार पड़ने की आशंका ज्यादा रहती है, इसलिए बेहतर है कि इन्हें आवास में ही पाला जाए। मुर्गी पालन के लिए आपको हैचरी से 1 दिन का चूजा लेना होगा और 20 हफ्तों तक उसे पालना होगा। उसके बाद मुर्गियां अंडे देना शुरू कर देती हैं और करीब 70 हफ्तों तक अंडे देती रहती हैं। आप चाहें तो बिछावन के ऊपर भी चूजों को रख सकते हैं और चाहें तो पिंजरों में भी पाल सकते हैं। संगठित क्षेत्र में बड़े किसान 10,000 तक मुर्गियां पालते हैं, जबकि अगर आप छोटे स्तर पर काम करना चाहते हैं तो 1,000 चूजों से भी शुरू कर सकते हैं। अच्छे मुनाफे के लिए 4 किस्में प्रमुख हैं। इनके नाम हैं बैबकॉक, हाईलाइन, बोवंस और लोमैन। बैबकॉक की 80 से 85% किस्में भारत में पाई जाती हैं।

0: इज एक हैचिंग पीरियड बोलता है, लेइंग पीरियड बोलता है, उसी लेइंग पीरियड में कम से कम 200 से 250 अंडा निकाल सकते हैं। अगर 200 से 250 अंडा एक मुर्गी निकालते हैं तो हमने ये देखा गया है जो 200 मुर्गी से कम सालाना 4 लाख से 5 लाख रुपया उनकी इंसान की आमदनी होती है। तो अगर 4 लाख से 5 लाख रुपया साल में आमदनी होती है तो लगभग लगभग आप देख लीजिए उनसे कितना महीने में कितना अंडा आ रहा है। और ये जो आमदनी होती है ये रोज का आमदनी है।
1: कौन सी किस्म आपको चुननी है ये इस बात पर निर्भर करेगा कि आप किस उद्देश्य से मुर्गी पालन कर रहे हैं। अंडा उत्पादन के लिए अलग किस्में चुननी होंगी और मांस उत्पादन के लिए अलग। अंडे देने वाली मुर्गी 20 हफ्ते में ही आमदनी देना शुरू कर देती है। 20 हफ्तों तक करीब 200 रुपए प्रति मुर्गी की लागत आएगी। इसके बाद करीब 250 रुपए हर रोज का खर्च एक मुर्गी पर करना होगा। आप घर पर दाना तैयार करके लागत 20% तक घटा सकते हैं।
2: देखा जाए तो अभी हम बहुत अच्छे मुनाफे में है। हमारे पास जो अभी हम जैसे हमारा साइकिल कैसे चलती है वो है कि हम बच्चे पालते हैं, बच्चे में से जो मुर्गियां होती है मुर्गी हम रखते हैं अंडे की प्रोडक्शन के लिए और मुर्गा बेच देते हैं। मुर्गा तो जल्दी निकल जाता है तो हम क्या करते हैं लोगों को हम इसी बहाने इकोनॉमी बढ़ाने के लिए दूसरे लोगों से मुर्गियां खरीदते मुर्गे खरीदते मुर्गी हमारी खुद की रहती मुर्गे खरीदते और हर महीने मुर्गा बेच देते। तो हम हर महीने पूरे हिंदुस्तान से कम 200 से 500 मुर्गे मंगा के बेचते रहते हैं पूरी दिल्ली NCR में। तो ऐसे हमारा मुनाफा भी बढ़ता रहता है, हमारी मुर्गी की प्रोडक्शन भी चलती रहती है और दूसरे किसान भाइयों की भी हम मदद कर देते।
1: सर्दियों में अंडे की खपत ज्यादा होती है और इसकी कीमत भी बढ़ जाती है, इसलिए चूजे ऐसे समय पर खरीदें जिससे सर्दियों के दौरान आपको ज्यादा से ज्यादा अंडे मिल सकें।
3: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया व्हील 90.8 FM।
4: आपनो रेडियो आपड़ी बातें। किसान साथियों, जैसा कि आप जानते हैं हमारी प्रकृति में हमेशा से बदलाव आते रहे हैं। मौसम के उतार चढ़ाव के कारण फसलों में और जीव जंतुओं में भी इसका प्रभाव देखा जा सकता है। तो दोस्तों आइए सुनते हैं कैसे हम भिन्न भिन्न परिस्थितियों में बदलते वातावरण में कैसे हम हमारे पशुओं को हमारे चूजों को वातानुकूलित रख सकते हैं, किन किन बातों का ध्यान रखकर कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, आइए जानते हैं।
1: मुर्गी पालन के लिए आपको चूजे हैचरी से लेने होंगे, वहां से सिर्फ एक दिन के चूजे दिए जाते हैं। 6 हफ्तों तक इन्हें अलग आवास में रखेंगे, ये आवास चारों तरफ से बंद हो ताकि बाहर की हवा अंदर न जाने पाए। 6 हफ्ते बाद ग्रोअर स्टेज शुरू हो जाएगी। अब चूजों को दूसरे आवास में ले जाएंगे। याद रहे कि हर मुर्गी को 1 से 1.5 वर्ग फुट की जगह चाहिए, यानी अगर आप 1000 मुर्गियां पाल रहे हैं तो 1000 से 1500 वर्ग फुट के आवास की जरूरत पड़ेगी। सर्दियों में खिड़कियों को बोरों से ढक कर रखना होगा और अंदर का तापमान बढ़ाने के लिए उपाय करने होंगे, जबकि गर्मियों में उन्हें अधिक तापमान से बचाने के लिए पंखे या कूलर का इंतजाम करना होगा। गर्मियों में दाने की खपत काफी कम हो जाती है, उसे बढ़ाने के लिए सुबह 4 बजे या 5 बजे से ही दाना खिलाना शुरू कर दें। उसके बाद 1-2 बजे तक दाना न दें। गर्मियों में पानी ज्यादा पिलाएं। बरसात के मौसम में खिड़की के बाहर प्लास्टिक की शीट लगा दें ताकि बारिश का पानी अंदर न जाने पाए। आवास में लकड़ी के बुरादे या धान की भूसी की बिछावन करनी होगी। ध्यान रहे बिछावन को गीला होने पर तुरंत बाहर निकाल दें। गीला बिछावन मुर्गियों के साथ साथ इंसानों के लिए भी नुकसानदेह है। अंडों के लिए आवास में बक्से जरूर रखें। हर 10 अंडे देने वाली मुर्गियों के लिए 1 बक्से की जरूरत होगी। मुर्गी इसी में जाकर अंडा देगी। मुर्गी की 3 स्टेज होती है, चूजे, ग्रोअर स्टेज और परिपक्व मुर्गी। तीनों के लिए अलग अलग तरह के दाने की जरूरत होती है। अंडे देने वाली मुर्गियों के दाने में कम से कम 17% प्रोटीन और 27 से 28% कैलोरी होनी चाहिए, साथ ही 3 से 4% कैल्शियम भी हो, वरना अंडों के छिलके बहुत पतले रह जाएंगे।
0: जो भी किसान भाई मुर्गी को पालेंगे उसको बायोसिक्योरिटी बोलते हैं, हाइजीन मेंटेन करके पाले। और मुर्गी के लिए सारे टीका उपलब्ध हैं, सारे के सारे मुर्गी को सब टीका लगा सकते हैं, और वो सरकारी में भी उपलब्ध है और बाहर से भी खरीद सकते हैं। वो खरीद के सारे टीका लगा लीजिए। मान लीजिए आपकी छोटे उम्र से गांबोरो लगा लीजिए, रानीखेत लगा लीजिए, उसमें रानीखेत दो बार लगाते हैं, और उसमें हमने फाउल कॉलेरा लगा लीजिए, फाउल टाइफाइड लगा लीजिए, जो सारे बीमारी। और हमने जो किसान को बोलते हैं आप देसी के साथ जो विदेशी वैरायटी का जो क्रॉस होता है उसको पालिए, तो उसके रोग प्रतिरोध क्षमता ज्यादा होती है।
1: मुर्गियों में आमतौर पर रानीखेत, ब्रुसेल संक्रामक रोग और मेरेक्स जैसी बीमारियां लग सकती हैं। कभी कभी फाउल पॉक्स भी लग जाती है। आजकल रेबिल इन्फ्लुएंजा की भी शिकायत मिलने लगी है। सभी बीमारियों के लिए टीके उपलब्ध हैं। ये टीके 2-3 बार लगाने होंगे। टीके सही वक्त पर लगवाएंगे तो बीमारी का खतरा नहीं होगा। वैसे हैचरी से मेरेक्स और रानीखेत का टीका लगाकर ही आता है। हाँ, कुछ हैचरी सिर्फ मेरेक्स का ही टीका लगाकर देती हैं। ऐसी स्थिति में रानीखेत का टीका 2-3 दिन बाद आपको अपने फार्म पर लगवाना होगा। विशेषज्ञों का कहना है कि एक अंडे पर 50 पैसे से 1 रुपए तक का फायदा मिलता है। इस हिसाब से 1000 मुर्गियों से हर महीने 20,000 रुपए तक कमाए जा सकते हैं। हाँ, आपको मार्केटिंग अच्छे से करनी होगी। के पालकों को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत मुर्गी पालकों को लोन भी दिया जा रहा है। इसके अलावा भी कई और कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। सरकार राष्ट्रीय पशुधन मिशन चला रही है। इसमें कुक्कुट पालन के लिए भी कई घटक शामिल किए गए हैं। खासकर ग्रामीण बैकयार्ड कुक्कुट विकास और नवाचार कुक्कुट उत्पादकता परियोजनाएं चल रही हैं। इन परियोजनाओं के जरिए मुर्गी का आवास, आहार, दवाई और जरूरी यंत्र उपलब्ध कराने में सरकार मदद कर रही है। इसके अलावा केंद्र सरकार पशुधन स्वास्थ्य और व्याधि नियंत्रण के अंतर्गत राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम कर रही है। इसके अंतर्गत अलग अलग बीमारियों के लिए टीकाकरण की व्यवस्था की गई है। इस काम के लिए जिला प्रयोगशालाओं को उन्नत बनाने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता दी जा रही है।
3: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM।
4: आपनो रेडियो आपड़ी बातें। किसान साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो टांट्याबिल 90.8 FM छावा की आवाज, खेती बाड़ी कार्यक्रम। किसान साथियों, आज आपने मुर्गी पालन को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियों को जाना। मुर्गी पालन में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, मुर्गियों में कौन कौन सी बीमारियां आती है, साथ ही हमें मुर्गियों को भिन्न भिन्न परिस्थितियों में कैसे उनका ध्यान रखना चाहिए, साथ ही हमें कौन कौन से टीके लगाने चाहिए, समय समय पर क्या खाना पानी देना चाहिए, महत्वपूर्ण जानकारियों को जाना। किसान साथियों, अगर आप कड़कनाथ मुर्गी लेना चाहते हैं या कड़कनाथ मुर्गियों के अंडे लेना चाहते हैं तो आप कल्लीपुरा के अरविंद जी से संपर्क कर सकते हैं। उनका नंबर है 8770939905। किसान साथियों, आप उन्हें कॉल करके या फिर उनके घर जाकर भी उनसे संपर्क कर सकते हैं।
3: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM।
4: आपनो रेडियो आपड़ी बातें।
5: दोस्तों, यहाँ पर वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। आपसे पुनः कल मुलाकात होगी इसी समय इसी वक्त। बने रहिए रेडियो टांटिया फील 90.8 FM के साथ।
4: रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांटिया भील, रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान। आपु रोज करहूं बातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा। एत्रे हमरता रेजो टांटिया भील नो रेडियो स्टेशन, रेडियो स्टेशन 90.8 FM।
5: किसान साथियों, एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है आपका खेती बाड़ी कार्यक्रम में। किसान साथियों, जैसा कि रेडियो टांट्याबिल 90.8 एफएम झाबुआ की आवाज आपके लिए खेती से जुड़ी हुई बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को अब तक पहुंचाता आया है। रेडियो टांट्याबिल 90.8 एफएम का हमेशा से यही प्रयास रहा है कि हमारे किसानों की जो भी समस्याएं हैं उन्हें केवीके के माध्यम से, कृषि वैज्ञानिक एक्सपर्ट के माध्यम से, रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम टांट्या भील रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान आपू रोज करहूं बातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा एत्रे हमलता रेजो टांट्या भील नो रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम। और सफल किसान की कहानी के माध्यम से हम प्रयास करते हैं कि आप तक हम अच्छी से अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको दे सकें। तो किसान साथियों, रेडियो टांट्याबिल 90.8 एफएम का यही प्रयास रहा है कि हमेशा हम आपकी समस्याओं का निदान कर सके, आपके लिए कुछ कृषि में नवीनीकरण ला सके और आपकी जो आजीविका के स्रोत हैं उन्हें बढ़ा सके। कृषि विज्ञान के माध्यम से जो स्रोतों में आय वर्धक चीजें हैं उनमें उनको बढ़ावा दे सकें, साथ ही कृषि शिक्षा को भी हम बढ़ावा देते हैं ताकि कृषि शिक्षा से जुड़ी हुई जानकारियों को पहुंचाने का हमेशा से प्रयास रहा है। रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम टांट्या भील रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान आपू रोज करहूं बातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा एत्रे हमलता रेजो टांट्या भील नो रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम। किसान साथियों, यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा विराम और सुनते हैं एक सुंदर से प्यारे से भीली गीत को।

0: किसान साथियों, आज के कृषि कार्यक्रम में हम जानेंगे शुकर पालन और पशुपालन से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को, जहां हम जानेंगे कैसे हम हमारी आय के स्रोतों में वृद्धि कर सकते हैं और पशुओं का ध्यान हमें कैसे रखना चाहिए, साथ ही किस तरीके से ये पशु हमारे लिए एक आय का स्रोत बन सकते हैं और कैसे हम इससे अधिक से अधिक मुनाफा ले सकते हैं। तो किसान साथियों, आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो, आपड़ी बातें।
2: तो देखिए, जैसा हमने आपको बताया कि आज हम पहले बात करेंगे जो हमारे दुधारू पशु हैं, किस तरह का रखरखाव जो है वो जरूरी हो जाता है, क्योंकि जब हम पशुधन की बात करते हैं तो उसकी सार्थकता तभी होगी जब हम बेहतर ढंग से उनका रखरखाव कर सकेंगे। और डॉक्टर पाठक, अगर आप से हम सबसे पहले जानना चाहेंगे और बधाई भी देना चाहेंगे, क्योंकि लगातार पशुपालन क्षेत्र के लिए आपने लाइफ टाइम अचीव जो अवार्ड है वो भी अभी हम कह सकते हैं हासिल किया है, और लगातार इतने सारे एक शिखर तक आपका सफर रहा है, लेकिन जब दुधारू पशुओं के रखरखाव की बात हम करते हैं, कितना जरूरी, क्योंकि शायद यही बात आप ना जाने कितने दशकों से जो किसान हैं उनके साथ बातचीत भी करते आए होंगे, उनको समझाते हुए आए होंगे।
3: जी मुकुल जी, देखिए हम बड़े भाग्यशाली हैं भारतवर्ष के जो पशुपालक हैं, और हम सभी नागरिक के, हमारा जो देश है वो पूरे विश्व में दुग्ध उत्पादन में प्रथम है
2: जी।
3: और ये दुग्ध उत्पादन प्रथमता पहली एक दो साल की नहीं है, पिछले 10 वर्ष से जो है दुग्ध उत्पादन में भारतवर्ष जो है प्रथम चल रहा है। तो ये जो दुग्ध उत्पादन है इसको आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है कि हमारे जो पशु हैं, क्योंकि पशुओं की संख्या में भी हम भारत जो है पूरे विश्व में नंबर वन है
2: जी।
3: तो इनको उत्पादकता को बढ़ाए रखने के लिए और दूध की क्षमता बढ़ाने के लिए पशु का स्वास्थ्य बहुत जरूरी है
2: जी।
3: मैं हमेशा कहता हूं कि देखिए, तीन चीजें हैं पशुपालन में। एक है उसकी ब्रीड, कौन सी आप नस्ल रख रहे हैं, दुधारू पशुओं की बात करेंगे आज, साथ ही साथ उनका स्वास्थ्य कैसा है
2: जी,
3: और तीसरा है कि उनका आहार और उनका आवास कैसा है। तो ये अगर तीन चीजें बढ़िया हैं और विशेष रूप से अगर स्वास्थ्य अच्छा है पशु का, तो निश्चित रूप से जो दूध उत्पादन की हम बात कर रहे हैं, ये हम और कोई भी उत्पादन की बात करें, चाहे हम सुकर पालन की बात करें, चाहे भेड़ पालन की बात करें या बकरी पालन की बात करें
2: जी,
3: उत्तम स्वास्थ्य अगर पशु का रहेगा तो कम से कम पशुपालक का खर्चा होगा, खर्चा बचेगा, साथ ही साथ जो पशु है उसकी उत्पादकता बनी रहेगी
2: जी। बिल्कुल। तो देखिए किस तरीके से, यानी जो पशुधन है उसकी सार्थकता कैसे हो सकती है, इन जो मुख्य कारक हैं इनका ख्याल हमें रखना होगा, और इनके बारे में विस्तार से डॉक्टर पाठक आपसे हम जानकारी लेंगे, लेकिन पहले आइए नजर डाल लेते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट पर।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो, आपड़ी बातें।
4: पोषण का असर पशुओं के शारीरिक विकास और प्रजनन पर भी पड़ता है, ऐसे में दुधारू पशुओं से दूध उत्पादन के लिए उनके पोषण का ध्यान रखना जरूरी है। दुधारू पशुओं को साफ और ताज़ा पानी पिलाना चाहिए। पशु की पानी की जरूरत वातावरण की दशा और उसको दिए गए आहार पर निर्भर करती है। हरे चारे में पानी की मात्रा ज्यादा होने से पशु कम पानी पीते हैं, लेकिन दुधारू पशुओं को गर्मियों में कम से कम 4 बार और सर्दी में 2 बार ताज़ा पानी जरूर पिलाएं। अगर पशु गर्भित है तो दुधारू पशुओं को समय के हिसाब से ताज़ा भरपेट चारा देना चाहिए, तो उसके दूध उत्पादन पर इसका विपरीत असर पड़ेगा। सूखे और हरे चारे को मिलाकर देना चाहिए, खासकर जब बरसीम की पहली या दूसरी कटाई पशु आहार के लिए की गई हो, क्योंकि इस परिस्थिति में बरसीम के पौधे में प्रोटीन और पानी की मात्रा ज्यादा होती है और इनमें सेल्यूलोज की मात्रा कम रहती है। इस स्थिति में हरे चारे से पशु को अफारा होने की संभावना ज्यादा होती है और कभी कभी बिना पचा हुआ हरा चारा पतले दस्त के रूप में गोबर के जरिए निकलता है। ऐसे में पशु आहार से मिलने वाली ताकत पशु को नहीं मिल पाती है, इसीलिए हर दुधारू पशु के हरे चारे में कम से कम 20% सूखा हरा चारा होना चाहिए। अगर कम सूखा चारा पशु को दिया जाता है तब पशु के दूध में वसा की मात्रा कम होने की संभावना रहती है। जैसे जैसे दिए गए हरे चारे में सेल्यूलोज की मात्रा बढ़ती है तब पशु को सूखे चारे की मात्रा कम कर देनी चाहिए। इसके साथ साथ दुधारू पशु को पशुपालक संतुलित आहार जरूर दे जिसमें खनिज तत्वों की मात्रा कम से कम 2% हो। इस तरह दुधारू पशुओं को उचित पोषण आहार देकर आप पशुपालन से अच्छा मुनाफा ले सकते हैं।
1: झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
5: जी शुकर पालन जो है बहुत ही लाभकारी उपक्रम है, जिसके द्वारा ये पशुधन में जो अन्य प्रजाति

0: के तुलना में शुगर एक ऐसी प्रजाति है जो बहुत ही कम समय में हमें ज्यादा लाभ देती है।
1: जी
0: शुगर पालन मुख्यतः जो है मांस उत्पादन के लिए करते हैं, और शुगर जो है एक बार में 8 से 10 बच्चे देती है, और साल भर में इसका जो पीढ़ी अंतराल है बहुत ही कम होता है, तो साल भर में ये 2 बार बच्चे देती है, तो हमें 8 से 10 एक बार में मतलब साल भर में हमें 20 बच्चे के आसपास मिल जाती है, जो 8 महीने में 80 से 90 किलो की हो जाती है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि हमें एक साल में काफी ज्यादा मात्रा में मांस की उत्पादन होती है, और उसको हम 200 रुपए प्रति किलो के हिसाब से भी अगर हम देखें तो काफी भारी मात्रा में मुनाफा हमें जो है बहुत ही कम समय में मिल रही है। तो अगर आप व्यावसायिक नजरिए से देखें तो सुपर पालन के द्वारा बहुत ही तेजी से जो है आर्थिक मुनाफा
1: जी, तो ना सिर्फ आर्थिक लाभ बल्कि इसके साथ साथ देखिए किस तरीके से जो हमारे पशुपालक हैं, जो दूसरे पशुओं को पालते हैं, उनके मुकाबले अगर देखा जाए तो काफी फायदा इसमें है, लेकिन कुछ समस्याएं भी आती हैं, कुछ चुनौतियां भी आती हैं। तो विस्तार से यहां डॉक्टर सतीश के साथ हम उनको जानेंगे, समझेंगे और आपको भी बताएंगे यहां पर। लेकिन आइए आगे बढ़े, उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर।
2: झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें। शुगर पालन तेजी से बढ़ता व्यवसाय है। अगर सही तरीके से शुगर पालन किया जाए तो आय और रोजगार दोनों में वृद्धि की जा सकती है। गांवों से लेकर शहरी इलाकों में भी लोग इस व्यवसाय में रुचि ले रहे हैं, क्योंकि एक तो शुगर पालन कम लागत में किया जा सकता है, दूसरा इस व्यवसाय की शुरुआत कम जगह में भी की जा सकती है। अच्छी बात यह है कि इस व्यवसाय से बस एक साल में ही मुनाफा भी मिलने लगता है। शुगर पालन के लिए सबसे जरूरी बात है उपयुक्त जमीन या जगह का चयन। शुगर पालन में उनके रहने की जगह का चयन करते समय शुगरों के लिए सभी जरूरी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने की कोशिश करनी चाहिए। शुगरों के लिए घर बनाते समय सर्दी, गर्मी, बरसात, नमी और सूखे से बचाव का ध्यान रखना जरूरी है। शुगरों के घर के साथ ही बाड़े भी बनाने चाहिए, जिससे शुगर बाड़े में घूम फिर सके। इनके रहने की जगह पर साफ सफाई का खास ध्यान रखे। आहार की बात करें तो आमतौर पर बाकी पशुओं की तुलना में इनके आहार पर कम खर्च करना होता है। प्रति किलो मांस बनाने में शुगर को 3.3 से 5 किलो आहार की जरूरत होती है। इसके अलावा शुगरों की सेहत का भी ख्याल रखें। समय समय पर इनके स्वास्थ्य की जांच करवाते रहें। शुगरों को मुख्य रूप से शुगर ज्वर, खुरपका, मुंह पका, शुगर चेचक और गलघोटू बीमारियां हो जाती है। इन रोगों से शुक्रों को बचाएं और समय से टीकाकरण करवाएं।
3: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: जो किसान हैं, पशुपालक हैं, देसी नस्लों को अपना रहे हैं, जिनका स्वास्थ्य बेहतर माना जाता है, क्या आप कहना चाहेंगे इस बारे में?
4: बिल्कुल, देखिए जब अगर हम दुधारू पशुओं की बात करें तो मुख्य रूप से दो हैं, एक गाय है और एक भैंस है।
1: जी,
4: ये दोनों ही हमारे दुधारू पशुओं की श्रेणी में आते हैं। और गाय और भैंस के बारे में मैं फिर कहूंगा कि भारतवंशी, भारत के लोग और भारत की जमीन बड़ी भाग्यशाली है कि प्रकृति ने हमको, गाय की अगर हम बात करें तो गाय की जो हमारी देसी नस्ल है, जो वर्ल्ड की सबसे अच्छी नस्लें हैं, वो हमारे देश में पाई जाती हैं।
1: जी,
4: ऐसे ही अगर हम भैंस की बात करें, भैंस की भी उत्तम नस्ल की जो मैं बात कर रहा हूं कि नस्ल का बहुत बड़ा योगदान होता है, तो भैंसों की भी नस्ल हमारे यहाँ पूरे विश्व में सबसे अच्छी है। और साथ ही साथ भैंसों के मामले में तो हम पूरे विश्व में हमारी संख्या सबसे ज्यादा है।
1: जी,
4: और भैंसों का दुग्ध उत्पादन सबसे ज्यादा हमारे देश में होता है, तो नस्ल का बहुत बड़ा योगदान है। और कुछ पहले बीच में कुछ लोगों को ये गलतफहमी हो गई थी कि जो हमारी देसी नस्लें हैं, विशेष रूप से मैं गौवंश की बात करता हूं, लोग ये कहते थे कि गाय रखेंगे तो 2 लीटर दूध देगी, 5 लीटर दूध देगी, ज्यादा चारा खाएगी। ये एक गलत धारणा थी लोगों की। हमारे देश, जैसा कि मैंने मुकुल जी भी बताया कि हमारे पास अच्छी नस्ल की और क्षेत्रवार नस्ल की, अगर मैं बात करूं हरियाणा की तो हरियाणा की अपनी एक हरियाणी नस्ल है, अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो वहां की एक थारपारकर अपनी नस्ल है, अगर मैं तमिलनाडु की बात करूं तो तमिलनाडु, यानी प्रकृति ने हमारी जो भौगोलिक स्थिति है हमारे देश की
1: जी,
4: किसानों की और पशुपालकों की आवश्यकता अनुसार वो नस्ल दी है। तो आप अपने, मैं पशुपालक भाइयों को हमेशा जब भी बात करता हूं, मैं हमेशा कहता हूं कि आप जिस क्षेत्र में पाए जा रहे हो, जहां आप रह रहे हो उस क्षेत्र की एक नस्ल है जो हमको मिली है, चाहे वो गाय की हो चाहे भैंस की हो। तो आप उत्तम नस्ल का अगर पशु रखोगे, उत्तम नस्ल का पशु का मेरा यहाँ तात्पर्य है कि जैसे मैं कहूं कि मुझे साहीवाल नस्ल की गाय रखनी है, तो साहीवाल नस्ल की प्योर गाय होनी चाहिए, उसमें साहीवाल नस्ल का खून प्योर होना चाहिए। तो अगर ऐसी नस्ल की गाय रखोगे तो जो 15 लीटर और 25 लीटर की जो बात करते हैं लोग, इन गायों से आपको, आप चाहे गिर ले लो, आप गुजरात की गिर ले लो, 25 लीटर तक दूध देती हैं
1: जी।
4: यानी कहने का तात्पर्य यहाँ यह है कि आपको अच्छी नस्ल का पशु रखना है। संकर नस्ल का पशु रखना चाहते हैं वो अलग चीज है, लेकिन जो नॉन डिस्क्रिप्ट जो हमारे एनिमल्स हैं, जो हमारे यहाँ पाए जाते हैं, वो रखने में कोई फायदा नहीं है। वैज्ञानिक तरीके से पता करके अच्छी नस्ल का पशु खरीदिए। और अब तो एक अच्छी बात भारत सरकार ने करी है कि भारत सरकार की जो अपनी पशुपालन विभाग की जो वेबसाइट है
1: जी,
4: उस वेबसाइट पे भी एक उपलब्धता है कि आपको अच्छा अगर गाय चाहिए तो कहाँ मिलेगी, अच्छी भैंस चाहिए तो कहाँ मिलेगी
1: जी।
4: तो वो सारी जानकारी आपको जो पशुपालन विभाग का जो वेबसाइट है उस पर जाइए, और पशु हाट बोलते हैं उसको, हाट करके उसका उन्होंने तैयार किया है, तो वहाँ से आपको जानकारी मिल जाती है।
3: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
4: कारण हो सकते हैं, तो उन सारे कारणों का परीक्षण होगा, गाय के जननांग को भी देखा जाएगा, उसका पशु को चारा आप कितना दे रहे हो, वो सब चीजें, उसके स्वास्थ्य का परीक्षण करेंगे, तब आपकी समस्या ये सॉल्व हो जाएगी निश्चित रूप से
1: जी। बिल्कुल, देखिए इसका समाधान हो सकता है। और साथ ही यहाँ डॉक्टर सतीश आपसे भी हम जानना चाहेंगे, अभी दुधारू पशुओं में हम बात कर रहे थे, कई तरह की भ्रांतियां हो जाती हैं, ऐसी हम शुक्र पालन के क्षेत्र में भी नजर आती हैं, जो आमजन है उनका मानना होता है कि उनके क्षेत्र में ना होना चाहिए, कई तरह समस्याएं आ जाती हैं, और उस वजह से जो पशुपालक हैं वो कहीं ना कहीं एक दूरी बनती चली जाती है उनकी शुकर पालन से। इस तरह की जो भ्रांतियां हैं, कैसे उनका समाधान हम कर सकते हैं, और एक वैज्ञानिक ढंग से किस तरीके से सफलतापूर्वक शुकर पालन किया जाए?
0: वैज्ञानिक ढंग से शुकर पालन करने के लिए सबसे पहले तो हमें दो चीजों का ध्यान रखना है। एक तो कि किस नस्ल की शुकर हम पाल रहे हैं। जैसे व्यावसायिक पालन के लिए हम जो जनरली जो है लाभ कमाने के लिए, तो हमारा एक देसी नस्ल की शुकर है, और एक जो है हमारे जो संस्थान है राष्ट्रीय शुगर अनुसंधान केंद्र, उसके जो 22 केंद्र है AICRP और मेगा, उसके द्वारा जो है बहुत सारे संकर नस्ल का विकास किया गया है। देसी नस्ल के शुगर होते हैं वो कम बच्चे देती हैं, और उसका विकास दर जो है कम होता है, मतलब 8 महीने में वो 40 से 50 किलो तक ही होती है। लेकिन जो संकर नस्ल के शुगर जो विकसित किए गए हैं उनमें वजन जो है 8 महीने में 80 किलो तक पहुंच जाती है। तो ये, लेकिन जो संकर नस्ल के शुगर है उसको पालने में आपको ज्यादा आहार की देने की जरूरत होती है, और उसका रख रखाव थोड़ा सा खर्चीला होता है। लेकिन देसी नस्ल के शुगर हम बैकयार्ड प्रणाली में पाल सकते हैं, और जो किचन वेस्ट होता है उसके द्वारा आप कम खर्च में उसको पाल सकते हैं। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको जो है कम लागत पे शुकर पालन करना है या थोड़ा अधिक लागत पर ज्यादा लाभ कमाना है।
1: तो यानी कम लागत में ज्यादा मुनाफा हमें मिल सकता है, और उसके लिए जो नस्ल है उसका चयन देखिए काफी महत्वपूर्ण होता है। फिर चाहे आप दुधारू पशुओं की बात करें या इसके साथ साथ जो दूसरे, अगर हम शुगर पालन की बात करें, इसकी बात अगर की जाए।
5: रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांटिया भील, रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान। आपु रोज करहूं वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा, एत्रे हमरता रेजो टांटिया भील नो रेडियो स्टेशन, रेडियो स्टेशन 90.8 FM।
0: एक AICRP सेंटर है, उसमें जो है एक तो उत्तर प्रदेश की देसी नस्ल जो है बुर्रा है, एक देसी नस्ल है वो उत्तर प्रदेश में मिलती है। उसके अलावा जो है एक संकर नस्ल की शुकर है, लैंडली संकर नस्ल की शुकर विकसित की गई है, जिसमें लैंडरेस और बुर्रा के को मिला के एक नस्ल विकसित की गई। इन दोनों नस्ल को आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। जब आप शुकर पालन शुरू करते हैं तो उस समय नस्ल आप जो है किसी अच्छे फार्म से खरीदें, ताकि किसी तरह की बीमारी और खराब पशु आपको ना मिल जाए। दूसरी बात यह बीमारी, सुकर में आजकल जो है बहुत तरह की बीमारियां होती हैं, जैसे आपको क्लासिकल स्वाइन फीवर और अभी अफ्रीकन स्वाइन फीवर एक बीमारी चली हुई है। इस बीमारी का कोई टीका नहीं है, लेकिन आप अपने फार्म में जैव सुरक्षा का उपयोग करके इसको कम कर सकते हैं। मतलब किसी बाहरी लोगों को अपने फार्म में ना प्रवेश करने दें, और जो है चूने या ब्लीचिंग पाउडर का अपने फार्म पे छिड़काव करें। इस तरह से आप बीमारी को अपने फार्म में होने से रोक सकते हैं।
1: चलिए, तमाम सावधानियां जो हैं।
5: किसान साथियों, यहां पर लेते हैं एक छोटा सा विराम और सुनते हैं एक सुंदर से प्यारे से भिल्ली गीत को।

0: है झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: ना अगर छोटे स्तर पर करना चाहते हैं, छोटे जानवरों के का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो बकरी पालन कर सकते हैं, भेड़ पालन कर सकते हैं, मुर्गी पालन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपका आपके पास जमीन है, चारे की व्यवस्था है वहां पर, तो आप जैसे हम आज बात कर रहे हैं दुधारू पशुओं की, तो दूध के लिए भी आप जो है गाय रख सकते हैं। भैंस की तो मैं नहीं, श्रीनगर में सलाह दूंगा आपको वहां रखने के लिए। और इसके लिए बहुत अच्छी परियोजनाएं जो है राज्य सरकार और केंद्र सरकारों की हैं, केंद्र सरकार की हैं और राज्य सरकार की हैं। तो आपको मैं सलाह दूंगा कि आप अपने नजदीक के जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं, जो आपके यहाँ एक श्रीनगर में कृषि विश्वविद्यालय है, शेर ए कश्मीर कृषि विश्वविद्यालय है, वो आपको ट्रेनिंग देते हैं, आपके प्रोजेक्ट बनवाएंगे। साथ ही साथ कृषि विज्ञान केंद्र में जो पशु संबंधित या पोल्ट्री से संबंधित भी अधिकारी हैं, आप उनसे संपर्क करें और आपका जो जो जिस तरह का आपका विचार है या आपके पास जैसी जमीन है या चारा है उसकी सारी बात करके वो आपका प्रोजेक्ट बनवाएंगे। साथ ही साथ जो राज्य सरकार की तरफ से चाहे अगर कहीं सब्सिडी दी जाती है उसकी भी जानकारी देंगे। लोन कैसे दिया जाता है पशुपालन के लिए, क्योंकि पशुपालन को व्यवसाय को इस समय केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही, सभी राज्य सरकारें, खाली श्रीनगर में ही नहीं पूरे देश की जितनी भी राज्य सरकारें हैं और केंद्र सरकार है, वो अब इसको बहुत बढ़ावा दे रही हैं। और आप सबको जानकारी भी देना चाहूंगा, बहुत सारे पशुपालकों को इस बात की जानकारी भी होगी, लेकिन जिनको जानकारी नहीं है उनके लिए यह है कि भारत सरकार ने पहली दफे इतिहास में के हमारे जब से हम लोग स्वतंत्र हुए हैं, पहली दफे ऐसा हुआ है कि पशुपालन विभाग को बिल्कुल अलग डिपार्टमेंट बनाया गया है, एक अलग ही मंत्रालय है। और इतनी परियोजनाएं पशुपालन विभाग इसको व्यवसाय को बढ़ाने के लिए, जैसे यूसुफ जी कह रहे हैं, ऐसे किसान भाइयों को, ऐसे पशुपालकों के लिए फायदा पहुंचाने के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है। इसके अलावा क्या लोन मिल सकता है वो आपको जानकारी दी जाएगी। साथ ही साथ जो लोग पशु रखे हैं और उनको उनके स्वास्थ्य के लिए
2: जी
1: फ्री वैक्सीनेशन की सुविधा है,
2: यानी कई तरह की देखिए सुविधाएं हैं जिनका लाभ आपको मिल सकता है।
1: मैं भी हमेशा यह कहता हूं कि कोई भी व्यवसाय करिए, चाहे बकरी पालन करिए, सुकर पालन करिए या गऊ पालन करिए, पहले थोड़ा सा ट्रेनिंग ले लें। तो आपके देखिए एक तो जबलपुर में जो है वहां पर पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय है, वहां से ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा हर जिले में, मध्य प्रदेश के हर जिले में कृषि विज्ञान केंद्र है, कृषि विज्ञान केंद्र में आप जैसे पशुपालकों के लिए ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। आपको सिर्फ इतना करना है कि आप सिवनी के रहने वाले हैं, सिवनी में जो कृषि विज्ञान केंद्र है वहां पर जाइए, पता करिए और उनको अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए, उनको अपनी जमीन कितनी है आपके पास में, क्या व्यवसाय करते हैं, आपकी शिक्षा कितनी है, ये सारी जानकारी देना चाहते हैं उनको देनी होगी। साथ ही साथ आपका रुझान किधर है, क्या आप मुर्गी पालन करना चाहते हैं, क्या आप गौ पालन करना चाहते हैं, भैंस की डेयरी खोलना चाहते हैं या सुकर पालन करना चाहते हैं या बकरी पालन करना चाहते हैं, ये सारी जानकारी आपको दी जाएगी। साथ ही साथ में कहां से आपको लोन मिल सकता है इसकी जानकारी वो पूरी प्रदान करेंगे और एक प्रशिक्षण भी देते हैं, एक 8 दिन का प्रशिक्षण दिया जाता है। रीति कुमार जी, आप वो प्रशिक्षण लेके अपना बकरी पालन का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं
2: जी। और उसके साथ साथ देखिए केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान जो है उसकी वेबसाइट पर भी आप जा सकते हैं, बकरू मथुरा में संस्थान है, वहां से भी आपको ये सारी जानकारी हासिल हो सकती है। यहां डॉक्टर सतीश आपसे हम जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने बताया कि किस तरह की सावधानी अपनाकर अगर पशुपालक चाहें तो सफलतापूर्वक शुकर पालन भी कर सकते हैं, लेकिन जो यहां पर चुनौतियां रहती हैं, समस्याएं रहती है, रोगों के बारे में हम बात कर रहे थे और इन दोनों हम देखते हैं कि अफ्रीकन स्वाइन फीवर का जो कहीं ना कहीं इस तरह के मामले सामने आते हैं, वहां पर किस तरह का बचाव किया जा सकता है।
3: जैसा कि अफ्रीकन स्वाइन फीवर अभी बीमारी अभी अभी पिछले एक साल से भारतवर्ष में आई है
2: जी,
3: ये इसका प्रकोप अभी तक तो नॉर्थ ईस्ट रीजन में सीमित था, लेकिन अब मेन लैंड में भी ये जा रही है
2: जी।
3: तो इसका अभी तक कोई टीका उपलब्ध नहीं है, पूरे विश्व में इसका कोई टीका नहीं है। तो इसके बचाव का सिर्फ एक ही उपाय है, जैव सुरक्षा। अब जैव सुरक्षा आप कैसे करेंगे, सबसे पहले तो अपने फार्म में किसी भी आगंतुक को प्रवेश ना करने दे, कोई भी गेस्ट आपका आए आपके घर में रखाइए, आप फार्म में ना जाने दें। बाहर से अब आप पशु खरीद के लाते हैं तो उसको पहले क्वारंटाइन रखें, 21 दिन तक क्वारंटाइन रखें, ताकि उसमें अगर कोई बीमारी का सिम्टम आ रहा है तो उसे मेन पशु के साथ ना मिलाएं। उसके अलावा जो है आप अपने फार्म में जो है ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करें, पोटास 10 लीटर पानी में जो है 1 ग्राम पोटास मिला के उसका जो है छिड़काव करें और उसका फुट मतलब फार्म में प्रवेश करने के पहले अपने पैरों को उसमें डुबा के उसके अंदर जाएं और पशुओं को छूने से पहले अपने हाथ अच्छी तरह से साफ करें और फार्म से निकलते समय भी साफ करें। इसके अलावा जो है अपने फार्म में अगर कोई सूकर मर जाए तो उसे अच्छी तरह से उसको दफनाएं, मतलब 6 फीट गड्ढा खोद के उसके अंदर उस पशु को डालें और उसमें चूना या फिर ब्लीचिंग पाउडर के साथ उसको दफनाएं ताकि उस बीमार अगर किसी बीमारी से वो जानवर मरा है तो वो दूसरे जानवर में ना फैले।
2: चलिए इसके लिए भी बेहद जरूरी जो लगातार हमारे किसान हैं वो सावधानी यहाँ पर बरतें हर स्तर पर, क्योंकि इसके जरिए जो आपके जो दूसरे पशु हैं उनकी आप जान बचा।
0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आप रेडियो आपकी बातें।

0: भले ही 2 लीटर देती है, 2.5 लीटर देती है, लेकिन
1: काफी गुणवत्ता मानी जाती है उसकी।
0: जी हाँ, उसकी मेडिसिनल वैल्यू है, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी है, उसका अच्छा दाम मिलता है आपको। अगर आप जैसे किसान भाई, अगर पशुपालक भाई बकरी पालन में आगे आना चाहते हैं, उसका चीज बनाइए, उसका दूध बेचिए। इसके अलावा आप मांस पर्पज के लिए भी बकरी को पाल सकते हैं, और जबरदस्त इसका मार्केट है, इसका प्राइस बहुत अच्छा मिलता है आपको, और इसमें किसी प्रकार का टैबू नहीं है। बस जरूरत यह है कि आप वैज्ञानिक तरीके से पालिए।
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो, आपड़ी बातें।
0: तो आपके पास मिल ही गया है कि हो सकता है गर्मियों में, क्योंकि आपके उधर चारे की थोड़ी समस्या होती होगी, और ज्यादातर किसान भाई या पशुपालक क्या करते हैं, सिर्फ भूसा खिलाते हैं गर्मियों में,
1: सूखा चारा
0: देते हैं, हरा चारा उपलब्ध नहीं होता है, या उपलब्ध होता है तो उस क्षेत्र में नहीं होता है। तो एक तो यह है कि चाहे भैंस हो, चाहे गाय हो, कोई भी पशु हो, उसको प्रॉपर ढंग से जितना चारा चाहिए, और खासकर जो भैंस है, आप भैंस पाले हुए हैं तो भैंस के लिए सूखे हरे चारे की एक निश्चित मात्रा चाहिए, साथ ही साथ उसको दाना भी चाहिए, आहार में जो है दाना भी चाहिए, मिनरल मिक्सचर भी चाहिए, नमक भी चाहिए। तो ये सब अगर आप दोगे तो आप जो बता रहे हो वो जो है, हो सकता है उनके अंदर विटामिन ए की कमी रह जाती हो, उसकी स्किन में डिसीज हो जाती है, और भी कई कारण हो सकते हैं, हो सकता है उनके पेट में कीड़े हों, उस भैंस के पेट में कीड़े हों, तो पेट के कीड़ों की दवा आपने प्रॉपर दिए कि नहीं दिए, यानी इसका जो स्वास्थ्य है वो आहार से भी प्रभावित होता है। अगर आहार अच्छा रखोगे, पानी जो है गर्मियों में पानी कम पिलाते हैं, पानी जो है गर्मियों में पूरा पिलाना चाहिए, और भैंस को तो वैसे भी दिन में 2 बार हम तो कहते हैं कि उसको अगर पानी की उपलब्धता है तो नहलाना भी चाहिए।
1: जी,
0: तो
1: ये दुधारू पशु के लिए किस तरह का आहार व्यवस्था वो हमें अपनानी होगी अभी का जो समय चल रहा है उसको देखते हुए?
0: देखिए, इस समय जो है अभी जो जैसे बरसात का समय है, तो दो चीजें एक मुख्य रूप से, पहली बात तो मैं बताना चाहूंगा कि हमारे बहुत सारे पशुपालक भाई क्या करते हैं कि इस समय घास खूब हो रही है जहां बरसात हो गई है, और जानवर को घास चरने के लिए छोड़ देते हैं। अब जानवर क्या करता है कि क्योंकि हरी हरी घास है, अच्छी कोमल घास है, स्वादिष्ट घास होती है, तो उसको ज्यादा खा जाता है, और उसकी वजह से उसके अंदर अफारा की बीमारी हो जाती है। अफारा यानी उसका पेट फूल जाता है, और इसमें जो है जानवर की मृत्यु भी हो जाती है। दुधारू पशुओं में ये विशेष रूप से देखने को मिलता है। तो आपको तो ये करना है कि उसको जो है ना एकदम पूरा हरा चारा नहीं देना है, या एकदम सारी पूरा दिन भर उसको नहीं चराना है, उसको समय से जितनी आवश्यकता है वो हरा और सूखा चारा, सूखे चारे में अगर आपके पास भूसा है तो भूसा मिलाइए, सूखा और हरा चारा। और अगर जानवर दूध दे रहा है तो दूध देने वाले जानवर को तो हमेशा 12 महीने चारा हरा भी देना चाहिए।
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो, आपड़ी बातें।

0: सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपरो रेडियो आपरी बातें।
1: किसान साथियों, ब्रेक के बाद पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है आपका खेती बाड़ी कार्यक्रम में। अभी आपने एक सुंदर से प्यारे से भीली गीत को सुना। किसान साथियों, आइए जानते हैं अगर कोई किसान पशुपालन करना चाहता है तो वह कैसे लोन ले सकता है, इसकी क्या प्रक्रिया होगी और इसमें हमें किन किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए, आइए जानते हैं इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को।
2: लोन की पूरी शर्तें आपको देखनी होंगी, उन शर्तों में आप आते हैं और लोन की सुविधा है आपके यहाँ। आपको भी यही करना है कि जो संबंधित विभाग है, पशुपालन सीहोर का जो पशुपालन विभाग है, वहां से संपर्क करिए
3: जी।
2: मदद के लिए कृषि विज्ञान केंद्र की मदद लीजिए। सीहोर में बहुत अच्छा कृषि विज्ञान केंद्र है, वहां के वैज्ञानिकों से बात करके और आपको लोन जो है आपकी कैटेगरी के हिसाब से, आप गाय रखना चाहते हैं, आपने अभी कहा मैं गाय रखना चाहता हूं, गाय के लिए मिल जाएगा। आप बकरी के लिए रखना चाहते हैं, आप सूकर पालन करना चाहते हैं, मध्य प्रदेश में सुकर पालन की भी बहुत अच्छी संभावना है
3: जी, बिल्कुल
2: वो व्यवसाय भी अपना सकते हैं, उसको भी कर सकते हैं।
3: और साथ ही अगर आपके पास केसीसी है तो तब भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, आपको आसानी से जो ऋण है वो उपलब्ध।
1: रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांटिया भील, रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान। आपु रोज करूं बातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा, एत्रे हमरता रेजो टांटिया भील नो रेडियो स्टेशन, रेडियो स्टेशन 90.8 FM।
4: क्योंकि ये मध्य प्रदेश से आते हैं
3: जी,
4: तो मध्य प्रदेश में शुकर पालन के लिए अपार संभावनाएं हैं, वहां का

0: जो वेटनरी कॉलेज है वहाँ पहले से ASHP केंद्र चल रहे हैं, और वहाँ का शुकर नस्ल जो है शुकर पाल सकते हैं। लेकिन शुकर पालन करने से पहले आपको इसका प्रशिक्षण लेना जरूरी है। प्रशिक्षण के दौरान आपको शुकर पालन के विभिन्न पहलुओं जैसे पोषण, आवास, नियमित फार्म गतिविधियां, शुकरों की बीमारी और हर वर्ग के शुकर का रख रखाव के बारे में जानकारी मिलेंगी। इसके अलावा आपको कहाँ से जो है शुकर नस्ल उपलब्ध होगा, इसके बारे में कैसे चयन करेंगे और कलिंग करेंगे, ये सारे चीज कैसे कैसे उसका हेल्थ कार्ड है, कौन कौन से टीके उनको किस समय पर देना चाहिए, ये सारी जानकारी आपको मिलेगी। ये
1: जी
0: प्रशिक्षण आप जो है वो जबलपुर वेटनरी कॉलेज से आप ले सकते हैं, और उसके बाद प्रशिक्षण के दौरान जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा उसके द्वारा आप जो है लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अभी जो है सरकार जो नेशनल लाइव स्टॉक मिशन का एक कंपोनेंट के आधार पर जो है आपको 25% तक जो लोन जो है वो जनरल कैटेगरी को मिलता है, और 33% जो है SC और ST कैटेगरी को लोन मिल सकता है। तो वो प्रशिक्षण का जो सर्टिफिकेट मिलेगा उसके आधार पर आप लोन लेके सफलतापूर्वक जो है ये आप जो है शुकर पालन शुरू कर सकते हैं।
1: जी बिल्कुल। तो देखिए किस तरीके से आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं।
2: राजगढ़ से हैं और वो प्रोलैप्स का केस है आपके, उसमें योनि बाहर आ जाती है गाय की, यही जानना चाह रहे हैं ना
1: जी।
2: तो आपको तो उसे पशु चिकित्सक को नजदीक के जो पशु चिकित्सालय है वहां ले जाना पड़ेगा। देसी इलाज मत कराइए क्योंकि इसमें नुकसान ज्यादा हो जाता है। गांव में लोग ज्यादातर इसका देसी इलाज करने में लग जाते हैं। तो मैं आपको यहां से यही सलाह दूंगा कि जो नजदीक का पशु चिकित्सालय है वहां पे ले जाके उसका इलाज कराइए, और ये ठीक होने वाली, ये कोई बिना ठीक होने वाला बीमारी नहीं है या कोई परेशानी नहीं है।
1: जी बिल्कुल। तो देखिए ये किस तरीके से आप इसका जो समाधान है वो भी हो सकता है, और साथ ही ये भी माना जाता है कि जो अगला हिस्सा है अगर आप उसको थोड़ा नीचा रखेंगे तब भी इस तरह की जो समस्याएं हैं वो कम हो सकती हैं। साथ ही यहाँ डॉक्टर पाठक के जानना चाहेंगे आपसे जो हमारा आवास प्रबंधन है वो कितना महत्वपूर्ण होता है ऐसे समय में।
2: हाँ बिल्कुल मुकुल जी, अब हम दुग्ध उत्पादन की, पहले हमने नस्ल की बात करी, अब आवास विशेष रूप से आज हम बात करेंगे क्योंकि इस समय बरसात का मौसम चल रहा है और पूरे देश में जो है इस समय बरसात हो रही है, चाहे हमारा उत्तर क्षेत्र हो, चाहे दक्षिण क्षेत्र हो, चाहे पश्चिम हो, चाहे पूर्व हो, सब जगह। तो पशुओं के लिए आवास बहुत महत्वपूर्ण है, और अगर अच्छा आवास नहीं है, अच्छे आवास का यहाँ तात्पर्य है कि आवास ऐसा होना चाहिए खासकर बरसात के दिनों में कि जहाँ पशु जो है का जो पानी है बरसात का वो अंदर नहीं जाए, पशु को वहां भीगने नहीं दे, पशु ऐसा नहीं हो कि बाहर खड़ा है। तो आवास में हवा जानी चाहिए, प्रकाश जाना चाहिए उसके अंदर जो है, साथ ही साथ जो आवास हो उसमें, क्योंकि पशु वहां रहेगा, दिन में भी रहेगा रात में भी रहेगा, तो वहां पर जो गऊ और जो जो उसका गोबर और मूत्र है वो वहां इकट्ठा नहीं होना चाहिए। यानी आवास का जो फर्श है पशु का वो फर्श ऐसा होना चाहिए ढलान वाला, ज्यादा ढलान का भी नहीं होना चाहिए लेकिन वहां ये चीज इकट्ठी नहीं हो, वहां पेशाब पशु का इकट्ठा नहीं होना चाहिए, गोबर इकट्ठा नहीं होना चाहिए, लाइट आनी चाहिए, हवा आनी चाहिए, और खिड़कियां विशेष रूप से, जैसे आप हवा चलती है कुछ बरसात में जो बरसात आती है बरसात में तो हवा की बौछारें आती हैं, तो ऐसा नहीं हो कि वहां अंदर जो है आपने दरवाजा तो बंद कर दिया है लेकिन खिड़कियां खुली हुई हैं और खिड़कियों से बौछार जा रही है, पशु भीग रहा है, एक तो ये बात। दूसरी बात जब हम आवास की बात करते हैं तो दो चीजें और ध्यान रखनी है आपको। पहला तो जो गाभिन पशु है जो एडवांस स्टेज में है, जो 6 महीने से ऊपर के जिनकी जिनकी वो
1: गर्भकाल हो चुका है,
2: ज्ञानकाल हो चुका है, उनका आपको ध्यान रखना है कि जो आवास है वो ऐसा रपटन वाला नहीं होना चाहिए जहां पशु रपट के गिर पड़े
1: जी,
2: क्योंकि उसको चोट लग सकती है, उसका एबॉर्शन हो सकता है। दूसरी बात, जो बड़े पशु हैं उनको अलग रखें, जो छोटे पशु हैं, छोटे पशु का मेरा मतलब यहाँ पे उन पशुओं से है जो बच्चे दूध पीते हैं, जो गाय और भैंस के बच्चे छोटे हैं जो उनके दूध पर निर्भर हैं, उनके लिए भी आवास ऐसा करें कि वो भीगे नहीं, क्योंकि भीगने से छोटे बच्चों में निमोनिया

0: शुकर पालन में आ सकती हैं अगर हमारे किसान पशुपालक जो है अनदेखी करते हैं तो, लेकिन अगर पूरी तरीके से प्रबंधन अच्छे से अपनाया जाए तभी किस तरह की जो समस्याएं हैं आ सकती हैं और उनका निदान कैसे किया जाए जिससे सफलतापूर्वक शुकर पालन हो सके।
1: शुकर पालन में जो है बहुत तरह की बीमारियां होती है, लेकिन उन बीमारियों को आप प्रॉपर अच्छे प्रबंधन के द्वारा जो है उसको दूर कर सकते हैं। जैसे कि जो शुकरों को समय पर जो है टीकाकरण करें, इसमें शुकरों में जो मुख्य बीमारियां जो है, एक तो क्लासिकल स्वाइन फीवर जो है शुकर जो है, उसके अलावा खुरपका और मुंहपका रोग है, और एक पोर्साइन सर्को वायरस है। इन तीन रोगों के लिए जो है टीकाकरण जो है जनरली जो है जब माँ से बच्चे को अलग करते हैं उस समय जो है क्लासिकल स्वाइन फीवर का टीका देते हैं, और हर 6-6 महीना पर जो अंतराल पर उसका बूस्टर डोज देते हैं। उसके अलावा ये जो बाकी जो दो टीके मैंने बताए उसका भी करें। इसके अलावा जो कई तरह के परजीवी होते हैं उसके लिए जो कृमि नाशक का उपयोग जो है हर 6-6 महीने पे जो है शुक्रों में करना चाहिए। इसके अलावा जो है शुक्रों को जो पिगलेट होते हैं उसमें आयरन की बहुत कमी होती है, तो उसको जन्म के 4 से 14 दिन के अंतराल चौथे दिन और 14वें दिन जो है आयरन डेक्स्ट्रान का इंजेक्शन दिलवाना चाहिए ताकि उसमें जो है एनीमिया की बीमारी ना हो। तो ये और इसके अलावा जो शुक्र में जो है माँ से बच्चे को जो है 42 दिन के बाद जो है अलग कर देना चाहिए। अगर आप माँ से बच्चे को अलग नहीं करेंगे तो वो फिर से गर्मी में नहीं आएगी, और गर्मी में नहीं आएगी तो बच्चे फिर से देने के कंडीशन में नहीं आएगी। तो अगर आपको ज्यादा मुनाफे कर रहे हैं तो इस तरह से जो है माँ से बच्चे को जो है वीनिंग के बाद जो है अलग कर देना चाहिए।
0: चलिए, इन बातों का ख्याल हमारे जो शुक्र पालक है उनको रखना होगा, और उसके बाद देखिए उनका जो ना सिर्फ लाभ जो है वो बढ़ सकता है बल्कि आर्थिक स्थिति और मजबूत हो सकती है। फिलहाल डॉक्टर सतीश आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। तो यहाँ डॉक्टर सतीश हमें जानकारी दे रहे थे, खासतौर से डॉक्टर पाठक अगर टीकाकरण की बात की जाए तो उतना ही महत्वपूर्ण हमारे दुधारू पशुओं के लिए भी है, क्या इसमें आप जोड़ना चाहेंगे?
2: देखिए बिल्कुल, पशुओं का टीकाकरण बहुत आवश्यक है, खासकर दुधारू पशुओं में तीन बीमारियां मुख्य रूप से, देखिए खुरपका मुंहपका FMD बोलते हैं, एक हिमोरेजिक सेप्टीमिया HS बोलते हैं, और ब्लैक क्वार्टर BQ। इन तीनों का वैक्सीनेशन जिन पशुपालक भाइयों ने अपने पशुओं का करा रखा है दुधारू पशुओं का, अच्छी बात है। जिन्होंने नहीं कराया है वो जल्दी से जल्दी अपने पशुओं का टीकाकरण इन तीनों बीमारी को लेकर आ लें। ये टीका जो है सभी पशु चिकित्सालयों में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, इसका कोई पैसा नहीं देना पड़ता है, बस सिर्फ आपको यह करना है कि अपने पशु को वहां पशु चिकित्सालय के पास लेके जाना है। साथ ही साथ जो है जिन्होंने पेट के कीड़ों की दवा नहीं पिलाई है अपने पशुओं को, उन जरूरी नहीं, मैं खाली दुधारू पशुओं की बात नहीं कर रहा, सभी पशुओं को अगर आपने पेट के कीड़ों की दवा नहीं पिलाई है तो वो भी दवा पिला लीजिए। और जो दूध देने वाले पशु हैं जिनसे आप दूध ले रहे हो, गाय या भैंस है, उनमें मस्टाइटिस थनेला रोग जो है इन दिनों काफी होता है, उसके बचाव के लिए जरूरी है कि आप अपनी जहां भी पशु का आवास है उसको साफ रखिए, वहां गंदगी मत होने दीजिए, और दूध जब भी निकालें तो स्वच्छ बर्तन में निकालिए और साफ पानी से पशु का थन धोकर दूध निकालिए। और आखिरी बात कि पशु को दूध निकालने के आध घंटे तक नीचे मत बैठने दीजिए ताकि उसको थनेला रोग जो है होने के चांसेस नहीं होंगे।
0: जी बिल्कुल, तो देखिए जो मूल मंत्र हो यही, अगर आप स्वच्छता अपनाएंगे तो स्वास्थ्य बेहतर आपके जो पशु है उसको मिल सकता है, साथ ही जो मानव स्वास्थ्य है वो भी इससे जुड़ा रहता है, तो ये जरूरी कि आप इस बात का ख्याल रखें। फिलहाल डॉक्टर केमल पाठक जी अपनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
2: नमस्कार।
3: तो जी हाँ किसान साथियों, जैसे आपने जाना भिन्न भिन्न परिस्थितियों में विपरीत परिस्थितियों में कैसे हमारे पशु बीमार हो जाते हैं और उन स्थितियों में हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, कहाँ हमें इसका इलाज करना चाहिए और कौन कौन सी बीमारियां इनमें आ सकती है, इनके रख रखाव में आदि महत्वपूर्ण जानकारियों को आज के खेती बाड़ी प्रोग्राम में आपने जाना। किसान साथियों, रेडियो टाइमटेबल 90.8 FM झाबवा की आवाज़ आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई और भी महत्वपूर्ण जानकारियों को आपके साथ साझा करेगा, परंतु अभी वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, आपसे पुनः कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ तो रेडियो टांट्याबिल 90.8 FM के साथ छवा की आवाज। रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांट्याबिल, रोज हांजे 6 થી 8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान। आपू रोज करहूं बातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा, एत्रे हमरता रेजो टांट्या भीलनो रेडियो स्टेशन 90.8 FM।

0: नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज के कलाकार के इस प्यारे से प्रोग्राम में, जहां कुछ ख्वाब आवाज बनकर सचते हैं, कुछ जज्बात गीतों में ढल जाते हैं, और जब दिल गाता है तो हर सुनने वाला अपना सा लगने लगता है। आज हम लेकर आए हैं कुछ ऐसे ही कलाकार जिनकी आवाज में सच्चाई है और सुरों में जादू। तो चलिए इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करें। लीजिए दोस्तों, हाजिर हैं सीमा मैम, आज की प्रतिभा, आज की टैलेंट, आज की सिंगर। हम सीमा मैम के बारे में जानेंगे, सीमा जी से बातचीत करेंगे, कौन है वो भला, क्या करती है वो, कहाँ है वो, और फिर उनके संगीत का आनंद उठाएंगे। तो सीमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं, वेलकम टू अवर प्रोग्राम। और हमारी जो आज के कलाकार की फैमिली है ना, उनसे थोड़ी सी बात कीजिए, वो एंक्शस हैं। They wish to know about you. Who are you? कौन हो आप? कहाँ हो? क्या करती हो आप? थोड़ा बताइए ना।
1: ठीक है, मैं मुंबई में रहती हूँ और I'm an HR professional और been working for the last 17 to 18 years और अभी फिलहाल it's more on flexibility kind of work from home COVID से, but also into a different industry like social media, वो भी handle करती हूँ मैं।
0: Okay.
1: And yeah.
0: Please go on, बोलिए ना।
1: हाँ, and also singing has been a beautiful journey in my life, and it just came into my life ऐसे ही। ऐसा कुछ ये नहीं था कि मुझे सीखना है, but that has become a very important aspect of my life now.
0: Cool, बहुत सुंदर। तो दोस्तों, मैं सीमा जी को थोड़ा सा छेड़ना चाहूंगा आप सब लोगों की इजाजत से। सीमा जी, पहले तो मुझे यह बताओ, HR का क्या मतलब, ह्यूमन रिलेशंस या ह्यूमन रिसोर्सेस?
1: इट इज ह्यूमन रिसोर्सेस। तो मेरी जो स्पेशलाइजेशन है वो रिक्रूटमेंट में है, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, वो स्पेशलाइजेशन है।
0: ओह माय गॉड, यू पीपल आर डेंजरस, बिकॉज़ आई आल्सो हैव बीन वर्किंग इन इंडस्ट्री फॉर 35 इयर्स, एंड देन ऑफ कोर्स जिस लेवल तक मैं गया वहां पर रिक्रूटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक वक्त ऐसा भी आया था कि विद इन 10 डेज मेरे को 80 रिक्रूटमेंट्स करने का टास्क मिला था, 80। सो ऑफ कोर्स जो एचआर मैनेजर थे उनके साथ मेरा बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेशन रहा इमीडिएटली। सो देयर आर अ नंबर ऑफ थिंग्स यू अंडरस्टैंड, एंड बहुत सारे लोगों को भी समझ में आ रहा होगा कि रिज्यूमे इज, एंड देन वर्चुअल टॉकिंग, सो मेनी थिंग्स।
1: जी, अभी तो वर्चुअल टॉकिंग इंटरव्यू होते हैं, लेकिन पहले तो ऐसा नहीं होता था। तो वी हैड टू वेट फॉर द कैंडिडेट्स टू कम, फिर वो आते थे, फिर वी हैड टू मेक देम कंफर्टेबल, तो वो एक अलग चीज होती थी तभी।
0: Sure.
1: अभी तो थोड़ा सा फॉर्मेलिटी, इट्स अ लिटिल डिफरेंट राइट नाउ, बट इट्स पार्ट ऑफ द गेम। जी
0: राइट। चलो दोस्तों, ऐसा करते हैं, मुझे बड़े सारे सवाल आ रहे हैं जो आप सब लोगों के लिए, मतलब जितने भी सुनने वाले लोग हैं उनके लिए बहुत काम के रहेंगे, और सीमा जी क्योंकि एक्सपर्ट हैं तो वो हमें हेल्प भी कर पाएंगी और हम लोग मजे भी करेंगे। लेकिन ठहरिए थोड़ा सा, पहले सीमा जी की संगीत को सुने फिर आगे बढ़े। तो लीजिए पेश करता हूं वो गीत जो उन्होंने हमारे लिए तैयार किए, आइए ना।

0: क्या शुरुआत है सीमा जी, अमेजिंग, थैंक यू, बड़ा मजा आया साहब। अच्छा सीमा जी, जो बात मेरे दिमाग में आ रही थी वो ये थी कि जमाना बदल गया है। हम आपके संगीत के बारे में और आपकी पर्सनैलिटी के बारे में अभी बात करते हैं, लेकिन प्रोग्राम को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हुए, थोड़ा सा ट्विस्ट देते हुए, जमाना बदल गया है, डिजिटलाइज हो गया है, बहुत मॉडर्न हो गया है, बहुत बहुत सारे बच्चे पढ़ाई करके टेक्निकल एजुकेशन लेके क्वालिफिकेशन लेके जॉब में आ रहे हैं, दे आर एस्पायरिंग टू बिकम गुड प्रोफेशनल्स। वहां पर रिज्यूमेज हमेशा से काम में आते रहे हैं और रिज्यूमे इज द फर्स्ट थिंग अ कैंडिडेट एक्चुअली सेंड्स टू अ कंपनी। अब मौसम बदल गया है तो बात डिजिटलाइज्ड हो गई है। आई एम ऑल्सो फीलिंग बिकॉज किसी जमाने में छोटे मोटे डिजिटलाइज्ड इंटरव्यूज मैंने किए, उस वक्त तो टीम व्यूअर वगैरह पे बातचीत हो जाती थी, बहुत हुआ तो स्काइपी पे हो गई। लेकिन आज के लिए मैंने कुछ एक जगह दो जगह देखा कि वर्चुअल रिज्यूमीज बनाने की बात करते हैं, दैट यू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन बैकग्राउंड एंड देन यू टेल अबाउट योरसेल्फ, और वो वीडियो आप कंपनी में भेज दो या तो मैनेजर को या एचआर पर्सनल को। क्या यही हो रहा है सीमा जी?
1: वेल इफ इट इज लोकल तो वो उतना नहीं हो रहा है, बट देर आर पीपल हु डू सेंड वर्चुअल इंटरव्यूज। बट जो हम चाहते हैं कि अगर हम लोग एक फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल थर्ड लेवल इंटरव्यूज होते हैं, तो फर्स्ट लेवल अगर हम लाइक वॉइस चैट या यू नो वीडियो कॉलिंग करें या व्हाट्सएप भी ले या टीम्स में ले लें, तो वो अच्छा होता है बिकॉज वी गेट अ सेंस ऑफ द पर्सन कि कैसे बात करते हैं, और तभी वो इतना टेक्निकल इंटरव्यू नहीं रहता है।
0: करेक्ट।
1: बट इट इज बेसिकली जो एटीट्यूड है, जो की पर्सनालिटी है, वो फिट होती है कि नहीं रोल में, तो वो हम गेज करते हैं और वहां से फिल्टर करके, बिकॉज वी डोंट वांट टू वेस्ट पीपल्स टाइम आल्सो, क्योंकि इतने लंबे से लोग आते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो वहां पे फर्स्ट इंटरव्यू लेवल का वो फिल्टरेशन हो जाता है। एंड देन वंस वी फील कि सब यू नो ऑल द थिंग्स आर इन प्लेस, फिर हम उनको इनवाइट करते हैं टू मीट अस पर्सनली। बट जो मीटिंग पर्सनली होता है वो एक दैट्स अ डिफरेंट, यू नो दैट्स एक्चुअली अ सीरियस वन टू वन टॉक। So we still prefer the old fashioned way of you know having the person come in front of us, kyunki tabhi hum unka jo interview karte hain is basically about the attitude, their you know their behavior and the way they are, aur fir baad mein technical interviews hote hain.
0: Sure, I perfectly understand that. Bas mera puchne ka uddeshya Seema ji ye tha, purpose ye tha ki कुछ कॉलेजेस में मैं भी जाता हूं तो वहां पर बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर हम अपना रिज्यूमे कैसे प्रिपेयर करें, एंड देन वर्चुअल की बात आ जाती है, तो मैं उनको हमेशा सजेस्ट करता हूं कि आप रिज्यूमे तो ऑन पेपर बनाइए ही, बट साइमल्टेनियसली आप एक वीडियो फॉर्मेट भी, मतलब आप समझो 2 मिनट का 1 मिनट का, सो दैट वो व्हाट्सएप के ऊपर भेजा जा सके, क्योंकि आपकी बॉडी लैंग्वेज समझनी है, आपका एटीट्यूड समझना है, आप कैसे बात करते हो, कैसे प्रोनंसिएशन है, डिक्शन कैसा है, तो एक फर्स्ट हैंड इंप्रेशन बनता है ना
1: जी।
0: उसके बाद तो ऑफ कोर्स आप लोग उनको भाई आप एक स्क्रीनिंग कर लेते हो, उसके बाद ऑफ कोर्स आपको जो जो जो भी कैंडिडेट थोड़ा ठीक लगता है कि यार इसकी बॉडी लैंग्वेज ठीक थी, ही वाज यू नो अप्रोचिंग द कैमरा इन अ राइट वे, तो उसको बुलाओ, बात करते हैं
1: जी।
0: तो ठीक है, मतलब आई जस्ट वांटेड टू नो दिस फर्स्ट यू नो इंफॉर्मेशन। तो दोस्तों
1: बट इट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग बिकॉज मेनी पीपल डू दैट, तो इट्स रियली गुड। आई मीन और फिर उनकी जो बोलने का जो जो फ्लुएंसी होती है वो भी पता चलता है। सपोज अ पर्सन हु इज इनटू बिजनेस डेवलपमेंट, सो दैट इज वन ऑफ सेल्स में है, मार्केटिंग में है, तो वो एक टेक्निक और यू नो दैट काइंड ऑफ फ्लुएंसी वो पता चलता है। सो इट हेल्प्स एक्चुअली इन फिल्टरिंग अ लॉट ऑफ रिज्यूमेस लाइक दैट।
0: लेकिन सीमा मुझे यहाँ पर ये बताइए ना, अगर किसी कैंडिडेट ने आपको अपनी वर्चुअल रिज्यूमे में भेज दिया, मतलब वीडियो है ना
1: जी,
0: आप नाराज तो नहीं होते हो ना?
1: नहीं नाराज क्यों?
0: नहीं नहीं, आपको लगता होगा यार
1: नहीं
0: ऑडेसिटी ऑफ द कैंडिडेट कि भाई यार अच्छा मेरे को वर्चुअल रिज्यूमे में भेज दिया यार, मतलब ऐसा तो नहीं होता ना
1: इंप्रेस करने के लिए? नहीं एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट।
0: क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ मैम, क्योंकि कई बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर अगर हमने वर्चुअल रिज्यूम भी बना के भेज दिया तो एचआर वाले नाराज तो नहीं हो जाएंगे? वो कहेंगे अच्छा कुछ ज्यादा स्मार्ट बन रहा है बच्चा ऐसा करके। मैंने कहा नहीं यार ऐसा नहीं होता।
1: नहीं, क्योंकि आजकल बहुत लिंक्डइन में जो है फैसिलिटी भी है जहाँ पे वर्चुअल कॉल कर सकते हैं इमिजिएटली, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स वहाँ पे भी अप्रोच करते हैं, सो विच मेक्स लाइफ अ लिटिल मोर इजी फॉर रिक्रूटर्स आल्सो.
0: करेक्ट, इजी के साथ साथ इजी के साथ साथ बेटर भी तो होगी ना सीमा, कि आपको कैंडिडेट इमिडिएटली फ्रॉम द वेरी फर्स्ट चांस देखने को मिल रहा है, उसकी बात सुनने को मिल रही है. आफ्टर ऑल डिजिटलाइजेशन का यूसेज हम कब करेंगे, That's the point.
1: Absolutely.
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. एक बहुत ही प्यारी गाइडेंस सारे बच्चों के लिए जो भी हमारा प्रोग्राम आज सुन रहे होंगे, उनको बहुत क्लैरिटी आई होगी, चाहे छोटे लेवल की पोजीशन हो चाहे बहुत बड़े लेवल की पोजीशन हो. वर्चुअल रिज्यूमीज वर्क. चलिए,
1: यस,
0: बहुत ही प्यारे से गीत सुनवाता हूँ सीमा जी ने हमारे लिए बहुत मेहनत की और रिकॉर्ड किए. आइए दोस्तों, उनका लुत्फ उठाएं और फिर वापस आए सीमा जी के पास.

0: तो आपके संगीत को समझने के लिए तो सबसे सबसे इजी क्वेश्चन तो पहले ये आएगा नंबर वन एंड देन नंबर टू. नंबर वन इज कि आपने अपनी संगीत की, अपनी गायकी की, अपने इस पैशन की शुरुआत कब करी? एमेच्योर या ट्रेंड, वो सब ठीक है, बट गायकी कब शुरू करी पहले तो ये बताइए. नंबर टू, किस तरीके का संगीत पसंद करती हैं आप? आई मीन टू से क्लासिकल, सेमी क्लासिकल, फोक, भजन, सूफी, अनप्लग्ड, किस तरीके का म्यूजिक आपको ज्यादा पसंद है? सो आई आस्क्ड टू क्वेश्चंस, बताइए ना.
1: सो द फर्स्ट क्वेश्चन लेट मी आंसर यू कि मैंने शुरू की 2004 में. ओके, सो मेनी मेनी इयर्स अगो. एंड या इट जस्ट एक्सीडेंटली केम इन टू माई लाइफ. और एक्चुअली गाने की रुचि थी, म्यूजिक की बहुत रुचि है. ओके, एंड इट वॉज नॉट अबाउट सिंगिंग बट लिसनिंग टू म्यूजिक. लाइक आई एम अ फनेटिक, पैशन ऑफ लिसनिंग टू एनी काइंड ऑफ म्यूजिक. तो इट जस्ट हैपन कि 2004 में मेरी एक मेरी करीबी दोस्त है, फ्रेंड, उन्होंने सजेस्ट किया कि वाई डोंट वी ज्वाइन अकेडमी, अ क्लास. तो आई सेड ओके, हम जाएंगे. एंड वी स्टार्टेड अ क्लास टुगेदर, श्रुति संधानास अकेडमी करके हैं. और हम लोग वहां पे रजिस्टर करके वी केम, एंड देन वी सॉ द काइंड ऑफ क्लासेस विच वर हैपनिंग एंड स्टफ लाइक दैट. एंड देन द होल जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम 2004 और इट कंटिन्यूज स्टिल टुडे. द सेम फ्रेंड ऑफ माइंड, मी एंड हर, वी कंटिन्यू टू लर्न म्यूजिक.
0: आपने कहा एकेडमी, डज दिस
1: जी
0: मीन कि आपने क्लासिकल सिंगिंग को प्रॉपरली सीखा?
1: जी नहीं. सो दिस इज लाइट हिंदुस्तानी म्यूजिक विच इज बीइंग टॉट. और जस्ट एज वी लर्न द म्यूजिक, तो क्या होती है, अगर हम, ये मेरा मानना है कि वंस वी एंटर, बिकॉज एट द एज दैट वी स्टार्टेड, ओके, जब हम डायरेक्टली क्लासिकल में एंटर होते हैं, वो थोड़ी सी झिझक होती है कि वी वोंट बी एबल टू डू दिस. तो दैट वाज माय काइंड ऑफ एक्सपीरियंस कि ये बहुत ही इंटेंस है, ये बहुत ही, ये राग सीखना, ये है बहुत इंटेंस है. सो बट व्हेन वी टुक दिस अप्रोच फ्रॉम दिस एकेडमी, दे स्टार्ट, दे पर टीचिंग अस, लाइक मेरे गुरु हैं उमेश विपिन सर, उमेश विपिन खरे,
0: जी
1: और उन्होंने ही स्टार्टेड अस विद लाइट हिंदुस्तान क्लासिक, लाइक फिल्म म्यूजिक विच वर ओल्ड क्लासिक सॉन्ग्स हैं, गजल्स हैं ऐसे. तो वो हमारी जो संगीत की रुचि थी, वो ही सॉर्ट ऑफ एनहेंस्ड इट.
0: ऑल राइट, सो दिस वे एक्चुअली
1: सॉरी.
0: इट हैज स्टार्टेड विद योर म्यूजिक. ओके,
1: जी
0: देन सेकंड क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा, व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक डू यू लाइक?
1: यस, सो आई लाइक ऑल काइंड ऑफ सॉन्ग्स. आई लाइक हिंदी म्यूजिक, आई लाइक इंस्ट्रूमेंटल, आई लाइक लिसनिंग टू क्लासिकल म्यूजिक. जो पंडित भीमसेन जोशी हैं, पंडित जसराज हैं, आई लाइक कोक स्टूडियो म्यूजिक. तो इट्स अ वेराइटी ऑफ सॉन्ग्स एंड म्यूजिक दैट आई लाइक. इंस्ट्रूमेंटल आई लव. तो
0: सीमा जी प्लीज यार, बहुत जेनरिक आंसर हो गया. थोड़ा सा म्यूजिक बताइए ना जो एकदम कहीं दूर बजता हो, आपके कानों में पड़ जाए और आप बस खो जाते हो. ऐसा कोई तो म्यूजिक होता है ना, जैसे सूफी है या भजन है, मतलब आई मीन बी स्लाइटली मोर स्पेसिफिक.
1: सूफी, सूफी, यस,
0: सूफी. ऑल
1: आई
0: राइट,
1: लव सूफी म्यूजिक, यस आई लव.
0: दैट्स अ पॉइंट, दैट्स अ पॉइंट. पॉइंट ये होता है, देखो मैम, पॉइंट इज कि हम लोग भी म्यूजिक में ही है और हमको सब म्यूजिक, ऑफ कोर्स कोई भी म्यूजिक अच्छा ही होता है, फिर वो चाहे झरने की कलकल हो, चाहे रात में पत्तियों का खड़खड़ाना हो, सभी बहुत सुंदर है.
1: जी
0: लेकिन फिर
1: जी
0: भी होता है ना, कुछ एक संगीत है, कुछ एक गीत हैं जो बस दिल को छू के निकल जाते हैं और बस मे भी
1: जी
0: बरबस हम रो पड़ते हैं कई बार, तो होता है ये.
1: जी डेफिनेटली. और एक्चुअली मुझे लगता है सूफी गाने में वो एक जो एक रस, वो भक्ति का रस होता है या डिविनिटी का रस होता है या वो स्पिरिचुअल दैट कनेक्ट का जो रस होता है. सो दैट इज समथिंग विच टचेस मी. सो व्हेन आई लिसन टू सूफी म्यूजिक.
0: दैट इज वेरी वेरी ट्रू, वेरी वेरी ट्रू. बड़ी बिल्कुल अपने बिल्कुल ही कोर जो बात होती है ना, वही कही है आपने कि जो वो एक भक्ति का रस होता है. दे डोंट टेक एनी नेम एज सच, लेकिन सीमा, ज्यादा अच्छी बात मुझे सूफी में क्या लगती, दे आर मस्त, मतलब उनको किसी की परवाह नहीं है, मस्त होके गा रहे हैं, आई मीन दे आर इनटू देयर गॉड, बस खत्म होगी दुनिया, दे डोंट केयर अबाउट एनीबॉडी, झूम के गा रहे हैं, दैट्स सो ब्यूटीफुल। चलिए दोस्तों, हम भी थोड़ा सा झूमे, देखे ना सीमा मैम ने इतने बढ़िया गीत हमारे लिए रिकॉर्ड किए हैं, सो लेट्स एंजॉय, क्लोज योर आईज, एंजॉय दिस म्यूजिक।

0: अमेजिंग, ब्यूटीफुल, बहुत खूब,
1: थैंक यू।
0: चलो थोड़ा सा आपको पर्सनली और समझते हैं। आपकी म्यूजिक की बात हो गई, हम लोग ने ह्यूमन रिसोर्सेज की भी टेक्निकल बात कर ली। नाउ अबाउट यू, नंबर वन, अपने पूरी जिंदगी के सबसे अच्छे अकॉम्प्लिशमेंट के बारे में बताइए। कोई ऐसी उपलब्धि जिसको आप आज भी याद करती हो ना तो रोंगटे खड़े हो जाते हो, मतलब बहुत मजेदार कोई ऐसी अकॉम्प्लिशमेंट बचपन से लेकर आज तक कोई भी।
1: ओके, बचपन से आई बीन वेरी एडवेंचरस, तो आई बीन स्पोर्ट्स प्लेयर, मैं बैडमिंटन खेलती हूँ, एंड यस, एंड आल्सो आई एम अ फिटनेस फ्रीक, सो ये सब है। लेकिन एक इच्छा बहुत थी मेरे मन में कि आई नीडेड टू डू स्काई डाइविंग।
0: ओप्स, ओके,
1: सो जी, यस एग्जैक्टली, ओप्स,
0: डिफिकल्ट बकेट लिस्ट है यार आपकी। ऑलराइट, स्काई डाइविंग,
1: और स्काई डाइविंग, और ये मेरे मन में एक्चुअली थी, बट आई नेवर थॉट आई विल एवर गेट टू दैट पॉइंट। बट अबाउट आई थिंक 6-7 इयर्स अगो it just accidentally happened, ek chance mila, and we were three ladies actually who went and took this dive, or it was the most exhilarating experience of my life, absolutely. It's like, you know, aap fear conquer karte ho and you are just letting go, jo bhi ho jaye ho jaye, you know, that kind of a exhilarated feeling jo hoti hai. But till we got on to that moment, it was like pretty fearful.
0: Okay,
1: but it was one of the best experiences of my life. Yes,
0: थोड़ा सा और हमें डराइए सीमा जी, मजा आएगा। जब आप प्लेन से कूदे तो जो हवा का थर्स्ट होता है ना आपके बालों में, आपके गालों में, आपकी बॉडी पर जो हवा का थर्स्ट आता है, वो कैसा फील हुआ था? मतलब इट वॉज इट इमेंस, बहुत ज्यादा था, आपको ऐसा लग रहा था कि इट्स पेनफुल, इट मे टेक यू समवेयर एल्स, कैसा था? जस्ट हमें बताइए ना, वी विश टू लिव दैट मोमेंट।
1: सी एक्चुअली द फर्स्ट थ्रस्ट इज, फर्स्ट थिंग इज योर, you know, you have your eye goggles, your mouth is open and you are trying to breathe, okay? Because you are just at that, you know, immediate level, atmospheric wo jo level hai, so wahan pe you are trying to adjust your breathing and your body. So it's just a split second jo ek fear hoti hai, but beyond that, I think it was just, your mind just goes blank.
0: Ooh.
1: So it is just a blank.

0: I'm feeling, and within a few seconds, then when you come to a level where you are able to breathe, so तब तक आपको एक्चुअली कुछ पता ही नहीं चलता है when you reach that level, and then you are able to actually calm your mind and you know very calmly look around. So I mean, it is just बहुत ही जल्दी, बहुत ही quick हो जाता है वो जो instantly हम लोग जब jump करते हैं ना, so that is a very very fine line of what do you say, going totally blank, but
1: Okay. I was just
0: it's
1: trying.
0: very exhilarating.
1: My
0: You
1: goodness.
0: should try
1: अरे
0: something.
1: यार, एक्सिलरेटिंग बोलने से ना समझ नहीं आ रहा है. आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू पुट माई सेल्फ इन योर शूज व्हेन यू हैड बीन ट्राइंग टू जंप आउट ऑफ द प्लेन. तो
0: यस
1: इतना नीचे, ओ माई गॉड. और उसके बाद ठीक है, आपके गॉगल शॉगल एंड ऑल काइंड ऑफ गेयर यू आर वियरिंग, एंड देन
0: जी
1: मे बी
0: जी
1: द गाइड इज ऑल्सो देयर टू यू नो.
0: बट दिस इज अ टैंडम. हाँ, मेरे साथ कोई था, सो
1: अच्छा,
0: आई हैड यस यस इट वाज नॉट ओनली सिंगल, क्योंकि वो छोड़ते नहीं है
1: हाँ, ऑफ कोर्स, दैट्स व्हाई.
0: अनलेस यू आर ट्रेन. हाँ, सो एक टैंडम, ये तो टैंडम स्काई डाइविंग था. तो
1: अरे यार, फिर भी, ओ माय गॉडनेस, आई मीन जस्ट लुकिंग डाउन थाउजेंड एंड
0: यू
1: थाउजेंड्स ऑफ
0: फील लाइक अ
1: फीट
0: बर्ड.
1: नीचे,
0: यस,
1: ये ना
0: यू
1: पता
0: लुक लाइक, यू
1: नहीं.
0: फील लाइक अ बर्ड.
1: फिर वो वाली बात आ जाती है भगवान से मिलने की, कि भगवान हमारे पास आए या हम भगवान के पास गए.
0: जी. वो उस मोमेंट में होता है जब आप वो लीव लेते
1: ओ
0: हो.
1: माय गॉड,
0: यू डू नॉट नो वेदर आप जल्दी पहुंच जाएंगे ऊपर या भगवान
1: या
0: आपको.
1: ओ माय
0: बट
1: गॉड.
0: नो, गॉड्स बीइंग
1: देखो सीमा,
0: काइंड.
1: ऐसा ना, मेरे को तो पैराग्लाइडिंग का जरूर एक्सपीरियंस है, बट स्काई डाइविंग आई डोंट नो.
0: जी,
1: मे बी
0: नो नो इफ
1: समडे.
0: यू शुड. यस
1: ठीक है, लेट
0: यस
1: लेट लेट मी जस्ट नोट इट डाउन इन माय बकेट लिस्ट. ओके, करते हैं इसको.
0: यस
1: चलो
0: जी.
1: दोस्तों, मुझे बताइएगा अगर आप लोगों में से भी किसी ने स्काई डाइविंग कर रखी है, मेरे साथ शेयर कीजिए, हम आपके मोमेंट्स जीना चाहेंगे. चलिए,
0: जी
1: तब तक सीमा जी की गायकी को जीते हैं. उन्होंने जो गाया है उसको फील करते हैं. आंखें बंद कीजिए, डाइव कीजिए उनके संगीत में. आइए सुनते हैं.

0: बहुत खूब, अमेजिंगली अमेजिंगली ब्यूटीफुल। तो चलिए सीमा जी आगे बढ़ते हुए मुझे अपने दोस्तों के बारे में बताइए। चलिए, हु आर योर फ्रेंड्स? आई मीन टू से आपके बहुत बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे या शायद नहीं होंगे क्योंकि आप एचआर पर्सनल हैं। तो अपने किसी दो प्यारे से दोस्तों के बारे में बताइए। टू विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द अदर फ्रेंड्स यू आर हैविंग, मैं सब लोगों से करबद्ध क्षमा मांगता हूं कि मैं दो लोगों को चुनने के लिए बोल रहा हूं, विच कुड बी अ डिफिकल्ट टास्क फॉर सीमा जी, बट स्टिल व्हाई आर दीज गाइज योर गुड फ्रेंड्स, टेल मी।
1: ओके, सो लेट मी टॉक टू यू अबाउट अ वेरी डियर एंड क्लोज फ्रेंड जो हु आई सेड कि वो इंस्ट्रूमेंटल रही हैं टू स्टार्ट माय सिंगिंग जर्नी। तो उनका नाम वर्षा है और सो वी स्टार्टेड दिस जर्नी ऑफ सिंगिंग टुगेदर और हम ऐसे दोस्त हैं जो बहुत अलग पर्सनालिटीज के हैं, तो वेरी वेरी डिफरेंट पर्सनालिटीज, बट when we are together we complement each other's personalities and there's a lot I've learned from her and there's a lot that she has absorbed from me. So and we travel together, we also work together, and beyond it's like more like an extended family. So aur ye jo dosti hai is like we know the limits of our friendship, you know, though we are so close but we also know our boundaries. तो दो स्पेस भी रहता है एक दूसरे के, यू नो, फ्रेंडशिप में, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ बिकॉज वी नो ईच अदर फॉर द लास्ट, आई मीन आई नो हर फॉर द लास्ट ऑलमोस्ट 25 टू 30 इयर्स नाउ। सो जी जी, सो एंड वी लर्न म्यूजिक टुगेदर, वी ट्रैवल टुगेदर, वी एंजॉय आवर मोमेंट्स टुगेदर। सो या, शी इज वन ऑफ माई वेरी डियर फ्रेंड्स एंड आई हैव अनदर फ्रेंड हु इज बीन माई वेरी मेरे, आई थिंक आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स समीर जी, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, जी जी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, और एंड सो आई हैव अनदर फ्रेंड हु इंट्रोड्यूस्ड मी इनटू स्पिरिचुअलिज्म, जो मेरी दिस वाज आल्सो अबाउट 20-25 इयर्स अगो जब मैंने फर्स्ट रेकी का क्लास किया था। सो आई एम अ रेकी हीलर एंड रेकी हीलिंग फॉर माई सेल्फ विच आई एंटर्ड दिस कोर्स एंड देन माई होल spiritual journey started after you know, और यहाँ पे ये मिले थे हमें, उनका नाम रूबी है, रूबी मदान करके, and she is an IIM person and I was so much in awe of her personality at that time. तभी मैं काम नहीं कर रही थी, I wasn't working, I started working late, और she used to be working in Dubai and she was a marketing person and she's still my mentor and guide, or there's almost about 15 to 16 years of difference between her and me.
0: Yes.
1: So
0: हाँ ठीक है,
1: amazing,
0: उम्र कोई बार नहीं होती यार,
1: absolutely.
0: अभी लेट मी टेल यू दिस, मैंने एक दिव्य दर्शन का प्रोग्राम बनाया और एक आज के कलाकार का प्रोग्राम बनाया जैसे आपका हो रहा है, ये बॉम्बे में ही है, मीना मैम, मीना अय्यर, आई थिंक, यस,
1: शी इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन,
0: रियली।
1: तो हम एक ही एकेडमी में हैं और हम लोग, हमारा एक ग्रुप भी है संगीत का, तो हम साथ में भी गाते हैं। शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल सिंगर, ब्यूटीफुल सोल, ब्यूटीफुल पर्सन,
0: या शी इज इनटू स्पिरिचुअलिटी एज वेल, है ना। तो उम्र कोई बार नहीं होती, मैं ये कह रहा था ना, कुछ दो तीन प्रोग्राम बन गए उनके साथ, उनकी बुक आ गई शिवनंदन लहरी, तो आई एडमिट टू दैट, now she has become a very good friend of mine. तो उम्र का कुछ लगता ही नहीं है, वो she keeps on asking me things and I keep on asking her कि मैम बताओ ये बताओ ये करो वो करो, एक भजन दे दो, एक गजल दे दो,
1: so
0: उम्र का ऐसा कुछ होता नहीं है यार, बहुत ये सब ना हमारे दिमाग में है, डेवलपमेंट हो गया है, अब हम बड़े हो गए हैं, हम बहुत सारी चीजें सीख गए हैं, so
1: it's when you connect with a person and you know that, you know, your interests are, yeah that's what, तो जो इंटरेस्ट सिमिलर हैं, लाइक माइंडेड होते हैं, तो जरूरी नहीं है कि यू नो हम उम्र में होना चाहिए, बट आई थिंक इट इज जस्ट अ कनेक्ट व्हिच हैपेंस,
0: ब्यूटीफुल
1: जी,
0: वाओ। तो चलिए दोस्तों, सीरियसली मैं बहुत शुक्रगुजार हूं ऊपर वाले का, माँ सरस्वती का, आई एम ब्लेस्ड, आप सब लोग मेरे से जलते होंगे, आई अंडरस्टैंड, लेकिन चलो क्योंकि मैं इतने सारे लोगों से बात करता हूं एंड मेरी सबसे दोस्ती होती है, बहुत मजा आता है। तो दोस्तों, आइसोलेटेड आइलैंड्स बनकर मत रहिए, टॉक टू पीपल। हमारा परिवार इसीलिए है यार, ग्रुप बना हुआ है, टॉक टू अस। और मोर ओवर मैंने कई बार कहा है, मेरा रेडियो स्टेशन है ही इसलिए कि लोग बात करें, मैं नहीं, आप लोग बात कीजिए। सो प्लीज कम ओवर, टॉक टू एवरीबॉडी। बहुत खूब, चलिए अभी तो संगीत का माहौल है, शाम का वक्त है, मेडिटेट करते हैं सीमा जी के गाए हुए इन गीतों पर, उसके बाद सीमा जी से फिर बात करेंगे।

0: अमेजिंगली ब्यूटिफुल, क्या शाम है।
1: थैंक यू।
0: वो एक गाना याद आ रहा है मेरे को, वो शाम आती थी मगर ऐसी न थी, बड़ा प्यारा गीत है, शायद लता मंगेशकर का है या आशा भोसले जी का है। ब्यूटिफुल। सो
1: लता जी का है।
0: आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इवनिंग, जब हम आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं, अमेजिंग, बड़ी प्यारी सी नींद आती है रात में जब ये सारा गीत संगीत सुनते हैं। तो चलो सीमा जी, बस अब मैं उस जगह आ गया आपके साथ चलते चलते जहां पर मुझे आपसे रिक्वेस्ट करनी है कि हमारे सारे आज के कलाकार के परिवार के लोगों से, जिन्होंने आज आपकी बातें सुनी, आपके फैन बने, कुछ बात कीजिए उनसे, कुछ कहिए उनको, मैसेज दीजिए उन्हें।
1: वेल, आई वुड जस्ट से दैट जस्ट लिव द मोमेंट। जितनी भी लाइफ, यू नो, वी आर ब्लेस्ड टू गेट सच अ ब्यूटीफुल लाइफ, और जितना भी हम सीख सके, कितनी भी रुचि ले सकते, लेट अस लिव द मोमेंट, बी पॉजिटिव। चैलेंजेस तो आते ही रहेंगे लाइफ में, बट आई थिंक वन जस्ट नीड्स टू फाइंड, यू नो, योर पीस इन देम, फेस द चैलेंजेस ब्रेवली, बट डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग जॉय इनटू योर लाइफ। So whether it's music, whether it is, you know, books, whether it is friends, whether it is anything, but bring a lot of love and bring a lot of joy into your life by sharing also. You know, but there's a lot of joy when you start sharing also whatever your good moments are. So, I mean, I think we're all blessed ki itni beautiful life mili hai hum.
0: Sure. So, दोस्तों, सीमा जी का बहुत ही सीधा साधा, क्रिस्प बट बहुत पावरफुल मैसेज है। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपनी जिंदगी के लिए शुक्रगुजार बनिए, थैंक यू कहते चलिए और संगीत सुनते चलिए। थैंक यू सीमा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे प्रोग्राम में आए। थैंक यू।
2: कहने को वैसे तो सारा सुकून है, फिर भी ये दिल है के इसको जुनून है।
0: दोस्तों, आज के कलाकार के इस सुरीले से सफर में बस यहीं तक। मुझे उम्मीद है आज की ये महफिल आपके दिल में एक मीठी याद छोड़ गई होगी। दोस्तों, कुछ गीत खत्म नहीं होते, बस दिलों में बस जाते हैं, और जब भी याद आते हैं तो फिर से मुस्कुराहट बिखेर जाते हैं। तो हम फिर आएंगे नए सुरों और नए कलाकारों के साथ, तब तक अपने दिल को बस यूं ही गुनगुनाने दीजिए। नमस्कार।

शुभ प्रभात दोस्तों, एक नई सुबह, नई रोशनी और नए विचारों के साथ आपका स्वागत है हमारे आध्यात्मिक कार्यक्रम दिव्य दर्शन में। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे सकारात्मक सोच, मन की स्थिरता और दिन की शुरुआत शांति और ऊर्जा के साथ करने की। तो चलिए एक गहरी सांस लीजिए, मन को हल्का कीजिए और हमारे साथ इस सुंदर सुबह की यात्रा शुरू कीजिए। और आज हमारे साथ एक प्रबुद्ध मेहमान मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे आध्यात्म के बारे में, धर्म के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं दिव्य दर्शन।

0: नमः। शुभ प्रभात दोस्तों, दिव्य दर्शन के इस बहुत ही प्यारे से प्रोग्राम में, पवित्र प्रोग्राम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ डॉक्टर पीएम भारद्वाज साहब जुड़े हुए हैं और आज की जो चर्चा है वो बहुत बहुत जरूरी है, आज के परिप्रेक्ष्य में भी और पुराने परिप्रेक्ष्य में भी, और जो आगे आने वाला समय है उसके लिए भी ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हम इस बात को ठीक से समझें, अपनाएं और उसको प्रैक्टिस करें, तभी ये पूरा का पूरा समाज सुरक्षित रह पाएगा, चल पाएगा। सबसे पहले भारद्वाज साहब का स्वागत करते हुए, आभार प्रकट करते हुए मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि हमारे सुनने वालों को अपने बारे में थोड़ा सा बताएं कि आप कहाँ हैं सर, क्या करते हैं।
1: पहले सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपको दूंगा समीर जी कि आप एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक सनातन दर्शन के बारे में, सनातन धर्म के बारे में आज आप ये चर्चा कर रहे हैं। ये इस समय नीड ऑफ द आवर है कि इस सब्जेक्ट के बारे में ज्यादा से ज्यादा चर्चा होनी चाहिए। जहां तक सवाल मेरे परिचय का है, मेरा नाम डॉक्टर पीएम भारद्वाज है। मैं भारत सरकार की सार्वजनिक क्षेत्र की चार संस्थाओं का पूर्व एमडी सीएमडी हूं और साथ में मैं नेशनल लेवल पे मोटिवेशनल एवं मैनेजमेंट गुरु भी हूं और मैंने काफी सारे लेख लिखे हैं जिसमें कि सनातन धर्म के, सनातन दर्शन के ऊपर भी मैंने बहुत सारे लेख लिखे हैं
0: जी।
1: और वर्तमान में मैं जयपुर में हूं, मेरा निवास जयपुर में है।
0: बहुत सुंदर। तो दोस्तों आपने जान लिया कि जो भी आज हमारे अतिथि हैं वो अपने विषय में पारंगत हैं, तो जाहिर से बात है हमें हल्की फुल्की बातें नहीं, बिल्कुल क्लियर, गहरी, गुनी हुई, समझी हुई बातों के बारे में पता चलने वाला है। तो शुरू करते हैं भारद्वाज साहब, और सबसे पहला बिल्कुल सिंपल सवाल जो मेरे दिमाग में आ रहा है, तो मेरे सुनने वालों, जितने भी हमारे श्रोता हैं उनके दिमाग में भी आ रहा होगा। बार बार हम लोग सनातन धर्म, सनातन धर्म, सनातन धर्म सुनते हैं, तो सबसे पहले बिल्कुल सिंपल हिंदी में, सिंपल भाषा में हमें समझाइए, ये सनातन धर्म वास्तव में है क्या?
1: देखिए समीर जी, सनातन धर्म सात्वत सत्य है। सात्वत सत्य का मतलब है जो पहले था, अभी है और आगे भी, जो कि अनंत है, ऐसा सत्य है। नैतिकता, आत्मज्ञान और मानव कल्याण पर आधारित जीवन दर्शन है जो समय, स्थान और परिस्थितियों से परे है। समय, स्थान और परिस्थिति, चाहे हम भारतवर्ष में बात करें, चाहे किसी और दूसरे देश की बात करें, और समय चाहे भूतकाल की बात करें या वर्तमान की बात करें या भविष्य की बात करें, हर परिस्थिति से ये परे है, मतलब हरदम ये सत्य है
0: जी। तो ये धर्म किसी विशेष समुदाय का है या सभी का है, क्या मतलब, इसको थोड़ा सा और समझाइए सर।
1: देखिए, जो सत्य होता है वो तो सभी पे लागू होता है, और सत्य जो है वो हर व्यक्ति के लिए, सत्य तो सत्य है, इसमें किसी जाति का, जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा, न्यूटन का ग्रेविटी लॉ है। अब ये ग्रेविटी लॉ ऐसा नहीं है कि ये भारतवर्ष के लिए ही है, अमेरिका में लागू नहीं होगा, या ये जो है स्थान की बात करें, अगर पाकिस्तान में लागू नहीं है या चीन में लागू नहीं है, ये ग्रेविटेशनल लॉ हर जगह लागू है। तो इसी तरह से जो सनातन दर्शन है या सनातन धर्म की बात अगर हम करें, ये एक जीवन जीने की पद्धति है और ये हर व्यक्ति के लिए सत्य चीज है और ये सबके लिए लागू है, चाहे वो किसी भी देश का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो।
0: होता क्या है भारद्वाज साहब की आज तक की डेट में जितना भी मैंने समझा सनातन को या सनातन के शब्द को सुना, हमेशा ये हो जाता है कि साहब ऐसा एक इम्प्रेशन है, ऐसी एक समझ बन गई है समाज में कि सनातन मतलब हिंदू धर्म, सनातन धर्म मतलब हिंदू। तो क्या ये सेम है या अलग अलग है सर? क्या हिंदू धर्म ही सनातन धर्म है, क्या है?
1: समीर जी, आपने एकदम सही कहा, सनातन धर्म और हिंदू धर्म में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि इनमें अंतर क्या है। सनातन धर्म मूल जीवन दर्शन है, जहां तक सनातन की बात करें, ये तो मूल जीवन दर्शन है, जबकि हिंदू शब्द भौगोलिक और सांस्कृतिक पहचान के रूप में बाद में प्रचलित हुआ है। लेकिन अगर हम गौर से देखें तो चीज ये एक ही है, अलग नहीं है।
0: ओके, क्योंकि टाइम एंड अगेन सनातन धर्म को किसी और भाषा में या किसी और रिलीजन में या किसी और सामुदायिक ग्रुप में कभी डिस्कस होते हुए नहीं सुना, इसलिए थोड़ा सा ये कंफ्यूजन हो जाता है। मतलब सनातन धर्म की बात करते हुए सिर्फ हिंदू ही पाए गए, तो उसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि क्या है सनातन धर्म हिंदू है या आज हम हिंदू लोग सनातन धर्म को अपने से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। क्योंकि दरअसल सनातन धर्म की परिभाषा के लिए चक्कर में हमारी जो भाषा होती है वो भी इतनी ज्यादा शुद्ध हिंदी हो जाती है कि लगता है ये तो हिंदू धर्म है, इसलिए मैंने ये सवाल आपसे पूछा।
1: नहीं, आपका सवाल एकदम सही है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, देखिए एक चीज हम ध्यान रखेंगे कि ये एक जो कि पहले भी था, आज भी और आगे भी रहेगा, ये एक अटल सत्य है, पर आधारित है और ये सभी पे लागू है। ये ऐसा नहीं है कि खाली हिंदुओं के लिए ही ये है। और इसको अगर देखिए, मैं एक और चीज मानता हूँ, आज जो विश्व के अंदर अशांति का भाव हो रहा है, जगह जगह झगड़े हो रहे हैं, वार कई देशों के बीच में हो रही है, अगर इस दर्शन को, इस धर्म को लोग ध्यान से समझेंगे तो हमें इन चीजों से जो भी कठिनाई आ रही है उनसे छुटकारा मिलेगा। सनातन धर्म में इतनी शक्ति है।
0: चलिए, अभी तो मैं अभी आपके इसी बात पर वापस आता हूँ भारद्वाज साहब, बट सबसे पहले तो यही जानना चाह रहा हूं कि ये जो सनातन धर्म, या चलिए इसको हम धर्म ना कह के सनातन रिलीजन कह लें, जिससे बाकी के धर्म के लोग भी इसे कनेक्ट कर पाएं, ये किसी एक संस्थापक या एक बुक पर आधारित है, कोई ग्रंथ है इसका कि जहां लिखा हुआ है कि साहब ये सनातन धर्म का ग्रंथ है, ये सनातन धर्म यहां से आया है, इन्होंने बताया है, और ऐसा कुछ है सर?
1: नहीं, एक व्यक्ति द्वारा नहीं है समीर जी, बहुत सारे ऋषि मुनियों ने करोड़ों साल तक जो तपस्या की, उन्होंने गहन अध्ययन किया, उनके अनुभव पर ये आधारित है और ये एक व्यक्ति रिलेटेड नहीं है। जो उन्हें सत्य प्रतीत हुआ, उन्होंने देखा कि भाई ये साइंटिफिक भी है और ये व्यवहारिक भी है, इस तरह के सत्य को वो लिखते गए कि भाई इन इन चीजों को हमें फॉलो करना चाहिए। और ये आपने सही कहा, इसको धर्म ना बोल के अगर हम दर्शन शब्द यूज करें, सनातन दर्शन, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये किसी एक पर्टिकुलर धर्म से रिलेटेड किसी भी हालत में नहीं है।
0: जी, तो जैसा दोस्तों आपने सुना, भारद्वाज साहब ने यह बताया कि किसी एक व्यक्ति द्वारा बनाया गया, किसी एक इंसान द्वारा बनाया गया ये धर्म नहीं है या दर्शन नहीं है। आप इस चीज को बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, परेशान मत होइएगा कि सनातन जो है सिर्फ हिंदुओं का है और किसी का नहीं है, ये बिल्कुल गलत है, ये गलतफहमी को दूर करना जरूरी है। तो आगे बढ़ते हुए सनातन को और बेहतर समझते हैं कि सनातन में मतलब कर्म और धर्म ये कैसे सम्मिलित किए जाएं। कर्म मतलब हम क्या काम करते हैं, किस तरीके से जिंदगी जीते हैं, और किस तरीके से हम किसी ईष्ट देव को या किसी भी जो भी हम जिनकी भी हम पूजा करते हैं अपने आप को संभालने के लिए, तो इन दोनों चीजों को सनातन दर्शन में कैसे इनकॉर्पोरेट किया जाता है, कैसे समझा जाता है?
1: देखिए समीर जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं, रियली आई एम सो हैप्पी कि आपके क्वेश्चन बहुत ही रेलिवेंट है सनातन दर्शन को लेकर के। अब धर्म की अगर बात करें, धर्म क्या है, तो धर्म का मतलब धारण करने योग्य है और सही आचरण का मार्ग जो दिखाता है वही धर्म है, कि हमारा आचरण सही हो। सनातन के अंदर धर्म को बहुत ही ज्यादा वैल्यू दी गई है, कहा गया है कि भाई हमें धार्मिक धर्म के हिसाब से ही काम करना चाहिए। धर्म का मतलब लेकिन यह सही आचरण से मतलब है कि हमारा आचरण कैसा होना चाहिए। और कर्म से क्या है कि जैसे हम कर्म करेंगे वैसे ही परिणाम हमको मिलेंगे। दोनों मिलके, धर्म और कर्म मिलकर के जीवन को बैलेंस करते हैं, संतुलित बनाते हैं, धर्म और कर्म। तो हमें करना क्या चाहिए, कि हम धर्म के हिसाब से कर्म करें और जो हमारे कर्म है वही हमारे जीवन के परिणामों को निर्धारित करेंगे।
0: जी ओके। अब अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और सनातन दर्शन में, जैसा आपने बिल्कुल सही शब्द हमें दिया आज, धर्म की जगह इसको दर्शन ही कहा जाए तो अच्छा होगा। तो सभी के लिए क्या ये एक ही रास्ता है सनातन दर्शन, या हम अलग अलग रास्ते भी सनातन दर्शन में चुन सकते हैं?
1: नहीं, देखिए इसमें हर व्यक्ति का नेचर अलग होता है। आपने देखा होगा अगर 10 व्यक्ति बैठे तो जरूरी नहीं है उनका स्वभाव, उनकी प्रवृत्ति एक ही तरह की हो, उनका नेचर अलग अलग होगा। तो इसमें सभी को उनके नेचर के हिसाब से भी मार्ग दिए गए हैं। कोई भक्ति मार्ग करना चाहे, ज्ञान मार्ग करना चाहे, या कर्म योग करना चाहे, वो सभी मार्ग इसमें दिए हैं। भक्ति, ज्ञान और कर्म, ये तीनों चीज इसके अंदर, तीन मार्ग इसमें मुख्य रूप से सनातन दर्शन में बताए गए हैं।
0: तो सबसे पहले तो भारद्वाज साहब, मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना रहेगी, रिक्वेस्ट रहेगी कि ये जो तीन चीजें आपने अभी बताई हैं, भक्ति, ज्ञान और तीसरा कर्म, तो थोड़ा सा हमें इन तीनों को भी जरा एक डेफिनेशन या परिभाषित कर दीजिए, थोड़ा सा हमें बता दीजिए कि मान लीजिए आपकी बात सुनकर मैं कहूं कि चलिए मैं भक्ति मार्ग अपनाता हूं, तो मैं क्या करूं? बात सनातन दर्शन की हो रही है सर। सनातन दर्शन के अंदर, उसके अंडर में कर्म को मैं कैसे भक्ति मार्ग को मैं कैसे अपनाऊं, क्या करूं?
1: देखिए भक्ति मार्ग का मतलब यह है कि हम परमपिता परमेश्वर, अब इसमें कोई एक परमेश्वर नहीं है, जो जिसको भी भगवान मानते हैं वो सभी एक हैं, तो उनको, उनके प्रति प्रेम और समर्पण का मार्ग अपनाएं। जैसे कि मीरा का एग्जांपल है भक्ति मार्ग के अंदर, तो एक समर्पण का मार्ग होना चाहिए और प्रेम करना चाहिए उनको, एक सत्य मानना चाहिए कि हाँ भाई भगवान है, ये भक्ति मार्ग के अंदर, उनके अंदर आस्था रखनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। ज्ञान मार्ग में विवेक और आत्मबोध का मार्ग है, इसके अंदर ये ज्ञान होना चाहिए कि शरीर और आत्मा ये अलग अलग है, शरीर जो है वो नश्वर है और आत्मा जो है वो हरदम अमर है, कभी भी उसका नाश नहीं होगा, तो ये ज्ञान योग है। और कर्म में निस्वार्थ कर्म का मार्ग, अब कर्म देखिए चक्कर क्या है कि कई तरह के कर्म है, अब कौन सा कर्म सही है कौन सा कर्म सही नहीं है ये मालूम होना बहुत जरूरी है, और कर्म करने के तरीके भी पता होना चाहिए कि कर्म अगर हम करें तो कैसे करें, और ये तरीका भी सनातन में बहुत ही ढंग से समझाया गया है कि निस्वार्थ भाव से आसक्ति रहित होकर के हम कर्म करें और फल की चिंता नहीं करें, और जो भी हम कर्म कर रहे हैं उसके फल भगवान को अर्पित करते हुए हम आगे बढ़े। अगर हम

0: ऐसा करेंगे तो हम सफल होंगे और हमारा जो है फिर जो मेन मोक्ष का जो हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए किसी भी इंसान का, मानव योनि में उसको जन्म मिला है तो उसको ये ट्राई करना चाहिए कि अंत में जाकर के वो भगवान से ही मिल जाए, यानी उसको मोक्ष प्राप्त हो जाए। तो वो इन तीनों मार्गों से, भक्ति योग से, ज्ञान योग से और कर्म योग से उसको मिल सकता है। और अपनी नेचर के हिसाब से जो भी मार्ग जिसको सही लगे उस मार्ग में वो आगे बढ़ सकता है।
1: जी तो दोस्तों, मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है इस बात को समझना कि सनातन दर्शन क्या कहता है। यहाँ पर भारद्वाज साहब, हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एक प्यारे से भजन के लिए और फिर इसके बाद मैं वापस आता हूँ आपके पास।
0: जी जी जी

0: बहुत सुंदर। आगे बढ़ते हुए आपने जो पीछे बात कही, भक्ति योग, कर्म योग और ज्ञान, हां जी सर, तो इनको अगर मैं एक्स्ट्रापोलेट करूं, भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग, एक्स्ट्रापोलेट करके इनको पूरे संसार पे फैला दूं, क्योंकि हम लोगों की यही बातचीत हो रही थी कि सनातन धर्म could be used by any religion across the world so that सब लोगों में शांति आ जाए। तो समझ लें, आपने कहा इस बात को कि सब लोग समझ लें, रशिया भी समझ ले, अमेरिका भी समझ ले, ईरान भी समझ ले, इराक भी समझ ले, पाकिस्तान भी समझ ले, और वियतनाम भी समझ ले, सनातन को सब समझ लें तो सब शांत हो जाएंगे। तो वही मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सर कि ये कर्म योग, ज्ञान योग और तीसरा जो था सर भक्ति योग, इसको इन सारे विश्व में समझाने के लिए क्या करना चाहिए सर, कैसे इनको बताएं कि साहब ये तीन चीजें हैं, इनको कर लो, हाउ डू वी, क्योंकि मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है कि सर ये अभी यहां बस भारतवर्ष के किसी कोने से ये निकला है सनातन धर्म, जिसको हम समझाने चले हैं कि हम पूरे विश्व को बताएं तो विश्व शांत हो जाए। सो चलिए मान लिया प्रिंसिपली, बट मेथड क्या हो, क्या करें हम, इराक को कैसे बताएं कि साहब ये सनातन धर्म इस्तेमाल करो।
1: जी देखिए, एक तो सबसे बड़ा काम जो आज मैं देख रहा हूँ आपका टीवी भी कर रहा है
0: जी,
1: आज आपने इतने इम्पोर्टेंट मैटर को लेकर के आज आप ये एक पॉडकास्ट बना रहे हैं, जो भी इसको नाम दे, आप ये प्रोग्राम आपने बनाया और इस प्रोग्राम को हजारों लाखों लोग सुनेंगे, तो इसी तरह से इसका जो प्रचार प्रसार है इसके बारे में तरह तरह के लेख लिखे जाएं और बहुत ही सरल भाषा में लिखे जाएं, और जैसे सरल भाषा में ये प्रोग्राम अभी आप इसको आगे बढ़ा रहे हैं, इस तरह के प्रोग्राम ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में जाने चाहिए और जिससे कि वो इस मुद्दे को समझ सके। देखिए सनातन धर्म में एक बात कहता है, बहुत छोटी सी बात मैं बोल रहा हूँ, कि सबके अंदर भगवान है और शरीर एक वस्तु की तरह है और आत्मा जो है वो नश्वर।

0: भरा हुआ है और हर मनुष्य के सोचने का तरीका अलग अलग होता है। सारे तो साधु नहीं होते, कुछ तो बदमाश भी होते हैं। और जब से मानव समाज अस्तित्व में आया है, तब से ये बुरे लोग और अच्छे लोग बने हुए हैं। लाखों करोड़ों साल गुजर चुके, इंसान ने बहुत कोशिश कर ली कि बुरे लोगों को सीधा बना दिया जाए, लेकिन हुआ कभी नहीं ये। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सिक्के के दो पहलू हैं, जब दिन होगा तो रात भी होगी, और अगर रात खत्म कर दी जाए तो दिन का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। तब जहां पर इस सनातन दर्शन की हम बात कर रहे हैं कि इसको चारों तरफ फैलाया जाए, तो ये एक तरीके से एकमुष्ट धर्म हो जाएगा पूरे संसार का। ना कोई क्रिश्चियनिटी बचेगी, ना कोई हिंदुइज्म बचेगा, ना कोई बुद्धिज्म बचेगा, ना कोई इस्लाम बचेगा, सिर्फ एक सनातन दर्शन, सनातन धर्म होगा। क्या यही बात हम आज डिस्कस कर रहे हैं सर? ऐसा ही चाहते हैं हम?
1: हाँ, देखिए, हम ये कह रहे हैं जो सनातन में हमने शुरू में ये एक बात कही कि सनातन का मतलब है जो शाश्वत है, जो सत्य है, और जिसमें करुणा भी है, आत्मबोध भी है, आत्मज्ञान भी है, वो सनातन है। तो जो भी व्यक्ति काम कर रहे हैं, भले ही वो किसी भी धर्म को मान रहे हैं, उस धर्म को मानते चले, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम सभी धर्मों का सम्मान कर रहे हैं। ये विवेकानंद जी ने भी कहा था, जब वो अमेरिका गए थे तो उन्होंने एक खास बात कही थी कि हम आपके सभी के धर्मों का हम

0: सालों तक ये नहीं माना जाता था पुराने टाइम में कि महिला के अंदर आत्मा है। आप देखो कितनी बड़ी विडंबना है, वो आज ये शो करते हैं कि वो लेडीज को बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट देते हैं, लेकिन पहले उनके यहाँ ये तक नहीं माना जाता था कि महिला में आत्मा है, जबकि हम ये कह रहे हैं कि सब में आत्मा है। और हमारा सनातन धर्म तो ये कह रहा है जीव में निर्जीव में सबके अंदर भगवान को मानना है और भगवान मान करके उनके साथ व्यवहार करना है। अगर हम सब में भगवान मानेंगे तो, और जब भी कोई हमसे मिलने आएगा, जब भी कोई काम होगा, अगर हम मानते हैं भगवान है, तो आप समझ सकते हैं कि हमारा रिएक्शन क्या होगा। सनातन धर्म इतनी ऊंची सोच के साथ ये दर्शन काम कर रहा है, तो इसको अपनाना तो सबके लिए जरूरी। बाकी वो जिसकी पूजा, जिसको वो प्रेम करना चाहे, जिसकी पूजा करना चाहे वो करे, उनके लिए गॉड मे बी कुछ भी, कोई भी गॉड हो सकता है, उसके लिए कहीं मना नहीं है सनातन धर्म में, लेकिन सनातन दर्शन में। लेकिन ये कहता है सत्य को, और सत्य तो हर जगह एक ही है, सत्य अलग अलग नहीं हो सकता कि अमेरिका में सत्य कुछ और है, जापान में कुछ और है और भारत में कुछ और है, सत्य तो सत्य है।
1: बहुत खूब, विचार करने का विषय है दोस्तों, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, विचार कीजिए, मनन कीजिए, आंखें बंद कीजिए और सोचिए जो भरद्वाज साहब ने अभी हमें बताया। लीजिए इस भजन को सुनिए और हम वापस आते हैं।

0: बहुत सुंदर। तो आगे बढ़ते हुए हम आपके व्यक्तिगत अनुभवों पर आते हैं कि जब से सनातन दर्शन को, सनातन धर्म को आपने समझा, अपनाया और उसकी प्रैक्टिस करनी शुरू की, तो आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए, बदलाव आए? क्या आपको लगा कि अरे यार, ये तो पहले मैं परेशान रहता था, अभी तो बड़ा अच्छा हो गया? क्या क्या चेंजेस आए आपके जीवन में?
1: देखिए, पहले जब मैंने सनातन को ढंग से नहीं समझा था, नहीं पढ़ा था, जीवन आप देखेंगे तो इसमें उतार चढ़ाव हर व्यक्ति के जीवन में आना स्वाभाविक है, आते ही है। जैसे कि दिन और रात, ये अवश्यम भावी है, दिन है तो फिर रात होगी और रात है फिर दिन होगा, ऐसे ही मानव के जीवन में सुख और दुख के सब आते। पहले कोई छोटी सी भी परेशानी आई तो मैं विचलित हो जाता था
0: जी,
1: लेकिन जब से मैंने सनातन को समझा और चीजों को देखी, अगर सत्य आपके सामने है, अगर मान लीजिए रात हुई और जिस व्यक्ति को कोई, कई ऐसे भी जीव है जिनको ये पता ही, मतलब जिनको ज्ञान नहीं है कि भाई रात है तो अब दिन होगा, लेकिन जिसको ज्ञान है उसे पता है ये थोड़े समय के लिए है, फिर दिन आ जाएगा और दिन भी नहीं रहेगा, फिर रात हो जाएगी, तो ये जो है चक्र चलता रहेगा, ऐसे ही सुख और दुख है। तो इसके बारे में सनातन धर्म कहता है कि ये चीजें स्थाई नहीं है, अगर सुख है तो वो भी स्थाई नहीं है और दुख है तो वो भी स्थाई नहीं है। तो जब स्थाई नहीं है तो उस परिस्थिति में हमको अपने आप को ढाल करके, उस परिस्थिति के अंदर हमें संतुलन बना करके, संयम बना करके रहना है, ना कि हम उस ऐसे ही कभी दुख आया, थोड़े से दुख आते विचलित हो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जैसे ही मैंने सनातन को समझा, मेरे जीवन में संतुलन आ गया, पॉजिटिव थिंकिंग मेरी हो गई, आत्मविश्वास बढ़ गया और सेवा की भावना। सनातन ये कहता है कि आप दूसरों को जितना हो सके उनको सुख दीजिए, आपको भगवान अपने आप सुख देगा। चार वेद, किसी संत ने कहा है, चार वेद षट शास्त्र में बात लिखी है, दो बात लिखी है इंपॉर्टेंट शास्त्रों में और चार वेदों में, सुख दीजिए सुख लीजिए, दुख दीजिए दुख होए। अगर दूसरे को सुख देंगे आपको स्वयं को सुख मिलेगा, और आप दूसरों के लिए गड्ढे खोदेंगे तो गड्ढे आप ही को दुख देंगे, आप ही के लिए वो गहरे गड्ढे साबित हो जाएंगे। तो इसलिए सनातन को समझने के बाद मुझे जो है जीवन में संतुलन, सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास और सेवा की भावना बहुत मेरे अंदर मजबूत हुई है
0: जी। बहुत खूब। तो ये बिल्कुल क्लियर एक एक्सप्लेनेशन है कि प्रैक्टिकल, देखिए थियोरेटिकल अलग चीज हो गई कि हमने बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर ली सनातन दर्शन के बारे में, हैं जी, लोगों की हेल्प करो, सुख दो, लेकिन प्रैक्टिकल बात अभी भारद्वाज साहब ने बताई कि जब उन्होंने इन चीजों को अपनाया तो उनके जीवन में क्या बदलाव आए। देखिए दोस्तों, चाहे हम इनको कितनी भी थियोरेटिकल बातें माने, लेकिन जब भी किसी दर्शन को हम अपने जीवन में उतारते हैं तो हमारे जिंदगी में कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंजेस तो आते ही हैं। वही चीज भरद्वाज साहब शेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं कि उनके जीवन में क्या बदलाव आए। चलिए यहां पर रुककर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और एक भजन का एक मुखड़ा सुनकर वापस आते हैं भरद्वाज साहब से और विचार विमर्श करने के लिए।